ओम शांति। हम सभी को बाबा ने एक महान कार्य सौंपा है कि तुम्हें संसार में अशांत आत्माओं को शांति देनी है। हम अपने को पीस हाउस बनाए, अपने अंदर शांति की शक्ति भर लें, ताकि हम आने वाले समय में और अब भी अनेक अशांत आत्माओं को शांति दे सकें। संसार में अशांति बढ़ती ही जा रही है, विकारों ने और पाप कर्मों ने, संबंधों में कड़वाहट भरती है, बीमारियां उग्र रूप लेती जा रही हैं और संसार अशांति की चपेट में आता जा रहा है। आपके पास लोग आएंगे, आते होंगे, हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारा चित्त शांत हो जाए, हम पे दृष्टि डाल दो, अपने घर का पानी पिला दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। हम विचार करें, क्या हमारे अंदर इन सभी आत्माओं के लिए जो शांति की तलाश में हमारे पास आती हैं, शांति देने की शक्ति है, या अभी तक हमारा अपना मन ही शांति से भरपूर नहीं हुआ है। छोटी मोटी बातें हमें अशांत कर देती हैं, छोटी मोटी बातें हमें विचलित कर देती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बातें बहुत छोटी हैं, हम बहुत बड़े हैं। बातें बहुत छोटी हैं, हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा है। बातें बहुत छोटी हैं और शांति की शक्ति बहुत महान है। हम छोटी बातों के कारण अपनी शांति की शक्ति को नष्ट कैसे कर सकते हैं? तो चलिए एक सुंदर अभ्यास करते रहें हम, कि बातों पर रिएक्ट ना करें। अशांत करने वाली बातें आएंगी, लेकिन हमें ये संकल्प कर लेना है, हमें शांति की शक्ति से इन अशांत करने वाली बातों को समाप्त कर देना है। हमें जरा भी इरिटेट भी नहीं होना है, क्रोध में भी नहीं आना है, क्योंकि क्रोध से हमारी बहुत समय से अर्जित की हुई शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। काम और क्रोध ये दो ही ऐसे महाशत्रु हैं जो मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। काम से पुण्य नष्ट होता है और क्रोध से नष्ट होता है मनुष्य का सद्विवेक। इसलिए दोनों को अपने महान शत्रु समझकर अपने चित्त को शुद्ध और शांत करने का दृढ़ संकल्प रख लेना चाहिए। चेक करेंगे कौन सी बातें हमारे मन को अशांत करती हैं। जब योग करते हैं तो क्या मन चारों ओर भटकता रहता है, उससे भी अशांति होती है? क्या किसी संबंधी की चिंता हमारे चित्त को अशांत कर रही है? क्या काम धंधे में किसी का बुरा व्यवहार हमें अशांति की अग्नि में धकेल रहा है? या कोई विकार बहुत बड़ी चीज होती है, काम, क्रोध, मोह, मैपन, लोभ, ये सब तो हमें अशांत नहीं कर रहे हैं। अब इनकी विदाई का समय आ गया है, हम इनमें न उलझें। स्वयं को शांत करना अपने हाथ में है। हम अच्छी तरह विचार करें, यदि हम चाहें तो हम अपने चित्त को विभिन्न परिस्थितियों में शांत भी रख सकते हैं, परंतु इसके लिए चाहिए हमारे पास ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ बल और योग की शक्ति, ताकि बातों को हम फटाफट उड़ा दें और बातों का प्रभाव हमारी शांति की शक्ति को हमसे छीन न ले जाए। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं पीस हाउस हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा तो हूँ ही, परंतु मैं पीस हाउस हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति की किरणें फैलती हैं, जो इस संसार से अशांति के वाइब्रेशंस को नष्ट करती हैं। हमें याद रखना चाहिए, हमारी शांति की शक्ति बहुत प्रबल है, उसमें बहुत बड़ी अशांति को नष्ट करने की शक्ति है। और फिर परम धाम में बाबा को देखेंगे शांति के सागर के स्वरूप में।
और अनुभव करेंगे उनकी शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं, और ये शांति की किरणें मुझ में समा कर मुझ पीस हाउस से चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर देंगे सभी को शांति प्राप्त हो, सभी के अशांत चित्त शांत हो जाएं। ओम।

0: ओए रुको रुको ओए रुको ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे मालूम नहीं तुमको ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज
0: ओए तुम्हारे मैच की तो ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे ओए ये ट्रैफिक है भाई यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती ठोको ताली ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क
2: याद रखें एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं यह एक दंडनीय अपराध है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी सुनते रहो मुस्कुराते रहो
3: सुप्रभात गुड मॉर्निंग सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर अच्छी दोस्ती के संबंध बनाना प्रसन्नता और खुशी का एक पक्का रास्ता है हाल के अध्ययन बताते हैं कि जिन लोगों के मित्रों और रिश्तेदारों का एक बड़ा दायरा होता है वे ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं ज्यादा हंसते हैं और कम चिंता करते हैं परंतु मित्रता बाकी अच्छी चीजों की तरह समय शक्ति और कर्तव्य निष्ठा मांगती है पर ऐसी कुछ ही चीजें होंगी जो इससे बेहतर पारितोषिक देती हूं जैसा कि एक दार्शनिक ने कई शताब्दियों पहले लिखा था दुनिया में दोस्ती से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है जो लोग इसको जीवन से दूर रखते हैं वह उसी प्रकार हैं जैसे पृथ्वी को सूर्य से अलग कर दिया जाए क्योंकि प्रकृति की अनमोल देनों से यह सर्वाधिक खूबसूरत और प्रसन्नतादायक है कोई भी व्यक्ति जिनके तीन दोस्त हैं वह वास्तव में एक धनी इंसान है इसे दिल से महसूस करने के लिए प्रयास कीजिए गहन मित्रता स्थापित करने के लिए आपको अपने सुविधाजनक दायरे से निकलकर उन लोगों से बात करने की निष्कपट गर्मजोशी के साथ पहल करनी पड़ेगी जिन्हें शायद आप अच्छी तरह से जानते भी न हो और आप अगर मित्रता के बीज बोएंगे तो आपको अवश्य ही उत्तम दोस्ती की फसल का लाभ प्राप्त होगा हिम्मत दिखाकर उस इंसान तक जाइए बात करिए जिसको आप जानना चाहेंगे और अपने से मिलवाना चाहेंगे हर इंसान में प्रेम का एक गहन भाव होता है और लोग खुश होते हैं अगर आप खुद शुरुआत करते हैं अगर वे प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है इसको उपेक्षा समझकर नहीं बल्कि यह सोचिए कि इसमें उनका ही नुकसान है और बड़ी विनम्रता से अगले इंसान की तरफ आगे बढ़िए जिसको आपके गुणों से फायदा हो सकता है

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने लिखा है, हर इंसान की परेशानियां अपने कमरे में चुपचाप न बैठ पाने के कारण आती है। हम अपने जीवन को शोर शराबे की प्रक्रियाओं से भरने के आदि हो चुके हैं। हम रेडियो की तीव्र आवाज के साथ उठते हैं और टेलीविजन के समाचार के साथ तैयार होते हैं। हम जब काम पर जाते हुए गाड़ी चलाते हैं तो भी हम व्यापार की नवीनतम रिपोर्ट सुन रहे होते हैं और अगले 8 घंटे हम दफ्तर के कोलाहल में बिता देते हैं। जब हम दिन खत्म होने पर घर आते हैं तब हम फिर से अपनी शाम की प्रक्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं, जहां पीछे से टेलीविजन की आवाज, फोन की घंटियां, कंप्यूटर की भिन भिनाहट हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। पास्कल ने सही लिखा था कि हमारी ज्यादातर चिंताओं की शुरुआत इस बात से होती है कि हम सब ने हर दिन थोड़ी देर के लिए भी अपने जीवन में शांत रहने के महत्व को भुला दिया है। बिना ध्यान रूपी गुण के संपूर्ण और परिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप एक क्रिया पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकेंगे और नहीं अपने स्वप्न बना पाएंगे और नहीं रोजमर्रा के जीवन का आनंद ले पाएंगे। बिना मानसिक अनुशासन के तुच्छ विचार और चिंताएं आपका पीछा करेंगी और आप में कभी भी अपने आप को अधिक अर्थपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। बिना गहन मनोयोग के आपका दिमाग आपका मालिक बनकर आपको गुलाम बना लेगा। जिस दिन आप अपना ध्यान केंद्रित करना सीख लेंगे उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मनोयोग कोई नए जमाने का अभ्यास नहीं है जो सिर्फ पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं तक सीमित है। इसके विपरीत ध्यान एक अत्यंत पुरानी पद्धति है जिसका विकास दुनिया के कुछ सर्वोच्च रूप से बुद्धिमान लोगों ने अपने मन का पूर्ण रूप से नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए किया था, जिसके द्वारा उपयोगी कार्यों में पूरे सामर्थ्य को लगाया जा सके। मनोयोग वह प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क को वह कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करती है जिसके लिए वह बनाया गया है, और इससे यह मूलभूत लाभ है जो शांति और निश्चलता आपको हर रोज 20 मिनट के ध्यान से मिलेगी वह आपके हर मिनट को प्रेरणा से भर देगी। आप दूसरों के साथ अपने संबंध कायम रखेंगे, दफ्तर में ज्यादा स्थिर और एकांत में ज्यादा खुश रहेंगे। मनोयोग आपको एक बेहतर माता पिता जीवन साथी व्यावसायिक व्यक्ति या मित्र में परिवर्तित करता है। आपको इस मन को अनुशासन सिखाने वाली 5000 साल पुरानी शक्ति की खोज करने में जरा भी वंचित नहीं रहना चाहिए। बस ध्यान का सही अर्थ समझकर उसे अपने जीवन में लाइए। ध्यान करने में सिर्फ इतना ही करना है कि बस एकांत में बैठकर उस प्यारे प्रभु पिता को याद करना है, उनसे वह शक्तियां लेनी है जो शक्तियां हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

एक भारतीय राजा जो एक अजीब तरह की विधि का अभ्यास करता था। हर दिन उठने के तुरंत बाद वह अपना खुद का अंतिम संस्कार पूरे फूलों और संगीत के साथ करता था। पूरे समय वह यह जाप करता था, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया। आइए इस इंसान के इस विधि विधान का अर्थ समझें। यह महाराजा ऐसा प्रतिदिन करके प्रतिदिन अपना संबंध जीवन की नश्वरता के साथ जोड़ता है और अपना हर दिन इस प्रकार जीता है जैसे वह उसका आखिरी दिन हो। उसका यह धार्मिक कृत्य बहुत ही समझदारी दिखाता है और उसे इस सत्य की याद दिलाता है कि समय हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है और जीवन को स्पष्ट रूप से सिर्फ आज वर्तमान में जिया जा सकता है, न कि आने वाले कल में। इंसान में अपनी नश्वरता की चेतना अपने आप में एक बड़ी बुद्धिमत्ता का स्रोत है। प्लेटो की मृत्युशैया पर उनके एक मित्र ने उनसे उनके जीवन के महानतम कार्य द डायलॉग्स को संक्षिप्त रूप में बताने के लिए कहा। काफी मनन के बाद उन्होंने सिर्फ दो शब्दों का जवाब दिया, मरने का अभ्यास करिए। प्राचीन विचारकों का कहना है कि प्लेटो के इस विचार को एक दूसरे प्रकार से भी लिया जा सकता है। मौत युवा लोगों की आंखों में भी उतनी ही रहनी चाहिए जितनी वृद्ध लोगों की आंखों में होती है। हर दिन हमें व्यवस्थित करना चाहिए और उसे पाल पोस कर अपने जीवन को संपूर्ण करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में दाह संस्कार की प्रक्रिया आपको एक सच्चाई से जोड़ेगी कि समय एक अनमोल धरोहर है और सर्वश्रेष्ठ तरीके से समृद्ध बुद्धिमत्ता और ज्यादा परिपूर्ण जीवन की शुरुआत सिर्फ वर्तमान में होती है।

0: ओए रुकत, रुक।
1: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, है? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

यह शिकायत करना छोड़ दीजिए कि आपके पास समय की कमी है और एक घंटा जल्दी उठना शुरू करिए। आपके पास विकल्प है तो क्यों ना उसका उपयोग करें। इस बात की असंतुष्टता प्रकट करना छोड़ दीजिए कि आपको अपनी व्यस्तता के कारण व्यायाम का समय नहीं मिलता। अगर हर रोज आप 7 घंटे की नींद लेते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, आपके पास उसके बाद भी 63 घंटे का खाली समय हर हफ्ते होता है, जिसमें आप जो भी चाहें वह कर सकते हैं। इसका मतलब 252 घंटे हर महीने और 3024 घंटे प्रतिवर्ष हमें मिलते हैं, जिसे हम अपने जीवन के बाकी कार्यों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में इससे ज्यादा बेहतर समय कभी नहीं हुआ है, जो इन अपरिमित संभावनाओं को हर दिन हमारे सामने अवसर के रूप में लाता है। जैसा आप अपने आप को रखना चाहते हैं पर वैसे खुश, समृद्ध और शांत नहीं है, तो इसके लिए अपने माता पिता, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को जिम्मेदार ठहराना छोड़कर अपनी परिस्थितियों का पूरा दायित्व अपने ऊपर लीजिए। यह पहला कदम होगा जिसके अनुसार आप अपने जीवन को एक नवीन रूप में देखना शुरू करेंगे और वह आपके बेहतर जीवन की शुरुआत का बिंदु होगा। जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा है, इस दुनिया में वे ही लोग आगे जाते हैं जो समय के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन परिस्थितियों को ढूंढते हैं जिनकी उन्हें तलाश है, और अगर वे उन्हें नहीं खोज पाते हैं तो उनका सृजन करने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन में प्रवेश करने वाले विचारों, अपनी अभिवृत्तियों, अपनी दिनचर्या और अपने समय के बारे में सावधानी से चुनाव करिए कि आप उसे कैसे बिताने वाले हैं। शिकायतें छोड़कर जीना शुरू कीजिए। कवि रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में, अगर आप अपनी शिकायत का 1 मिनट 60 सेकंड में दौड़कर तय की हुई दूरी से भर सके, यह दुनिया और इसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। तो मित्रों, आज से हम भी यह तय कर लें कि हमारा समय इन शिकायतों के पीछे व्यर्थ नहीं गवाएंगे, बल्कि हम उन चीजों के पीछे लगाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य को सहज करने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज हमारे आसपास की चीजें हैं। कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें जो हम अपने शरीर में हर दिन डालते हैं। अगर हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें तो शायद स्वास्थ्य की आधी चीजें बिल्कुल सही हो सकती हैं। और लोगों ने यही चीज प्राचीन समय से कहा है और कहते भी आए हैं कि आप वही बनते हो जो आप खाते हो। भारत में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का शरीर पर प्रभाव है और साथ साथ मन पर भी प्रभाव है, ये भी चीज समझ में आता है। प्रायः जब व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है, किन चीजों से परहेज करना है। यानी ये बताता है हमें कि हमारे भोजन का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर एक गहरा असर है। और जब हम भोजन की बात कर रहे हैं तो हमने पिछले कई एपिसोड्स में इस विषय पर बातचीत की है कि एक संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड डाइट क्यों आवश्यक है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसे समझकर जिम्मेदाराना तरीके से इसका इस्तेमाल करना और अपने भोजन में इन चीजों को ले आना आवश्यक है। आज भी हम भोजन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर इनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ और शिफा दिया है। डॉक्टर साहब, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझी जाए कि जब लोग ये कहते हैं कि भाई हम बीमार पड़े हैं या कोई चीज गड़बड़ चल रही है, तो मैं हमेशा हमारे दादाजी से ये चीज सुनता था। जब वो हमारे फैमिली डॉक्टर के पास ले जाते तो वो सामने से पूछते थे कि अच्छा भोजन में क्या देना चाहिए, तो डॉक्टर प्राय बताते थे कि भाई इन चीजों से परहेज करो, ये चीजें खिलाओ, इस चीज का ध्यान रखो। तो उससे समझ में आता था कि भाई डॉक्टर तो ऑलरेडी इंजेक्शन दे चुके हैं, दवाई दे चुके हैं, ये फिर भोजन के बारे में क्यों इतना पूछ रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, ये प्रश्न उठता है।
1: हम लोग ने पिछले एपिसोडों में बात की और आप भी जानते हैं, मेक दाय फूड दाय मेडिसिन, अपने भोजन को ही दवा बनाओ। बीमारी के समय भोजन के बारे में इसलिए बात किया जाता है कि उस समय हमारा शरीर एक ऐसे स्टेट में होता है कि वो थका हुआ है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो कमजोर है। बीमारी हमें कमजोर बनाती है, थका हुआ बनाती है, हमको चाहती है कि हम आराम करें, तो उस समय भोजन का महत्व और बढ़ जाता है। और अगर सरल शब्दों में बोलें तो हमें सिर्फ सुपाच्य भोजन उस समय करना चाहिए, हल्का भोजन हमें उस समय करना चाहिए, अगर हो सके तो हमें भोजन एकदम नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ फल या उसके रस पे रह कर भी अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ रहता है, वो काम नहीं करना चाहता है, और अगर हम उस समय उसको एकदम तला भुना हुआ एकदम मसालेदार भोजन देंगे तो वो वैसे ही बेचारा थका हुआ है, वो कहां से ये बोझ ढो पाएगा। तो बीमारी के समय अगर हम हल्का भोजन करें तो हम जो औषधियां ले रहे हैं उनका असर और जल्दी होने लगेगा और हम जल्दी ठीक हो पाएंगे। इससे सबसे कॉमन एग्जांपल आपको लेता हूं कि जब सर्दी जुखाम खांसी होती है या वायरल फ्लू होता है, सीवियर वायरल फ्लू, गला आपका जाम होता है, तो डॉक्टर पहली लाइन क्या बोलता है, और ये खासकर छोटे बच्चों को होता है, पहली लाइन बोलता है ठंडा पानी मत पीना, हल्का गुनगुना पानी पी लो, भाप सेक लो। तो उसने क्या किया, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो हो सकता है गले का इन्फेक्शन बढ़ जाए, गले में जो चुभन है वो बढ़ जाए। गर्म पानी पीते ही वो क्या करेगा, गले को साफ करेगा, जो गले में बैक्टीरिया है या वायरस है उसकी मात्रा वो कम करेगा, और भाप अगर हम लेने को कहते हैं तो क्या करता है, वो भाप जो बैक्टीरिया उनको मार देता है, तो बैक्टीरियल लोड सडनली कम हो जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है।
0: ये बात समझ में आती है कि भोजन का आरोग्य के साथ कितना नजदीक का संबंध है, और भोजन को सुपाच्य रखना, कम भोजन करना या बीच बीच उपवास करना हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कैसे मददगार होता है, ये बात समझ में आ रही है।
1: भैया मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्यों एकादशी बनी, क्यों लोगों ने महीने में एक दिन पकड़ा कि हम इस दिन उपवास करेंगे, क्यों लोगों ने अष्टमी, अभी कल मेरे पास एक जैन पेशेंट आई थी, उन्होंने कहा मैं 8वां और 13वां करती हूँ, तो उन्होंने एक दो दिन उनके गुरुजी ने बताया, तो उन्होंने अपने जीवन में उसको उतार लिया है। तो हमारा जो रहन सहन है वो भी समझाता है कि हम जो भी व्रत बने हमारे हिंदू समाज में, क्यों नवरात्रि में 9 दिन के व्रत की बात की गई और साल में 2 बार ये किया गया, क्योंकि हम फास्ट करें, पानी पे रहें, नींबू पानी या शहद पानी पे रहें और हम अपने शरीर को साफ कर पाए।
0: ये कितनी इसके पीछे की समझदारी है ये समझ में आता है। आज हम इन्हें धार्मिक आयोजन समझ के करते मात्र हैं, मगर इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमारे को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, शरीर को स्वच्छ करने के लिए ये प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और सदियों से लोग इसे करते आ रहे हैं। ये बात डॉक्टर साहब, जब हम भोजन के बारे में बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि भोजन एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन इत्यादि की बात हम कर रहे थे। अब जब हम विटामिन की बात कर रहे हैं तो हम ये बात सुनते हैं कि अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं। आज एक नए प्रकार के विटामिन के बारे में जाने कि ये नया विटामिन कौन सा है, ये विटामिन्स के अलग अलग जो नाम है इसमें से कौन से विटामिन पर आज चर्चा करें।
1: हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे तो हमने शुरुआत से विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन ई और के बारे में बात करें। ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो जो भी माताएं बहनें हमारी सुन रही हैं कि फैट हमारे लिए जरूरी नहीं है, कृपया थोड़ा फैट अपने भोजन में जरूर डालें, क्योंकि उसी से ये चारों विटामिन आपके शरीर में जाएंगे। विटामिन के थोड़ा सा ऐसा विटामिन है जिसके बारे में बहुत बातचीत नहीं होती है, ये थोड़ा सा इग्नोर्ड विटामिन है हमारा। हमने जैसे बात की रात में दिखाने तो विटामिन ए गड़बड़ हो गया, हड्डियों की वजह से विटामिन डी बहुत ज्यादा उसके बारे में बात होती है, अरे हड्डी दर्द हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रही है, और ई तो सबसे सुपरहिट विटामिन हो गया क्योंकि वो बार बार उसको त्वचा की सुंदरता के साथ जोड़ दिया गया। विटामिन के ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। विटामिन के दो तरह से पाया जाता है, विटामिन के वन, विटामिन के टू, एक फाइलोक्विनोन है और एक मिनाक्विनोन है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। ये हमारे शरीर में 3 काम मेजर करता है। ये हमारे शरीर में हमेशा खून बह रहा है,
0: बिल्कुल,
1: और हमको जहां चोट लगती है या हम कट जाता है तो वहां रक्त का रिसाव होना शुरू हो जाता है, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो खून के रिसाव हमारे शरीर में होता चला जाएगा। इंग्लिश में से कहा जाता है यू विल ब्लीड टू डेथ, मतलब आपके शरीर से खून निकलता चला जाएगा। हमारा शरीर कितना सुंदर है, हमारा मतलब क्या भगवान ने इसको बनाया है कि जैसे ही हमें कहीं कट लगता है, खून निकलना शुरू करता है, तुरंत थोड़ी देर में वहां पर बहुत सारी कोशिकाएं आती हैं जिनको हम प्लेटलेट कहते हैं, और वो हमारे यहाँ एक उसको कोगुलेटिव प्रोफाइल शुरू करती है, मतलब वो कोगुलेशन जो खून का जो बहना है उसे रोकना शुरू करती, वो तुरंत एक पहले जाल की तरह झिल्ली बनाती हैं हाँ, जिसको आप जैसे मच्छरदानी का जाल समझ लीजिए, उस तरह से जाल बनता है और उस फिर जाल के छोटे छोटे भागों में भी प्लेटलेट जाके चिपक जाते हैं और तुरंत वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। आप ये चीज देखेंगे कि ये काम पूरा का पूरा मतलब विद इन 5 मिनट्स हो जाता है, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा ये काम हो जाता है। विटामिन के क्या करता है कि जो नॉर्मली कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9 और 10, 2, 7, 9 and 10, इन फैक्टर्स को वो एक्टिवेट करता है और कोगुलेशन को बेटर करता है। जिनमें ये विटामिन थोड़ा कम होने लगता है उनको जल्दी ब्रूजेस आने लगते हैं, जैसे उनको जहां भी चोट लगी नीचे त्वचा के नीचे वो काला पड़ने लगेगा, या आप कहते ना अरे ये तो धुंस गया है, यहाँ ये ब्लड का हल्का सा त्वचा के नीचे क्लॉट दिख रहा है। तो विटामिन के का सबसे पहला रोल इज ब्लड कोगुलेशन। विटामिन के का दूसरा रोल जो है वो है बोन स्ट्रेंथ, हड्डियों में इसका बहुत बड़ा रोल है। और आज आप बहुत सारी कैल्शियम सप्लीमेंट्स को देखेंगे या इवन आप डॉक्टर से बात करने जाएंगे, वो आपको विटामिन डी के साथ विटामिन के का भी सप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। और नॉर्मली जो के टू है हमारा, उसका ज्यादा बड़ा रोल बोन स्ट्रेंथ में आता है। अगर आप इस समय बहुत अच्छी ब्रांड के अगर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दवा की दुकानों में देखेंगे तो आपको उसमें कैल्शियम के बाद K2 लिखा भी दिखेगा। ये करता क्या है, ये खून में से कैल्शियम को लेकर हड्डी पर चिपका देता है। तो विटामिन K2 को एक मजदूर की तरह समझिए जो रक्त में बह रहे कैल्शियम को लेता है और उसको उठाकर आपकी हड्डी पे चिपका देता है। आपको एक बात जान के बड़ा अचंभा होगा कि विश्व में जितने भी महिला पुरुष हैं सबकी हड्डी एक जैसी दिखती है। मतलब अगर मैं आपके हाथ की हड्डी निकालूं और अपने हाथ की हड्डी या किसी की भी हड्डी निकालूं तो नॉर्मल व्यक्ति में वो हड्डी एक जैसी दिखेगी। उसकी हाइट थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, उसकी मोटाई थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, मगर उसका शेप एक जैसा दिखेगा। मतलब अगर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में कहें कि आप किसी भी व्यक्ति की हड्डी अगर किसी को निकाल के दिखाइए तो वो देखते ही उसका नाम लेके बोलेगा अच्छा ये हड्डी है। तो एक छोटे बच्चे की हड्डी और एक बड़े बच्चे की हड्डी कैसे या बड़े वयस्क व्यक्ति की हड्डी एक जैसी क्यों दिखती है? ये क्योंकि हमेशा हमारे शरीर में क्या होता है, हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है, वो रक्त में जाता है और फिर रक्त से वापस हड्डी में चिपकाया जाता है। तो इसी तरह से हड्डी की लंबाई चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो विटामिन K2 का सबसे बड़ा रोल है ये काम करने में कि वो हमारे शरीर की जितनी हड्डियां हैं उसमें जो कैल्शियम है उसको चिपकाता है। इसको मोन मिनरलाइजेशन कहते हैं, हड्डी में हमारा जो कैल्शियम उसको लगाता है। तीसरा, अब जब ये हमारे शरीर में कैल्शियम निकाल रहा है और हड्डी में चिपका रहा है तो ये हमारे हृदय पे भी इसका बहुत पॉजिटिव रोल होता है। ये कोशिकाओं में कैल्शियम डिपॉजिट होने नहीं देता है। तो जो हृदय की धमनियां हैं या हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसमें कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता है और ये हमारे ओवरऑल हार्ट हेल्थ को, हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ये विटामिन के की जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो विटामिन के हमारे शरीर में करता है।
0: ये बात समझ के बड़ी हैरानी होती है कि कुछ चीजों को हम जानते ही नहीं हैं कि भाई ये चीजें हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं और शरीर में ये क्या क्या काम करती हैं। आपने पहले ये बताया है कि विटामिन्स बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में ली जाती हैं भोजन के जरिए, मगर ये कम होते हुए भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अगर इन चीज़ों की कमी होती है तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब हम ये चीज समझें कि विटामिन के से फायदे हमारे इतने सारे हैं शरीर में, ये काम करता है, ये बात समझ में आती है। अब ये भी समझा जाए कि ये विटामिन के को कहाँ से लिया जाए, ये इसका सोर्स क्या है, क्या खाएं जिससे विटामिन के मिले।
1: ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, इसका एक पार्ट हमारे शरीर के अंदर बनता है।
0: हाँ,
1: और ये आपके अंदर भी बन रहा है और मेरे अंदर भी बन रहा है। सबसे ज्यादा भैया नेचर ने सबसे ज्यादा विटामिन पैक करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में दिए हैं। पालक, धनिया, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें बहुत अच्छा विटामिन है। गाय के दूध में विटामिन बहुत अच्छा है, और जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं, जो गुड गट बैक्टीरिया बोला जाता है, जैसे मेरी आपकी हम जितने लोग हैं हम सबकी आंतों में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, जिनको गुड गट बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये भी विटामिन के को बनाने में हमारा सहयोग करते हैं, और हम इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, स्पेशली दही लेकर, छाछ लेकर, क्योंकि उससे ये गुड जो गट के बैक्टीरिया है वो बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, दूध में मिलता है और हमारे शरीर में बनता भी।
0: यानी जब इसके स्रोत को हम हरी पत्तियों वाली सब्जियों में देखते हैं तो इनका सेवन करना भी आवश्यक है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रायः हम देखते हैं, खासकर राजस्थान में, जहां पर हमें हर मौसम में हरे पत्ते नहीं मिलते, हरे पत्तियों की सब्जियों की कमी देखी जाती है, तब भी, और खासकर शहरी क्षेत्रों में जब हम बच्चों को देखते हैं या आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे हरी पत्ती की सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर उनमें तो ये कमी स्वाभाविक रूप से नजर आती होगी।
1: आती है भैया, पर जैसा हम लोग ने बात किया, दूध और दही से वो बैक्टीरिया इसको बना ले रहे हैं। क्यों बच्चों को हरी सब्जी के लिए और ताजे फल खाने के लिए बोला जाता है? इसीलिए कि उन्हें पूरा पौष्टिक भोजन मिल पाए। आपने जैसे बोला भैया, जो हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाते हैं उनमें इनकी कमी होगी, जिनको डायरिया रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या पाचन तंत्र की कोई समस्या है उसमें इनकी कमी रहती है, बहुत दिन तक अगर कोई एंटीबायोटिक खा रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाता है कि अच्छे बैक्टीरिया को मार रहा है कि बुरे बैक्टीरिया को मार रहा है, तो जहां हमारे गट के बैक्टीरिया मरने शुरू होंगे या कम होने शुरू होंगे वहां हमें विटामिन के की डिफिशेंसी शुरू हो जाएगी। इसीलिए सबको मैं एक हिदायत देता हूं कि बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। आप बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज को मारते हैं, और दूसरा अपने बॉडी में रेजिस्टेंस टूवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। श्री भाई आप भी बहुत विदेश गए हैं, मैं भी गया हूं, आप जानते हैं ना विदेश में दवा खरीदना कितना मुश्किल काम है, और विदेश में डॉक्टर को दिखाना कितना मुश्किल काम है, कितना हैवी इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है यदि आप अमेरिका में रहते हैं मेडिकल सर्विसेज के लिए। मैं प्लीज सबको बोलता हूं कि प्लीज दवा खाने से पहले 10 बार सोचिए कि आप क्यों खा रहे हैं, अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, और बिना किसी डॉक्टर के राय के कोई दवा नहीं खानी चाहिए।
0: ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ी बात आपने कही कि हम बिना सोचे समझे दवाइयां खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि दवाइयों से ही हमारा स्वास्थ्य आ रहा है, एक कितनी बड़ी भ्रांति है ये समझ में आता है। जैसे आपने विटामिन के बारे में बताया कि ये हरी पत्तियों में मिलता है, दूध और दूध से बनी हुई दही और प्रोबायोटिक चीजों में ये चीज मिलती है जो हमारे ही हाथों में बनता है। अब ये बात समझा जाए कि अगर कोई व्यक्ति विटामिन के की कमी से जूझ रहा है तो उसके शरीर में क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या चीजें नजर आएंगी?
1: सबसे पहले उसका जो रक्त है उसकी क्लॉटिंग सिस्टम डिस्टर्ब होगा, उसको जगह जगह ब्रूजेस होंगे, या उसके त्वचा के नीचे देखिएगा थोड़ा सा ब्लड का जो है वो दिखेगा, हिमरेजेस होंगे उसके में, कभी दांत से खून निकलेगा, ब्रश करते समय उसको लगेगा कि खून निकल रहा है, और जहां भी कट है या कहीं कटा हुआ है उससे लंबे समय तक खून रिसता रहेगा, ये पहली चीज। दूसरा, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, और तीसरा हो सकता है कि उसके हार्ट जो में आर्टरीज हैं उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो। ये तीन चीज हमें मिलेंगी।
0: खासकर आजकल जब हम देखते हैं, जब हृदय रोग की संख्या भारत में बहुत बढ़ चुकी है, पहले तो लोग कहते थे कि ये उम्र दराज लोगों में हृदय से संबंधित बीमारी है, हार्ट डिसीज को लोग कहते थे कि ये अमीरों की बीमारी है। आजकल तो हम देखते हैं कि कम उम्र में भी, युवा काल में भी बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों से सुना है जहां पर उनको हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं या हार्ट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, ये सुनने को मिलता है। तो क्या ये देखते ही हम ये समझ जाएं कि अगर उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं और ये चीज है, तो इसका मतलब ये है कि विटामिन के की भी कमी इनके शरीर में जरूर।
1: भैया, इसके लिए थोड़ी जांचें करनी पड़ेंगी। पहले ये मानते थे कि एक जांच किया और तुरंत डायग्नोसिस बना लिया, अब बहुत कुछ किया जाता है और उसमें पता किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि विटामिन के की कमी है, तो सबसे पहले उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक किया जाता है, एक ब्लड टेस्ट है, उससे मालूम चल जाता है कि कितनी देर में आपका जो रक्त है वो जम रहा है, तो या वो जो क्लॉट बन रहा है, अगर इसका टाइम ठीक है तो फिर हम मानते हैं कि विटामिन के उसका ठीक है।
0: यानी ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन के एक ऐसी आवश्यक विटामिन है जो आपके शरीर में होने वाले घावों को जल्दी भरने में मदद कर रहा है। इसकी कमी अगर हो रही है तो फिर आप अपने शरीर में जो घाव हो रहे हैं, छोटे मोटे कट्स लग रहे हैं, उसको हील होने में स्लो करने के लिए आपकी ये विटामिन की कमी ही कारण हो रही है, और आप अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपने ही शरीर का नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आज की ये बातचीत में समझ में आया है कि विटामिन के, जिसके बारे में जैसे आप शुरुआत में कह रहे थे कोई ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है, ये मेरे लिए भी एक नया ही विषय रहा है, और ये कितना आवश्यक है ये बात समझ में आती है। और खासकर बच्चों में तो मैं समझता हूँ कि बच्चे खेल कूद करते हैं, उठते बैठते यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं उनको कट्स लग ही जाते हैं, गिरते हैं उठते हैं तो थोड़े बहुत घाव होते ही हैं, उनको जल्दी ठीक करना है तो शरीर के अंदर इस विटामिन को पहले से डाल के रखें। बच्चों को हरी पत्तियों की सब्जियां खिलाएं, दूध दही और प्रोबायोटिक जो चीजें हैं वो खिलाएं, जिससे इनका गट बैक्टीरिया या उनके पेट के अंदर के अच्छे बैक्टीरिया अच्छे बने रहें। दोस्तों, वक्त कहता है कि यहाँ रुकना होगा, मगर आज की बातचीत में जो बात डॉक्टर राहुल मोदी जी ने कही है वो सब हमारे फायदे के लिए है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, हमारे शरीर में कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाले, भोजन में बहुत ही कम मात्रा में लेने वाले ये आवश्यक तत्व विटामिन कितने महत्वपूर्ण हैं और ये क्या काम करते हैं, ये बात समझ में आया है। विटामिन के बारे में आज जानकारी हासिल की है। आशा करता हूँ कि आप सभी विटामिन के प्रति जागरूक भी रहेंगे और अपने भोजन में इसका नियमित सेवन भी करेंगे। आज की चर्चा में यही रुकना होगा। आज हमारे प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: दोस्तों, आज की सहज स्वास्थ्य की बातचीत में ये बात समझी है कि विटामिन के प्रति जागरूक रहें, विटामिन के की कमी होने से क्या चीज होती है वो भी समझ में आई है, और विटामिन के की कमी हो ही ना इसका ध्यान रखने के लिए हरे पत्तों की सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना शुरू करें, दूध और दही और प्रोबायोटिक की चीजों पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, अपने गट बैक्टीरिया को बेहतर रख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स की

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप। गाड़ी

जाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ सेल्फ को मैनेज करने की बात हम इन दिनों कर रहे हैं तो बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ा है सेल्फ से। और आई थिंक अभी तक हम जितना भी बातचीत में जुड़े थे, जीवन में जुड़े थे, बाहरी चीज़ों को मैनेज करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन जहाँ सेल्फ को मैनेज करना शुरू किया तो उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि खुद को जानना। और ऐसे में बहुत सी बातें ऐसी सामने आईं जो मेरे से जुड़ी थी, मेरे ही अंदर चल रही थी और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को हम देखते हैं जहाँ हमने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि उससे जुड़े हमारे पास बहुत सारे सवाल आए लोगों के, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारे सामने जहाँ हम अपने आप को, अब मैं ये कह रही हूँ क्योंकि हमारी पिछली कड़ी के बाद हमारे सामने ये बात आई थी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ हर सिचुएशन को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि कई बार हमें हमारे सामने आता है सिचुएशन, हमारी प्ली ये होती है कि आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे इस रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के, जब हमने, आपने ये कहा था कि चॉइस तो फिर भी हमारी ही होगी चाहे कोई भी रास्ता हम अपनाते हैं, तो लोगों के सवाल ये आए बहुत से कि अगर मेरे पास सपोज़ अत्याचार हो रहा है मुझ पर या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई है, मतलब इन द सेंस कि मुझे ये रास्ता ही जाना पड़ेगा, तो तब मैं उसको कैसे करूँ कि ये मेरी चॉइस है, ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों आए, कैसे आए कि भी मेरी चॉइस है?
1: हम एक्सेप्ट नहीं करें वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी सीन ले लो आप, मतलब यू कैन जस्ट पिक अप एनी सिचुएशन, पिक इट अप रैंडमली, छोटी से छोटी बात से लेकर बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन
0: देते हैं कि मैं ट्रेन की जर्नी पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पूरी फैमिली है और रिजर्वेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है और मुझे जो है सीट मुझे है कि लेनी है, चाहिए ही। अब टीटी आता है, मुझे देनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं रह जाती मेरे पास, अगेन क्योंकि मैं पूरी अपनी फैमिली को बैठे हुए वो इतना लंबा सफ़र नहीं करा सकती।
1: हाँ, तो आप चूज़ कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपनी फैमिली को बिठा कर नहीं लेकर जाना चाहते, आप चूज़ कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट देना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं आई डोंट हैव अ चॉइस,
0: बट आई हैव टू गिव द ब्राइब, यू नो, लाइक सिस्टम। अगर फिर हम ये कह देते
1: have to see the question is whether we want to accept it or no, usko side pe rakho, actually har step par hum choose kar rahe hain, it's just that hum apne aap ko kehte kya hain, ki I am not choosing, I have to do this. Now why is this very important? Again, like jo humne pichli bar kaha, hum is par nahi discuss kar rahe hain ki aapko wo train mein wo TT ko dena hai ya nahi dena hai, each one to their own. Har ek apna apna decision apne apne aap leta hai. What we are discussing is, चाहे आप देते या चाहे आप नहीं देते,
0: Who owns the decision?
1: Who has taken the decision? अब हम क्या कर रहे हैं, हम देते हैं एंड हम कहते हैं मेरे पास चॉइस नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। एक जना देता है, दो जने देते हैं, दस लोग देते हैं, वेरी सून मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट, ओके। जहाँ ट्रेन में मोस्ट ऑफ अस विल स्टार्ट डूइंग दिस, ये कह कह कर कि ऐसा है, ये सिस्टम किसने बनाया? Where is the system? Has it come from somewhere out of the blue? नहीं, एक ने सोचा दे कर काम जल्दी करो, दूसरे ने भी सोचा अच्छा इन्होंने दिया इनका काम जल्दी हुआ, तीसरे ने भी कॉपी किया, वेरी सून दैट बिकेम द सिस्टम। टुडे लेट अस डिसाइड के वी आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू सिट एंड टॉक कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, ब्लेमिंग एवरी वन। हम जो भी कर रहे हैं इट्स माई चॉइस। अब जो आपने ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया तो दो ऑप्शन है ना, उस टाइम वी कैन इमिजिएटली पुट डाउन आर ऑप्शन कि ऑप्शन क्या है, या तो टीटी से रिक्वेस्ट करो आप टिकट का अमाउंट अपना जो भी है वो आप दो, आप सीट लो, वो नहीं आपको देता है, आप या तो बैठ कर जाओगे या आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर जाओगे। अब हम एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मुझे कम्फर्ट देगा, राइट? Do I take that decision so that it's comfortable for me? Again, it's a choice. दो लोगों के लिए अलग अलग choice होगी। किसी के लिए वो देकर सोकर जाना comfortable होगा, लेकिन किसी के लिए वो देना वो comfortable नहीं है। Like I can say, if I give that money to sleep, I'm not comfortable. I might lie down, but I'm not comfortable with what I have done. So I chose not to give and sit the whole night and go, which is okay. I am not asking anyone, have I taken the right decision or the wrong decision? It's my decision. And uske liye mujhe jo bhi face karna padega, I will face because it is my decision. Agar hum dete hain, to bhi hamara decision. Nahin dete hain, to bhi hamara decision. It's just that it's important to know ke wo hamara decision hai. Instead of, again, it's a victim and a master. Jo master awareness se chal raha hai ki main choose kar raha hoon, wo apne jeevan mein sashakt hokar chalega, strong hokar chalega. Aap, matlab you're not talking, aap bade se bada galat kaam kar do. Agar aap karna chahte ho to. आप कर दो लेकिन ये सोच कर तो करो ना यू आर चूजिंग टू डू इट ताकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो जो आपने किया है. सो द पॉइंट इज दैट कॉन्शियसली मेक योर चॉइसेस बिकॉज वैसे भी हम ही चॉइस कर रहे हैं लेकिन बाय एवरी टाइम टेलिंग माई सेल्फ आई हैव नो चॉइस आई हैव नो चॉइस आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी वीक क्योंकि देन आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मेरा जीवन तो इन सब चीज़ों पर इन सब लोगों पर इन सब सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है. मेरे पास क्या चॉइस है. मैं तो सिस्टम के हिसाब से चलता हूँ मैं तो लोगों के हिसाब से चलता हूँ. देन आई डू नॉट हैव द पावर. सो लेट्स बी कॉन्शियस.
0: देन द ब्लेम गेम एक्चुअली आल्सो स्टार्ट्स.
1: नेचुरली
0: सिस्टम की गलती है या मेरी गलती नहीं है.
1: दैट इज व्हाट ना जहाँ मेरी चॉइस नहीं है तो फिर किसी और के कारण मैं नहीं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये दिया भी टीटी को रात को सोने के लिए पैसे दिए भी तो तुरंत क्या किया किसकी गलती है. वो टीटी की गलती है. उसने मांगा मैंने दिया. उसने मांगा दिया किसने. आई चूज टू गिव विच इज ओके. चूज टू गिव इट बट रिमेम्बर आई चूज और इसका ये अकाउंट मेरा बना. एंड डू वॉट यू आर कम्फर्टेबल विद डूइंग. हमें जो कम्फर्टेबल लगे हमें वो करते जाना चाहिए. एंड रिमाइंडिंग माई सेल्फ आई एम डूइंग इट एंड इसका जो रेपरकशन है दैट इज मोस्ट
0: इम्पोर्टेंट. लेकिन सिस्टर शिवानी हम कभी भी कम्फर्टेबल नहीं होते हैं कई चीज़ें करते वक्त क्योंकि हमें हमें लगता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है. यू नो लाइक सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए अगेन मे बी यू नो कि सिचुएशन ज़्यादा है हैवी हो गई या लेकिन लॉट ऑफ टाइम
1: उस भी सिचुएशन में. अच्छा ये बताइए आप रात को सीट पर बैठ कर क्यों नहीं जा सकते.
0: नहीं मैं तो बैठ जाऊँगी पर मेरा फैमिली है मेरे बच्चे.
1: फैमिली क्यों नहीं बैठ कर जा सकती. क्योंकि अभी अभी आपने उनको क्या सिखा दिया. डोंट गिव देम मॉरल साइंस बुक्स आफ्टर दैट. अभी अभी यू हैव जस्ट टॉट देम दिस इज द वे टू लिव. And then we say, morality separate, spirituality separate,
0: life.
1: Practical life separate. Why are we teaching them honesty and whatever, the whole list? Practical mein toh wo dekh rahe hai na, hume karte hue. Toh kya ek bachche ne abhi abhi ye nahi sikha? Ke jeevan mein practically chalne ke liye, ye sab karna padta hai. Toh unki language bhi aaj aise hi ho jati hai. Oh, ye sab toh karna padta hai. Iske bina toh नहीं चलता. दैट्स बिकम माई बिलीफ. मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग विद दिस बिलीफ कि ऑनेस्टी के साथ तो चलना पॉसिबल ही नहीं है. हु क्रिएटेड दैट बिलीफ फॉर मी. समवेयर आई सॉ इट हैपनिंग. एंड यही अगर आज एक पेरेंट जाग कर जाए पूरी रात और परिवार भी पूरी रात जागे हो सकता है वो बहुत रात अनकम्फर्टेबल आपकी बीतेगी. बट यू जस्ट मेड योर चिल्ड्रेन एंड योर सेल्फ स्ट्रोंगर. योर चिल्ड्रेन जस्ट लर्नड अ लेसन फॉर देयर लाइफ कि भले सिचुएशंस हो हम अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. वैल्यूज ऐसे बोलने वाली चीजें नहीं होती हैं. कई पेरेंट्स कहते हैं हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं. संस्कार देने वाली चीज नहीं होती है. संस्कार जीने वाली चीज होती है. आपने अभी अभी उनके सामने दिए पैसे तो उन्होंने संस्कार सीख लिया. फिर आप उनको बोलो ऑनेस्टी इट वॉन्ट वर्क. तो भले रात नहीं अच्छी बीती क्या होगा अगले दिन जाकर सो जाएंगे ना. लेकिन जीवन के लिए कितना बड़ा लेसन लर्न किया. सो अगेन इट्स ओके इट्स अ चॉइस. बट आज जो हमने किया जो हमने वो कर्म किया इसका रिपरकशन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आ रहा. दे हैव जस्ट लर्नड. तो जो मैंने एक्शन किया उस टाइम उसका क्या क्या रिजल्ट आने वाला है.
0: रिपरकशन क्या देखा कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो मैं अनकंफर्टेबल होके गया.
1: क्योंकि हम उस तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि दिस इज अनकंफर्टेबल. अगर हम उनके साथ ये डिस्कस करें कि दिस इज कम्फर्टेबल डिस्कस इट विद देम. डिस्कस इट विद देम. ऑनेस्टी मेक्स यू स्ट्रॉन्ग.
0: दिस इज व्हाट यू नो लाइक यहाँ पे होता ये है कि अगर मैंने पैसे अपने नहीं दिए, ठीक है, तो या तो वाइफ कह देंगे या कि देखा आप अपनी बातों पे अड़े रहे या अपनी वैल्यूज पे अड़े रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ कि ये हमें जाग के जाना पड़ा, हाँ, या बैठ
1: तो,
0: के जाना
1: तो
0: पड़ा।
1: घर का कल्चर क्या बन रहा है कि वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते हैं, ज्यादा मायने क्या रखता है, काम हो जाए, कम्फर्ट्स मिल जाए, धन हम कमाते जाए। इट्स अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ चॉइस कि हमारी फैमिली के लिए वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। सो योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप विद दोस वैल्यूज।
0: इट मींस इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो मैं चॉइस कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ।
1: That's तो कंफर्टेबल वहाँ है ना, दैट्स व्हाट वी सेड। कंफर्टेबल की डेफिनेशन क्या आपकी, किसकी कंफर्ट? अब हमने सोचा मैं शरीर हूँ तो हमेशा कंफर्ट किसका सोचते रहते हैं, इसका। अभी अभी मैंने एक कर्म कर दिया जिसका मुझे अंदर कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस सिर्फ यही है, वही कर्म बार बार बार बार करने के बाद वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने गलत किया। झूठ पहली बार बोलो पता चलता है, मैंने झूठ बोला, कहेंगे अंदर अंदर ना थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने झूठ बोला। उस टाइम भी बोलेंगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। किसने कहा चॉइस नहीं थी झूठ बोलने से पहले? एवरी टाइम आई नो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम चूजिंग टू डू इट। मुझे पता है कि सच बोलने के बाद आप मुझे डांटेंगे, तो आई चूज टू टेल अ लाई। लेकिन हम क्या कहेंगे, वो डांटेंगे इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोला। That's just a way of rephrasing the whole thing. I can say, वो डांटेंगे, लेकिन मैं फिर भी सच बोलूंगी, now let me see what happens, I will be ready to face. लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई choice ही नहीं है, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे आज छुट्टी चाहिए थी ऑफिस से, बॉस ने ऐसे तो देनी नहीं थी, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो हर बार छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। बच्चे भी वही सीख रहे हैं, चॉइस नहीं।
0: लेकिन सपोज मुझे अपनी मदर को डॉक्टर को दिखाना है और मुझे जो बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो मैं फिर कोई बहाना बना के या करके जो छुट्टी लेती हूँ। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज मुझे, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त ये थी कि मुझे मदर को डॉक्टर को दिखाना है।
1: I'll tell you something. This has to be experimented within life. हम पहले से ही अंदर से डिसाइड कर लेते हैं कि इसने तो मांगना ही है ब्राइब, इसके बिना तो होगा ही नहीं, इसने तो छुट्टी देनी ही नहीं है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। ये जो हमारी वाइब्रेशंस हैं ये पहले ही सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। दिस सीम्स टू बी कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो मांगना ही है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। योर वाइब्रेशंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वी हैव एंड प्लस आपके अपने प्रिंसिपल्स। ये नहीं कि आप एक जगह बोले मैं नहीं दूंगा, चार जगह वैसे आप देते हैं। सी दैट इज द क्वेश्चन
0: अगेन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एवरी टाइम।
1: आपकी थिंकिंग की क्वालिटी क्या है, दैट इज योर वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन ये, लेट्स से मैं सोचूं कि टीटी को मैं पैसे नहीं दूंगा, ही शुड नॉट आस्क मी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर जब मुझे पुलिसमैन पकड़ता, जबकि मेरी गलती थी और मेरा फाइन था 500 का, मैंने 100 पकड़ा कर काम कर लिया, तो मेरी वाइब्रेशन की क्वालिटी क्या है? Now this same vibration will work now when I come in front of this person because it's basically my thinking quality. Vibration situation specific nahi hota hai. This is something which is very fundamental jo hame samajhna padega. Hamare jo sanskar over a period of time bante ja rahe hain, that is my quality of vibration. Vibration is nahi main inke samne baithi hu aur main bahut positive soch rahi hu, ab inko mere se positive feel hona chahiye. Lekin abhi abhi main sara din mein 10 logon se mili and I was negative towards them, how will you feel positive with me?
0: क्योंकि वो एक्चुअली वो सारी नेगेटिविटी भी तो मुझसे गुजरी है।
1: एब्सोल्युटली, सो इट्स बीन क्रिएटेड हियर। तो जो हमारे एक जीवन को कहें प्रिंसिपल्स, एक लाइफ को लीड करने के प्रिंसिपल्स हैं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक चेंज नहीं हो सकते हैं। आप एक अपने लिए प्रिंसिपल बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव इफ समवन हैज द करेज टू डू दैट, सी हाउ योर लाइफ रन्स। आने दो ना ऊपर नीचे, कितना आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, ठीक है आपका नुकसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन क्या ज्यादा मायने रखता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या वैल्यूज? आज हमारे को अपनी वैल्यूज की वैल्यू नहीं है। दैट इज द थिंग। ऑनेस्टी, ये क्या है, यहाँ 5 लाख, यहाँ ऑनेस्टी, कौन सी साइड ज्यादा भारी लग रही है? तो ये तो कुछ नहीं है, इसे साइड पर रखो। इसकी अपनी ही वैल्यूज की वैल्यू कहाँ है? तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने में कितना देर लगती है? आज झूठ बोलने के लिए कितनी बार सोच रहे हैं? सोचते हैं, ओह इजीली इजीली, क्योंकि एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, आफ्टर दैट माय संस्कार। लेकिन हर बार जब बोलते हैं पता है क्या कहते हैं, आई हैव नो चॉइस,
0: यस
1: आई हैव नो चॉइस,
0: यू नो लाइक
1: वो सिचुएशन ऐसी थी, वो ऐसे था, तब करते करते करते इस तरह से अपने आप को बहुत कमजोर बनाते जाते हैं, बहुत कमजोर बनाते जाते हैं।
0: आई थिंक दिस स्टेटमेंट आई हैव नो चॉइस मेक्स मी
1: नीड्स टू बी रिमूव्ड।
0: लेकिन व्हाई आर वी अफ्रेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी?
1: क्योंकि अगर इफ आई से कि दिस इज माई चॉइस, लेट्स से जब मैं आई वॉक इन टू एन ऑफिस जहां मुझे अपना काम करवाना है एंड मैंने पहले से ये थॉट क्रिएट कर लिया कि बिना दिए तो यहाँ काम होने नहीं वाला, तो मुझे पता होता है इधर से इधर तक मुझे ये देना है तब मेरा काम होगा। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड माई सेल्फ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देते वक्त हर एक को पता है व्हाट दे आर डूइंग, एवरीवन नोस। से राइट एंड रॉन्ग की बात करने का कोई क्वेश्चन नहीं है, हर आत्मा को पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन देते वक्त मुझे अपने आप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी है। जब हम रॉन्ग भी करते हैं हम क्योंकि अपने आप को जस्टिफिकेशन दे देते हैं उसकी, वी कन्वर्ट इट इनटू अ राइट। सो व्हेन आई वॉक इनटू एन ऑफिस,
0: ताकि वो मेरे सर पे कंटिन्यूअस हथौड़ा ना मारता रहे कि मेरी कुछ गलत करके,
1: सबकॉन्शियस माइंड या कहें वो कॉन्शियंस जो बोलते हैं ना, मेरी कॉन्शियंस प्रिक नहीं करनी चाहिए मुझे अंदर, तो मैं क्या अपने आप को कहती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काम ही ना होता तुम्हारा, ये सिस्टम ही ऐसा
0: है, काम इंपॉर्टेंट है ये।
1: एंड देन आई एक्चुअली कैन टॉक टू फोर पीपल, पता है आजकल का सिस्टम देखो कैसा है, ये सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है। अब ये कौन कहेगा मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए? एनीवन वांट्स टू से दैट? नो, एक्चुअली इट्स द ट्रूथ, आई डोंट हैव द करेज, क्योंकि मुझे पता है ऑनेस्टी के रास्ते पर चले तो हो सकता है थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, थोड़ा सा काम जो 5 मिनट में हो जाता वो 5 दिन में होगा, हो सकता है 5 दिन में नहीं 5 महीने में होगा, फाइनली होगा जरूर, होगा जरूर, एंड नहीं भी होगा तो भी व्हाट इज माय प्रायोरिटी, दैट्स अ क्वेश्चन। तो जो लोग अपने जीवन में अपनी वैल्यूज को और अपने प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी रखेंगे वो उसके लिए फिर किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वो कर करके आई टेल यू उनका कभी नुकसान नहीं होता। चॉइस मेरी, डिसीशन मेरा, उसका जो रिपरकशन वो भी मेरा। लेट्स से आई वॉक इनटू एन ऑफिस एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैंने नहीं देने, आई एम नॉट गिविंग, तो आई शुड बी रेडी कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है। उसका रिपरकशन ये हो सकता है कि मेरा काम होगा ही नहीं, Am I ready for that repercussion? आप अपने repercussions को लेकर ready होने चाहिए।
0: लेकिन मैं उसके thought को ही लेके जाऊं, अगर कि मेरा काम होगा ही नहीं।
1: इसीलिए तो वो vibration ही हमने पहले create कर दिया। अब राजयोग से अगर हम वो ताकत ले रहे हैं परमात्मा से, तो परमात्मा की ताकत हमें क्या है? Right thought create करना। That is the power I at least feel from meditation. तो when I'm walking into a situation like this, if I can create a thought, one, मैं नहीं देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं देने वाली हूँ, देने की ऑप्शन को तो आउट ऑफ मतलब अपने जीवन से ही बाहर कर दिया है,
0: वो
1: है ही नहीं ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, सामने वाला मेरे से मांगेगा ही नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग सामने वाले तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो सिस्टम ही, क्या वाइब्रेशन भेजा सामने वाले के लिए? सामने वाला कौन है जो बैठा हुआ है?
0: वो भी तो एक प्योर सोल है।
1: सामने वाला मांगेगा ही नहीं मेरे से। आई ऑलवेज वॉक इन विद दिस थॉट, सामने वाला मेरे से नहीं मांगेगा। इट वर्क्स एंड द थॉट, काम तो होगा ही। लेट देयर बी ऑब्स्टेकल्स, इट्स ओके, लेकिन मैंने देने वाला ऑप्शन रखा ही नहीं हो अगर लाइफ में, तो फिर वो ऑप्शन आता ही नहीं है। अभी क्या होता है, हम अगर एक आधी बार ट्राई भी करते हैं लेकिन हमने वो ऑप्शन तो रेडी रखा हुआ ना, अच्छा मैं नहीं देता अभी एक बार, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन,
0: वो ऑप्शन रखी है कि अच्छा अगर नहीं हुआ तो मैं फिर ये करूँगा।
1: आपने ऑलरेडी वो वाइब्रेशन क्रिएट कर ली है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स, वो चॉइस हम तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी प्रायोरिटीज बहुत राइट सेट की हुई है, कि मेरे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है। एंड दिस इज फंडामेंटल, कि जितना आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी देते जाएंगे तो आप अंदर से क्या होते जाएंगे? इट वर्क्स, इट वर्क्स। लॉट ऑफ पीपल विल से ऑनेस्टी वर्क्स, व्हाई विल इट नॉट वर्क? लॉट ऑफ पीपल विल से विदाउट करप्शन काम होता है, लेकिन वो कौन कौन कह पाएगा जो खुद उसके बिना काम किया होगा? लेकिन जो कर ही उस तरह से रहेंगे वो क्या कहेंगे? उसके बिना तो काम नहीं होता। तो ये क्रिएट किसने किया? हमने किया। चॉइस है, कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज अपने आप को बार बार ये नहीं कहना कि मेरे पास चॉइस नहीं है, ये उसकी वजह से है, ये उसकी वजह से, हम चूज कर रहे हैं ताकि हम रेडी रहें
0: उसके रेपरकशंस के लिए.
1: रेपरकशंस की भी बात नहीं है, इट मेक्स मी स्ट्रोंगर, इट मेक्स मी गो थ्रू लाइफ विद द थॉट कि आई एम लीडिंग माय लाइफ द वे आई वांट. इवन टुडे इफ आई गिव अ ब्राइब, आई एम लीडिंग माय लाइफ द वे आई वांट, नॉट मेरे पास चॉइस नहीं है, द सिस्टम इज लाइक दिस, देन आई एम नॉट लीडिंग द लाइफ द वे आई वांट.
0: आई बिकम वेरी वीक एक्चुअली, वेरी लो. सो बट व्हाई आई एम नॉट रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी
1: ऑफ
0: of my you know,
1: because agar maine responsibility li to mujhe change hona padega. Agar maine kaha system responsible hai, the system ko change hona padega, to I can keep waiting for the system to change,
0: which will never,
1: which will whatever chahe wo system ho,
0: system we've seen system never changes.
1: Nahi, system could be anything. See, system need not be a government office, system could be my husband, system could be my child, for me anything jiske samne main khade hokar kehti hu मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं अभी जो सोच रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो इनकी वजह से. तो देन इनको चेंज होने की ज़रूरत है अगर मुझे ठीक होना है. मैं अगर जैसे वो झूठ बोलने का हमने एग्जांपल लिया, मेरा बॉस इतना गुस्से वाला है इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो जिस दिन मेरा बॉस ठीक हो जाएगा,
0: मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी.
1: सो वेट फॉर द बॉस टू चेंज.
0: ओह माय गॉड, वेट
1: फॉर द बॉस टू चेंज एंड देन कीप ऑन डूइंग योर कर्मा. Just saying that I have no choice, but the repercussion will not go to the boss. Repercussion will come to me.
0: And we have understood karma of karmic philosophy. क्या कहती है कि जैसा जो भी करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी रास्ते पर हम चल रहे हों. Wonderful. I think somewhere जहाँ हमने अभी तक हम सब कुछ मैनेज करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कर रहे थे
1: अपनी choices को भी मैनेज करना.
0: और जैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट पे आ रहे हैं, नहीं सर शिवानी, जैसे देखा, इट मीन्स हमने नज़र अपनी तरफ जब की तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं था कि हम क्यों डिसीजन ले, हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं.
1: एक्चुअली हम इसलिए ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं जब उनके सामने कोई बात आती है, जब वो रेपरकशन आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. ये सबसे बड़ा सबके माइंड में आज क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. आई मेट अ लेडी, शी लॉस्ट अ 2-year-old डॉटर, 2 साल का बच्चा, कहती है भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे भगवान ही पसंद नहीं. आई सेड, बहन आपको ज्ञान है ना कार्मिक फिलोसफी. शी सेड, यू नो सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, शी सेड मैं कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं सकती जिसके लिए मेरे साथ ऐसा होना चाहिए. नॉट रेडी. क्योंकि जब वो हिट करता है, वो इतना बड़ा हिट करता है कि हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया होगा, लेकिन नाउ वी नो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो मैंने ही कुछ ना कुछ किया है, सिर्फ करते टाइम
0: पता ही नहीं. यहाँ पे भी तो इनफैक्ट इट्स आई एम अमेज्ड, यू नो वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट इट कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, आई डोंट हैव एनी चॉइस. क्योंकि इतना सटल है ये अगर मैं ये कर्म कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, और करती जा रही हूँ क्या, ये जितना करती जाऊँगी उतना संस्कार गहरा होता जाएगा. और अब हर बार हम ये कह के अपने आप को निकाल लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाते हैं कि इट्स नॉट माई चॉइस,
1: तो फिर परिवर्तन की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर नहीं आती.
0: वेरी ट्रू. इनफैक्ट ये बहुत समझ कर देखने की ज़रूरत है,
1: एक्सपेरिमेंट
0: कि हम किस तरफ जा रहे हैं. और जिस तरह से बार बार हम ये कहते हैं कि जहाँ किसी भी सिचुएशन को के लिए जो हमें एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरी तरफ ये भी कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई मुझे पकड़ कर नहीं कह सकता कि आपको इधर ही जाना है या आपको उधर ही जाना है. चाहे आप कितने भी, अगर हम उसमें देखें सोसाइटी में या सिचुएशंस में, कितना भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हों, और आज ज़्यादातर लोग अपने आप को बहुत बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सचमुच देखने की बात यह है कि जब सेल्फ की तरफ नज़र गई तो बहुत सी अपने अंदर ही इनहेरेंट ऐसी बातें थी जिनको हमने स्वीकारा हुआ था कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं ही सिचुएशंस में फंसी हुई हूँ, मेरे सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि मैं मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है. लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सचमुच समझें जब हम साइलेंस में बैठें, या जब भी जो भी बात अगर कहीं पर भी आपको छू रही है ये बात, तो इस पर ज़रूर मनन करें, ज़रूर चिंतन करें कि क्या मेरे पास चॉइसेस हैं. और आंसर ज़रूर आएगा कि यस, आई हैव द चॉइस. अब जानते हुए जब मैं उस रास्ते को चुनती हूँ तो वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और फिर उस कर्म की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, फिर उसका फल मुझे मिलेगा ही। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो, तो हमें अपने आप ही पता होगा जब हम उस रास्ते पर चल रहे होंगे। तो आज के इस पूरी बातचीत से जुड़ी कोई ऐसी बात या फिर सेल्फ मैनेजमेंट पर जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कोई आपके पास सवाल है, आपका हम स्वागत करते हैं। उसके अलावा हम आपसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में खुले सेंटर्स पर आप ज़रूर जाएं और राजयोग का जो पूरा अभ्यास जो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं उसे ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हम तलाश रहे हैं वहाँ आपको उसका राह ज़रूर मिलती है। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और ख़ुद को समझते समझते जब मैनेज करने की बात आ रही है तो बहुत सी बातें खुलती जा रही हैं। आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें। आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मींस खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना आप फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मींस नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली क्रेजी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और 6 जुलाई आज का तारीख है, 2026 आज का तारीख है। विशेष रूप से 6 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर अगर एक नज़र डालें तो आज विशेष दिन है और श्याम प्रसाद मुखर्जी इनका जन्मदिन है, लक्ष्मीबाई केलकर इनका भी जन्मदिन है, दलाई लामा इनका भी जन्मदिन है, रामकृष्ण गोखले भंडारकर इनका भी जन्मदिन है। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। राष्ट्रीय शके 1948, शके 15 गते 22, आषाढ़ सोमवार आज है। विक्रम संवत 2073 आषाढ़ कृष्ण पक्ष पष्टी सोमवार पुनर्वसु भाद्रपद आज नक्षत्र है। और इस्लामी हिजरी 1448 20 मुहर्रम पीर सऊद आज है। तो आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। और चलिए, सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, तो पूरे हफ्ते के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लीजिए ये प्यारा शिव का गीत, आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। शूल पाणी त्रिशूलधारी विश्वनाथ विषम बेड़ा सब जय हो महेश त्रिलोचनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को शिव महिमा का ये सुंदर भजन सुनकर आनंद आया होगा। और सुबह सुबह जब हम लोग इस तरह के भजन सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और मन जो है खुशी से झूमने लगता है। तो वही आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और शिव महिमा स्तुति की गीत हम सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप बात करते हैं दलाई लामा के बारे में। और दलाई लामा ये एक ऐसे शख्सियत रहे जिनकी इतिहास में एक नया कहानी बनकर उभरे। दलाई लामा आज ही के दिन 6 जुलाई को, उनका जन्म 1935 को हुआ था। तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद परम पावन दलाई लामा से कहा गया कि वह पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ले और उन्हें दलाई लामा का पद दे दिया गया। हेलो जी, नमस्कार।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग आजे रमेश जी, कैसे हो?
0: बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, आप बताए।
1: बहुत दिनों से पूछने वाला था, अपन भूल ही जाता। जो आत्मचिंतन या परमात्मा से शक्ति लेने के लिए, पॉजिटिव थॉट लेने के लिए, जीवन में हजम खुशी पाने के लिए जो स्लोगन रेडियो मधुबन द्वारा आज ये रमेश जी सुनाते हो, वो आप ही हो ना?
0: जी जी जी,
1: रमेश जी। एक दो वाक्य होते
0: बिल्कुल
1: बहुत ही अच्छे, तो बहुत अच्छा लगता। बीच बीच में आते और आपके बातें मुलाकात प्रोग्राम 2000 के ऊपर थोड़े थोड़े दिनों में 3000 प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाए, बहुत अच्छा लगता है। और आपको और रेडियो मधुबन परिवार और सभी श्रोते भाई बहनों को नमस्कार और ओम शांति रमेश जी।
0: ओम शांति, ओम शांति जी। बाजी अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और चीन यात्रा पर जब शांति समझौता व तिब्बत सिख सैनिकों की वापसी के लिए बात को लेकर 1954 में वो माओ जेडांग, डेंग जिंपियो पिंग जैसे कई चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए थे। और दलाई लामा के शांति संदेश अहिंसा, अंतरधार्मिक मेल मिलाप, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व और करुणा के विचारों को मान्यता के रूप में 1959 में अब तक उनके 60 मानद डॉक्टरेट पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो ये आज दलाई लामा जी का जन्मदिन है, उनके बारे में बातें करते हैं कि कैसे वो व्यक्ति रहे और किस तरह से उन्होंने काम किया और कैसे उन्हें दलाई लामा पद मिला। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर नई किरण, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। शिव जी के खूबसूरत भजन आप सुन रहे हैं, आशा करूंगा आपको अच्छा लग रहा है। तो आइए, दलाई लामा के बारे में बातें चल रही थी, उनका जन्मदिन आज है और बौद्ध धर्म दुनिया के धर्मों का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना गया है, जिसके 375 लाख अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म के धर्म गुरु को दलाई लामा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु तेनजिंग गोत्सो है। तेनजिंग तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और धार्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। दलाई लामा का जन्म आज के दिन 1935 को पूर्वोत्तर तिब्बत के क्षेत्र में रहने वाले एक साधारण एवमान किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लामो टोंडुप था, जिसका अर्थ होता है मनोकामना पूरी करने वाला देव। बाद में इनका नाम तेनजिंग मात्सो रखा गया और उन्हें मात्र 2 साल की उम्र में 13वें दलाई लामा तिब्बतन का अवतार बताया गया। 6 साल की उम्र में ही मठ के अंदर उनको दीक्षा दी जाने लगी। अपने अध्ययन काल में उस दौरान वो ही बहुत कर्मठ और समझदार व्यक्ति के स्वामी थे। तो आइए, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: राजेश सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: गुड मॉर्निंग सुरेश जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे है, हमारे गुजरात में तो बारिश जोर जबान हो रही है।
0: अच्छा, हमारे यहाँ ठंड है, लेकिन
1: ठंड है लेकिन हमारे तो यहाँ जैसे पूर्व जैसी स्थिति हो गई है, लेकिन हमारे अच्छा? लेकिन है मेहसाना अहमदाबाद काठियावाड़ सूरत, तो देखो पानी ही पानी, जैसे गाँव में भी नाव चल रही है।
0: गाँव में नाव चल रहे हैं?
1: हाँ, गांव में नाव चल रही है, ऐसा हाल हो रहा है सभी जगह पे।
0: अच्छा, 2 दिन में इतना पानी आ गया?
1: जी
0: 2 दिन में इतना पानी आ गया?
1: बहुत जोर दम से बारिश आई है, रात को 9-9, 10-10 इंच बारिश हो रही है रात को, दो तीन घंटे में 3-9 इंच बारिश हो गई।
0: अरे बाप रे,
1: जैसे बादल फट गया ऐसी बारिश हो रही है सर। अभी तो 2-3 दिन तो इतना भारी बारिश की जो हवामान खाते वाले बोल रहे है, ये अभी तो बहुत ज्यादा बारिश आएगी, तो लोगों के घरों में पानी है, आधा आधा घर पानी में है।
0: अच्छा,
1: ऐसा हाल है सर, बहुत जोर से रात को मेहसाना में रात को भी जो पूरा नाला जो नाला था सभी गाड़िया जाने आने जाने का थम भर गया है, तो अभी पूरे दिन खाली करेंगे तब तो साधन वहां से निकल पाएंगे जो नाले में से, क्योंकि अभी क्या है जो ब्रिज हो तो अच्छा है लेकिन जो अंडरग्राउंड बनाया हुआ है जो आने जाने का रास्ता,
0: हाँ, तो हाँ, वो फुल हो गया होगा,
1: पूरा भर गया सर, तो ऐसा हाल है अभी तो। लेकिन क्या करे, वो तो नहीं आते थे तो लोग बोलते थे आते नहीं आते ना थे, जब आए तो रुकते नहीं है बारिश तो करे तो क्या करे, लोगों को नहीं पहुंचा जाता। पहले बारिश नहीं आती थी तो लोग बोल जाते थे, बहुत बोलते थे भगवान को, ऐसे बोलते थे ऐसे बोलते थे, लेकिन आज वो ऐसे भी बोले कि बंद हो जाओ तो सही है, तो चलो तो कुदरत की देन है,
0: बिल्कुल
1: कुछ नहीं कर सकता सर। तो हमारी तरफ से आपको और हमारे सभी मित्रों को सोमवार के दिन की सोमवार है हफ्ते की शुरुआत है, और कल भी कार्यक्रम बहुत अच्छा चला था हमारे डॉक्टर बैना के साथ,
0: हमने
1: बातें मुलाकातें में सुना था, अच्छा लगा कार्यक्रम
0: जी जी।
1: सोमवार है तो हो जाए, हमारा प्यारा गाना है कि नाच

0: नाथ भोला भगवान अगड़ बम अचे दोनू नाचे सदासे आगे भेरू सगाना है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, हमारे सभी मित्रों को आपको जिनकी शुभकामना, हमारे भूरी लाल जी है, हमारे भूरा राम जी को, हमारा राम राम है, कंचन भाई है, राधा राम जी है, हमारे जो सुन रहे हैं हमारे सभी कार्यक्रम उसको भी हमारे तरफ से नमस्ते।
1: सुभाष भाई
0: है हमारे, तो सबको नमस्ते सर। ओम शांति।
1: ओम शांति, नमस्ते। चलिए बहुत ही प्यारा सा भजन आपको सुनाते हैं अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ एक शिव जी का सुंदर भजन आपने सुना और बड़ा ही आनंदित कर देने वाला, आह्लाद कर देने वाला ये गीत था, जो मन को प्रफुल्लित करता है और मन को जो है बिल्कुल शिव भजन था। अच्छा, जो है एक आनंदित कर देने वाला भजन आपने सुना। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। वंदना जी हमारे बीच आ गई हैं, स्वागत है वंदना जी आपका।
1: थैंक यू रमेश जी, गुड मॉर्निंग रमेश जी और लिसनर्स को भी गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, बढ़िया बढ़िया है। अभी सुरेश जी और गुड़ीलाल जी हमारे, सुभाष जी सभी याद करके गए हैं
1: जी।
0: और आज दलाई लामा का जन्मदिन है, क्या उनके बारे में आपको कुछ पता है?
1: जी हाँ,
0: बताइए।
1: तो जो दलाई लामा है, जो 14वें दलाई लामा का बचपन जैसे काफ़ी उथल पुथल वाला रहा, और जो 13वें दलाई लामा थे थुपटेन ग्यात्सो के 1933 में उनके देहावसान के बाद तिब्बती परंपराएं जो होती हैं तो उनको 14वें दलाई लामा की खोज शुरू हुई। तो उसी कड़ी में 1937 में उच्च तिब्बती लामाओं व अन्य धर्म गुरुओं का एक दल उत्तर पूर्वी तिब्बत के आप्त प्रांत में पहुंचा। जब इस स्थल में प्रांत के कुंभक पहुंचा तो वहाँ के सदस्यों को विश्वास हो चुका था कि यह सही रास्ता है। तो कुंभक दल में ही मुलाकात तेजिंग ग्यासो से हुई और उस बालक को देखकर उनको यह आभास हुआ कि यही 14वें दलाई लामा का अवतार है। तो यहाँ जो है इनको ना एक भगवान की तरह पूजा जाता है, जैसे भगवान का आदेश होता है इसी तरीके से ना इन लोगों को माना जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं को जैसे वो बालक के अंदर वो आभास हुआ तो उन्होंने उसको पदवी दे दी और कुर्ता पे वो सब चीज़ें जो उनके रहते हैं ड्रेस वो पहना दिया और उनको दलाई लामा घोषित कर दिया। तो इस तरह से ये लालसा से आए हुए धर्म गुरुओं ने अनेक प्रकार की खोजबीन करने के बाद उस बालक की परीक्षा भी ली और ये जानना चाहा कि वास्तव में यही हमारे धर्मगुरु दलाई लामा के अवतार है या फिर कोई और है। विभिन्न परीक्षाओं के बाद जब सभी विश्वास हो गया उनको, तेंजिन ग्यात्सो ही 14वें दलाई लामा के रूप में अवतरित हुए हैं और अंतिम फैसला लिया गया कि ये समाचार तिब्बत की राजधानी भेजा गया और इसके बाद उन्हें माता पिता सहित कुटुंब मठ लाया गया, जहां विशेष समारोह में दलाई लामा के अवतार तेजिंग ग्यात्सो का अभिषेक किया गया। तो यहाँ से कहानी इस तरह से बालक दलाई लामा से दलाई लामा बनने तक का सफ़र शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करूँगा कि ये सब चीज़ें आपको जानने से क्या फ़ायदा होता है या क्या इससे हमें शिक्षा मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो धर्म के लोग होते हैं वो अपनी धर्म की जो परंपरा या पद जो है वो कैसे देते हैं, इसमें हमको ये समझ में आ जाता है कई बार।
1: साथ ही साथ जैसे अभी इसमें है कि उनको बचपन से ही जैसे समर्पित कर दिया गया था, तो जो बचपन में समर्पण हुआ उनका, तो उसके बाद में जैसे उनके नॉर्मल बचपन नहीं होता है फिर उनका, मतलब इसे साधना में लग जाना और विशेष तरीके से उनकी शिक्षा दीक्षा होती है और जो विशेष जो परीक्षण उनका जो जीवन चलता है तो वो उसी तरीके से चलता है और कठिन है, आसान नहीं होता इस तरीके से आप किसी इतने बड़े उसके जब नेता बन जाते हैं तो। और अल्पायु में ही जब उन्हें तिब्बत का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया, सारे अधिकार दे दिए, तो उनकी जो अवस्था थी मात्र 15 वर्ष थी, तो 15 वर्ष तो बच्चे हुए ना, तो ऐसे में 60 लाख जनता का राष्ट्राध्यक्ष बन गए। तो अब यहाँ से देखिए इसके बाद किस तरीके से जीवन एक सा नहीं होता है, साथ ही कैसे जीवन में उथल पुथल शुरू हुई, तो वो सारी बातें तो जीवन में आई। तो कोई ऐसे ही नेता या इतने बड़े पद पर नहीं हो जाता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। 1950 के अंतर्गत वार्षिक मनोलम प्रार्थना उत्सव के दौरान उन्हें जोखांग मंदिर वासा में अपनी फाइनल परीक्षा देनी थी और ये परीक्षा ऑनर्स के साथ पास की उन्होंने और सर्वोच्च गेशु डिग्री लम्हारपा बौद्ध दर्शन में PhD कहा जाता है तो वो उन्हें उस समय प्रदान की गई थी। और फिर 1939 में जब दलाई लामा चार वर्ष के थे तो उसके बाद उन्हें राजधानी वासा रवाना कर दिया गया था।
1: और एक सबसे बड़ी बात है, आप कभी इनके मठों में गए हैं रमेश जी? आपको जाने का मौका मिला है?
0: गया है, लेकिन मैं वो मठ में गया हूँ और उनके जो नहीं है वो उनसे ही मिलना हुआ, बड़े से नहीं मिलना हुआ।
1: हाँ, जैसे जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा शांति मिलती है,
0: बहुत शांति तो है।
1: इसमें क्या होता है, बहुत चुप रहने का अभ्यास करा जाता है, जैसे बौद्धिक उसमें बौद्धिज्म में अगर आपने पढ़ा होगा, एकदम चुप रहने पर बल दिया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। कभी भी कोई भी इनके मठ में चला जाए तो शांति का बहुत एहसास होता है, ये चीज़ तो मैंने भी फील करी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ, और ये गीत भी हम सभी को जो है एक आत्म शांति की ओर ले जाता है, और ये कैलाश खेर का बहुत ही खूबसूरत निर्गुण भजन आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। 9 बजने ही वाले हैं, 8:56 हो गया है और कैलाश केयर का बहुत ही खूबसूरत निराका निर्गुण भजन आपने सुना। जब ये भजन सुनते हैं तो आप शिव जी की सुंदर अनंत महिमा में खो जाते हैं।
1: और वैसे भी आज तो शिव का दिन है, सोमवार है, तो आज तो मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो शिव को मानने वाले हैं, शिव का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, बहुत आलिंदा मॉर्निंग उठते हैं, तो ये तो मैंने भी किया है अपनी लाइफ में। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में थी, उससे आने से पहले मैं शिव के व्रत बहुत किए हैं, मैंने बहुत कड़ाई से किए हैं। तो वो चीज़ तो है कि शिव की बहुत मान्यता है हमारे, उसमें शिव को सबसे ज़्यादा भोला माना जाता है कि सबसे ज़्यादा भोले भगवान है। आप उनके लिए बहुत कुछ करें ना करें, लेकिन वो फिर भी आपको बहुत कुछ सम्पन्नता से भर देते हैं। तो शिव को इसलिए भोलानाथ भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज विशेष दलाई लामा के बारे में हमने काफ़ी बातें की और उनके नेतृत्व की जिम्मेवारी भी बड़ी थी। और ऐसा हुआ कि 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद दलाई लामा से कहा गया कि वो पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लें और दलाई लामा का पद दे दिया गया। चीन यात्रा पर शांति समझौता व तिब्बत में सैनिकों की वापसी की बात को लेकर वो 1954 में बहुत अलग अलग जैपिंग वगैरह चीन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और सम्मेलन असफल हुआ उनका, लेकिन आखिरकार ये पूरे 5 या 6 साल के बाद चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बेरहमी से कुचले जाने के बाद वो निर्वासन से जाने को मजबूर हो गए और अंततः 1960 में उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी और उत्तर भारत में शहर धर्मशाला नॉर्दर्न इंडिया में वो रहे, जो केंद्रीय तिब्बतीय प्रशासन का मुख्यालय है। तो इस तरह से काफ़ी संघर्ष का समय रहा ये 1900।
1: और ये सबसे बड़ी बात है, जो लामाज वगैरह होते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, वो मार काट इधर उधर लड़ाई झगड़े में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो शांति में विश्वास रखते हैं। ये चीज़ भी है,
0: जैसे कि प्रार्थना वगैरह इन लोग नहीं करते रहते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। तो इस कारण, इसके बावजूद भी तिब्बत की अपनी सेना थी जिसमें करीब 10,000 से लगभग सैनिक थे, लेकिन उनके पास ना तो चीन से मुकाबला करने लायक आधुनिक हथियार थे और ना ही तिब्बत की सेना उनके मुकाबले संख्या में थी। तो इस तरह से तिब्बत पर चीन के हमले के बाद दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र से तिब्बत मुद्दे को सुलझाने की अपील की और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संबंध में 59, 60, 61 और 65 में 3 प्रस्ताव पारित किए जा चुके थे। और आखिरकार 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार आए और ये काम पूरा हुआ। आप समय है रेडियो मधुबन 107.8 FM। हालांकि इसमें काफ़ी लंबा समय लगा और 1990 तक ही दलाई लामा द्वारा किए गए मूलभूत सुधारों को एक वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में वास्तविक रूप प्रदान किया गया। और इस वर्ष एक परम पावन द्वारा, जो दलाई लामा द्वारा नियुक्त होने वाले तिब्बतीय मंत्रिमंडल 10वीं संसद को भंग कर दिया और नए चुनाव करार बनवाए गए और फिर 11वीं तिब्बत संसद के सदस्यों का चुनाव भारत व दुनिया के 33 देशों में रहने वाले तिब्बतियों के लिए एक व्यक्ति एक मत का आधार हुआ और धर्मशाला में केंद्रीय निर्वासित तिब्बत संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 46 सदस्य बने। तो ये एक विशेष उनकी जीत कह सकते हैं या उनकी परंपरा को बनाए रखने में साकार माध्यम बना। तो चलिए, अब वक्त हो गया है समाचारों का, मैं समाचारों की तरफ ले चलता हूँ आप सभी को। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107, सुन रहे हैं आप। तो चलिए, समाचार आ चुके हैं दिल्ली से, अब सीधे समाचार सुनते हैं।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्याकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
5: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
6: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि नए साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
7: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
9: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं इस प्रोग्राम में फिर से और आप सुन रहे हैं किरण, मैं हूं वंदना आपके साथ। तो चलिए आज आपको बताते चले, आज है विश्व ग्रामीण विकास दिवस। जी हाँ, विश्व ग्रामीण विकास दिवस। तो जहां तक बात होती है ग्राम विकास की, तो हर वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि गांव है तभी हमारे शहर चलते हैं, तभी सारा विश्व चल रहा है। क्योंकि गांव में देखते हैं बहुत सारी चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सेवाओं का आज भी अभाव है। तो इनके सुविधाओं के प्रति और महत्व के जो उसमें जागरूकता को बढ़ाना है, इसलिए ग्रामीण विकास किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो जहाँ तक बात गांव की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, रोजगार, सड़क, बिजली, जल और शिक्षा जैसी सुविधाओं का विकास लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है। तो जो गांव से जुड़े होंगे वो जानते होंगे गांव के महत्व के बारे में, और हमारे यहाँ बड़ा कुमार इसमें भी जैसे हम देखते हैं तो यहाँ तो जब हम रवा कुमारी इसकी अपनी बात करें तो यहाँ भी हमारे जो विंग्स बनी हैं
11: नमस्ते
10: आवाज कट रही है
11: अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहे हम
10: जी।
11: तो दिक्कत है आपके शायद यहाँ तो अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहे आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कैसा हो रहा है।
10: अच्छा आवाज कट रही है।
11: नहीं कट रही नहीं आवाज फट रही है।
10: अच्छा
11: आवाज
10: फट रही है
11: समझ नहीं आता है। हाँ समझ नहीं आता माइक में कोई प्रॉब्लम है पता नहीं
10: जी
11: ठीक।

0: जी, अभी चेक कर रहे हैं बस। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। और अभी जैसे सुरेश ने बताया कि आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, फट रही है आवाज़, और अगर आवाज़ अभी सही आ रही है तो आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। तो मैं बता रही थी आपको, विश्व ग्रामीण विकास दिवस है, तो यहाँ जैसे सुविधाएं हमारे गांव में हैं, उनकी आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ाएं, गरीबी को कैसे दूर करें, तो सरकार और विभिन्न संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाती हैं। तो जैसे यहाँ भी हमारे ब्रह्मा कुमारी से विंग्स बने हुए हैं, तो यहाँ ये खेती से संबंधित हमारा जो है ये प्रोग्राम चलता है विंग्स के उसमें, और यहाँ योगिक खेती करना सिखाते हैं। अगर आप लोगों को शायद नहीं मालूम हो, तो जो किसान भाई होते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि खेती तो गांव में होती है, शहरों में तो होती नहीं है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताती चलूँ कि जो बीज होते हैं, किस तरीके से आप जानना चाहेंगे जो बीज होते हैं। हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग
1: दीदी। दीदी कैसे हो?
0: जी बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हाँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सुरेश भाई जी ने अभी जो बोला वो सही है, शायद माइक में प्रॉब्लम है, वॉइस थोड़ा कम्प हो रहा है।
0: अच्छा,
1: कम्प हो रहा है इसी कारण आपका आवाज अभी थोड़ा ठीक है, पर तो भी माइक में गड़बड़ लग रही है, कम्प होता है
0: जी।
1: सभी को सुभाष भाई का नमस्कार, ओम शांति।
0: आपको भी नमस्कार सुभाष भाई, ओम शांति।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: तो चलिए आपको इससे पहले मैं आगे कुछ आगे मैं आपको कुछ और बताऊं, एक आपको बहुत खूबसूरत सा गाना सुनवाती हूँ जो आप सुनेंगे, और ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ ये गाना आप भी बहुत पसंद करेंगे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। पुरवैया इस गीत को आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ दो जासूस इस एल्बम का 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रविंद्र जैन का संगीतबद्ध ये गीत आपके लिए अभी था, हसरत जयपुरी साहब ने इसे लिखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें हो रही थी
1: यौगिक खेती के बारे में,
0: खेती के बारे में जो,
1: तो चलिए इसको हम बताते चलें कि जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी में जो प्रभाग है तो इसमें ये कृषि विभाग में यौगिक खेती कैसे करना सिखाते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं वो उसको ध्यान से सुने कि जैसे बीज लेते हैं हम, बीजों को लेकर हम शिव परमात्मा की याद में बैठते हैं और उनसे किरणें लेकर शक्ति लेकर हम बीजों में डालते हैं और उसके बाद जो शक्ति है वो जो हम उसके बाद में बीजारोपण करते हैं परमात्मा की याद में रहते हैं। और मैंने भी देखा है कई जगह जो खेत हैं उसमें शिव परमात्मा का झंडा होता है, बैठ के हम लोग मेडिटेशन करते हैं खेत में और उसमें किसी भी तरह के केमिकल कभी यूज़ नहीं किया जाता है इस प्रकार की खेती में। और जिसके परिणाम पाए गए हैं तो जो बहुत सारी खाद डालने के बाद भी उतनी खेती नहीं होती जितना यौगिक खेती करने के फ़ायदे होते हैं और जितनी ज़्यादा पैदावार कई गुना होती है और साथ ही साथ बहुत नेचुरल चीज़ हमें मिलती है। तो इस बारे में विस्तार से हमारे उसमें बताया जाता है प्रभाग में। आप में से जो भी हमें सुन रहे हो किसान भाई हो खेती करते हैं तो यहाँ आकर इस विंग से जुड़ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आकर यौगिक खेती कैसे करें करना सीख सकते हैं। और जो पैदावार होती है तो ऑब्वियसली वो तो जाकर बहुत अच्छे कॉस्ट, उसकी बहुत अच्छी रकम मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारा कृषि प्रभाग है उसमें सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती हैं। आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को और अपनी खेती को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
0: जी जी जी, वंदना जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताएं योगी खेती के बारे में। जो ब्रह्मा कुमारी इसका रूरल विंग है और उसमें ये चीज़ें रेगुलर बताई जाती है, किसानों की ट्रेनिंग चलती रहती है और लोग जो है अच्छी तरह से इस पे काम किया है और काफ़ी लोगों ने इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी पाए हैं
1: और आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं इसमें।
0: जी जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा संगीत अभी

0: नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 9:32 हो रहे हैं और आप हो हमारे साथ और हम लोग बातें कर रहे थे योगी खेती के बारे में। और इसके साथ ही आज राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, इनका जन्मदिन है और भारत के बहुत ही पॉपुलर एक इतिहासकार है, समाज सुधारक है और शिक्षा शास्त्री भी है। ऑल इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन के सक्रिय सदस्य में से एक रहे थे। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? चलिए, इनका आवाज़ नहीं आ रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ऑल इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस के सदस्य रहे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपने समय के सामाजिक आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हुए अपने शोध आधारित निष्कर्षों के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन भी किया। प्राचीन संस्कृत साहित्य के विद्वान की हैसियत से उन्होंने सांस्कृतिक की प्रथम पुस्तक और सांस्कृतिक की दूसरी पुस्तक की रचना भी की, जो अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने की सबसे बहुत ही सुंदर आरंभिक पुस्तकों में से एक थी। तो वही इनका जन्म आज के दिन 6 जुलाई 1887 को 37 को इनका जन्म हुआ रत्नागिरी महाराष्ट्र में। जी वंदना जी,
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया। मैं एक आज चीज़ देख रही थी, ये उसमें जैसे ना सहारनपुर नाम आपने सुना है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो यूपी में आता है। तो पहले तो यूपी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, हम भी यूपी में ही आते थे पहले कभी, फिर उत्तराखंड उत्तरांचल वो सारा बन गया। तो जैसे ढमोला नदी ऐतिहासिक पुल है तो ना वहाँ से शाहजहाँ की सेना गुजरी थी और सम्राट का ना उसमें गुरूर थम गया था। तो क्या था कि बहुत सदियों पुरानी इमारतें और पुल जो है बीते दिनों की दास्तान जैसे बयान करते हैं। तो लेकिन जब उस पर ये 32 दराज पुल के नाम से कभी मुगल सम्राट शाहजहाँ के आगमन का गवाह रहा है ये, लेकिन आज प्रशासनिक हथौड़ों की वजह से ये पुल जैसे ना मिट्टी में मिल गया है। तो जो कहानी थी मतलब बिल्कुल ही वो तो ख़त्म हो गई। तो क्या था कि 32 दराज पुल जो कभी मुगल सम्राट शाहजहाँ के सहारनपुर आगमन पर बनाया गया था उसको ध्वस्त करके उसका अस्तित्व मिट्टी में मिल गया। तो इसकी ना जुड़ी रोचक कहानी है, जैसे बाबा लाल दास और हाजी कमाल शाह दोनों हिंदू मुसलमान दिखाए हैं, उनके भाईचारे की बात में बताया गया है और ये प्रसंग है 16वीं सदी का बताया जाता है। उस समय शाहजहाँ का ना शासन काल चल रहा था
0: जी, जी,
1: और जब बाबा लाल दास यहाँ अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए सहारनपुर पहुँचे और यहाँ की शांत वातावरण प्राकृतिक सुंदरता को देख कर घाट पर उन्होंने कुटिया बना ली और तपस्या में लीन हो गए और धीरे धीरे इनकी ख्याति फैलने लगी, उनके चमत्कारों को देखने के लिए लोग आने लगे। तो कुछ लोग उनसे करने लगे और दिल्ली के दरबारी लोगों ने दिल्ली दरबार में शाहजहाँ से शिकायत की कि सहारनपुर में एक बाबा लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे इसमें ना साहित्यकार जो डॉक्टर वीरेंद्र आजम है बताते हैं कि शाहजहाँ ने उनकी सत्यता की जांच के लिए विश्वस्त फकीर को सहारनपुर भेजा और वो फकीर जो था बाबा लाल दास से मिलने पहुंचे, बोले कि बाबा मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाइए। अच्छा, वो जो बाबा थे वो तो अपना आध्यात्मिक रूप से इस तरीके से रहा करते थे, आपने सुना होगा पुराने समय में जो कहीं कुटिया डाल के लोगों का भला करने के लिए हो करते थे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अब उन्होंने क्या करा कि बाबा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना छोटा सा कमंडल उठाया और उन्हें पानी पिलाना शुरू कर दिया। जो फकीर जो उसको भेजा था शाहजहाँ ने पानी पीता रहा और बाबा पानी पिलाते रहे, परंतु उसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कमंडल का पानी समाप्त हो ही नहीं रहा था उसमें। तो ये जो अलौकिक चमत्कार देखकर जो उनका जो भेजा हुआ था शाहजहाँ का फकीर दंग हो गया, बाबा के चरणों में गिर पड़ा और उसने वापस ना लौटने का फैसला किया और वहीं अपनी कुटिया बना ली और उनके साथ ही रहने लगा। और जब वो फकीर वापस नहीं लौटा तो रहस्यमयी घटना को खुद सम्राट शाहजहाँ ने सहारनपुर आने को मजबूर कर दिया कि जिस फकीर को उन्होंने भेजा था उसके बारे में जानकारी करने के लिए तो वापस ही नहीं आया। तो उधर उनके आने के लिए सहारनपुर के रास्तों को सुगम बनाने के लिए ढमोला नदी पर इस भव्य पुल का 32 दराज पुल का निर्माण कराया गया। पुल बनने के बाद शाहजहाँ अपनी पूरी सेना सहित इसी पुल से होते हुए बाबा लाल दास की कुटिया पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने पर शाहजहाँ ने ये बाबा की परीक्षा के उद्देश्य से कहा मुझे पानी पिलाइए। तब बाबा लाल दास ने उसी अलौकिक प्रक्रिया को दोहराते हुए शाहजहाँ के साथ साथ उसकी पूरी विशाल सेना को उसी छोटे से कमंडल से पानी पिला दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये थी कि पूरी सेना के तृप्त होने के बाद भी कमंडल का पानी नहीं खत्म हुआ। तो इस अद्भुत चमत्कार को देखकर शाहजहां सम्राट का सारा अहंकार चूर हो गया, वह भी बाबा के मुरीद मतलब प्रशंसक हो गए। तो ये जो ऐतिहासिक पुल है, गौरवशाली सौहार्दपूर्ण समय की जीवंत निशानी थी, तो अब उसको ध्वस्त कर दिया गया है।
2: कहाँ पर था ये?
1: सहारनपुर।
2: अच्छा,
1: उत्तर प्रदेश में।
2: उत्तर प्रदेश में
1: जी। तो ये जो हमारा ऐसी हम कोई घटना कोई चमत्कार कुछ पढ़ते हैं तो विश्वास होता है कि जो उस समय के टाइम के लोग होते थे, आज तो वो बात नहीं है, वो हमेशा जन कल्याण के लिए ही कार्य किया करते थे, अपने लिए उनका कभी कुछ नहीं होता था। और परमात्मा इतनी शक्ति भेज देता था कि क्या सम्राट क्या वो सब उसके आगे सर झुकाने के लिए मजबूर हो जाते थे। और ये सच्ची घटना है जो सुनाई है आपको।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बात है, सुंदर सी घटना आपने सुनाया। आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। हेलो जी, नमस्कार।
1: मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: मदन भाई बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ।
0: जी जी जी,
1: पड़ रही है दो दिन से जमाजम
0: जमाजम, नाली नाला सब फूल हो गए।
2: तो कोई बारिश का सॉन्ग सुना है आपको? तो कोई बारिश का सॉन्ग सुनेंगे आप?
1: अरे हमारे
0: वंदना जी आ गए दिल्ली से।
1: हमने सोचा था हमारी दीदी कहाँ गए, बहुत दिन का हमको कुछ थैंक यू भी नहीं बोला, कहाँ चले गए।
2: वापस आ गए हैं और फिर वापस जा रही हूँ परसों।
1: दीदी हम तो बहुत याद कर रहे थे। सब समय एक जैसा नहीं होता, ये भी समझते हैं।
2: जी, तो बारिश का सॉन्ग सुनवाए आज आपको?
1: हाँ, बारिश कल शाम को पड़ी थी और अभी गर्मी पड़ रही है अंदर और मौसम बादल छाए हुए है और पेड़ पौधे झुमझाम, मतलब ठंडक से बहुत अच्छे लग रहे हैं।
2: तो आप कौन सा गाना सुनेंगे बताइए, आपके गाने की चॉइस बहुत अच्छी होती है, कौन सा सुनेंगे गाना है बताइए।
1: थोड़ा राजस्थान में कहना चाहता हूँ।
2: अरे ये तो मेरी पसंद का गाना है, तेजाबीर का। तेजाबीर,
1: अरे बाबा आवाज बहुत बढ़िया, आप बोलिए।
2: तेजाबीर का गाना, तेजाबीर
1: गाना,
2: तेजाबीर वाला गाना सुना रहे हैं ना आप?
1: नहीं, तेजाबीर, वाह वाह वाह वाह, उसकी पूरी कहानी जानते हैं हम
2: जी।
1: और अब लग गया है तो लाखों लाखों तो उनकी कहानी बहुत है, लंबी है और इस समय में नहीं सुना सकते। और
2: हाँ, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, लागो लागो जेठ
1: जी। और एक गाना गाते हैं बरका रानी, इस गाने में यही अच्छा है, तो बहुत गाने हैं बरसात के
2: जी।
1: बरका रानी
2: तेजा
1: के जाना पाए
2: जी जी जी।

0: बहुत प्यारे गाना है ये। वाह वाह वाह, गाते ही बहुत सुंदर हैं।
1: फिर क्या कहते हैं, जब बहुत ठंडक हो जाती है, जिस कहते हैं मेरे करामी जरा ठमक बरसो मेरा दिल रह जाता तुझे जम के बरसो मेरे करामी। बहुत प्यारा गाना है फिर आपकी आवाज में
0: जी।
1: और ये गाने अच्छे लगते हैं।
0: अभी आपको तेजावीर का गाना सुनवाएं, आपने तेजावीर का गाना गाया था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया था राजस्थानी सॉन्ग्स में। ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत सुंदर है। वाह कमाल, चलिए आपकी पसंद सुनवाते हैं तेजावीर का गाना।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। आगे बढ़ते हुए तेजावीर का गीत आपके लिए खास, सुनते रहो मस्कर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। राजस्थानी गीत आपने सुना, बड़ा प्यारा सा, आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन जन्मे उन सारे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो वंदना जी बताइए, किन किन का जन्मदिन है आज?
1: आज है सुखवीर सिंह संधू का जन्मदिन, जो भारत के नव नियुक्त चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद में रामचंद्र प्रसाद सिंह, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी, जो मोदी मंत्रिमंडल के इस्पात मंत्री रहे हैं
0: जी।
1: हैं और मलाथी कृष्ण मूर्ति हाला, भारत के पैरा एथलीट्स हैं। और अनवर जलालपुरी, यश भारती से सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर थे। दलाई लामा, बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। देव गौड़ा, जवेरे गौड़ा, कन्नड़ लेखक, लोकगीतकार, शोधकर्ता और विद्वान थे, उनका भी जन्मदिन आज के दिन है। दौलत सिंह कोठारी, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। और लक्ष्मीबाई केलकर, भारत की प्रख्यात समाज सुधारक थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय राजनीतिज्ञ रहे हैं। और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो समाज सुधारक हैं। और नसरुल्तान नजारव, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उनका भी जन्मदिन आज है।
0: और अनिल माधव दवे,
1: जो भारत सरकार में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, उनका भी आज के दिन ही जन्मदिन है।
0: इसके साथ ही हमारे लिसनर्स के कुछ मित्र हैं, उनका भी जन्मदिन है। डॉक्टर नेहा चौधरी जी, उनका भी जन्मदिन है। तो वो एसोसिएटेड है CDER एम्स न्यू दिल्ली एज ए प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट। ऑन द स्पेशल डे उनके इस जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसी तरह तरक्की करते रहें। आपका डेडिकेशन, आपके जो गोल्स हैं वो बहुत सारे हो, अच्छे अचीवमेंट हो, सक्सेस मिले आपको, ऐसी शुभ आशा के साथ आप सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे, ऐसी शुभ आशा की है। मधुसूदन जी ने आपके लिए ये एक प्यारा सा मैसेज भेजा है। डॉक्टर नेहा चौधरी जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत, और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है
1: हैप्पी।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी को फिर एक बार ढेर सारी खुशियां और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं 6 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। 1850

0: 85 में आज ही के दिन लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और रेबीज यानी जो कुत्ते वगैरह काटते हैं, तो उसके तुरंत बाद जो है रेबीज का इंजेक्शन या टीका लगाया जाता है, जिससे कुत्ते से होने वाली जो मुश्किलें हैं या वो रेबीज नहीं होते हैं। तो ये इंजेक्शन का जो है सफलतापूर्वक आज ही के दिन 1885 में लुई पाश्चर के द्वारा टेस्ट किया गया था। महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपितामा कहा था 1944 में 6 जुलाई को आज के दिन। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल कादिर की हत्या हुई थी 2002 में आज के दिन। मैस्किको में मानव का 40,000 वर्ष पुराना पदचिन्ह मिला 2005 में आज के दिन। और विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाली को हराया था आज के दिन 2006 में। और ये
1: दक्षिणी मिस्र में 5,000 साल पुराने शाही कब्रिस्तान की खोज की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अकांटा की जारी विश्व निर्देशक रिपोर्ट 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 की अवधि में चीन सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा, उसके बाद अमेरिका भारत का स्थान रहा। या तो आपने अभी तक ये सारी घटनाएं सुनी जो महत्वपूर्ण घटनाएं 6 जुलाई के दिन हुई थी। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: ठीक है, आता हूं। नहीं मैं आता हूं, गाड़ी लेके वहीं रुको। ठीक है, ठीक।
0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा।

आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को आपकी अपनी उषा का प्यार भरा नमस्कार। आप सुनने जा रहे हो ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कार्यक्रम का नाम तो आप सभी सुन चुके हैं, तो आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलेंगे। देखिए, दिन की शुरुआत तो करेंगे ही एक सुंदर और श्रेष्ठ विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे और आज आपको एक विशेष गेस्ट से मिलवाएंगे, ठीक है ना? तो खुशनुमा जीवन में उनके साथ बने रहेंगे। नाम अभी नहीं बता रही हूँ, आप सुनोगे ना तब आपको नाम बताएंगे। और नई नई व्यंजन तो आपको हमेशा की भांति सिखाएंगे ही, सामान्य जानकारी भी देंगे। इसलिए बने रहोगे आप आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। चलिए दिन की शुरुआत कर लेते हैं एक पावरफुल विचार के साथ, और आज का शक्तिशाली विचार इस प्रकार है, कर्म ही सफलता की कुंजी है। कर्म ही सफलता की कुंजी है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं। कर्म ही जीवन में सफलता की सच्ची कुंजी है। कर्मवीर को जहाँ लक्ष्मी वरण करती है, वही संसार उसके अभिनंदन के लिए उत्सुक बना रहता है। उसके स्वर में संसार का स्वर मुखरित होता है। संसार में उसका न कोई मित्र होता है और न शत्रु। उसका तो एक ही उद्देश्य होता है, कर्म करना। फल का अभिलाषी नहीं होता। इसी से सफलता पग पग पर उसके चरण चूमती है। वह अपने देश का सपूत इंसान बन करके विश्व की विभूति बन जाता है। कर्म मानव जीवन के उत्थान का प्रथम और अंतिम सोपान है। ईश्वर कर्म वीरों की सहायता करता है और उनका विश्वास भी कर्म के साथ ईश्वर में दृढ़ होता है। उनके लिए कर्म ही ईश्वर होता है। तभी तो कर्म की उपासना ईश्वर की सच्ची उपासना है। जो लोग कर्म के प्रति आश्वस्त नहीं, वे ईश्वर को नहीं पा सकते। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही उपासना है और कर्म ही मानव जीवन का आधार है। बिना कर्म के जीवन निसार और कलंक है। तो ये हुआ आज का शक्तिशाली विचार, जिसको हम जरूर फॉलो करेंगे। और चलिए अब सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए आपको घरेलू नुस्खे देते हैं। तेली त्वचा में किस तरह हम उपचार करेंगे इस बारे में आपको सुना रही हूँ। आप क्या करेंगे अगर तेली त्वचा है तो अतिरिक्त तेल निकालने के लिए हमें गर्म पानी से त्वचा को साफ करनी चाहिए। तेली त्वचा वालों के लिए मैं उपचार बता रही हूँ कि अतिरिक्त तेल अगर निकल जाए ना तो समस्या खत्म हो जाती है, तो इसके लिए गर्म पानी से त्वचा को साफ करना चाहिए। अगला नुस्खा ध्यान से सुनेंगे। चंदन का पाउडर गुलाब जल में गोंद करके चेहरे पर लेप करिए, चेहरे के धब्बे मिट जाएंगे और कील मुहासे भी दूर हो जाएंगे। तेली त्वचा वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है चेहरों पर कील मुहासे निकलना, तो इसके लिए चंदन का पाउडर गुलाब जल में गोंद करके चेहरे पर लेप करना है, चेहरे के धब्बे मिट जाते हैं, कील मुहासे दूर हो जाते हैं। अगला उपाय भी ध्यान से सुनेंगे। गाजर के रस से चेहरा धोइए, इससे रंग साफ होगा। तेली त्वचा में बहुत ही लाभदायक है। गाजर के रस से चेहरा धोना है, इससे रंग साफ होता है। तो जिसके भी तेली त्वचा है वो इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। तेली त्वचा पर दाग धब्बे व मुहासे निकलते हैं, तेली त्वचा वालों को रोज 2 बार साबुन लगा करके चेहरा धोना चाहिए। चेहरे पर नींबू रगड़ने से तेली त्वचा में लाभ होता है, तो रोज चेहरे को 2 बार साबुन लगाकर धोइए और चेहरे पर नींबू रगड़िए, इससे तेली त्वचा वालों को लाभ होगा, चेहरा चमक उठेगा। तो चलिए, ये तो सुनाए आपको नुस्खे। जिसके भी

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। राधिका जी चौधरी जो मुंबई के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ आशियाना में बने हुए हैं। राधिका जी आपका स्वागत है आशियाना में।
3: नमस्ते।
2: अच्छा राधिका जी, हम सभी खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान के जीवन में तनाव आ ही जाता है। जैसे कि मैं आज आपको उस तरफ लेके जा रही हूँ कि जैसे किसी के हस्बैंड नहीं होते हैं, सारी जिम्मेवारी एक गृहिणी पर आ जाती है, माँ पर आ जाती है। हम देखते हैं कि जिन बच्चों के माँ नहीं होती है उनका पिता सिर्फ कमा करके ला करके दे सकता है, फिर भी मतलब उसको उस नजरिए से नहीं देखा जाता है समाज में। उसके बदले जब एक हस्बैंड नहीं होता है और एक गृहिणी घर परिवार को भी चलाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार भी देती है और बाहरी क्षेत्र में कार्य भी करती है, कहने का भाव है कि कमा करके भी लाती है, फिर भी उस नारी के ऊपर लोगों की नजर होती है कि देखो ये विधवा है, फिर भी घर के बाहर देखो वहां जा रही वहां जा रही। दूर की तो छोड़ो, घर परिवार वाले ही शुरू हो जाते हैं इस बारे में। क्या कहेंगे आप?
3: जी, आपने जो कहा बहुत सही कहा। इस बारे में आपको कहूंगी कि औरत जो होती है, चाहे वो कुंवारी हो, शादीशुदा हो या विधवा हो, बाहरी व्यक्तियों की, घर वालों की जितनी उस पर नजर नहीं होती, उससे ज्यादा बाहरी वालों की होती है। क्योंकि वो अपने, कहा जाता है कि लोग अपने घर को जलता हुआ नहीं देखते। बाहर भी अगर थोड़ा सा भी धुआं उठता है तो वो उस धुएं को भी ऐसा बना के बोलते हैं कि जैसे पता नहीं पूरा शहर जल गया हो।
2: जी,
3: तो उसी तरह से लड़की भी होती है। लड़की अगर उसकी खुद की लड़की है, बाहर जा रही कमा रही है, तो वो अपनी लड़की को नहीं दोष देगा, लेकिन अगर दूसरे की लड़की कमा रही है तो वो उसको बहुत गलत तरीके से लेगा और दूसरों को ये कहेगा कि अरे भाई वो कमा रही है, अरे वो उसके माँ बाप बेटी की कमाई खा रहे हैं। ये नहीं देखते कि लड़की है, पढ़ी है, सक्षम है, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।
2: जी।
3: आजकल लोग दूसरों को देख के सबसे ज़्यादा जलते हैं, अपने लिए नहीं, अपने लिए उनके लिए हर चीज़ जो करो सब सही, पर दूसरों के लिए नहीं वो सोचते हैं। लड़कियां हैं, जैसे अभी किसी के पति चले जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब इसको हम किस तरह से यूज कर सके। यूज करना कई तरीके की होती है, जैसे शारीरिक भी होता है, मानसिक तौर पे भी होता है, शोषण कई तरीके से होते हैं। उनको घड़ी में सताना, परेशान करना, गलत गलत बातों से इंजाम लगाना, उनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देना, हर तरीके कई तरीके की उसको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है अकेली औरत को।
2: जी, तो एक तरफ हम खुशियाँ की बात करते हैं कि नहीं परिवार में खुशियाँ

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। राधिका जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो आप मुंबई से पधारे हैं और परिचय तो आपका दे ही चुकी हूं। आप एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हो अभी वर्तमान में, और खुशनुमा जीवन की बातें हो रही थी आप सभी के साथ कि किस तरह जब इंसान, उसमें भी विशेष महिलाओं के बारे में आपको बता रही थी कि एक महिला जिसका पति का साया नहीं होता है, बच्चों के परिवार के पालन पोषण भी कर लेती है और बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार के साथ बाहरी क्षेत्र में भी कार्य करती है और इस तरह परिवार में अभाव नहीं आने देते, और अभाव रहता है फिर भी वो परिवार को प्यार से लेके चलती है, जबकि ऐसा कार्य पुरुष बहुत कम कर सकता है। तो राधिका जी इस बारे में बात चल रही थी, है ना? तो कहीं कहीं हम देखते हैं राधिका जी कि बड़े बड़े शहरों में बहनों को, जैसे तलाकशुदा बहन हो, या मैंने आपको बताया ना कि जिसके पति का साया नहीं है, ऐसी बहनों को परिवार भी साथ छोड़ देता है, पियर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, ससुराल वाले और पियर वाले, तो थोड़ा अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। और इतने बड़े शहर में, कहते हैं भीड़ भड़ाके के शहर में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह वो कैसे अपना समय मतलब बिताए या अकेले कैसे रह सकती है? आपको तो अच्छा अनुभव है क्योंकि आप बड़े शहर से आप बिलोंग करते हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने जो भी कहा सब कुछ सही कहा। जैसे देखा जाए तो शहरों में, आजकल कहते हैं शहर या गांव, दोनों में औरतों की स्थिति एक जैसी नहीं है जी। कहते हैं कि घर में भी लड़कियों को दबाया जाता है, चाहे वो गाँव की हो या शहर की लड़की हो, अगर वो कमाना चाहे तो उसे और भी लोग दबाते हैं। लेकिन मैं उन बहनों से यही कहूंगी कि आप अपने जीवन में ना थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, जैसे कि भगवान के साथ रहे और हमेशा अपने आप आध्यात्मिक लाइन में रहे, आध्यात्मिक जीवन जिए। आध्यात्मिक में जैसे मेडिटेशन होता है, थोड़ा धार्मिक बातें होती हैं, क्योंकि जब तक आपके साथ में भगवान का या आध्यात्मिक साथ नहीं होगा, तब तक आप अपने सोचने की शक्ति नहीं बदल सकते। जब तक आप अपनी सोचने की शक्ति नहीं बदलेंगे, आप में विश्वास नहीं जागेगा। सबसे पहले औरतों में विश्वास होना चाहिए, और खुद में विश्वास होगा तभी आप हर चीज़ कर सकते हैं। लोगों के बीच में भी आप आत्मिक विश्वास के से चल सकते हैं, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस की, आज की डेट में देखा जाए तो कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके कारण वो क्या होता है, लोगों के प्रताड़ना के कारण, झगड़ा के कारण, लोगों की लड़ाई, लोगों की उलहना के कारण क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और डीमोटिवेट होने के कारण ये होते हैं कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो लोग आत्महत्या करने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो बैठते हैं। निराशा क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक की कमी होती है। अगर थोड़ा सा हम अपने बिजी शेड्यूल को चेंज करके जीवन में 5 मिनट या 10 मिनट भी अगर दिन में टाइम देते हैं आध्यात्मिक में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का ध्यान करें, थोड़ा अपने मन को शांत करें, जिसके कारण आपको सोचने की शक्ति मिलेगी और सही निर्णय लेने की भी ताकत मिलेगी कि आपके सामने कोई भी समस्या आ रही है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। और जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आपके अंदर सोचने की शक्ति नहीं आएगी।
1: बिल्कुल सही कहा है राधिका जी कि ऐसी महिलाएं जो अकेली रहती है बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि तलाकशुदा है या फिर कम उम्र में ही उनके हस्बैंड चले गए हो, तो ऐसी बहनों के लिए जीना दुर्भर हो जाता है क्योंकि परिवार साथ छोड़ देता है और बच्चों की जिम्मेवारियां भी होती है। तो आपने बहुत अच्छा कहा है कि थोड़ा अध्यात्म का सहारा लेंगे तो सचमुच हमारे में बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। कहते हैं कि हम देखिए ईश्वर को तो सभी मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, सभी ईश्वर को तो मानते ही हैं। और जब सारी बातें, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे दुख आते हैं, तो हम अंत में क्या करते हैं, जब अपनी कोशिशें बेकार हो जाती है ना, तो लास्ट में हम कहते हैं कि अब तो भगवान को जो करना हो करे, है ना
2: जी बिल्कुल।
1: जब हम लास्ट में अंतिम में हम भगवान के ऊपर छोड़ते, इससे तो अच्छा है कि फर्स्ट में ही छोड़ दीजिए।
2: जी बिल्कुल, हम स्टार्टिंग से ही अगर भगवान को अपने साथ में लेके चले ना हर कार्य में, तो भगवान कहीं ना कहीं हमें हर तरीके से रास्ता दिखाता है। हम फेल किस जगह पे होते हैं, जब हम अपने आप को अकेला और कमजोर समझ करके चलते हैं, तो इसलिए हम हमेशा रास्ता भगवान तो हमारे साथ उस समय भी होता है, लेकिन हमारे पास सही नजरिया ना होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते
1: जी,
2: और उसकी बताए हुए रास्ते को समझ नहीं पाते हैं। अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक अपने साथ में लेके चले, आध्यात्मिक जीवन जिए, तो आपको भगवान क्या कहना चाहता है, क्या रास्ता देना चाहता है, वो अपने आप आपको समझ में आएगा
1: जी,
2: और उस तरह से अपने जीवन को आप परिवर्तन कर सकती हैं
1: जी बिल्कुल। बाकी कहते हैं कि देखिए पेड़ फल देता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम पत्थर मारते हैं
2: जी,
1: है ना?
2: बिल्कुल,
1: जबकि वो देता रहता है
2: जी
1: ऐसे। तो फिर एक महिला तो हम समझ सकते हैं, जब इस तरह हो जाती है तो लोग भाग तो पत्थर ही मारेंगे, मतलब जहर उगलना पत्थर के समान ही हो गया
2: जी,
1: ना
2: बिल्कुल। उसके उदाहरण पे आप धरती को कह सकते हैं
1: जी बिल्कुल,
2: धरती को हम कितना चोट पहुंचाते हैं, बम से फोड़ते हैं, फिर कहीं पे अचानक वो हर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सब बॉम्ब्स के कारण धरती पे इतनी सारी चोट होती है, उस पे पापी भी चलते हैं, पुण्यात्मा भी चलती है, साधु भी चलती है, लेकिन कभी किसी धरती ने ये नहीं कहा कि नहीं मेरे पे पापी आत्मा नहीं चल सकती आप, वो हर किसी को साथ में लेके चलती है, अपनी जमीन देती है, रहने के लिए घर देती है, खाने के लिए अनाज देती है, पीने के लिए पानी देती है।
1: तो जब प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाते हैं भी, फिर भी प्रकृति हमारा अच्छा ही करती है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर एक महिला सोच ले कि इन लोगों के पास क्या है, कीचड़ी है, लेकिन मुझे जब अध्यात्म से जुड़ेंगे तो ऐसी भावना आएगी कि नहीं, मुझे तो ईश्वर की नज़र में सही रहना है और अपनी नज़र में सही रहना है
2: जी,
1: तो हम यही उदाहरण देते ना बार बार बच्चों को समझाते, तो भी क्या कहते हैं, बच्चे पाप नहीं करना, भगवान देख रहा है
2: जी,
1: है ना, झूठ नहीं बोलना बेटे, भगवान देखता है। तो ये बात को ध्यान में रखें बस, तो लोग भी कल जब हम जिस मार्ग पर चल पड़ेंगे और उसमें अगर हमारा लक्ष्य सही है और हम डटकर मेहनत कर रहे हैं, तो जो लोग आज आपको बुरी नज़र से देख रहे हैं तो उनका नज़रिया भी बदल जाएगा। और राधिका जी, अध्यात्म में तो इतना बल होता है कि दूर से भले आप बुरी दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं रहेगी।
2: जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा होता है कि हमारे में एक तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होती है
1: जी,
2: और एक तरीके से हम अगर आध्यात्मिक जीवन जीते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे एक अलग प्रकार का नूर आ जाता है
1: जी।
2: वो नूर ऐसा होता है कि वो हमारे अंदर एक पवित्रता, प्योरिटी की पावर भर देती है
1: जी।
2: इससे ये होता है कि हम अगर किसी विकारी आत्मा के सामने भी जा रहे हैं, लोग है भले उसकी नज़र कितनी भी सोच खराब हो, लेकिन अगर वो हमारे पास से, हमारे वाइब्रेशंस के पास से गुजरता है, तो उसकी अचानक सोच चेंज हो जाती है
1: जी बिल्कुल।
2: और कई बार ऐसा होता है कि वो विकारी व्यक्ति आकर के खुद सामने से कहता है, बहन जी हम तो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे थे, लेकिन पता नहीं आप हमारे पास से गुजरे, इतनी शांति फील हुई, इतनी खुशी आनंद हुई, हमें ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कोई फरिश्ता गुजर गया
1: जी बिल्कुल। राधिका जी, अध्यात्म में इतना बल है कि लोगों की फीलिंग्स चेंज हो ही जाती है। और इस तरह देखिए, अगर कोई अकेली बहने रहती हो तो उनका जीवन खुशनुमा बन जाएगा ना
2: जी,
1: क्योंकि वो सारी कीचड़ पट्टी जो समाज या हमारे घर परिवार के लोग जो हमें दे रहे हैं, वो हमने लिया ही नहीं। कहते हैं ना कि काम की चीजें हो ले लो, और जो अपने काम की नहीं है उसको आप नेग्लेक्ट कर लो, तो इस तरह हम जीवन में खुश रह सकते हैं। बाकी सारी कीचड़ पट्टी, सारा जो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, ये सब लेकर के बैठ जाएंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे
2: जी, बिल्कुल।
1: तो राधिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आशियाना में आपने बहुत ही अच्छा, किस तरह हम जीवन में खुश रह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह आपने बताया है इसके लिए। और चलिए, अब समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत, सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन 90.4।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी का वेलकम है। चलिए आज बनाएंगे आशियाना के किचन में अरवी की टिक्की। ठीक है, अरवी की टिक्की के लिए पेन और डायरी आप अपने हाथों में ले लीजिए। और सामग्री में लिखवा रही हूँ, 3-4 लोगों के लिए मैं सामग्री लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लीजिए 250 ग्राम अरवी। ठीक है, नारियल लीजिए 25 ग्राम। अब आपको सूखी मिर्च लेनी है, सूखी मिर्च जो लाल मिर्च होती है ना सुखाई हुई, तो लाल मिर्च सूखी हुई लीजिए 5 ग्राम। नमक आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं आप टेस्ट के हिसाब से। और खाने का मीठा सोडा लीजिए 1 चपटी। बेसन लेना है आपको 55 ग्राम और 5 ग्राम के अंदाज से ले लीजिए अदरक। तलने के लिए तेल लेना है आवश्यकता के अनुसार। तो बस ये सामग्री है जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ अरवी के टिक्की की, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। आप लीजिए 250 ग्राम अरवी। नारियल लेना है आपको 25 ग्राम। 5 ग्राम ले लीजिए सूखी मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, ले लीजिए 1 चपटी। ठीक है, चपटी भर ले लीजिए। 55 ग्राम ले लीजिए बेसन और अदरक ले लीजिए 5 ग्राम के अंदाज से, आप छोटा सा पीस ले लीजिए। और तलने के लिए तेल लीजिए आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए। तब तक के लिए आपको गीत सुना रहे हैं। गीत सुनाने के बाद कैसे अरवी की टिक्की बनाई जाती है वो आपको जरूर सिखाएंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे हैं अरवी की टिक्की, जो विशेष करके महाराष्ट्र में ज्यादा बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र की चीज क्यों ना हम राजस्थान में और गुजरात में भी बनाएं। तो चलिए अरवी की टिक्की की सामग्री में आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा। अरवी, नारियल जिसको हम खोपरा भी कह सकते हैं, सूखे मिर्च, नमक, सोडा, बेसन, अदरक और तेल। तो ये तो हो गई सामग्री। चलिए कैसे बनाते हैं अब मैं आपको सिखा रही हूँ। अरवी की अच्छी तरह धुलाई कर दीजिए, क्योंकि अरवी पर मिट्टी बहुत जमी हुई आती है, तो थोड़े से गर्म पानी से धुलाई कर दीजिए और फिर इसको आप बॉईल करने रखिए, ठीक है। जब बॉईल हो जाए ना अरवी, तो इसके आप छिलके निकाल दीजिए। छिलके निकाल करके इसको अच्छी तरह से आप मैश कर दीजिए, ठीक है। मैश हो गया, अब आप इधर जो हमने मसाला लिए है ना, तो आप एक कढ़ाई रखिए गैस पर, और गैस पर आप थोड़ा सा तेल डालिए। तेल डाल करके जो हमने अदरक ली है, लाल मिर्च ली है और नमक, खाने का सोडा, अदरक, सूखी मिर्च, नमक, इन सभी को आप क्या करेंगे, नारियल, इन सभी को मिक्स कर दीजिए। मिक्सर में एक बार फेर दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छी पेस्ट हो जाएगी। नारियल अगर कद्दूकस किया हुआ है, नारियल का बुरादा है तो ठीक है, और नहीं है तो कच्चा नारियल लेना है आपको, और उसके छोटे छोटे पीस करके आप इस तरह मिक्सर में चला दीजिए सभी को। और सभी को चला करके जो आप तेल डाल करके तेल में सारे ही मसाले को एक बार फ्राई कर दीजिए, ठीक है। पहले अदरक डाल दीजिए, फिर सूखा मिर्च भी, हमारे देखिए वो लाल मिर्च पाउडर ही हो गया है। हाँ, ताजा अगर सूखा साबुत मिर्च है तो उसको आप पीस दीजिए इस तरह साथ में, और नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर ही डाल दीजिए। तो इस तरह आप कढ़ाई में तेल रख के इन सारे ही मसालों को अच्छी तरह फ्राई कर दीजिए। फ्राई करने के बाद अरवी को जो हमने मैश किया है ना, इस फ्राई किए हुए मसाले में डाल दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, ठीक है। इसके अंदर नमक वगैरह सारे मसाले गिर गए हैं, और अच्छी तरह मिक्स करके फिर आप गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। और इधर हम क्या करेंगे, बेसन का घोल तैयार करिए, जैसे हम आलू बड़े का करते हैं ना, इसी तरह करना है। और इस घोल में आप जो हमने नमक लिया है, नमक थोड़ा तो मसाला में डालना है और थोड़ा इसमें डालना है घोल में, और हमने खाने का सोडा लिया है ना, वो इस घोल में डाल दीजिए। जो हमने खीरा तैयार किया है इसमें आप डाल दीजिए और बेसन को अच्छी तरह हिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। और इधर ये मसाला ठंडा हो गया, इसके आप गोल गोल टिक्की बना दीजिए। टिक्की बना करके आप डुबाइए इसके अंदर बेसन के घोल में, और बस रखिएगा कढ़ाई गैस पर, तेल डालिएगा और इसमें आप तल लीजिए। हल्के ब्राउन कलर की हो जाए तो बस निकाल दीजिए, थाल तो फेरनी ही है, दोनों तरफ से हल्का ब्राउन कलर का करना है और उसके बाद निकाल दीजिए तेल से बाहर। तो इस तरह अरवी की टिक्की बनाई जाती है, बहुत ही इजी है और आपको पसंद भी आई होगी। तो चलिए फिर से मैं विधि बता रही हूँ। सबसे पहले अरवी की धुलाई कर दीजिए और इसको पानी में बॉईल कर दीजिए, ठीक है, कुकर में सीटी ले लीजिए। और जब ये अरवी पक जाए तो इसको आप छिलके निकाल दीजिए और हाथों से मैश कर दीजिए। अब जो सारे मसाले लिए हैं ना, तो इसको एक बार आप मिक्सर में चला लीजिए, क्योंकि अगर बुरादा है तब तो कोई बात नहीं, लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए और अदरक को तो हमको कूटना ही है, पेस्ट बनानी ही है। और नारियल का बुरादा है तो आपको मिक्सर में चलाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं है तो आप नारियल के चटक बना करके, इसकी घरी बना करके आप पीस दीजिए मिक्सर में। अदरक, नारियल और सूखा मिर्च ये सभी पीस करके सारा मसाला आप तैयार हो गए ना, तो अब आप रखिए कढ़ाई के अंदर तेल रखिए थोड़ा सा, और ये सारे मसाले अच्छी तरह फ्राई कर दीजिए। और जब मसाले फ्राई हो जाए तो जो हमने अरवी का मेस करके रख रखा है उसको आप डाल दीजिए कढ़ाई में, और अच्छी तरह हिला करके मिक्स करके गैस बंद कर दीजिए। और जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप रख दीजिए एक तरफ, और बेसन का घोल तैयार करिए। आलू बड़े का घोल बनाते इसी तरह घोल तैयार करना है, और इसमें नमक और खाने का सोडा डाल देना है। अच्छी तरह हिला कर रखिए, और इधर हमारा मसाला ठंडा हो गया है, उसको आप लीजिए और टिक्की बनाइए। ठीक है, टिक्की बना करके बेसन में डुबा करके आप तेल में तल दीजिए, सुनहरी हो जाए, हल्के सुनहरी, तो आप दोनों तरफ से सुनहरी हो जाए तो बस इस तरह निकाल दीजिए गैस से बाहर। तो अब इस टिक्की को आप भले इमली की चटनी, भले टमाटर सॉस या तिक्की चटनी के साथ आप पिरस सकते हैं। तो इस तरह अरवी की टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट, प्लेट के अंदर अरवी की टिक्की रखिए, और जो भी चटनी बनाई है वो भी रखिएगा, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से ढकिएगा स्वच्छ थाल पोश, और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा अरवी की टिक्की का, और साथ ही साथ सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत, तो उसका भी आनंद लीजिएगा। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। फोक डांस से बने रह सकते हैं फुली और फिट। फोक डांस के द्वारा हम स्वयं को फुली और फिट रख सकते हैं। आइए कैसे रख सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप सभी जानते हो कि किसान, चक्की पीसने वाली महिलाएं, मछुआरे, ये सभी मेहनत वाले लोग अपने काम व पारंपरिक डांस के जरिए कैसे फिट रहते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए ये वर्कआउट डिजाइन किया गया है जिसमें माइंड, बॉडी और सोल पर वर्क कराया जाता है। जानते हैं एक घंटे के इस वर्कआउट सेशन के बारे में किसमें क्या क्या होता है। मेडिटेशन। फोक फिटनेस की शुरुआत में लोगों से कहा जाता है कि वे फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप, लंच में क्या बनाऊं जैसे तमाम सवालों को भूल करके एक घंटा सिर्फ वर्कआउट पर ध्यान दीजिए, फिर माइंड व सोल अर्थात दिमाग व आत्मा की शांति के लिए मेडिटेशन भी कराया जाता है। तो ये सब हम सभी भी कर सकते हैं प्यारे श्रोता बंधु, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि कैसे हम फोक डांस से फुली एंड फिट रह सकते हैं। वैसे तो हमारे आबू के आसपास सभी किसान भाई और किसान बहनें ज्यादा है, मेहनत करती है, फिर भी सर्विस वाले भी बहुत है। तो सर्विस में क्या होता है, हमारा दिमाग तो खर्च होता है लेकिन शारीरिक मेहनत इतनी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। वार्म अप के लिए क्या करना होगा, वर्कआउट की शुरुआत से पहले वार्म अप कराया जाता है ताकि शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए। ये भाग हर किसी के लिए जरूरी होता है। अपर बॉडी वर्कआउट, इसमें शोल्डर, चेस्ट, बैक, बाइसेप्स व ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए बिहू, कोली, गरबा व राजस्थानी डांस कराया जाता है। बिहू नृत्य में हाथों और कंधों का काफी प्रयोग होता है। एंटी क्लॉक और क्लॉक मूवमेंट से शोल्डर की एक्सरसाइज होती है। इसी तरह मछुआरों का लोक नृत्य कोली करने से चेस्ट और बैक का वर्कआउट होता है। राजस्थान में रेत ज्यादा होने से यहाँ के लोग पैरों को दबाकर चलते हैं, इसलिए यहाँ के लोक नृत्यों में पैरों की तुलना में अपर बॉडी पार्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। गरबा में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के कई स्टेप्स होने से शोल्डर व बाइसेप्स का अच्छा वर्कआउट होता है। अब कार्डियो वर्कआउट, इस वर्कआउट में कार्डियो को चौथे सेशन में रखा गया है। ये सेशन वजन घटाने के लिए सबसे बेस्ट है जिसमें हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट होता है। इस दौरान भी फोक सॉन्ग्स या फोक बीट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काउंटिंग के हिसाब से आपके मूवमेंट दाएं और बाएं किए जाते हैं। इस दौरान आत्मचिंतन करते हुए माइंड, बॉडी और सोल को रिलैक्स किया जाता है। वाटर ब्रेक और खासियत, वाटर ब्रेक के लिए हर सेशन के अंत में 2 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें सिर्फ 1 घूंट पानी पिया जाता है, क्योंकि ज्यादा पानी से क्रैम्प आने की आशंका रहती है। इससे स्वेटिंग के बाद बॉडी को हाइड्रेट होने में मदद मिलती है। खासियत, इस वर्कआउट में हर माह लोक नृत्यों को बदल दिया जाता है जिसके लिए देश में 130 रजिस्टर और 1000 से भी ज्यादा अनरजिस्टर फोक डांसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुई सामान्य जानकारी कि किस तरह सर्विस वालों को जो शारीरिक मेहनत नहीं करते उनके लिए फोक डांस जरूरी है, किस तरह बॉडी को फुली फिट रखता है, ये आपको जानकारी दी है। चलिए अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आइए जानने योग्य बात आपको बता रही हूँ कि अच्छे जीवन के लिए जरूरी है घूमना और घुमाना। एक अध्ययन के निष्कर्षों में ये साबित हो गया कि छुट्टियां मनाना और घूमना फिरना सेहत संबंधी लाइफ के लिए बेहतरीन जरिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आबो हवा बदलने से शरीर की कार्य प्रणाली अपने आप ही बदलती है और बिगड़ी बॉडी क्लॉक ठीक हो जाती है। चलिए आज के अनमोल वचन आप सभी को सुनाना चाहूंगी। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, जिस हाथ से अच्छा कार्य हो वह हाथ तीर्थ है। अब मैं आपको राधे रानी के ऊपर एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा करनी सा। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, सच

किस्मत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, ये मन

भजन में जितना इसे समझाऊं उतना ही बदल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। नजरों से गिराना नहीं चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना नहीं चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए।

कितना है, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, सच कहती हूँ।

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं RJ उषा। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम सब की जिंदगी में गहरे असर छोड़ सकता है, जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा। ये एक विशेष महिला और पुरुषों के बीच हो रही आपसी असमानता, जिसमें विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में है, जिसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। आज ये विषय क्यों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए सुनते हैं एक रेडियो नाटक जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर आधारित है।

0: अरे देख देख कांता, लक्ष्मी का मिजाज, चार चार बेटी यहाँ पर घमंड तो एड़ो करे, जाने बेटिया कोनी बेटाए।
1: सही कह रही तू, मोट की छोरी ने तो अतरी बिगाड़ रखी कि आखा गांव में फटफटो लेन दौड़ती परे, और छोरे की नैन पेंट शूट पहरे हैं।
2: छोरा की नैन बॉयकट रख के आदमी का सारा काम छोरी को करावे, पंचायत में जानो वे कि राशन पानी लाड़ो वे, दवा खाने जानो वे कि भले छोटी बेनिया के स्कूल को काम वे तो भी।
3: अरे एकदम देखने नाम कड़ाई माँ बापरो जदी था पड़ी।
4: अरे चुप चुप, वह देख लक्ष्मी आ रही है।
5: अरे कई बात है, आज तुम्हारी सारी सहेलियां एक साथ में।
2: लक्ष्मी आओ मारी सातन आओ, आज तो तू घनी खुश लाग रही है, अनी खुशी को राज।
5: खुशी की तो बात है।

0: आज तो
1: दीपक आपकी सैलरी रहेगी 35,000 और कविता आपकी सैलरी रहेगी 25,000। इज इट ओके?
2: सर ये अंतर क्यों है? जब हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाई भी एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहा, फिर सैलरी में अंतर क्यों?
1: क्योंकि दीपक लड़का है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर पुरुष लोग छुट्टियां कम रखते हैं, महिलाएं ज्यादा छुट्टियां रखती हैं। जैसे कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, कभी क्या कभी क्या, लेकिन पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए।
2: पर सर मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ, लॉजिकल टेस्ट में तो मुझे उनसे अधिक मार्क्स मिले हैं। रही बात शादी की, सर क्या गारंटी है कि मेरी शादी इसी साल होगी? अगर होगी भी तो हो सकता है मैं इसी शहर में शादी कर लूं। सर जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से आपका ये भेदभाव सही नहीं है सर?
1: कविता तुम सही कह रही हो, मुझे जेंडर के आधार पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार ही सैलरी देनी चाहिए। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता हूँ।
2: थैंक यू सर।
3: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा और आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नौ में, जहां पर हम लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। दोस्तों लक्ष्मी जैसे लोग हमारे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं। अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो हो सकता है हमारा घर परिवार और दफ्तर के आसपास ही होंगे। इन लोगों को हमारी तरफ से एक हौसला की आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस विषय को बेहतर समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का और समझेंगे इनके द्वारा लिंग आधारित और घरेलू हिंसा में अंतर क्या है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हिंसा के नो इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस विषय पे बातचीत करने वाले हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा। दोस्तों हमें मदद करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुलेखा जी। आप 1998 से फेमिनिस्ट लीडर के तौर पे महिला समाख्या, इंसाफ एंड एक्शन इंडिया ऐसी संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वर्तमान में आप कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं बेटी जिंदाबाद कैंपेन का एक्शन इंडिया के संस्था में। तो स्वागत करते हैं सुलेखा जी को। नमस्ते मैम।
5: नमस्ते। लिंग आधारित हिंसा गर्भ में से ही महिलाओं के साथ शुरू हो जाता है। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले परिवार और समाज की उम्मीद उसके बेटा होने की चाहत को रखने लगता है और वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो गर्भ से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़का की चाहत, लड़के की चाहत। उसके बाद जन्म के समय खुशी, फिर परवरिश में देखा जाता है, उसके दूध पिलाने से लेकर के और उसके देखभाल तक की गैप्स को हम देखते हैं। हर पल लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, चाहे उसके खान पान को लेकर हो, चाहे उसकी परवरिश को लेकर के हो, चाहे उसके खिलौने को लेकर हो। फिर आगे जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक बढ़ती है तो उसके पढ़ाई लिखाई पर भी, वो कौन सा साइड में पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगी और साइंस पढ़ेगी या कॉमर्स पढ़ेगी, ये परिवार तय करता है। जबकि लड़का लड़की को खुद से तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। वहीं जब वो किशोरावस्था से ऊपर जाती है 16-17 साल से, वहां लड़की के प्रति शादी की चिंता परिवार वालों को सताने लगती है, और जबकि लड़के के प्रति उसके रोजगार को लेकर के। तो इस तरीके से हर जगह जन्म से लेकर के और मरते दम तक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता रहता है। एक महिला की जिंदगी बचपन जवानी और बुढ़ापा तीन पापे टिकी है, पिता पति पुत्र। एक इंसान होने के नाते, एक महिला होने के नाते उसे हर जगह एक मर्द के अनुसार चलना पड़ता है, और कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो एक औरत के हाथ में नहीं होता है, उसके शरीर पर खुद का हक नहीं होता है। इस तरीके से एक औरत की जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन पापे गुजरती है, और ये बहुत बड़ा वायलेंस है। कहीं ना कहीं एक औरत वहीं पर खत्म हो जाती है एक दूसरे के हाथ में, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, श्रम विभाजन में भी होता है। कृषि में महिलाएं 80% काम करती, महिलाएं किसान कौन है आपके नजर में भी, अगर हम किसान सब कहेंगे तो एक किसान पुरुष ही नजर आएगा। तो काम हर जगह महिलाओं से लिया जाता है और उसका दाम नहीं तय होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह महिला पुरुष को डिवाइड किया गया है, और ऊंचा पद पैसा सम्मान वाली जगह पर पुरुष हावी हैं, और जहां पर उनका काम की वैल्यू का दाम कम से कम और कहीं तो मान्यता ही नहीं, जैसे महिला किसान मानते ही नहीं महिला किसान। तो ये बहुत बड़ा खुद के काम की वैल्यू एक महिला ही नहीं समझ पाती, क्योंकि समाज ने उसे स्थापित नहीं किया, पर बदलेगा। हम महिलाओं ने उस पर बोलना और समझना, अपने काम को गिनना, अपने काम को महत्व समझना शुरू किया है, परिवर्तन आएगा, एक धीरे धीरे आएगा। उसी तरीके से घरेलू हिंसा देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है
4: जी।
5: जेंडर भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा गर्भ में शुरू होता है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, और घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है कि तुमने बेटा जन्म नहीं दिया, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल देखने से सुबह खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या नाम है, शादी का, दूसरी शादी का वो देना कि तू तो बेटा दे ही नहीं सकती, घर से निकाल देना, खर्चा ना देना, बच्ची होने पर उसको छोड़ देना, इस तरीके की चीजें। और साथ साथ घरेलू हिंसा कई तरीके का होता है। घरेलू हिंसा घर एक छत के नीचे रहने वाले, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, लिव इन में भी लोग रहते हैं। अगर एक प्रेमी भी घरेलू हिंसा करता है, एक तो मानसिक हिंसा, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां औरत ने लगातार बच्चे हुए, उसकी हालत बहुत खराब हुई, हम लोगों ने उसे कहा कि आप कोई फैमिली प्लानिंग टेक्निक अपनाओ, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद हो रही। आशा वर्कर ने उसे दिया और उसने अपनाया, उसके पति को कहीं पता चल गया, इतनी बुरी तरीके से पीटा, मतलब 6 महीने हॉस्पिटल में थी। फैमिली प्लानिंग में सारी विधियां सरकार ने औरतों के लिए बनाई है, एक विधि केवल पुरुष के लिए बनाई है, और उसको भी अपनाने के लिए सरकार पुरुषों को तैयार नहीं करा पा रही है। बात करने की हिम्मत नहीं है हेल्थ वर्करों का, एक पुरुष से जाएगा और बोले कि आप अपनी क्या नाम है फैमिली प्लानिंग के लिए ये सुविधा को अपना सकते हैं। इतना जबरदस्त कंट्रोल है सत्ता की।
3: तो सुना दोस्तों हमारी एक्सपर्ट को लिंग आधारित और घरेलू हिंसा पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारा ये मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर सके और इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि आप या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का शिकार हो रहा है तो कृपया उनकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम महत्वपूर्ण हो सकता है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारा लक्ष्य है समाज में जेंडर समानता की दिशा में कदम बढ़ाना और हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर। आप सुनिए ये गीत और मैं आरजे उषा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सपनों पूरों

ಬಡುಲಿ

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. और वैसे तो दोस्तों गीत संगीत हमारे जीवन से कुछ इस तरह जुड़ा है कि जीवन की पहली सांस से लेकर जीवन के सफर में जो भी आयाम आते हैं समझ लीजिए संगीतमय होते हैं. अगर संगीत हमारे जीवन में ना हो तो कुछ अधूरा सा लगेगा. और सच में ये संगीत दिल को कभी कभी उदासी से भी छुड़ा देता है. और कभी कभी अकेलेपन की तलाश में इंसान निकल जाए तो भी संगीत उसका साथ देता है. समझ लीजिए क्या जादू है संगीत में. तो इसी जादू को हम सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है मधुबन अनप्लग्ड. और दोस्तों मैं हूँ आरुषि और मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़ गई हैं अनुराधा जी. वैसे तो अनुराधा जी पहले भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ चुके हैं लेकिन काफ़ी समय बाद फिर से आए हैं. तो आइए उनसे मुखातिब होते हैं और गीत संगीत के सफर पर आगे चलते हैं. अनुराधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत.
1: थैंक यू दीदी.
0: कैसे हैं आप सबसे पहले बताइए.
1: बहुत अच्छी हूँ दीदी. और मेरे सभी प्रिय श्रोताओं मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और याद प्यार. और बहुत ही मतलब उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. मुझे बहुत प्यार से वो सुनते हैं और आज मुझे फिर एक बार मौका मिला है अपने सॉन्ग उनके सामने रखने का.
0: जी बिल्कुल. और अनुराधा जी सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं क्या संगीत आपके लिए क्या मायने रखता है या क्या आप हमेशा से गाते थे गुनगुनाते थे क्या क्या रिश्ता है आपका संगीत से.
1: संगीत मेरे प्राणों में बसता है अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा दीदी क्योंकि बचपन से ही सिंगिंग मैं करती रही हूँ और मेरे पापा ने मुझे संगीत की शिक्षा दी है और संगीत के बिना मैं रह भी नहीं सकती हूँ. हर पल हर जब भी मुझे टाइम मिलता है या फ्री होती हूँ या फिर मैं कभी भी कुछ भी किचन में वर्क कर रही हूँ तो भी मेरे को सिंगिंग करने का बड़ा अच्छा लगता है मुझे सिंगिंग करना और मैं करती रहती हूँ रेगुलर. मेरा ये हैबिट है मेरी सिंगिंग हमेशा करती हूँ मैं.
0: तो पहला गीत हमारे श्रोताओं के लिए आज आप कौन सा लेकर आए हैं अनुराधा जी.
1: सबसे पहले हम परमात्मा को याद करेंगे दीदी.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि उसके बिना तो हमारा कहीं भी उनसे परमात्मा से जब तक हम मिलन नहीं करते हैं तो कोई भी दिन या कोई भी शुभ काम हमारा स्टार्ट नहीं होता है. तो आज हम सबसे पहले परमात्मा को याद करेंगे. नाम है तेरा तारनहारा.
0: क्या बात है. तो चलिए दोस्तों जितने सुंदर ये शब्द हैं उससे मधुर ये संगीत और गीत होगा. तो बिना देरी करिए आइए अनुराधा जी की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत. रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.

0: क्या बात है, बहुत तालियां बनती हैं इस पर तो हम सबकी ओर से, बहुत ही सुंदर।
1: थैंक यू दी।
0: और सच में गीत भी बहुत सुंदर है।
1: परमात्मा की याद में खो जाते हैं इसमें हम।
0: खो जाते हैं। नाम है तेरा तारनहारा, और सच में उसको हमने इतने नाम दिए हैं, वो सच में प्रेम से दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि वो महसूस करते हैं नाम का वो अर्थ है, वो सत्य है। आप जब ये गा रहे थे तो क्या फील कर रहे थे अनुराधा जी?
1: मेरे को फीलिंग में ये आ रहा था कि जैसे भगवान मेरे सामने हैं, उनसे मैं उनको मैं देख पा रही हूँ, उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है कि मेरा उनको मतलब चेहरा मैं देख ही रही हूँ उनका, और मेरा मन कर रहा है कि मैं उनको निहारती ही रहूँ उनके प्यार में, जैसे खो जाते हैं ना भगवान के प्यार में। सेम वो मेरा सिचुएशन थी, मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पे हूँ, गाने में ही खो गई थी मैं।
0: गाने में खो गए थे
1: ये
0: मतलब कितना अच्छा है ना, जैसे कई बार हमें डर लगता है जिंदगी में, उदास होते हैं, या फिर कई बार ना नर्वस भी होता है, तो ऐसे में ऐसे गीत साथ हो तो सब भूल जाए,
1: खुद को भी भूल जाते हैं, इतनी याद में हम परमात्मा ही खो जाते हैं कि खुद का भी हमें एहसास नहीं होता कि हम यहाँ पे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सच में। और अगर बात करें, आपने परमात्मा के गीत से ही शुरुआत करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कैसा रिश्ता है आपका परमात्मा के साथ, मतलब क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: परमात्मा को मैं अपना पिता भी मानती हूँ और फ्रेंड भी मानती हूँ, है ना, सभी रिश्ते मैं परमात्मा के साथ में मानती हूँ। गुरु भी हैं वो मेरे, है ना, फ्रेंड भी हैं, हमेशा साथ देते हैं। जब भी मुझे कुछ परेशानी होती है तो मैं उनको ध्यान करती हूँ, तो तुरंत वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि क्या आपको करना है, कैसे आपको रास्ता दिखाते हैं, मेरे को मार्गदर्शन जैसे कहते हैं करते हैं,
0: वैसे करते
1: तो मुझे वो हमेशा साथ देते हैं
0: जी।

0: तो दोस्तों बहुत सुंदर गीत भी आप सुन रहे हैं, संगीत भी आप सुन रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ बीच में कि अगर आपको भी संगीत का शौक है, अगर आप गाते गुनगुनाते हैं और आपका कोई भी दिन बिना गीत के नहीं कटता, तो समझ लीजिए आप भी इस कार्यक्रम पर आ सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना है, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपके गांव का नाम। रेडियो मधुबन का नंबर है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414151415। और अनुराधा जी हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे थे ईश्वर की और ईश्वर से जुड़े रिश्तों की। सच में उसके साथ वो रिश्ते वही महसूस कर सकता है जिसने वो निभाए हैं, जिसके एग्जांपल्स भी हम देखते आए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं ईश्वर के प्रेम की और कैसे ईश्वर मदद करता है, तभी इतने गीत भी शायद रचे गए हैं, लिखे गए हैं, वो भावनाएं सत्य हैं
1: जी।
0: अनुराधा जी आप बताएं, जैसे आपको गाने का शौक, मतलब जैसे कोई आपकी स्मृति हो, कोई मेमोरी हो, आपने गाना गाया था बचपन में, या कोई ऐसी चीज़, कोई इंसिडेंट आपको याद हो जो संगीत से जुड़ा हो।
1: हाँ जी, बचपन में देशभक्ति गीत हमने गाया था, तो मेरे पापा ने वो सॉन्ग लिखा था और उन्होंने हमें सिखाया भी उन्होंने ही था, और उन्होंने हारमोनियम प्ले किया था, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था वो, तिरंगे के ऊपर सॉन्ग था वो।
0: अच्छा, आपके पिताजी ने लिखा था?
1: बिल्कुल, वो लिखते थे।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: उन्हीं से, उन्हीं की क्वालिटी मेरे अंदर आई है कि मैं भी बाबा के, मतलब परमात्मा गीत भी लिखती हूँ मैं, और जो भी कुछ अच्छा लगता है, राइटिंग का मुझे भी शौक है और सिंगिंग भी करने का शौक है फिर उसके बाद में, मतलब
0: ये क्वालिटी आपके पिताजी से आपके अंदर है,
1: फादर की
0: दी हुई है। वो कैसे, मतलब उनके बारे में कुछ बताएं, क्या करते थे वो, कैसे लिखते थे, क्या उनके आपको स्मृतियां हैं?
1: हाँ, मेरे पापा श्यामली शुगर मिल में जॉब करते थे, श्याम सिंह काम्बोजन का नाम है, एंड वो बहुत ही अच्छे इंसान कह सकते हैं, कहते हैं ना बेटी को तो फादर अच्छे ही लगते हैं, पर सच में उन्होंने मुझे हमेशा ही आगे बढ़ाया है, और आज मतलब हमेशा आज भी कहते हैं बेटा जो करना है करो आप। तो वो, उनको राइटिंग का भी शौक था, और ना रामलीला होती थी पहले टाइम में ना, वो लोग रामलीला में जाते थे तो प्ले करते थे, हम लोग भी स्टेज पे रहते थे, तो कभी रावण की सेना में तो कभी राम की सेना में हमारा ये रहता था,
0: रोल रहता था।
1: तो हमने बहुत रोल प्ले किया बचपन से ही, हम एक्टिव थे हर फील्ड में, चाहे वो सिंगिंग का था, डांस का था, या फिर एक्टिंग का था। तो पापा हमेशा साथ रखते थे ना, तो जैसे हम गए हैं फ्रॉक पहनी हुई है, छोटे थे बच्चे, तो बस कहते थे कि आपकी बेटी आपके साथ में, इसको डांस करने के लिए खड़ा कीजिए, तो डांस भी करते थे, पैरों में घुंघरू बांधा और डांस शुरू कर दिया। तो ऐसी हमारी लाइफ बचपन की बीती है कि पापा ने हमें हर कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाते हुए हमें आगे रखा हर चीज में कि आपको सब कुछ करना है, तो सिंगिंग भी उनसे, उन्हीं की देन है।
0: बहुत सुंदर, सच में माँ बाप से बहुत कुछ मिलता है बच्चों को, और ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं, जैसे संगीत का आपका रिश्ता है वो जीवन भर अब साथ है आपके।
1: बिल्कुल दीदी, गजल लिखते थे पापा, बहुत अच्छे गाते भी थे, और जैसे हमें प्रैक्टिस भी कराते थे ना, तो जब तक हम बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाते थे ना सिंगिंग में, तो वो तब तक हमें खड़ा रखते थे, कहते भाई पहले प्रैक्टिस अच्छे से करो, मतलब बहुत मेहनत कराई है पापा ने हमारी, तो शायद आज हम सफल भी हो पाए उस चीज को हम देखते हैं
0: जी। वो बहुत बड़ा कारण है जी, उन्होंने मेहनत करना सिखाया, और ये सब पेरेंट्स जो सिखाते हैं वो सीख हमारे साथ रह ही जाती है। उस वक्त कभी कभी लगता है कि अरे इतनी डांट पड़ रही है, अरे इतने स्ट्रिक्ट
1: है, लेकिन आज समझ में आता है कि हमारे फायदे के लिए थी, बड़े होकर समझ में आता है, बचपन में थोड़ा डरते भी थे पापा से ना, लेकिन अब लगता है कि हाँ हमारे फायदे के लिए किया जो भी उन्होंने किया, आज हम सफल हो पाए,
0: बाद में उनकी कीमत समझ में आती है।
1: लेकिन आज वो लोग खुश भी होते हैं हमारे लिए, पेरेंट्स हमारे खुश भी होते हैं, अब देखते हैं ना कि हम प्रोग्राम देते हैं सिंगिंग करें तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है,
0: कितनी खुशी मिलती है, क्या बात
1: है।
0: तो चलिए एक और गीत की ओर आगे बढ़ते हैं अनुराधा जी। कोई ऐसा गीत जो आपके, अपने पिता को भी चाहे तो आप डेडिकेट करना चाहें, हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें आज?
1: ये अपने प्यारे श्रोताओं के लिए मैं सॉन्ग सुना रही हूँ, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत ही सुंदर गीत है, और क्या लिखा है, क्या अल्फाज हैं इसके। तो चलिए इसको संगीतबद्ध करते हैं और सुनते हैं आज अनुराधा जी की आवाज में ये प्यारा सा नगमा, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये गीत जब हम सुन रहे थे, आपको कोई ना कोई याद तो आ रहा होगा। हो सकता है वो आपके परिवार का कोई हो सकता है वो ईश्वर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूर कोई याद आया ही होगा ये गीत सुना।
1: सच जब बोलूं तो मैं परमात्मा ही मुझे याद आते हैं जब मैं कोई भी गीत गाती हूँ, तो वो मेरे सामने नजर आते हैं मेरे को, और लगता है कि हाँ उन्होंने जीवन में सच में हमारे रंग भरे हैं, जो हम हमेशा ही खुश भी रहते हैं तो सब उन्हीं की देन है। जब हमें खुशी भी मिली है या जो भी कुछ हमें मिलता है लाइफ में अपनी, वो सब परमात्मा की ही देन है।
0: परमात्मा की देन है, बिल्कुल सच में। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, कितना ये सत्य है विचार करें तो। और इतना कुछ हमें मिला है परमात्मा से, प्रकृति से, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ये गीत लिखा भी बड़ा खूबसूरत हुआ है,
1: वर्डिंग
0: बहुत बहुत ही सुंदर है। अनुराधा जी, गाना भी आपने बड़ा ही अच्छा गाया, आपके फेवरेट सिंगर कौन है, मैं ये भी जरूर जानना चाहूँगी।
1: वैसे अलका याग्निक जी को मैं बहुत सुनती हूँ, और मतलब उन्हीं के थोड़ा सा कोशिश भी करती हूँ उनके जैसा गाने की, मैं गा तो नहीं पाती उनके जैसा, लेकिन वो मेरी फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं बहुत।
0: हाँ, बहुत बहुत सुंदर आवाज है उनकी, और मुझे लगता है हर तरह के गानों में जैसे वो फिट हो जाती है उनकी ना आवाज, इतनी स्वीट है। जी जी जी,
1: मतलब सिंगर तो सभी अच्छे हैं, लता दीदी बहुत अच्छे सिंगर थे।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, लेजेंड्स हैं वो,
1: ही नहीं है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन फिर भी हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा भी हम उनको फॉलो कर पाए अपनी लाइफ में।
0: बिल्कुल सही बात है, और सच में ये लोग बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आज भी उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने शुरू में नहीं मेहनत की, आज भी करते हैं, रियाज करते हैं बकायदा। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ उस बारे में भी बताइए।
1: दीदी, मेरी प्रैक्टिस का ये रहता है कि जब भी मैं किचन में वर्क कर रही हूँ, या फिर मैं फ्री हूँ, या फिर मैं मतलब वॉकिंग के लिए जा रही हूँ कहीं भी, तो भी मेरे को सिंगिंग करने की हैबिट है।
0: अच्छा।
1: डेली सिंगिंग करने की मेरे को रहता है कि मैं करनी है, सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है, और सुबह का रियाज तो जरूरी होता है इसमें।
0: अच्छा, कैसे कैसे रियाज करते हैं आप?
1: जैसे सा का रियाज करना होता है इसमें,
0: अच्छा,
1: एक ओम का। अगर आप ओम का डेली रियाज करेंगे तो फिर वो अच्छा रहता है सिंगिंग के लिए, बहुत बेस्ट रहता है आपकी, मतलब थोड़ा सा ना, जैसे आप सिंगिंग करते हैं तो वो सांस किसी किसी का टूटता है, तो वो चीज खत्म हो जाती है इससे, मतलब एंड हो जाता है उसका। आप ओम का डेली रियाज करेंगे तो बहुत परफेक्शन आता है सिंगिंग में।
0: अच्छा,
1: और सा का रियाज मेन है।
0: अच्छा, तो जैसा आपने कहा कि वो मतलब सांस जो है उस पे पकड़ आ जाती है, फिर उस अभ्यास से, रियाज से।
1: लंबा हमें कोई भी आलाप लेना तो वो ले सकते हैं जिसे, अगर हम ओम का डेली करते हैं जाप तो।
0: पर निरंतरता जरूरी,
1: निरंतरता जरूरी है हर चीज में। जितना हम कहते हैं दीदी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये जो भी कहावतें हैं सब कुछ किसी बेस पे ही आधारित होती हैं। तो प्रैक्टिस हम जब करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, हमें सक्सेस जरूर होंगे हम, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें डेली रूटीन में उसको फॉलो भी करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: और कुछ जैसे खाने की चीजों पे बहुत परहेज करना पड़ता है।
0: अच्छा, क्या परहेज करते हैं?
1: जैसे कि ठंडा पानी नहीं आपको पीना है, और आपको आइसक्रीम भी अवॉइड करनी पड़ेगी, अचार आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सिंगिंग करनी है तो, वरना सब कुछ खाएंगे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे आप सिंगिंग।
0: हाँ, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
1: सोचना पड़ता है, लस्सी नहीं पीनी है, मतलब हमें पता होता है जब प्रोग्राम देना है तो कुछ भी ऐसा नहीं लेना जो हमें नुकसान देगा, मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तभी हम कर पाते हैं। अगर कुछ भी ऐसा कुछ ले लिया तो फिर वो सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है,
0: डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, गला साथ नहीं देगा तो फिर गाना कितना भी अच्छा आता हो उसको गा नहीं पाएंगे उस वक्त।
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का मेन, इसमें सिंगिंग में अगर आपको कैरियर बनाना है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें ये।
0: जी अनुराधा जी, गाने जो बनते हैं बहुत अलग अलग विषयों पर भी बनते हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो रेडियो मधुबन पर भी, जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है जिसको हम नशा मुक्ति कह सकते हैं, कि नशे की चपेट में एक बार इंसान आ गया तो उसका जीवन, उसके ना सपने रहते हैं, ना रिश्ते रहते हैं, ना उसका स्वास्थ्य रहता है, कुछ भी नहीं बचता जैसे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं?
1: देखिए, जिन लोगों के घर पे इस तरह की स्थिति होती है, जो लोग नशा करते हैं, उनकी फैमिली का कुछ भी फ्यूचर नहीं होता है, बच्चों की कोई लाइफ नहीं होती है, सब लोग परेशान होते हैं, वाइफ भी परेशान होती है, खुद जिसको नशे की लत लग जाती है ना वो भी परेशान रहता है, वो चाहता भी है छोड़ना कि नहीं, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो इतना गिर जाता है उसके चारों साइड से कि वो छोड़ना भी चाहे तो अभी छोड़ नहीं पाता है। एक तरह से बच्चे भी परेशान हैं, परिवार पूरा परेशान ही रहता है, हर कोई ये चाहता है कि किस तरह छोड़े, पुरानी तरह से भाई ठीक होके आए वापस, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, सभी का लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है
0: जी. यहाँ भी मुझे लगता है रेडियो मधुबन पे भी हमने जो डॉक्टर से बात की उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये भी एक बीमारी है, आप उनसे नफरत ना करें जो नशा करते हैं, उनको बार बार कर्स ना करें, गलत शब्द ना बोलें उन पे, उनको मदद करने की अगर हमें कोशिश करनी है तो हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि जैसे बीमार व्यक्ति से बात करते हैं वैसे ये भी बीमारी है तो वो उसको ठीक करना होगा. ये उन्होंने समझाया था तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, ये अच्छी बात लगी.
1: उनको जितना हम प्यार से ट्रीट करेंगे ना, उनको बिल्कुल उनको फील नहीं होने देंगे कि भाई वो गलत है या वो गलत कर रहे हैं, तो शायद वो चेंज हो जाए और छोड़ भी पाए. अगर उनको हम प्यार से उनकी हेल्प करेंगे, उनको समझाएंगे, तो मे बी वो छोड़ दें. मतलब टाइम लगेगा पर समझेंगे,
0: पर समझेंगे,
1: क्योंकि प्यार से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप डांट के वो काम कराएंगे तो शायद वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे. तो ये है,
0: और हमारा पर्पस तो ये है कि वो छोड़ दें, इस लत से बाहर आ जाएं, निकल जाएं, तो उसके लिए कुछ अलग तरह से प्रयास करना होगा. गीत संगीत भी बड़ा सुंदर एक साधन है इस प्रयास का. क्या कोई गीत है आपके खजाने में?
1: हाँ, इससे दीदी मैंने एक सॉन्ग लिखा है नशा मुक्ति पे, तो वो मैं सभी अपने प्रिय श्रोताओं को सुनाती हूँ, आप भी सुनिए.
0: जरूर,
1: प्यारा सॉन्ग है वो.
0: बिल्कुल.

आज कसम ये खानी है। देखूंगी मैं जब जब भी नशा करते हुए लोगों को, रोकूंगी उन्हें समझाऊंगी नष्ट न कर।

जब तक जीवन है ये मेरा, नशा नहीं मुझे करना है, आज कसम ये खानी है। कैंसर की तरह फैल रहा है नशा।

0: है। जब तक जीवन है ये मेरा, नशा नहीं मुझे करना है, आज कसम ये खानी है।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर। मतलब आपने एक एक शब्द जो कहा और जैसे उसको गाया, वो सच में ये महसूस होता है कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है, अगर वो ये फील कर रहा है, तो सच में आज वो कसम खा ही ले, आज वो ये डिसाइड कर ही ले कि नहीं करना है, क्योंकि
0: ये वास्तव में
1: कल कभी नहीं आता है।
0: हाँ जी दीदी, मैं चाहती हूँ कि जो भी इस गीत को सुने ना, वो कभी नशे की ओर जाए ही नहीं। इसी भावना, शुभ भावना के साथ में मैंने ये सॉन्ग लिखा है कि जो भी सुने ना, वो तो नशा कभी करे ही नहीं और नशे की ओर जाए भी नहीं, और सभी सुने इस सॉन्ग को ना, और जो जिनको जानते भी ना, कोई नशा करता भी है, उसको भी सुनाए, तो शायद वो बच जाए उस चीज से ना।
1: अनुराधा जी, की क्यों लिखा था आपने, मतलब क्या प्रेरणा थी इसके पीछे?
0: हाँ जी दीदी, मतलब मैं देखती थी ना छोटे छोटे बच्चों को भी नशा करते हुए, तो मैं सोचती थी कि इसलिए मैं गीत लिखूंगी बच्चों के लिए भी, या समाज को एक मतलब मैसेज देने के हिसाब से मैंने ये सॉन्ग लिखा था। ये एक अच्छा मैसेज समाज के लिए जाएगा, शायद कोई जो नशा करता भी होगा उसने सुन भी लिया, शायद वो बच जाए इससे, मतलब छोड़ दे नशा, और शायद उसको याद आ जाए कि हाँ मैं परमात्मा, मतलब मैं भारत का बच्चा हूँ, मुझे देश के लिए कुछ करना है, नशे की ओर जाके अपना जीवन को मुझे ख़राब नहीं करना है, मेरा परिवार भी बर्बाद होता है उससे, मतलब फैमिली मेरी सारी परेशान होती है, तो जो मैं किसी को दुख देता हूँ उससे मैं भी दुखी हूँ, दूसरा भी, सामने वाला भी दुखी है। तो इस सबसे ये सब कुछ देख के ना मैं देखती थी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मतलब एक साइड में कोने में खड़े होकर नशा करते हैं, तो दुख होता था देख के ना, तो सोचा था कि एक मैसेज समाज को देना है, एक सॉन्ग के जरिए ही मैं दे सकती थी, तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग लिखा था।
1: बिल्कुल आपने सही कहा अनुराधा जी, और हम यहाँ भी देखते हैं, और ये भी पता चलता है बच्चे नशा करना सीखते कहाँ से, वो जब अपने माँ बाप को देखते हैं करते हुए, या उनके माँ बाप कभी कभी उनसे ना, उनको लगता है छोटे ऐसे कुछ मंगा लो सामान कि तंबाकू ले आ, ये ले आ, तो वो वहाँ से उनकी क्यूरियोसिटी जग जाती है, और जब उन्हें लगता है कि भले उनके माता पिता कहते हैं नहीं करो, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ठीक ही होगा।
0: घर में अगर बड़े कर रहे हैं तो बच्चे तो नेचुरल करेंगे।
1: बिल्कुल, तो अगर बच्चों को आपको नहीं सिखाना है तो आपको अपना नशा बंद करना होगा।
0: हाँ जी दीदी, अब नशा तो हर तरह का होता है, देखिए फोन का भी एडिक्शन ही है एक तरीके से ना।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम पेरेंट्स ही फोन यूज कर रहे हैं तो हम मतलब बच्चे फिर कैसे नहीं करेंगे, आप बताइए ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फोन को यूज नहीं करें, तो हमें सबसे पहले बंद करना पड़ेगा फोन को यूज करना। एडिक्शन तो हर मतलब बहुत कुछ है, नशा तो बहुत तरह का है।
1: मेरे सही बात है, मुझे तो एक बात याद आ गई, एक बच्चे ने अपनी टीचर को पूछा, मैम आपने सिखाया था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा सच बोलना चाहिए, तो बोलते हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, सच बोलना चाहिए।

0: तो उनको याद तो बोला कि नहीं मैम, कल तो आप ना छुट्टी में मुझे आपने ली छुट्टी ली थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल तो मैंने आपको मॉल के पास देखा था, तो आपने तो झूठ बोला। और फिर आप बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए,
1: जी
0: तो वो टीचर भी रुक गई सोच के कि अरे ये अब इसको कैसे समझाऊं।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जो कर्म में नहीं आता वो बात फिर
1: बिल्कुल,
0: है ना, विश्वास भी नहीं
1: बच्चे
0: करता
1: ऑब्जर्व
0: कोई
1: करते
0: उस
1: हैं
0: पे।
1: सब कुछ, बोलते कम है बच्चे लेकिन ऑब्जर्व सब कुछ करते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे हमें देख रहे हैं, तो हमें
0: देख
1: जो हम
0: रहे
1: जो करेंगे
0: हैं,
1: वही बच्चे करेंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो करवाना चाहते हैं वो पहले
1: वो
0: खुद
1: हमें
0: करना
1: करना
0: होगा
1: पड़ेगा। बिल्कुल जी,
0: सच में। अच्छा अनुराधा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं संगीत में, आपने बताया आपको पसंद कौन है, आपने इंस्पिरेशंस के बारे में भी बात किया, और आपके थोड़ा सा और बात कहते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या है, मतलब आगे अपने जीवन के लिए आपने क्या सोचा है, क्या आपने संकल्प किया है, कुछ इस बारे में बताएं।
1: मेरा तो एम यही है कि मैं, वैसे तो मेरे को सॉन्ग लिखने का शौक बहुत ज़्यादा है, तो यही है कि हर किसी भी विषय पे मुझे सॉन्ग लिखना ही है, देश के लिए जहाँ भी ज़रूरी है, वो कोई भी मतलब किसी भी तरह का सॉन्ग है, चाहे आप नशा मुक्ति के लिए कहिए या फिर कोई देश प्रेम का सॉन्ग कहिए या फिर परमात्मा की याद का सॉन्ग कहिए, सॉन्ग लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो परमात्मा की याद में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कुछ भी सॉन्ग परमात्मा के लिए लिखना या उनको फीलिंग में ला के लिखना, और लोगों का यही है कि सबका सबकी सेवा करना, किसी भी तरह से सेवा करना मेरा भाव, सेवा भाव मेरा रहता है हमेशा ही, सबका साथ देना, जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ जाके उनकी सेवा भी करना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि सेवा को दूँ लोगों को अपनी, मतलब अभी मैं ठीक हूँ, कर सकती हूँ, फ्री भी हूँ, बच्चे मेरे बड़े हैं, 3 बेटे हैं मेरे, तो मेरे पास टाइम भी है, अभी पहले टाइम नहीं होता था, लेकिन अभी मैं सेवा करना चाहती हूँ समाज की, सोशल वर्कर की तरह,
0: क्या बात है,
1: तो कर भी रही हूँ जितना मुझसे हो पाता है, तो आगे भी करूंगी।
0: ये बहुत सुंदर लक्ष्य है आपने। देखिए कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा का लक्ष्य रखा है, आप कर
1: बिल्कुल
0: भी रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: और भी करना चाहते हैं आप, तो बहुत वंडरफुल लक्ष्य है
1: थैंक यू
0: आपका,
1: जी,
0: एंड हम जरूर ये विश
1: परमात्मा
0: करेंगे
1: मेरा
0: कि आप
1: साथ दे
0: सफल
1: इसमें,
0: हों
1: तो मैं
0: इसमें।
1: जरूर अच्छे से करूंगी, जो भी मुझसे हो पाएगा समाज के लिए मैं जरूर करूंगी।
0: बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है अनुराधा जी, कहाँ ज़रूरत है समाज में बदलाव की, क्या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आप भी करना चाहते हो और हमारे श्रोताओं को भी करना चाहिए।
1: सबसे पहले आज के टाइम में जो मैं देखती हूँ ना समाज में जो है, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो आजकल जो शादियाँ आप देख रहे हैं ना होती हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं, वो उनको उनको ये मतलब लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, जो आजकल फैमिली बन रही है ना, आते हैं भाई, तो उनको सोचना चाहिए कि नहीं, जैसे हमारे खुद के कोई भी मतलब लड़की शादी होकर आती है उसको सोचना चाहिए जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, ऐसे ये भी मेरे मम्मी पापा हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। आजकल यही ज़्यादा देखने में आ रहा है कि मतलब पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है, उनको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है, तो वो बहुत गलत सीन होता है, वो मैं मतलब मुझे दुख होता है बहुत देख के ना, तो मैं उन लोगों का साथ जरूर देना चाहूँगी कि जो ऐसे, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि अपने पेरेंट्स का प्यार कीजिए, उनका साथ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप नहीं समझ सकते अगर वो हमारे साथ हैं तो हम घर से बाहर कहीं भी जा सकते हैं, आप फ्री माइंड होकर जा सकते हैं कि वो घर में हैं, सब कुछ संभाल लेंगे, अगर वो नहीं होंगे ना तो आप उनकी वैल्यू तब समझेंगे, अभी आप उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं लेकिन बाद में आप उनकी वैल्यू समझेंगे, तो ऐसा देर करने से फ़ायदा नहीं है, आप अभी आपके साथ में वो है, उनकी केयर कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनका साथ रहिए, उन्हें टाइम दीजिए अपना, क्योंकि वो उनके हकदार हैं, और बदले में आपको उनसे कितना कुछ आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, तो मुझे वो सब देख के बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ ना समाज में कि पेरेंट्स की कोई वैल्यू आजकल डाउन होती जा रही है बहुत, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ऊपर होने चाहिए।
0: बिल्कुल, आप सच कह रहे हैं अनुराधा जी, और एक बार हम याद भी कर देना कि बचपन में उन्होंने हमारे लिए क्या किया है,
1: बिल्कुल
0: वो आप याद तो करिए, वो पता नहीं कौन सा हम जीवन की दौड़ में आगे निकल गए हैं कि आसपास के नज़ारे भी नहीं दिखते, होता
1: दिखते
0: है ना
1: नहीं
0: कभी
1: है,
0: कभी हम बहुत स्पीड में होते हैं तो दिखता नहीं है कि आसपास क्या है,
1: हाँ जी दीदी
0: पीछे क्या गुजर गया,
1: बिल्कुल,
0: मगर उनके बिना तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते जहाँ है।
1: और दीदी ये भी है जैसे आज वो लोग ऐसा कर रहे हैं, कल को उनके साथ भी तो होना है, कल को वो भी बड़े
0: बिल्कुल
1: होएंगे,
0: आप
1: बुजुर्ग होएंगे,
0: बिल्कुल
1: तो वो कैसे सोचेंगे कि हम जो आज वो बच्चे देख रहे हैं वही उनके साथ में होने वाला है, तो उस चीज को अगर आज समझते हैं तो आज समझ जाएंगे, वरना पछताएंगे बाद में, फिर कहते हैं ना आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो
0: बिल्कुल
1: वो
0: सच
1: वाली फिर
0: कहा,
1: कहावत आ जाती है उसमें, तो संभलना अभी का टाइम है, मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स की सब लोग केयर कीजिए, बहुत परमात्मा का पता सर पे हाथ समझिए कि वो आपके साथ हैं, उनको साथ रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनकी केयर कीजिए, तो आपसे ज्यादा मतलब भाग्यवान कोई है ही नहीं जिनके पास पेरेंट्स हैं,
0: सही कह रहे हैं आप.
1: तो आप ध्यान रखिए उनका. मैं यही श्रोता मित्रों को अपने कहना चाहूंगी कि आप उनका ध्यान दीजिए.
0: बिल्कुल, उनके पास बैठिए, उनसे थोड़ा बातें कीजिए,
1: टाइम निकालिए उनके लिए भी.
0: सबसे ज्यादा तो यही होता है, हाँ टाइम नहीं है आज लोगों के पास, बैठ के बात करने का समय नहीं है.
1: तरसते हैं वो लोग बुजुर्ग जो होते हैं ना घर में कि हमारे पास थोड़ी देर बच्चा बैठे बात करे हमसे. वो सिर्फ इसी में खुश है कि पापा आप कैसे हो, मम्मी आप कैसे हो, इतना सुन के वो खुश हो जाते हैं. उन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए.
0: लेकिन थोड़ा वक्त जरूर दीजिए उनके पास, जाके बैठिए. नहीं समझ में आ रहा आपको कुछ भी, नहीं तब भी बस बैठिए उनके पास जाके, है ना, उनसे उनका हालचाल पूछिए, कुछ पुरानी बातें करिए, कुछ नया आप क्या करने वाले हैं वो शेयर कीजिए. उनको कितनी खुशी होगी कि आप उनसे अपना बांट रहे हैं अपने थॉट्स को. कितनी ज़रूरी चीज़ है और हम रियलाइज ही नहीं करते.
1: हाँ जी, बाद में पछतावा होता है कि शायद हम समय पहले रहते हुए हम जाग जाते तो शायद सही रहता, लेकिन तब देर हो जाती है, तब कोई फायदा नहीं है उसका. आज समझ जाए तो अच्छा है, वो भी पेरेंट्स भी अपनी लाइफ जी लेंगे और आप लोगों को भी उनके मतलब साथ हमेशा रहेगा, प्यार भी बना रहेगा.
0: बिल्कुल, और माता पिता की दुआओं से ना बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है.
1: वो लोग तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब वो बच्चे भले ही उनको कुछ भी बोल दे कि वो तो आशीर्वाद ही देते रहते हैं कि भाई तुम खुश रहो, तुम सुखी रहो. तो ये है कि उनका साथ बहुत जरूरी है,
0: बहुत बहुत जरूरी है. सच में माता पिता जितना प्यार कौन कर सकता है. तो ज़रूर आज से ही मैं तो कहूँगी दोस्तों, कल का भी इंतज़ार मत कीजिए, उनके साथ वक्त ज़रूर गुजारिए. उनको थोड़ा बाहर भी लेके जाइए, उनके साथ वॉक करिए, कुछ करिए उनके लिए ज़रूर.
1: आप ले जाइए आउटिंग कराइए
0: उनको, आपका जीवन और बेटर हो जाएगा, इसकी तो गारंटी है. तो सच में माता पिता का ये खूबसूरत रिश्ता जो जैसा आपने शुरू में कहा था, परमात्मा के साथ भी आपने भाते हैं, है ना, वो भी पिता है.
1: बिल्कुल, प्यार ऐसे ही करता है मतलब बच्चों को ना, वो हम परमात्मा को हम गुस्सा भी कर देते हैं आपने ऐसा किया, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा ही रहता है. वो तो हमें बराबर सेम उसी नजर से देखते रहते हैं, हम ही चेंज होते रहते हैं. कभी अच्छा किया तो ठीक है आपने अच्छा किया, कुछ खराब किया तो आपकी वजह से बाबा खराब हो गया, या परमात्मा आपने तो ऐसा हमारे साथ में ऐसा कर दिया, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कर तो हम ही रहे हैं ना. हम तो दोष भगवान को देते हैं, लेकिन कर तो हम सब हमारे कर्मों का फल है जो भी हम कर रहे हैं, जो हम पा रहे हैं. हम परमात्मा को दोष तो फालतू में देते हैं, मतलब उनका कोई वो नहीं है उसमें.
0: सही बात है, परमात्मा के पास हमारे हमें देने के लिए प्यार ही प्यार है,
1: प्यार है, असीम प्यार है. कहते हैं परमात्मा आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, वो तो हमें देता ही रहता है, हमें लेने आना चाहिए उनसे बस ये.
0: तो कहीं अगर दोस्तों आपको लग रहा है ना प्यार की कमी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है मनुदास है या कुछ खाली खाली सा है, कोई भी आपके जिंदगी में समस्या आपको लग रही है, तो समझ दीजिए प्यार अवेलेबल है आपके लिए, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ना है. और अनुराधा जी, जाते जाते बहुत सुंदर ये सफ़र रहा आज आपके साथ, बड़ा मज़ा आया बातें करके, ये संगीत सुन के. जाते जाते आप हमारी श्रोताओं को कौन सा गीत आज सुनाएंगे?
1: परमात्मा के लिए बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, तो यही मैं आपको सुनाऊंगी और श्रोता मित्र बहुत प्यार से सुनेंगे मेरे को और हमेशा मिलेंगे मेरे से. हम आगे भी आपसे मिलने के लिए मैं आऊंगी, तो बड़े ध्यान से आप इसको बिल्कुल प्रभु में ना मगन हो के इस सॉन्ग को आप सुनिए, तो आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी. तो मैं शुरू करती हूँ अपना सॉन्ग ये.
0: जरूर.

0: ऐसे गीत जब सुनते हैं तो उसके बाद लगता है कुछ कहा ना जाए, बस उनकी जो यादें हैं, वो जो शब्द हैं, वो जो संगीत है, वो स्वीटनेस है, वो घुली रहे हवाओं में, वो घुली रहे हमारे मन में और हम उसी में खो जाएं। तो थैंक यू सो मच अनुराधा जी का, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत मधुर यात्रा पर हमें आप लेकर गए और हम यही विश करते हैं आपका जो समाज सेवा का लक्ष्य है वो भी पूर्ण हो, साथ साथ ये संगीत का सिलसिला भी हमेशा जारी रहे।
1: थैंक यू दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और श्रोता मित्रों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमेशा प्यार से मुझे सुनते भी हैं श्रोता मित्र, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर मिलेंगे हम आपसे, जल्दी ही मिलेंगे शायद,
0: बिल्कुल
1: है ना। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप इतने प्यार से मुझे बुलाते हो और बहुत ही अच्छा लगा आज,
0: हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। लेकिन वक्त इशारा कर रहा है कि भाई समय हो चुका है तो इजाजत लेनी होगी अपने दोस्तों से, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मधुबन अनप्लग्ड पर फिर से हाजिर होंगे कुछ नए गीतों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों देरी मत करिए, हमें मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

के हाथी कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

0: जी
1: शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष वेस्ट बंगाल से खास सुभोजित दासगुप्ता हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सिंगर हैं और बहुत समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लासिकल सिंगिंग, और आज हम आपसे कुछ खास हिंदी गीतों का आनंद लेंगे, और मैं चाहूंगा कि कुछ बातें और कुछ गीतों का सुंदर अनुभव हम लोग आज करने वाले हैं इस म्यूजिकल जर्नी में। आपकी जो संगीत यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, वो सारी बातें हम चाहेंगे आपसे सुनना। तो बहुत बहुत स्वागत है सुभोजित जी, कैसे हैं? नमस्ते।
2: हाँ नमस्ते, मैंने आज इस प्लेटफॉर्म पर आके परफॉर्म करने का मौका मिला, इसीलिए मैंने बहुत ही खुश हुई हूँ, और आप सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आज मैं जो प्लान करके आया कि कुछ हमारे इंडियन फिल्म में म्यूजिक में जो कुछ कुछ कलाकार है, श्री मन्ना दे, हेमंत कुमार जी, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, सबका पॉपुलर गाना मैंने सुनाने का कोशिश करूंगा आज, ये मेरा इच्छा है आज का।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लगेगा आपको सुनकर। और शुरुआत करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी संगीत यात्रा कैसी शुरू, म्यूजिक में कोई आपके परिवार में थे या फिर आपको खुद को रुचि हुआ तो आप इसमें आए?
2: हाँ, मैंने एक म्यूजिकल फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, मेरा ग्रैंडमदर और उसके साथ मेरा पिताजी माताजी मेरा इंस्पिरेशन है पहला दिन से आज तक, और उसके बाद आफ्टर कॉम्पिटिशन माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैंने यूनिवर्सिटी पर जाके वहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया वोकल म्यूजिक में, और उस समय गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अतुल प्रसादी में, ये बंगाली संगीत है, अतुल प्रसादी, उसका स्कॉलरशिप मिला था।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर।
2: हाँ, उसके साथ रेडियो ऑडिशन देके वहाँ पर क्वालिफाई होने के बाद दूरदर्शन और वैरायटीज बंगाली चैनल्स पर भी मैंने परफॉर्म किया, और उसको सीखना चल रहा है, बहुत सारे एमिनेंट गुरुज के पास मेरा तालीम, वो क्लासिकल म्यूजिक है, उसको साथ सेमी क्लासिक, रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, बांग्ला, आधुनिक वैरायटी सॉन्ग्स मैंने सीखने का कोशिश किया, ये मेरा जर्नी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुभोजित जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपके घर के अंदर म्यूजिकल बैकग्राउंड रहा जिसको आपने जाना समझा, और उसके वजह से आप म्यूजिक में ही कुछ करना चाहते थे, तो आप सरकार की तरफ से आपको स्कॉलरशिप भी मिला आर्ट एंड कल्चर के यहाँ से। तो आइए, मैं चाहूंगा कि शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा सा गीत से शुरू करते हैं संगीत यात्रा को, और मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा एक गीत हमें सुनाए।
2: तो मैंने रिस्पेक्टेड हेमंत कुमार जी का एक गाना सुनाना चाहता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वो जी, बहुत ही अच्छा गीत हेमंत दा का सुनाया। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक मित्र अगर देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमें कमेंट सेशन में अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि आपको कौन सा गीत अगर सुनना है उसका भी फरमाइश कर सकते हैं पुराने गीतों में से। तो आइए सुबोजित जी, जैसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखते वक्त हमारे यूथ अगर नया सीखना चाहता है तो उसकी क्या रियाज वगैरह प्रैक्टिस आपने कैसे किया, और फिर कैसे आपको पता चला कि हाँ आज मैं अच्छा गा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस कब बढ़ा आपका, कितने टाइम के बाद बढ़ा, वो थोड़ा सा बताएं।
1: देखिए, मैंने जब छोटा था तो बचपन से ही मेरा पिताजी और माता जी दोनों ही मुझे ये बात, इंक्लूडिंग माय ग्रैंड मदर, इन्होंने ही बताया कि क्लासिक सीखना बहुत जरूरी है, भविष्य में कोई भी सब्जेक्ट आप गा सकते हैं, है वो लाइट म्यूजिक हो, सेमी क्लासिकल हो, आदर्श कोई प्रोविंस का संगीत हो, सब कुछ भी, लेकिन पहले क्लासिकल म्यूजिक सीखना, वॉइस को प्रिपेयर करने बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे छोटा बचपन से ही मेरा क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू हुआ। उस समय हमारे पास संगीत भी सरोजिनी होता है, वो मैंने किया। तो उस समय वैरायटी रागस यमन हो, रेहाग हो, काम खम्बज हो, ऐसा ऐसा काफी हो, वैरायटी भैरव, ऐसा वैरायटी राग मैंने सीखा। तो उसको साथ चलते चलते मैंने जब रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पर पढ़ाई शुरू किया, उस समय भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही मेरा क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट था। उसको साथ भी वैरायटी जो ठूम भी है, भजन है, सब कुछ भी मुझे सीखना पड़ा था, और बंगाली सॉन्ग्स तो है। तो ये भी मेरा भी मैंने सहमत हो कि क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी एसेंशियल, और आने वाला दिन वो अदर्स कोई गान गाए, लाइट म्यूजिक गाए, तो अभी उसको क्लासिकल म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। गाना सुनना, हमारा जो इंडियन सॉन्ग हो, इंडियन म्यूजिक में जो इमिडियंट म्यूजिकोलॉजिस्ट है, आर्टिस्ट है, सबका गाना सुनना, हर प्रोविंस में अलग अलग सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग है, हमारा इंडियन बहुत ही रिच है ना, हर प्रोविंस में अलग अलग संगीत होता है, हर प्रोविंस में बहुत बहुत आर्टिस्ट रहते हैं।
0: बिल्कुल सुबह जी जी, बहुत ही आर्टिस्ट होते हैं और अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, उनसे सीखना समझना, और बचपन से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अभी से आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिलता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, और जितना गुरुओं से आप सीखेंगे उतना अच्छा आपको जो है आइडिया आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि एक और खूबसूरत गीत आप सुनाइए जी।
1: अच्छा, तो मैंने इस पर रिस्पेक्टेड मोहम्मद रफी साहब का एक गाना सुनाना चाहता हूँ।

0: वाह, बहुत सुंदर सुबह जी। बहुत ही प्यारा सा मोहम्मद रफी साहब का गीत आपने सुना है। तो आइए, मैं चाहूंगा कि एक जैसे कि हिंदी गाने और फिर आपके लोकल लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने में आपको कैसे टाइम लगता था, क्या हिंदी प्रैक्टिस करने में आपको?
1: मैंने जब छोटे समय से ये गाना सीखा तो ऐसे क्लासिकल म्यूजिक सीखा, मैंने बार बार ही बोल रहा हूँ कि संगीत सागर है, ये सीखने का कोई अंत नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की और उस समय से ख्याल का साथ भजन आदर्श गाना मैंने सीखने का कोशिश किया, और इसीलिए हिंदी मैंने कोशिश करता हूँ कि इतना अच्छे से गाया जाए, आई मीन परफेक्शन इन प्रोनाउंसिएशन, एक इस बात पर ध्यान दिया जाए, ये ध्यान रख के मैंने गाने का कोशिश करता हूँ। तो बताइए आप क्या गाओ,
0: जी
1: आपको
0: जी
1: कुछ पूछना है तो भी पूछ सकता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं।
0: नहीं गाएं और सुनाएं आप हमें, अच्छा लगेगा ना, पसंदीदा गाने सुनाएं हिंदी वाले, अच्छा लगेगा।
1: अच्छा, तो इस बार मैंने रेस्पेक्टेड हेमंत कुमार का एक गाना मैंने सुना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: अच्छा गीत, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया सुबह जी, बड़ा अच्छा लगा हेमंता का। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग राग की बात करते हैं, है ना, रागों का जो प्रैक्टिस है वो आपने कैसे किया या कितना टाइम लगा है, थोड़ा सा रागों के बारे में बताइए। और कौन से गीत, जैसे अभी ये गीत गाया, ये कौन से राग में बना है, या अभी नया सुनाओ आप उस राग के बारे में बता के उसको राग को गाते हुए फिर गाने को प्रेजेंट कीजिए, तो थोड़ा सा हमारे यूथ जो म्यूजिक सीख रहे हैं उनको आइडिया आ जाए, है ना।
1: मैंने शाम का समय में एक दादरा, आई मीन ठुमरी नहीं है, दादरा, ये मैंने थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। ये वेरी भी ठुमरी है दादरा, ये मैंने सुना।

0: वाह जी बताइए।
1: ये भैरवी ठुमरी है, ये हमारी सुबह का राग है भैरवी। लेकिन मेरा आज शक हुआ कि आज इस गाना सुनने के लिए, ये मेरा गुरु रेस्पेक्टेड अमित दास से भी मैंने बहुत सारे सालों से मैंने ये दादरा सीख के गाया, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मौका ज्यादा नहीं मिलता है गाना सुनाने के लिए, रोज रोज मौका नहीं मिलने के
0: सुनाने। शुभजीत बहुत ही अच्छा एक राग आपने सुनाया और मुझे लगता है कि ये सुबह का राग है जो आपने अभी सुनाया। और इसके साथ में जैसे जो आपका पसंदीदा कोई राग है क्या, ऐसा कोई राग जो आपको बहुत खुशी देता है जिसे गाकर आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और उससे रिलेटेड कोई एक फिल्मी गाना हो वो जरूर सुनाइए तो हमें पता चले कि ये राग किस तरह से गाया।
1: अच्छा अच्छा, एक मुकेश जी का मैंने गाना सुनाना चाहता हूँ, ये फिल्मों की गीत है। राग के बारे में जो पूछा मैंने देख रहा हूँ।

0: ये मुकेश जी का है, रिस्पेक्टेड
1: जी
0: मुकेश जी
1: जी
0: का एक पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत ही पॉपुलर एवरग्रीन सॉन्ग है ये।
1: जी जी जी किस राग पे बना है, थोड़ा सा इसका डिटेल अगर बताएंगे तो और अच्छा हो जाएगा।
0: हाँ यार, मैंने पता है कि एक लाइट लाइट सॉन्ग मैंने सुन रहा हूँ, तो एक सॉन्ग आप जैसे कहा कि एक राग का के पराग
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: के उसका एक
1: हाँ
0: गाने
1: हाँ
0: का मेरे पास है, तो मैं थोड़ा सा एक फर्स्ट पैरा मैंने गाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये आयुर्वेद में आपका एक स्पेसिफिक मान्यता है, बहुत ही लोकप्रिय गाना। बंदिश है मेरा, अब जितना जानकारी है तो ये भी उस राग का एक फॉर्म है। जो मैंने बोला है भैरव, उसको राग का ये सॉन्ग है, लेकिन मेरे पास पूरा लिरिक नहीं है, इसलिए मैंने फर्स्ट पैरा मैंने गाया।
1: बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बहुत ही प्यारा सा जो अंतराल आपने सुनाया और राग भी सुनाया उसका, तो चलिए जाते जाते एक संदेश क्या देना चाहेंगे सुभजीत जी आप?
0: ये लास्ट सॉन्ग है आज का प्रोग्राम्स का।
1: जी बी बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है, तो मैंने ये कहूँ कि आज मैं यहाँ पर परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। सबसे
1: जी
0: पहले
1: जी
0: राजस्थान मेरा मनपसंद प्रदेश है, वहां पर बहुत संगीत प्रिय लोग रहते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं, मैंने बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सबको। पूरे इंडिया में भी रहते हैं लेकिन राजस्थान में भी रहते हैं, बहुत ही मेरा रिस्पेक्ट है सबके लिए। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मौका दिया मुझे गाने के लिए। तो
1: जी
0: मैं
1: जी
0: मेरा है फिर मैं यहाँ पर गाऊँ आज जो जो गाना मैंने टाइम का प्रॉब्लम्स है या नहीं गा पाया, आने वाला दिन जरूर मैं आप सबको सुनाऊँ, ये मेरा इच्छा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूर हम लोग सुनेंगे आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राजस्थान के संगीत कलाकारों को आपने याद किया, राजस्थान आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो आपका वेस्ट बंगाल भी संगीत में कम नहीं है, वो भी वहां पर भी बहुत सारे कलाकार हैं जो संगीत प्रेमी हैं, और संगीत का जो है एक खजाना वहां पर भी है, हर देश में संगीत का खजाना है, बस उसे समझना है और उसे जानना है और उसे प्रमोट करना है अपने माध्यम से। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, और आशा करूंगा आप सभी को कहीं ना कहीं आपकी जो संगीत साधना है वो भी दिखाई दे रहा है, और संगीत दोनों, मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह संगीत यात्रा में आगे बढ़े और बहुत सारे नाम पाए आप। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते खमा गणी। तो दोस्तों आज हमने सुभोजित जी को सुना, जो वेस्ट बंगाल के सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, जिन्होंने अपना बहुत सारे गानों का प्रेजेंटेशन भी दिया, अपने बारे में भी बताया, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो जरूर अपने कमेंट सेशन में जो है अपने सुभोजित जी के लिए, उनके गानों के लिए, उनके वॉइस के लिए जरूर मैसेज करें, आपको कैसा लग रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते खमा गणिता, जय हिंद जय भारत।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो अब जल्दी से चलते हैं मीना के स्कूल में। स्कूल की छुट्टी भी होने वाली है।
1: अरे वाह, मजा आया ना।
2: रानो, आज कितना मजा आया ना।
3: हाँ सुमी, मेरा तो दिल कर रहा था कि बहन जी बस कहानी सुनाती ही रहे।
0: रानो और सुमी बातें करती हुई चली जा रही थी कि वो सामने से आती बहन जी से टकरा गईं और बहन जी के हाथ से सभी कॉपी किताबें नीचे गिर गईं।
3: बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी बातों में।
4: गलती मेरी भी है रानो, मुझे भी देखकर चलना चाहिए था।
2: लाइए बहन जी, रानो और मैं ये कॉपी किताबें उठाने में आपकी मदद कर देते हैं।
4: ठीक है, आज मीना तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रही।
3: बहन जी, मीना को आज अपने पिताजी के पास खेत पे जाना था, इसलिए वो छुट्टी होते ही चली गई थी।
4: ओह
2: बहन जी, ये किताबें।
4: इन कॉपी किताबों को क्लास की अलमारी में रखाओ।
2: जी बहन जी।
0: सुमी और रानो पहुंची वापस अपनी क्लास में और उन्होंने अलमारी खोली।
2: रानो, वो देखो, अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में कोई रंग बिरंगी चीज पड़ी है। मैं अभी इसे नीचे उतारती हूँ। ये मैंने इसे बाहर खींचा, लगता है कोई बड़ा सा गत्ता है।
3: अरे अरे अरे, संभल के सुमी।
2: गिर क्या? अरे ये क्या, ये गत्ता तो नीचे गिरते ही टूट गया।
3: हाँ सुमी, देखो तो, इसके छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर कैसे बिखर गए हैं। अब हम क्या करें, बहन जी को पता लगा तो।
2: रानो, मुझे लगता है कि ये टुकड़े दोबारा से जोड़े जा सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, इस बड़े वाले गत्ते का आकार हमारे देश भारत के नक्शे जैसा है।
3: हाँ सुमी, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े इस बड़े गत्ते में वापस जुड़ेंगे कैसे?
2: रानो, एक बार मैंने गांधी जी की एक तस्वीर देखी थी, ऐसी ही गत्ते की बनी हुई, जिसके टुकड़े हम अलग करके फिर से जोड़ सकते थे।
3: अरे वाह, इसका मतलब तुम इस नक्शे के टुकड़ों को भी झट से जोड़ दोगी, है ना?
2: रानो, वो मैं।
3: क्या हुआ सुमी, अभी तुमने खुद तो कहा कि तुमने गांधी जी की तस्वीर के टुकड़ों को।
2: लेकिन रानो, ये तो भारत का नक्शा है और तुम्हें तो पता ही है कि मैं भूगोल में थोड़ी कमजोर हूँ।
3: भूगोल में तो मैं भी कमजोर हूँ सुमी। चलो हम दोनों इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करके देखते हैं।
2: ठीक है, लगता है कोई आ रहा है, अब क्या करें?
3: सुमी, हम इन गत्ते के टुकड़ों को अपने बस्ते में डाल के यहाँ से बाहर ले जाते हैं, कहीं दूर जाके इन्हें जोड़ देंगे और फिर से नक्शा बना के बहन जी के अलमारी में रख देंगे।
2: हाँ रानो, ये ठीक रहेगा।
0: रानो और सुमी नक्शे के टुकड़े और बड़े वाले गत्ते को दूर खेतों में ले गईं और उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करने लगीं।
2: ओफो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा टुकड़ा कहाँ लगाएं?
3: सुमी, अब हम क्या करें?
5: सुमी, रानो,
2: मीना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो?
5: क्या कर रही हो? क्या खेत में घास चर रही हो?
2: मिट्टू, चुप। रानो, सुमी, क्या बात है, तुम दोनों कुछ परेशान लग रही हो? मीना, आज बहन जी की अलमारी में कॉपी किताबें रखी।
0: सुमी और रानो ने मीना को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मीना बोली,
2: सुमी, रानो, मुझे भी ये भारत का नक्शा लग रहा है। याद नहीं, आज बहन जी ने कहा भी था कि वो कल हमें भूगोल का नया पाठ पढ़ाएंगी, हमारा देश भारत और उसके राज्य। अब हम क्या करें मीना, अगर हमसे ये नक्शा ठीक से नहीं जुड़ पाया तो बहन जी को बहुत बुरा लगेगा।
6: हाँ, एक काम करते हैं, सरपंच जी के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे।
5: मदद करेंगे, फिर हम नहीं डरेंगे।
0: मीना सुमी और रानो के साथ पहुंची सरपंच जी के पास और उन्हें पूरी बात बताई। सरपंच जी ने उनसे कहा,
7: मीना सुमी रानो, इन टुकड़ों को वापस जोड़ना बहुत आसान है। ये देखो, ये गुलाबी रंग वाला टुकड़ा देख रही हो ना, ये है जम्मू और कश्मीर। इस टुकड़े को मैंने यहाँ जोड़ा, सबसे ऊपर, क्योंकि जम्मू और कश्मीर होता है नक्शे में
8: सबसे ऊपर।
7: हाँ, और अब ये हरा टुकड़ा है। हाँ, ये है हिमाचल प्रदेश। इस टुकड़े को मैंने लगाया जम्मू और कश्मीर के नीचे।
3: अरे वाह, ये टुकड़ा तो इस गत्ते में बिल्कुल ठीक जाके बैठा अपनी जगह।
7: मैंने कहा था ना कि ये टुकड़े जोड़ना बहुत आसान है।
5: बहुत आसान है, चुन्नी ऐसे ही परेशान है।
0: सरपंच जी ने बड़ी सूझबूझ से गत्ते के टुकड़ों को जोड़ के फिर से भारत का नक्शा बना दिया। सुमी, रानो और मीना खुश हो गई और अगले दिन वो सबसे पहले स्कूल पहुंची और उन्होंने बहन जी की अलमारी में उस नक्शे को वापस रख दिया। और फिर थोड़ी देर बाद शुरू हुआ भूगोल का पाठ।
4: बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा देश भारत और उसके राज्य, लेकिन ये पाठ हम पढ़ेंगे एक नए तरीके से। बच्चों, ये देखो, ये है हमारे देश भारत का नक्शा और मैंने इसमें से निकाला ये गुलाबी टुकड़ा। कोई बता सकता है ये किस राज्य का टुकड़ा है?
2: जम्मू और कश्मीर।
4: शाबाश सुमी, इस गुलाबी टुकड़े पे मैंने लिखा जम्मू और कश्मीर। बच्चों, ये देखो, अब मैंने इस नक्शे में से निकाला ये हरा वाला टुकड़ा और ये है
2: हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य।
4: सुमी, रानू, तुम्हें तो भारत के हर राज्य के बारे में पता है। कहीं तुमने ये नक्शा पहले से ही तो नहीं देख लिया था?
2: आप ठीक कह रही हैं बहन जी, हमने ये नक्शा कल ही देख लिया था, लेकिन जानबूझ के नहीं, गलती से।
3: सुमी ठीक कह रही है बहन जी, कल जब हम आपकी अलमारी में कापी किताबें रखने गए तो।
0: सुमी और रानो ने बहन जी को पूरी बात बताई और फिर बहन जी बोली,
4: सुमी, रानो, मुझे इस बात की खुशी तो है ही कि तुमने मुझसे सच बोला, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि तुम्हें भूगोल के विषय में रुचि होने लगी है।
2: सच तो ये है बहन जी कि कल से पहले भूगोल में मेरी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इस गत्ते के नक्शे को देखकर मुझे भूगोल का विषय अब सबसे अच्छा लगने लगा है। जब सरपंच जी ये नक्शा जोड़ रहे थे तो मुझे बहुत मजा आया, इसलिए मुझे सब आसानी से याद आ गया।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है सुमी। बच्चों, आज से मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें हर पाठ इसी तरह नए नए तरीकों से सिखाऊं, अलग अलग सामग्री का प्रयोग करके।
5: नए तरीकों से सिखाऊं, सबकी रुचि बढ़ाऊं।
0: देखा दोस्तों, अगर क्लास में चार्ट, नक्शे, ग्लोब आदि अलग अलग तरीकों से पढ़ाई हो तो आता है ना मजा। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की एक प्यारी सी कविता।
2: टीचर जब भी चार्ट, चित्र या नक्शे से समझाते,
5: बच्चे अच्छी तरह समझते, ज्यादा रुचि दिखाते।
0: भाई वाह, मजा आ गया। क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया, अब चलना है खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ तो सुनो पहली कड़ी, जीभ नहीं है इसकी लेकिन फिर भी सब बतलाता, देश हो या हो दुनिया सबकी बातें हमें बताता।
3: जीभ नहीं है बोलता है, दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है रानो, बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी, वजन में है हल्का कागज पर असर बहुत है भारी, इसकी आदत जिसको उसको पूरी जानकारी।
4: ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है बहन जी।
1: कृष्णा यही तो मजा है पहेली बूझने में, अगर पहेली आसान हुई तो फिर मजा ही क्या।
5: क्या सकता है,
3: पूरी जानकारी देता है कागज।
6: तीसरी कड़ी भी बता ही दीजिए बहन जी।
1: ठीक है मोनू, बच्चों अब सुनो तीसरी कड़ी, उसे खबर देता ये सारी जो भी इसको पढ़ता, अलग अलग भाषाओं में ये दुनिया भर में छपता।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है अखबार।
1: हाँ मीना बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना।
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना। फिर ठीक है तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खड़ी बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: कॉमिक चीकू,
3: कपड़े सुखाने की रस्सी लगी है, मैं इस रस्सी पर चलूंगा।
2: मीकू रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करने लगा।
3: मैं गिर गया।
2: मीकू साबुन वाले पानी में गिर गया।
3: ये तो साबुन वाला पानी है।
2: उसी समय बिल्ली आई और उसने मीकू को पकड़ लिया।
4: गीला हो गया है, खाने से पहले सुखा लेना चाहिए।
2: बिल्ली ने मीकू को रस्सी से लटका दिया।
4: जब तक ना सूखे तब तक सो जाती हूँ।
2: चीकू मछली पकड़ कर आ रहा था।
5: अरे ये क्या, मीकू रस्सी में लटक रहा है। मीकू को बचाने के लिए बिल्ली को हटाना पड़ेगा।
2: थोड़ी दूरी पर वह आग जलाकर मछली को भूनने लगा।
5: मछली की खुशबू से बिल्ली जरूर इधर आएगी।
2: बिल्ली उठकर मछली ढूंढने लगी।
4: कोई मछली पका रहा है।
2: इधर चीकू ने मीकू को उतार लिया।
5: अब भाग।
2: बिल्ली वापस आ गई।
4: अरे मीकू तो भाग रहा है, मैं अभी पकड़ती हूँ।
5: बिल्ली तो मीकू को पकड़ लेगी, इस मछली के कांटे से बिल्ली को रोकूंगा।
2: चीकू ने बिल्ली को मछली के कांटों में फंसा दिया और इस तरह चीकू ने अपनी दोस्ती निभाते हुए मीकू की जान बचा ली।

Hello students, this is Sandeep Trivedi, and today I am back with another lesson, which is lesson number 11, the last lesson of the book. The name of the book is Golden Rays for class 10th for Rajasthan Board of Secondary Education, RBSE. The name of the lesson is The Betrayal of Faith. The Betrayal of Faith. तो students, इसमें आज फिर हम The Betrayal of Faith जो 11th lesson है last, उसको लेकर के आए हैं. और ये जो book है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर क्लास 10th के लिए है, और बुक का नाम है गोल्डन रेज. अब एक्टिविटी 1 में हमेशा क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एक्टिविटी 2 में वोकैबुलरी होती है, और एक्टिविटी 3 में ग्रामर होती है. तो हम इसको ग्रामर से आज शुरू करेंगे. एक्टिविटी 3 है ग्रामर, क्योंकि क्लॉजेस चल रहे हैं तो एक बार क्लॉजेस हम सोच रहे हैं कि इसको खत्म कर लें. एडवर्बियल क्लॉजेस. An adverbial clause does the work of an adverb.

जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. अटैच्ड टू द मेन क्लॉजेस इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये मेन क्लॉज के साथ जुड़े हुए होते हैं. टाइप ऑफ एडवर्बियल क्लॉजेस, अब यहां पर एक पॉइंट दिया है हमको, टाइप ऑफ एडवर्बियल क्लॉजेस. ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से टाइप है. फर्स्ट है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम. पहला पॉइंट है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम. दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कंजंक्शंस, एज सून एज, वेन एवर, वेन वेन एवर, वाइल, एज, सिंस, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, वंस. ओके, हम एक बार फिर देख लेते हैं. एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कंजंक्शंस. पहला है कंजंक्शंस एज सून एज, दूसरा है वेन, तीसरा है वेन एवर, फोर्थ है वाइल, फिफ्थ है एज, सिक्स्थ है सिंस, सेवन्थ है आफ्टर, एट्थ है बिफोर, नवा है अंटिल और दसवा है वंस. अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहां पर. आई टुक कॉफी सून आफ्टर द ऑफिस वर्क वाज फिनिश्ड. आई टुक कॉफी, जैसे ही मेरा काम हुआ, ऑफिस का काम पूरा हुआ, मैंने ऑफिस का काम पूरा करते ही कॉफी पी ली. दूसरा है एज सून एज द गेस्ट्स अराइव, जैसे ही मेहमान आए, द फंक्शंस विल स्टार्ट, जैसे ही मेहमान आते हैं कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा. व्हेन शी कम्स, जब वो आती है, आई शैल गो, मैं चला जाऊंगा. बिफोर यू बिगिन योर जर्नी, इससे पहले कि तुम अपनी यात्रा शुरू करो, लॉक योर हाउस वेल, अपना घर अच्छे से बंद कर लो. पांचवा है स्टूडेंट्स डू नॉट गो द क्लासरूम्स अंटिल द बेल गोस, जब तक घंटी बजती है स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू द क्लासरूम्स अंटिल द बेल गोस, जब तक घंटी बजती है विद्यार्थियों को कक्षा में नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अब बी है इसमें, सेकंड है एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ प्लेस. पहले थे टाइम यानी समय से संबंधित, दूसरे हैं प्लेस यानी स्थान से संबंधित. कंजंक्शन यूज टू इंट्रोड्यूस द क्लॉज आ, इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, देखिए वेयर और वेयर एवर दो होते हैं और दोनों के एग्जाम्पल भी दिए हुए. ड्रग्स आर केप्ट वेयर चिल्ड्रन डू नॉट रीच, दवाइयां वहां रखी जाती हैं जहां बच्चे नहीं जाते हैं. दूसरा आर्म्ड फोर्सेस वर डिप्लॉयड वेयर एवर द टेररिस्ट्स हाइड आउट्स वर एक्सपेक्टेड, जहां जहां भी आतंकवादी छुपे होते हैं वहां वहां आर्मी को भेजा जाता है. तीसरा है एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ मैनर, तरीका. कंजंक्शन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस दिस क्लॉज आर, इसमें कौन कौन से होते हैं, एज फिर एज इफ दो होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं. द प्लान इज टू बी इम्प्लीमेंटेड एज इट इज, जैसी की योजना बनाई गई है वैसी ही लागू भी की जानी है. नंबर दो है ही लिव्स इन अ लग्जरियस हाउस एज इफ ओन्ड बाय अ किंग, वो एक इतने आरामदायक इतने शानदार मकान में रहता है जैसे कि कोई राजा रहता है, एज इफ जैसे कि. चौथा है एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंपैरिजन, तुलना. इसमें कौन कौन से कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, देखिए एज सो एज और मोर देन, लेस देन और ग्रेटर देन. ठीक है, ये सब इसमें यूज किए जाते हैं, कई सारे हैं ये एडवर्बियल क्लॉजेस. करीब करीब ये आपके

आठ हैं। तो अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लोर टाइल्स आर एज टफ एज स्टोन। जो फर्श है उसका जो उसके जो टाइल्स हैं वो इतनी कठोर हैं कि जितना कि पत्थर होता है। एज तुलना हो गई ना। दूसरा है योर हाउस इज नॉट एज लार्ज एज माइन। तुम्हारा घर मेरे घर जितना बड़ा नहीं है। हालांकि ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से। तीसरा इंडिया इज मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान से ज्यादा शक्तिशाली है। चौथा हिज न्यू पोएम इज लेस इंटरेस्टिंग देन द ओल्ड वन। उसकी नई कविता पुरानी वाली से कुछ कम रुचिकर है। पांचवा एग्जाम्पल है द ट्रेन्स आर फास्टर देन द ओल्ड वंस। द न्यू ट्रेन्स नई रेलगाड़ियां पहले की जो रेलगाड़ियां थी उससे ज्यादा तेज है। ठीक बात है। पांचवा है एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ पर्पस और रिजल्ट। परिणाम उद्देश्य। इसमें देखिए क्या क्या आता है। लेस्ट सो दैट इन ऑर्डर और फॉर फियर दैट सच दैट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। पर्पस उद्देश्य। ही रैन फास्ट वो तेज दौड़ा लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी ट्रेन छूट जाएगी। द मिनिस्टर रेज्ड द हॉस्पिटल सो दैट ही कुड सी द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स विद हिज ओन आई। मंत्री जी हॉस्पिटल गए सभी मरीजों को देखने के लिए अपनी स्वयं की आंखों से वो उनको देख सकें। ताकि सो दैट का मतलब होता है ताकि। थर्ड है इन ऑर्डर दैट द मॉब माइट बी कंट्रोल्ड आर्म्ड फोर्सेस वर सेंट पर्पस। भीड़ को काबू में करने के लिए आर्मी को भेजा गया इन ऑर्डर। चौथा है फॉर फियर दैट फ्लड्स माइट डिसरप्ट कॉमन लाइफ अ कंट्रोल रूम वाज सेट अप। कहीं बाढ़ से आम जनता को दिक्कत ना हो इसलिए एक नियंत्रण कक्ष को बनाया गया। यह भी पर्पस है उद्देश्य। पांचवा है द बुक वाज सो बोरिंग दैट आई रिटर्न्ड इट टू द बुक सेलर। किताब इतनी अरुचिकर थी कि मैंने वापस लौटा दी। सो विदाउट आस्किंग फॉर द मनी बैक रिजल्ट। छठा है एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ रीजन कारण और कॉज। इसमें कंजंक्शन देखिए बिकॉज एज और सिंस। ही हैज बीन अरेस्टेड बिकॉज द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी। क्योंकि उसको दोषी माना गया इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है सिंस शी इज इल शी कैनॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस। जब तक वो बीमार है वो अटेंड नहीं कर सकती। क्योंकि वो बीमार है इसलिए पार्टी अटेंड मतलब कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती है। तीसरा है एज द विंटर एज बिगन पीपल विल बाय वार्म क्लोथ्स। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी तो लोगों को गर्म कपड़े खरीदने पड़ेंगे। सातवां है एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ कंडीशन और इसमें कंजंक्शन यूज होते हैं इफ अनलेस वेदर प्रोवाइडेड दैट। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आई शुड बी ऑब्लाइज्ड इफ दे कुड फिनिश दिस वर्क इन टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो समय पर काम खत्म कर लें। दूसरा है इफ यू कम अगर तुम आते हो आई शेल गो तो मैं जाऊं। तीसरा है अनलेस यू शो योर आइडेंटिटी कार्ड यू कैनॉट एंटर द स्कूल। जब तक तुम अपना परिचय पत्र नहीं दिखाओगे तब तक तुम विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। चौथा है ही कैन एंटर द ऑफिस प्रोवाइडेड दैट ही शोज हिज आइडेंटिटी कार्ड। वो अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद ही कैन एंटर द ऑफिस ऑफिस में प्रवेश कर सकता है। पांचवा है वेदर यू कम और नॉट द प्रोग्राम विल स्टार्ट। चाहे तुम आओ या ना हो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
आठवां लास्ट एडवर्बियल क्लॉजेस ऑफ कंसेशन. कंसेशन इसमें कंजंक्शन देखिए कौन से यूज होते हैं. ऑल्दो, एज, इवन, दो, व्हाइल, दो, इवन, इफ, व्हाटएवर, व्हेनेवर, हूएवर, नो मैटर, ये सब इसमें यूज होते हैं. पहला एग्जांपल है ऑल्दो ही इज वेल्दी, हालांकि वो अमीर है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है. दूसरा है वेल्दी दो ही इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी वो अमीर है लेकिन संतुष्ट नहीं है. तीसरा इवन इफ ही हैज वन द इलेक्शन ही इज नॉट रिलायबल, हालांकि वो चुनाव तो जीत गया लेकिन वो फिर भी भरोसेमंद नहीं है. शी इज नॉट लेबोरियस इवन दो शी इज इंटेलिजेंट, वो मेहनती नहीं है लेकिन वो बुद्धिमान है. और पांचवा है वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, जो भी परिणाम हो योर हार्ड वर्क विल बी अप्रिशिएटेड, उसकी तुम्हारे कठिन परिश्रम की तारीफ की जाती है, की जाएगी. वाइल आई बिलीव दैट द बुक इज डिफिकल्ट, जबकि मैं ये मानता हूं कि किताब कठिन है, इट इज फुल ऑफ एंशियंट लर्निंग, तो ये प्राचीन सीख से संबंधित है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ पर ग्रामर पोर्शन भी पूरा हुआ, एडवर्बियल क्लॉजेस. अब इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, थोड़ी थोड़ी हम कोशिश करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करें. कुछ कुछ क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में देखिए, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग व्हेन, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत ईजी है. द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द टीचर एंटर्ड द रूम द क्लास. देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए, ठीक है. पहला वाक्य है बच्चे खड़े हो गए. दूसरा है द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक कक्षा में आए. अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो बच्चे खड़े कब होंगे, जब अध्यापक कक्षा में आएंगे ना, तो पहला काम कौन सा हुआ अध्यापक के आने का, बाद दूसरा काम कौन सा हुआ बच्चे को खड़े होने का. When the teacher entered the class, the students stood up. ठीक है. दूसरा है the audience clapped, श्रोताओं ने तालियां बजाई. The chief guest finished his speech, जैसे ही अपना व्याख्यान अपना भाषण समाप्त किया मुख्य अतिथि जी ने, ऑडियंस ने, श्रोताओं ने तालियां बजाई. पहले काम क्या हुआ, भाषण समाप्त हुआ पहले, फिर तालियां बजी, बिना भाषण खत्म हुए तालियां थोड़ी बज जाएंगी. तो when the chief guest finished his speech, the audience clapped. तो जो श्रोता थे उन्होंने तालियां बजाई. तीसरा है electricity supply was stopped, बिजली की आपूर्ति रुक गई. The storm came. When the storm came, electricity supply was stopped. इसी तरह से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन. I learned flute playing. I was 15 at that time. When I was 15, at that time, I learned flute playing. मैंने बांसुरी बजाना सीखा 15 वर्ष की उम्र में. Next exercise का क्वेश्चन है लास्ट पांचवा. I reached home, the sun had set. When I reached home, the sun had set. When the sun had set, I reached home. अब है अगली एक्सरसाइज. इसमें क्या करना है, join the sentences using the words given in the brackets. अब ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपकी दूसरी एक्सरसाइज है 11th लेसन की और टोटल 10th क्वेश्चन है इसमें. और ब्रैकेट में वर्ड्स कौन कौन से दिए हैं देखते हैं. He fell asleep. He was reading. While यानी जब वो पढ़ रहा था तभी उसको नींद आ गई. He fell asleep, बीच में while लगाना है बस, while he was reading. ठीक है, बहुत इजी है. Although दूसरे में although दिया है. He is rich, he never helps the poor. Although he is rich, he never helps the poor. वो अमीर है लेकिन गरीबों की मदद नहीं करता है. दूसरे में दिया है where. The police reached where the accident had taken place there. जहां एक्सीडेंट हुआ था, जहां वहां पुलिस पहुंच गई. ये थर्ड एग्जांपल था.
फोर्थ एग्जाम्पल है आपका एज सून एज, ये भी कर लेते हैं. द फंक्शन बिगेन द गेस्ट अराइव, एज सून एज द गेस्ट अराइव द फंक्शन बिगेन, जैसे ही मेहमान आए कार्यक्रम शुरू हो गया. अब एज है नेक्स्ट में पांचवे में, ही कैन नॉट बाय अ कार, ही डज नॉट हैव मच मनी. एज ही कैन नॉट बाय अ कार, ही डज नॉट हैव मच मनी. Unless you cannot drive a vehicle, as you should have a driving license. Unless you should have a driving license, you cannot drive a vehicle. Unless अपने आप में negative शब्द है और दोनों में से एक वाक्य में negative आ रहा है cannot, तो उसको बाद में रखेंगे, positive को पहले रखेंगे, क्योंकि unless हमेशा positive में use होता है. She was ill, she could not walk. So that she was ill, so that she could not walk. She was so ill that she could not walk. ऐसे करेंगे इसको. वो इतनी बीमार है कि वो चल नहीं सकती है. आठवां है work hard you may fail, lest. Work hard lest you may fail. You may fail lest you लेस्ट वर्क हार्ड, तो ये बाद वाले हिस्से के साथ आएगा, लेस्ट यू मे फेल. नवा है ही इज अ क्रिमिनल, वन डे ही विल गो टू जेल. बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल, वन डे ही विल गो टू जेल, क्योंकि वो एक अपराधी है, वो एक दिन जेल जरूर जाएगा. एज पीपल विल बाय कूलर्स, द समर हैज सेट इन. As the summer has set in, people will buy cooler. जैसे ही गर्मी आ जाती हैं, लोग कूलर खरीद लेते हैं. Join the following sentence using the conjunction given in the brackets. Third exercise में भी ऐसा ही कुछ है. Brackets में दिए हुए हैं और total question है आपके 10. और ये last exercise है, तो कुछ questions इसके भी हम देख लेते हैं एक बार. Okay. तो More ATM booths will be opened. People need them. If more ATM booths will be opened, अधिक और ATM खोल दिए जाएंगे. If people need them, अगर लोगों को जरूरत होगी तो. दूसरा है, इसमें भी if दिया हुआ है. The wheat crop will be adversely affected. The rains fell. If the rain fails, अगर बारिश नहीं होती है, if the rain fail, the wheat crop will be adversely affected, तो जो गेहूं की फसल है बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी. Unless कर चुके हैं हम पहले ही, तो unless फिर आ गया, उसको भी कर चुके हैं हम. Provided भी हम कर चुके हैं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं. ये repeat है, इसमें if भी हम कर चुके हैं, फिर नेक्स्ट में है इफ, वो भी कर चुके हैं. 8th आ गया, अब इसमें है प्रोवाइडेड दैट, ये भी हम कर चुके हैं. 9th में फिर से क्या है देखते हैं, इफ कर चुके हैं. और लास्ट क्वेश्चन है इफ. तो ये स्टूडेंट्स जो बुक है आपकी गोल्डन रेस की, क्लास 10th की आज पूरी हुई, और अब हम देखते हैं आगे क्या करते हैं, प्लानिंग करेंगे. इसमें जो एक्टिविटी 1 और 2 थी वो हमने जानबूझ के छोड़ दी है, क्योंकि अब थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको भी करने की. और एक्टिविटी 2 तो इतनी इंपॉर्टेंट थी भी नहीं. एक्टिविटी 1 में क्वेश्चन आंसर्स होते ही हैं, तो छोटे क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं. अब आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ हमारी ओर से. इसी तरीके से आप नई नई चीज़ें सीखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, सुनते रहें, सिखाते रहें. और एजुकेशन जितना लोगों को देंगे उतनी ही बढ़ती है. तो अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग कर सकते हैं कभी भी. तो अगले साल 10th का कोर्स चेंज होने वाला है, इसलिए हमें दोबारा मेहनत तो करनी ही होगी ये वाली स्टूडेंट्स, क्योंकि NCERT का कोर्स आ रहा है राजस्थान में,
नाइन्थ और इलेवेंथ में तो आ ही गया है इस साल से, और ये सेशन लगभग हमारा ऐसे ही चलेगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: बाय बाय पंकज।
1: क्यों भाई, तू कहाँ जा रहा है?
0: भाई मैं गांव जा रहा हूँ यार।
1: और मुझे छोड़ के? मैं यहाँ किसके साथ रहूंगा? मैं तुझे कितना मिस करूंगा यार, तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा?
0: तो मैं भी करूंगा बहुत तुझे मिस, पर यार नाना से मिले मुझे 6 साल हो गए।
1: अच्छा, नाना से मिले 6 साल हो गए, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना।
0: हाँ तू भी अपना ध्यान रखना।
2: अरे पंकज तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब भी तो तुम्हारी फैमिली है ना।
1: हाँ दीदी वो तो है, लेकिन मेरे भाई की कमी शायद कोई पूरी नहीं कर सकता।
2: बिल्कुल, लेकिन सैंडी अपने नाना से मिलने जा रहा है, वो भी 6 साल बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी।
0: हाँ दीदी,
2: क्योंकि नाना नानी दादा दादी ये सब जो होते हैं, ये हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, है कि नहीं बच्चों?
3: हाँ दीदी।
2: तो चलो आज हम सब अपनी फैमिली के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है?
0: ओके।
2: ठीक है, पहले आकाश तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
4: मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, मैं, मम्मी, डैडी, दादा और दादी। पहले बुआ भी थी, लेकिन अभी उनकी डेथ हो गई है, इसीलिए वो अब हमारे साथ नहीं है।
2: और दादा दादी मम्मी पापा के बारे में हमें कुछ बताओगे? नहीं।
4: हाँ बताऊंगा ना। मेरे पापा मॉडल इंसुलेटर में सर्विस कर, मेरे दादा यहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं, और मेरी मम्मी और दादी दोनों हाउसवाइफ हैं।
2: अरे वाह, और हाउसवाइफ होम मेकर्स हो रहे हैं, जो कि पूरे घर को चलाने का जॉब बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं।
3: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी,
2: है ना। और भुवना तुम्हारे घर में कौन कौन है?
5: 5 लोग।
2: 5 लोग कौन कौन?
5: मेरे घर में माँ, पापा, दादी, दादा और मैं।
2: दादी, दादा, मम्मी, पापा और आप हो?
5: हाँ।
2: अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
5: मेरे मम्मी पापा।
2: मम्मी पापा दोनों? और दादा दादी?
5: भी पसंद है।
2: मतलब कि पूरी फैमिली ही भुवना की फेवरेट है।
5: हाँ,
2: है ना
5: दीदी, मेरे साथ ही बुआ रहते थे, एक शादी हो गई चली गई, वो भी ओमान, दो शादी हो गई चली गई अमेरिका, तीसरी बुआ मेरी शांतिवन में रहती है।
2: अरे वाह, मतलब आपके पास तो घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कभी ओमान, कभी अमेरिका और कभी राजस्थान, जहाँ पे आप अभी हो।
5: हाँ दीदी।
2: है ना, देखा फैमिली होने के कितने फायदे होते हैं।
3: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी।
2: और सैंडी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
0: मेरे फैमिली में 4 लोग हैं।
2: 4 लोग कौन कौन?
0: मैं, पापा, मम्मी और भैया।
2: अच्छा, तो और तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के बारे में हमें और बताओ।
0: मम्मी हाउस वाइफ है, भैया शांतिवन में सेवा देते हैं, और पापा मॉडल इंसुलेटर में।
2: अरे वाह, और भुवना तुमने तो अपनी फैमिली के बारे में हमें बताया ही नहीं।
5: मेरी माँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, HSBC में काम करती है, और मेरे पापा लॉयर है, और मेरे पापा स्टील कंपनी में सीनियर मैनेजर है।
2: अरे वाह, और पंकज अपनी फैमिली के बारे में हमें बताओ।
1: दीदी मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, मैं, पापा, मम्मी और 2 मेरी सिस्टर है।
2: अच्छा, तो आपकी सिस्टर्स क्या करते हैं?
1: मेरी दोनों सिस्टर्स मैरिड है, मुझसे बड़ी हैं।
2: और वो राजस्थान में ही रहते हैं?
1: नहीं दीदी, मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली में रहती है और बड़ी सिस्टर पुणे में रहती है।
2: अरे वाह, ये तो दोनों ही बहुत अच्छी जगह है।
1: हाँ दीदी।
2: और आपके पापा क्या करते हैं?
1: मेरे पापा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है।
2: अच्छा, और आपके घर में आपका सबसे फेवरेट कौन है?
1: मेरा सबसे फेवरेट है मेरी मम्मी और मेरी छोटी दीदी।
2: मेरी मम्मी? और मम्मी आपकी फेवरेट क्यों है पंकज?
1: क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है।
2: हाँ, अब भाई बेटे तो मम्मी के लाडले होते हैं।
1: हाँ दीदी।
2: है ना, और सैंडी आपकी फेवरेट कौन है?
0: दोनों जने,
2: मम्मी और पापा।
0: हाँ।
2: और आकाश?
4: हाँ?
2: आपका फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
4: मेरे फेवरेट फैमिली मेंबर सारे हैं।
2: सबके सब? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भुवना का तो फेवरेट मम्मी और पापा है, और दादा और दादी भी है।
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा ये बताओ भुवना, जब तुम्हारा मूड खराब होता है या किसी बात पे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले किसके पास जाती हो? मान लो स्कूल में कोई बात हुई और आपका मूड खराब हो गया, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले किसको जाके बताते हो?
5: पापा।
2: पापा को? और फिर पापा क्या कहते हैं आपसे?
5: मम्मी को कहने के लिए।
2: तो फिर मम्मी से क्या बात करते हो आप?
5: मम्मी मुझे कंसोल करती है और मुझे सपोर्ट देती है और सजेशन देती है।
2: मम्मी आपको सजेशन देती है कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए?
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा, और आकाश जब आपका मूड अच्छा नहीं होता या किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, तो घर में किसके पास जाते हो?
4: दीदी मैं किसी के पास नहीं जाती।
2: किसी को बताते नहीं हो घर पे? और अगर
4: मुझे पता है कि अगर जैसे आज मेरे इस फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, दूसरे दिन वो वापस मेरा फ्रेंड बन जाएगा।
2: बात तो बिल्कुल सही है,
4: इसलिए बता के क्यों झगड़े मोल देना।
2: अच्छा मान लो आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले घर में किसको बताओगे?
4: मम्मी को।
2: मम्मी को? और मम्मी को क्यों?
4: क्योंकि मम्मी को अगर बताऊंगा ना तो मम्मी अच्छे सजेशन देगी, उस प्रॉब्लम को हल करने की नुस्खे बताएगी।
2: मम्मी अच्छे सजेशन देती है सभी को।
5: हाँ दीदी।
2: और पंकज, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी बात होती है जो आपको शेयर करनी होती है, तो घर में किससे शेयर करते हो?
1: मैं अपनी फैमिली में किसी से शेयर नहीं करता।
2: किसी को भी नहीं बताते?
1: नहीं, अगर फैमिली की बात है तो फैमिली से।
2: अच्छा, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चीज़ का आपको स्ट्रेस होता है?
1: मैं अपनी मम्मी से ही शेयर करता हूँ।
2: और मम्मी उस सिचुएशन में आपसे क्या बोलती है?
1: वैसे मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं कभी किसी से शेयर करने।
2: आज तक कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी?
1: नहीं, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेता हूँ।
2: खुद सॉल्व कर लेते हो?
1: हाँ दीदी।
2: टेंशन में तो नहीं आते?
1: नहीं, टेंशन में आता हूँ पर फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है।
2: मतलब आप टेंशन में आते हो लेकिन सोच समझ के उसका रास्ता निकाल लेते हो।
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, और सैंडी आप क्या करते हो?
0: मैं मम्मी पापा दोनों से शेयर करता हूँ। जब रात खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी पापा दोनों को, साथ में सब फैमिली साथ में, तो उस टाइम बता देता हूँ।
2: मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो रात को आप दोनों से शेयर करते हो?
0: हाँ दीदी।
2: और फिर मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको?
0: फिर वो जो सॉल्यूशन होता है वो मुझे बता देते हैं।
2: अच्छा, अरे बाप, ऐसे मम्मी पापा तो दुनिया में एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे और ज़्यादा पहले आए हैं ना।
0: हाँ।
2: तो उनको सब चीज़ें पता होती हैं, हमारी एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्हें पता होती हैं, और उसके क्या सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस हैं वो भी उन्हें पता होते हैं। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जो हम सॉल्व ना कर पाए तो हमें तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। अच्छा ये बताओ आकाश, कि घर में कोई डांटता है क्या?
4: हाँ।
2: अच्छा, मतलब आप शैतानी करते हो?
4: शैतानी? हाँ करता हूँ।
2: अच्छा, जब शैतानी करते हो या कोई ऐसी बात होती है तो किससे डांट पड़ती है?
4: अगर दोपहर में टैब पे गेम खेलता हूँ तो दादी डांटती है, अगर रात को जल्दी नहीं सोता हूँ तो मम्मी डांटती है, अगर पढ़ाई नहीं करता हूँ तो पापा डांटते हैं, और अगर ज्यादा टीवी देखता हूँ तो दादा डांटते हैं।
5: एक एक डांट के लिए एक एक लीडर हो गए,
0: बटा हुआ है।
2: अच्छा, क्योंकि अलग अलग शैतानी पे अलग अलग लोगों से डांट पड़ती है, लेकिन वो डांट से कभी आपको बुरा तो नहीं लगता?
4: नहीं नहीं,
0: मजा आता होगा।
4: नहीं, डांट से मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे कोई डांटने वाला तो है, कम से कम कोई तो मेरी केयर करता है। वरना कुछ बच्चों के मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा ही नहीं होते, वो तरसते एक डांट के लिए ताकि कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे डांटे। और ऐसी ये बात तो सही है कि अगर कोई हमें डांटता इसीलिए है क्योंकि वो हमारी केयर करता है, वो हमारा अच्छा चाहता है इसलिए हमको डांटता है।
2: ये बात तो आकाश आपने बहुत ही अच्छी कही और बहुत ही समझदारी की मम्मी पापा या बड़े हमें तभी डांटते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं, है ना?
0: हाँ दीदी।
2: इसीलिए उस डांट का बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। भुवना, आपको कभी डांट पड़ती है घर में?
5: बहुत कम पड़ती दीदी, और बहुत ज्यादा दादा डांटते हैं, और जब मम्मी बहुत कम डांटती है फिर भी मुझे कभी रोना नहीं आती, लेकिन मेरे पापा डांटते तो ऐसे ही आंसू नदी जैसे बहते।
2: पापा डांटते हैं कभी कभी, लेकिन जब पापा डांटते हैं तो आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों?
5: क्योंकि जब पापा डांटते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों की ऐसा, मेरे पापा डांटने तक इतना ऊपर गई मैं, मुझे बुरा लगता है।
2: आपको बुरा लगता है कि आपने ऐसी गलती क्यों की कि पापा ने डांटा?
5: हाँ दीदी।
2: लेकिन कभी हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, डांट पड़ेगी तो हम उसे सुधार सकते हैं, है ना?
5: हाँ दीदी।
2: और पापा भी तो इसीलिए डांटते हैं। और पंकज, आपकी डांट पड़ती है घर पे कि नहीं?
1: दीदी डांट तो हमेशा पड़ती रहती है।
2: डांट हमेशा पड़ती रहती है, और घर में कौन डांटता है आपको?
1: मम्मी पापा दोनों।
2: दोनों क्यों डांटते हैं मम्मी पापा?
1: पापा इसलिए डांटते हैं क्योंकि कभी कभी मैं उनकी हेल्प कराने के लिए साइड पे नहीं जाता, और मम्मी इसलिए डांटती है क्योंकि घर पे कोई छोटा मोटा काम होता तो वो मैं नहीं करता।
2: और आप छोटा मोटा काम जो मम्मी बताती है वो क्यों नहीं करते हो?
1: अच्छा नहीं लगता मुझे करना, क्योंकि मैं कभी खेलने चले जाता हूँ और कभी कहीं बिजी होता हूँ, तो इसलिए घर का काम नहीं।
2: लेकिन मम्मी के पास हेल्प कराने के लिए अभी तो और कोई भी नहीं है।
1: हाँ दीदी
2: है ना, तो उनकी मदद तो आपको ही करनी पड़ेगी।
1: हाँ मुझे पता है, मुझे ही मदद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कभी बुरा भी नहीं मानता।
2: सही बात है भाई, अगर मम्मी को हेल्प चाहिए तो हम बच्चे ही तो हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पापा तो ऑफिस जाते हैं और हर वक्त नहीं होते, तो बच्चे ही हैं जो मम्मी लोगों की हमेशा घर पे मदद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए।
5: मैं मेरी नानी की हेल्प करती हूँ दीदी।
2: अपनी नानी की क्या हेल्प करते हो भुवना?
5: बर्तन अंदर रखना धुलाई के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी रोज मॉर्निंग 8:30 पापा और मम्मी निकलते हैं, रात 8:30 को आते हैं।
2: अच्छा, तो फिर आप अपनी नानी की घर संभालने में मदद करते हो?
5: हाँ दीदी।
2: और सैंडी?
0: मुझे तो मम्मी ज़्यादा डांटती है।
2: मम्मी ज़्यादा डांटती है, क्यों?
0: और मम्मी से तो कभी टाइम पे खाना नहीं खाया, कभी कुछ ही।
2: लेकिन पापा तभी डांटते हैं जब उन्हें लगता है भाई लाइफ में कोई बड़ी सी गलती हो रही है, और मम्मी हमारी फिक्र करती है, तो अगर हम खाना नहीं खाते या फिर टाइम से कुछ नहीं करते तो इसलिए डांट पड़ती है मम्मी से।
0: हाँ दीदी।
2: जिसका किसी को भी बुरा नहीं लगता यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो मुझे ये बताओ भुवना, आपको पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
5: पापा बहुत अच्छे से बात करते हैं। किसके साथ कैसे बात करना, वो इतने अच्छे से बात करते हैं कि दूसरों को बुरा ना लगे और समझ भी जाए।
2: अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आपको क्या अच्छा लगता है आकाश अपने पापा के बारे में?
4: ये मेरे पापा के बारे में यही अच्छा लगता है कि जब भी किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है ना, तो उससे मेरे को पापा बचा लेते हैं।
2: मतलब पापा एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन है।
4: हाँ
2: है ना। और पंकज, आपको अपने पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
1: मुझे मेरे पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है वो बहुत ऑनेस्ट है।
2: ऑनेस्ट हैं?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते।
1: हाँ दीदी।
2: ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसे तो हम सबको सीखना चाहिए। और सैंडी, आपको?
0: मेरे पापा मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो कभी टेंशन नहीं लेते और फैमिली को टेंशन में आने नहीं देते, खुद सॉल्व कर लेते, मतलब फैमिली को हैप्पी रखते हैं। कूल पापा।
2: मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो पापा सब संभाल लेते हैं।
0: हाँ।
2: और मम्मी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है भुवना?
5: मम्मी बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट
2: मतलब अपना ऑफिस भी संभालती है, घर भी और आपको भी।
5: हाँ दीदी।
2: अरे वाह। और आकाश?
4: मुझे मम्मी के अंदर ये अच्छी क्वालिटी लगती है क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए मम्मी हर मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करती है।
2: मम्मी हर ख्वाहिशें पूरी करती है जो भी वो कर सकती है। और पंकज?
1: मुझे मेरी मम्मी की तो सारी क्वालिटी पसंद है, मेरी मम्मी में हर तरह की क्वालिटी।
2: जैसे
1: खाना बनाना, पापा के लिए नाश्ता बनाना, खुद के लिए अलग से नाश्ता बनाना, और टाइम का मैनेज वो अच्छे से कर लेती है।
2: मम्मी सबके पसंद का खाना भी बनाती है और टाइम मैनेज भी करती है। और सैंडी?
0: मेरी मम्मी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरी मम्मी ना घर का जो बजट बनाती है ना वो सबसे बेस्ट है।
2: मम्मी इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती है।
0: हाँ, और मम्मी सुबह सबसे पहले उठना, फिर पापा का नाश्ता बनाना, फिर भैया का, फिर मेरा, फिर खुद का, फिर घर का सब काम करना, इसलिए मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है।
2: सही बात है, मम्मी लोग सुबह से जब काम करना शुरू करते हैं तो शाम तक करते रहते हैं।
0: और सबसे लेट सोना।
2: सबसे लेट सोना। अच्छा मुझे ये बताओ, अब तुम लोग के घर में सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं?
5: हाँ दीदी।
2: तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी भुवना, ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं बताओ?
5: मेरी ग्रैंड माँ इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मुझे, साइंस में बहुत हेल्प करते हैं, जब भी वो मुझे मैथ्स में हेल्प करते हैं मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं।
2: और वो बहुत प्यार से आपको पढ़ाते होंगे है ना?
5: और स्ट्रिक्ट है दीदी वो।
2: थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। आकाश, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
4: मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इसीलिए अच्छे लगते हैं, जो मेरी दादी है ना, वो हमारे पूरे परिवार में सबसे अच्छे स्वीट्स बना लेती है। और दादा की ये खासियत है कि उनका मैथ्स इतना अच्छा है ना कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर भी सामने फेल हो जाएगा, लेकिन उनका मैथ आगे रहेगा।
2: अरे वाह, क्या बात है। और सैंडी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं?
0: वो अभी इस दुनिया में नहीं है।
2: और आपके नाना नानी?
0: नानी नहीं है, नाना है।
2: जिनसे आप मिलने जाने वाले हो?
0: हाँ।
2: तो वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
0: क्योंकि नाना मुझे बहुत प्यार करते हैं।
2: नाना आपको बहुत प्यार करते हैं?
0: हाँ।
2: हमारे जो नाना नानी दादा दादी होते हैं, वो हमें अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
5: हाँ दीदी,
2: है ना?
0: हाँ दीदी।
2: और पंकज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं?
3: मेरी नानी है।
2: नानी कहाँ रहती है आपकी?
3: मेरी नानी अपने गांव में बिहार में रहती है।
2: अच्छा, तो नानी से मिलने जब जाते हो तो नानी की कौन सी ऐसी बात है आपको सबसे अच्छी लगती है?
3: मैं जब अपनी नानी से मिलने जाता हूँ और जब वापस लौटता हूँ तो मेरी नानी मुझे अभी भी 10 रुपए देती है।
2: हमारे नाना नानी दादा दादी जो भी हमें दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं, वो हमेशा दिल से देते हैं, इसलिए वो 10 रुपए की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अपनी फैमिली के साथ जब आप लोग टाइम स्पेंड करते हो तो मम्मी के साथ या पापा के साथ बीता हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जो अभी तक आपको बहुत अच्छा लगता है सोच के? कोई भी ऐसा पल याद हो जब आपका रिजल्ट आया हो या फिर घर में कुछ हुआ हो और मम्मी पापा के साथ वो एक मेमोरी बन गया हो?
3: मुझे याद है दीदी।
2: हाँ पंकज, बताओ।
3: मेरे लास्ट बर्थडे पे मेरे मम्मी और पापा पहली बार साथ में उन्होंने फोटो क्लिक कराई थी।
2: पहली बार?
3: हाँ दीदी।
2: अरे वाह, और आपका बर्थडे तो स्पेशल हो गया।
3: हाँ, बहुत स्पेशल बर्थडे था, हमने बहुत एंजॉय भी करा और मम्मी पापा ने डांस भी किया था।
2: अरे वाह। और भुवना, आपको कुछ याद है ऐसा?
5: हाँ दीदी, मैं मम्मी पापा और मेरे अंकल, जब हम कूल कहना वो बहुत अच्छा।
2: कहाँ गए?
5: कूल।
2: अच्छा, जब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे गए तो वो बहुत अच्छा मोमेंट। अच्छा, अब मुझे एक ऐसी बात बताओ जो आप अपने मम्मी पापा या किसी भी फैमिली मेंबर से कहना चाहते तो हो लेकिन कभी कह नहीं पाते, क्या कोई ऐसी बात है? किसी चीज का डर हो या कभी ऐसा लगे कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो प्यार हो चाहे वो कोई और बात हो, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर से वो नहीं करते? भुवना,
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ पापा, हमें समर को वंडरला चलते हैं, प्लीज।
2: अच्छा, जब आप लोग गलतियाँ करते हो या कोई ऐसी गलती आपसे हो जाती है, शरारतें करते हो, तो क्या अपनी मम्मी पापा को घर पे सब चीज़ें बता देते हो या डर रहता है कि बताएंगे तो डांट पड़ेगी?
5: मैं बताती हूँ दीदी।
0: हाँ, मैं भी बता देता हूँ।
2: पंकज?
3: दीदी, मैं बहुत कम बताता हूँ।
2: कम बताते हो, क्यों?
3: क्योंकि ज़्यादातर मैं अपनी गलतियों को या कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो मैं उसे खुद मैनेज कर लेता हूँ।
2: किसी चीज़ का डर तो नहीं होता आपको?
3: नहीं, डर नहीं होता।
2: और आकाश?
4: दीदी, मैं तो बताता ही नहीं।
2: बताते ही नहीं हो, क्यों?
4: क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो मेरे साथ कोई गलती हुई है तो वो अगले आने वाले दिन में अपने आप सॉल्व हो जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं।
2: लेकिन अगर कोई बड़ी गलती आपसे हो जाए तो मम्मी पापा को इन्फॉर्म रखना बहुत जरूरी।
4: हाँ,
2: होता है।
4: ऐसे तो इन्फॉर्म रखता हूँ लेकिन वैसे नहीं रखता हूँ,
2: क्योंकि वही हमें समय पर मदद कर सकते हैं, है ना?
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम लोग अपने मम्मी पापा और नाना नानी सबसे प्यार तो बहुत करते हो, उन्हें बताते हो कि नहीं?
5: हाँ दीदी।
2: बताते हो? क्या बताती हो भुवना?
5: मेरी मम्मी पापा एनिवर्सरी में मैंने एक एक्सप्लोडिंग बॉक्स बनाई, जिसमें मैंने क्या किया, मेरी सारी फ़ोटोज़, मेरी मम्मी और पापा की मैरिज फ़ोटोज़ और मेरे पापा के बचपन की फ़ोटोज़, मेरी मम्मी की बचपन की फ़ोटोज़ उनके फ्रेंड्स के साथ, वो सब मैंने जेरोक्स ले ली। तो मैंने सारी फ़ोटोज़ का जेरोक्स लिया और बहुत अच्छे से एक बॉक्स बनाई, एक गिफ्ट बॉक्स जैसा, जिसको खोलती ऐसा एक्सप्लोडिंग बॉक्स जैसा बाहर आ जाएगा और हम बचपन की फ़ोटोज़ देख सकते हैं और बलून्स सब कुछ।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मेमोरेबल गिफ्ट था।
5: और मैंने एक PPT बनाई थी दीदी,
2: PPT
5: एनिवर्सरी में।
2: और पापा की बर्थडे पे भी आपने कुछ स्पेशल किया था ना?
5: हाँ, मेरी बुआ ने इसमें हेल्प की। हमने डांस की जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे भैया एक म्यूज़िक की जिसमें मेरी बुआ आती है और हम डांस करते हैं, और पापा म्यूज़िक के लिए मैं डांस करती हूँ। ऐसा एक एक रिश्तेदार के रिलेशनशिप को एक एक डांस। मैंने एक बहुत सारे पोएम्स भी लिखती हूँ मेरे पापा के लिए।
2: आप बहुत सारी पोएम्स लिखते हो अपने पापा के लिए? अरे वाह। और आकार,
4: हाँ दीदी,
2: आप अपने घर पे सबको बताते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो?
4: दीदी, वो एक्सप्रेस करने की चीज नहीं होती, उनको खुद ही पता चल जाता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जब हम किसी की केयर करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मुझसे कितना प्यार करता है।
2: बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यार बताने से ज्यादा जताने की चीज है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें अपने मम्मी पापा और सबको बताना चाहिए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना?
4: करता तो हूँ, लेकिन पापा को बताने की हिम्मत नहीं होती।
0: तुम्हारे पापा भी गब्बर सिंह हैं।
4: और क्या,
5: गब्बर सिंह टू,
3: आतंक के दूसरे नाम।
2: पापा की बर्थडे हो या ऐसा कोई ओकेशन हो तो आप उन्हें छोटा सा कार्ड बना के दे सकते हो, या ऐसा कुछ कर सकते हो जो उन्हें स्पेशल फील हो।
4: हाँ, ये भी बात दीदी आपने सही बोली,
2: है ना? और कभी कभी बोल नहीं पाओ तो उन्हें लिख के भी दे सकते हो।
4: हाँ दीदी, जैसे मैंने अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे उनको एक कार्ड बना के दिया था। उस दिन जब मैं स्कूल से आया तो घर पे पापा मम्मी थे नहीं, मतलब मैं बहुत परेशान हो गया कि पापा मम्मी कहाँ गए, और दादी भी कुछ बोल नहीं रही है मेरे को। जब शाम को 7 बजे आए पापा मम्मी घूम के, तब मेरा ऐसे ही मन हुआ, सुबह मम्मी को मैंने बोला ही था, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया था, तो मेरा मन किया चलो कार्ड बनाते हैं। तो मैंने कार्ड बनाना स्टार्ट किया, टाइम भी कम था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की कार्ड्स बनाने में, और मतलब मैंने करीब 3 कार्ड्स बनाए थे मम्मी और पापा के लिए। एक में मैंने पापा के लिए पोयम लिखी थी, एक में मम्मी के लिए, और एक में पापा मम्मी और मेरी फीलिंग्स लिखी थी कार्ड में।
2: अरे वाह, और ये तो सबसे अच्छा तोहफा होता है जब हम अपनी फीलिंग्स लिख के मम्मी पापा को देते हैं। और सैंडी?
3: नहीं दीदी, मैं नहीं बताता हूँ।
2: नहीं बताते? क्यों नहीं बताते?
3: क्योंकि मैं डेली ना जब मम्मी पापा शाम को बैठते हैं तो मैं उनसे बातें करता हूँ आधे घंटे तक, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मैं उनकी कितनी केयर करता हूँ।
2: आप उनसे बातें करते हो? हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है। हम डेली मम्मी पापा से बातें करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। और पंकज, आप?
3: हाँ दीदी, मैं अपने मम्मी पापा को सीधे सीधे बता देता हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी जब भी मुझे कहती है कि आजकल के बच्चों के एग्जाम्पल्स देती हूँ मेरी मम्मी की, उसके बेटे ने ऐसा किया, तो मैं उन्हें साफ साफ बता देता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
0: और हाँ दीदी, ऐसा कुछ कभी मेरे साथ भी होता है तो मैं मम्मी को गले लगा लेता हूँ और बोलता हूँ मम्मी मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
5: पर दीदी, आपको पता है मेरी मम्मी को जब भी वो काम करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो मैं उनके लिए नींबू पानी बनाती हूँ और उनको बहुत पसंद है, और 2 ग्लास भी।
2: अरे बात, आज हम बात कर रहे थे फैमिली यानी परिवार के बारे में। तो लास्ट में ये स्पेशल वाला एपिसोड खत्म करने से पहले क्या कोई एक मैसेज है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहते हो?
5: थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल एंड आई लव यू ऑल।
4: अगर मेरे पापा अभी मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पापा इतने साल हो गए आप मेरे को कहीं घुमाने नहीं लेके गए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ इस बार मेरे को हाजी अली लेके जाओ।
2: और पंकज, आप कुछ कहना चाहते हो?
3: मैं अपने मम्मी पापा से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी भी अलग नहीं देखना चाहता, मैं हम अपने मम्मी पापा और मुझे हमेशा एक साथ तीनों को देखना चाहता हूँ।
2: और सैंडी?
0: मैं अपने मम्मी पापा से कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा आप लोग और जितना दिन जी सकते हो मुझसे बहुत ज़्यादा दिन जियो, मेरी उम्र आप लोगों को लग जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत उम्र तक देखना चाहता हूँ।
2: ये बहुत प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने की जो आप लोग अपने मम्मी पापा से कहना चाहते हैं। आज की ये बातचीत हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से कुछ नई बातों के साथ और नई बातों का पिटारा खोलने के लिए बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: हमें केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही उनकी इस अलौकिक प्रखर प्रतिभा का दर्शन नहीं मिलता, वरन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, मानव जीवन से संबंध रखने वाले प्रत्येक विषय में हम उनकी दिव्य झांकी देखते हैं।
1: यही कारण था कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विख्यात प्रोफेसर श्री जे एच राइट ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कहा था,
2: आपसे परिचय पत्र के लिए पूछना मानो सूर्य से ये पूछना है कि तुम्हें चमकने का क्या अधिकार है। मेरा विश्वास है कि ये अज्ञात भारतीय सन्यासी हमारे सभी विद्वानों को एकत्रित करने पर जो कुछ हो सकता है उससे भी अधिक विद्वान है।
0: स्वामी जी केवल एक आत्मज्ञानी महापुरुष ही नहीं, वरन एक श्रेष्ठ और सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण किया था और भारतवासियों के संबंध में उन्हें वास्तविक जानकारी प्राप्त थी। इसलिए भारत की प्रमुख समस्याओं पर अधिकार पूर्वक विवेचना करने के वे विशेष अधिकारी थे। वे भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ थे।
1: स्वामी विवेकानंद के संदेशों में भारत के आध्यात्मिक भंडार का सारत्व समाहित है, जिसे उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार पर सहज सफल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनके सभी विचार विश्व मानवता के लिए प्रेरणादायी हैं, समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी जाति के मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं।
0: स्वामी जी की शक्तिशाली प्रोत्साहक वाणी युवकों के मन को जगाने वाली है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण और जमीन से जुड़ी समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाली, उनके मन में प्रेम एवं सेवा भाव उत्पन्न करने वाली, हमेशा नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने वाली और जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितता के समय सही मार्गदर्शन करने वाली है।
1: आज विवेकानंद जी की परिचय की इस कड़ी में उन्हीं के मुख से उनके कुछ सुविचार सुनेंगे। उनकी कही हुई बातों का सार है विवेक सूत्र।
3: प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करने, आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मनः संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक, एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। छोड़ो विद्या, जप तप का बल, स्वार्थ विहीन प्रेम आधार एक हृदय का। देखो शिक्षा देता है पतंग कर प्यार, अग्नि शिखा को आलिंगन कर, आलिंगन कर, आलिंगन।
0: स्वामी जी ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तेजस्वी बनने का उपदेश दिया है।
3: उपनिषद का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है। ये विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है। समस्त जीवन में मैंने यही महाशक्ति प्राप्त की है। उपनिषद कहते हैं, हे मानव, तेजस्वी बनो, वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो। भले ही तुम्हारा सूर्य बादलों से ढक जाए, आकाश उदास दिखाई दे, फिर भी धैर्य धरो कुछ, हे वीर हृदय, तुम्हारी विजय अवश्यम भावी है। शीत के पहले ग्रीष्म आ गया, लहर का दबाव ही उसे उभारता है। धूप छांव का खेल चलने दो और अटल रहो, वीर बनो। जीवन में कर्तव्य कठोर है, सुखों के पंख लग गए हैं, मंजिल दूर धुंधली सी झिलमिलाती है, फिर भी अंधकार को चीरते हुए बढ़ जाओ अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ।
1: अपनी कविताओं में भी वे हमें आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। नयन पथराए, हृदय हो शून्य अपना, छले मैत्री, प्यार हो विश्वास खाती, भाग्य भी सौ आपदाएं लाद दे सिर, और बीहर तम तुम्हारा रोक ले पथ, प्रकृति की त्योरियां चढ़ें जैसे अभी वो कुचल देगी, किंतु मेरे आत्मन है दिव्य हो तुम, बढ़ो आगे और आगे, नहीं दाएं और बाएं तनिक देखो,

0: दृष्टि हो गंतव्य पर ही, और संसार से कहो जागो, उठो, सपनों में मत खोए रहो। ये सपनों की धरती है जहां कर्म विचारों की सूत्रहीन मालाएं गूंथता है। वे फूल जो मधुर होते हैं अथवा विषाक्त, जिनकी न जड़ें हैं न तने, जो शून्य में उपजते हैं, जिन्हें सत्य आदि शून्य में ही विलीन कर देता है। साहसी बनो और सत्य के दर्शन करो, उससे तादाम्य स्थापित करो। छाया भासों को शांत होने दो, यदि सपने ही देखना चाहो तो। शाश्वत प्रेम और निष्काम सेवाओं के ही सपने देखो। जगो फिर एक बार, यह तो केवल निद्रा थी, मृत्यु नहीं थी। नवजीवन पाने के लिए, कमल नयनों के विराम के लिए, उन्मुक्त साक्षात्कार के लिए एक बार फिर जागो। आकुल विश्व तुम्हें निहार रहा है, हे सत्य तुम अमर हो।
1: वेदों को पढ़कर स्वामी जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी और लिखा था सृष्टि गान।
2: तब न सत था न असत ही, न ये संसार था न ये आकाश, इस धुंध का आवरण क्या था वो भी किसका, गहन अंधकार की गहराइयों में क्या था। तब ना मरण था अमरत्व ही, रात्रि दिवा से पृथक नहीं थी, किंतु गतिशून्य ये स्पंदित हुआ था, तब केवल वो था जिसके परे कोई अन्य अस्तित्व नहीं, वही चराचर था। तब हम छिपकर तम बैठा था, जैसे जल में जल समाहित हो पहचाना ना जाए, तब शून्य में जो था वो तप की गरिमा से मंडित था, तब मानस के आदि बीज के रूप में प्रथम आकांक्षा उगी, जिनका साक्षात्कार ऋषियों ने अपने अंतर में किया, असत से सत जन्म, जिनकी प्रकाश किरण ऊपर नीचे चारों ओर फैली, ये महिमा सर्जनमय हुई, स्वतः सिद्ध सिद्धांत पर आधारित और सर्जन शक्ति से स्फुरित। किसने पथ जाना है, कहां अथ है जहां से ये फूटा, सर्जन कहां से हुआ, सृष्टि के बाद ही तो देवों ने अस्तित्व पाया, अतः उद्भव का ज्ञान किसे प्राप्त है, ये सर्जन कहां से आया, ये कैसे ठहरा है, ठहरा भी है या नहीं, वो सर्वोच्च आकाशों में बैठा हुआ महाशासक अपना आदि जानता है या नहीं, शायद।
0: शंकराचार्य को पढ़कर स्वामी जी ने वेदांत के सार को समझा था। उन्होंने समझा था कि इस पृथ्वी पर दिखाई देने वाली सारी चीजें माया है, सत्य एकमात्र शिव या ईश्वर ही है। तभी उन्होंने लिखा था,
2: न मन न बुद्धि न अहंकार न चित्त, न शरीर न उसके विकास, न श्रवण न जिह्वा न नासिका न नेत्र, न आकाश न भूमि न तेज न वायु, मैं परम सत परम चित परम आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। न प्राण न पंच वायु न सप्त धातु न पंच कोश, न वाणी न कर न पद न उपस्थ न कोई इंद्रिय, मैं परम सत परम चित परम आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। न द्वेष हूँ न राग हूँ न लोभ न मोह न मद हूँ न मात्सर्य हूँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी नहीं हूँ, मैं परम सत परम चित परम आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। न पुण्य न पाप न सुख न दुख, न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ, न भोजन हूँ न भोक्ता हूँ न भोग्य हूँ, मैं परम सत परम चित परम आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु हूँ न शंका हूँ, न मेरी कोई जाति है, न पिता न माता, न मेरा जन्म ही है, न बंधु न मित्र, न गुरु, न शिष्य, मैं परम सत, परम चित, परम आनंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। मैं तो निर्विकल्प, निराकार, विभु, अनंत, काल और सीमा से परे प्रत्येक वस्तु में हूँ। प्रत्येक वस्तु मैं ही हूँ, मैं ही विश्व का आधार हूँ। मैं परम सत, परम चित, परम आनंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम।
1: स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इतना कुछ कहने के बाद भी हम शायद उनके व्यक्तित्व के दसवें भाग को भी नहीं जान पाए हैं। वे शायद हिमशिला की तरह थे, जिसका नौ भाग पानी के नीचे डूबा रहता है और एक भाग जो पानी के ऊपर रहता है, उसे देखकर ही हम अचंभित होकर सोचते हैं, इतना विशाल।
0: इस कड़ी की अंतिम बेला में आइए हम स्वामी जी की जीवन तालिका पर एक नजर डालें।
1: 1863, 12 जनवरी सोमवार, सुबह 6:33 पर नरेंद्रनाथ का जन्म। तिथि पौष कृष्ण सप्तमी संक्रांति। वे विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी की छठवीं संतान, तीन पुत्रों में ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ पुत्र महेंद्रनाथ दत्त और भूपेंद्रनाथ दत्त। खेलकूद, कुश्ती, संगीत आदि बहुमुखी प्रतिभा लेकर वे बड़े हुए। बचपन से ही उनमें सत्यनिष्ठा, आत्मसम्मान, परोपकारी वृत्ति, ध्यानशीलता, धर्म प्राणता विद्यमान थी।
0: 1881 जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में पढ़ते समय अध्यापक हेस्टी से उन्होंने श्री रामकृष्ण की समाधि के विषय में जाना। सुरेन मित्र के घर पर नवंबर में श्री रामकृष्ण के साथ प्रथम भेंट, दिसंबर में प्रथम बार दक्षिणेश्वर गए। तत्पश्चात दक्षिणेश्वर में आना जाना शुरू हुआ। 1884 25 फरवरी रात में अचानक पिता की मृत्यु, जीवन संग्राम शुरू, आर्थिक संकट और आत्मीय स्वजनों की निष्ठुरता, श्री रामकृष्ण के कहने पर मां काली के पास प्रार्थना करने जाना। उन्होंने तीन बार ही ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य के लिए प्रार्थना की। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण का आश्वासन, अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा।
1: अटर्नी के ऑफिस में काम करके और पुस्तकों का अनुवाद कर संसार यात्रा का निर्वाह। बाद में कुछ दिन मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन के चांपातला शाखा में हेडमास्टर भी रहे। 1885 श्री रामकृष्ण को कैंसर। चिकित्सा सुविधा के लिए पहले उन्हें श्यामकपुर और बाद में काशीपुर लाया गया। 1886 11 फरवरी श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को लोक शिक्षा के लिए अधिकार दिया। 1886 16 अगस्त श्री रामकृष्ण की महासमाधि।
0: 1886 16 अक्टूबर प्रथम श्री रामकृष्ण मठ वराहनगर मठ की प्रतिष्ठा। 1886 24 दिसंबर क्रिसमस ईव की रात को आठपुर में गुरु भाइयों के साथ संवेद रूप से सन्यास ग्रहण करने का संकल्प। 1887 जनवरी सन्यास ग्रहण। 1887 से 1893 विभिन्न समयों में भारत परिक्रमा। ये भारत परिक्रमा वास्तव में भारत की खोज, भारत की शक्ति और दुर्बलता दोनों पक्षों को अपनी दृष्टि से देखना। भारत की शक्ति धर्म और धर्म केंद्रित संस्कृति, दुर्बलता दारिद्र, अशिक्षा, साधारण मनुष्य और नारी जाति की अवहेलना। इस भारत परिक्रमा के साथ साथ विवेकानंद का निर्माण पूर्ण हुआ। भगिनी निवेदिता ने कहा है, गुरु शास्त्र और मातृभूमि, ये तीनों मिलकर विवेकानंद बने हैं।
1: 1893 31 मई पेनिनसुलर जहाज पर भारत से रवाना। 25 जुलाई कनाडा के वैंकूवर में पहुंचे। 30 जुलाई रात 10:30 शिकागो पहुंचे। अगस्त धर्म महासभा में भाग लेने की अनिश्चितता और खर्च बचाने के लिए बोस्टन की यात्रा। 1896 9 सितंबर बोस्टन से पुनः शिकागो पहुंचे। स्टेशन पर पैकिंग बॉक्स, मतांतर में मालगाड़ी के डब्बे में रात्रि यापन। 10 सितंबर शिकागो के रास्ते में भिक्षावृत्ति।
0: 11 सितंबर 1893 धर्म महासभा में पहली वक्तृता। 19 सितंबर हिंदू धर्म पर वक्तृता। 27 सितंबर अंतिम वक्तृता। 1893 अमेरिका और इंग्लैंड के विभिन्न स्थानों में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार। अमेरिका से दो बार इंग्लैंड गए। प्रथम बार 3 महीने के लिए 1895 अगस्त से 1895 नवंबर तक। इस समय लंदन में मिस मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता से पहली बार संपर्क में आए। दूसरी बार भारत वापसी से पहले गए 1896 के अप्रैल के अंतिम सप्ताह से 16 दिसंबर तक 7 महीने। 1896 16 दिसंबर भारत लौटने के उद्देश्य से लंदन त्याग।
1: 21 दिसंबर रोम। 30 दिसंबर कोलंबो के लिए प्रस्थान। 1897 15 जनवरी कोलंबो। 26 जनवरी मूल भारत के भूखंड पंबन में सारे भारत में अभूतपूर्व उद्दीपना। 27 जनवरी रामेश्वरम मंदिर में भाषण रियल वर्शिप। 6 तथा 7 फरवरी मद्रास यानी चेन्नई में सारा मद्रास मतवाला अखबार में समाचार छपे। मद्रास में मानो नूतन नवरात्रि। 19 फरवरी कलकत्ता यानी कोलकाता में।
0: 7 मार्च दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि का समारोह। 8 मार्च स्वास्थ्य लाभ के लिए दार्जिलिंग प्रस्थान। 1 मई कलकत्ते में बलराम वसु के घर पर रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा। इसी सभा में श्री मां शारदा देवी को संघ जननी के रूप में स्वामी जी की घोषणा।
1: 6 मई अल्मोड़ा रवाना। 8 महीने तक अल्मोड़ा, बरेली, लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी, श्रीनगर, जम्मू, सियालकोट, अलवर, जयपुर, खेतड़ी, इन सब स्थानों में भ्रमण और वक्तृत्वता। रोमानुला के अनुसार ये उनकी दूसरी भारत परिक्रमा थी। इस बार विजय की मुद्रा में कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए।
0: 1898 जनवरी के तीसरे सप्ताह में कलकत्ता। 28 जनवरी भगिनी निवेदिता का विदेश से कलकत्ता आगमन। 27 फरवरी बाली में पूर्णचंद्र दास द्वारा स्थापित मंदिर में रामकृष्ण जन्मोत्सव अनुष्ठित। 25 मार्च निवेदिता को ब्रह्मचर्य दीक्षा और निवेदिता नाम प्रदान। 30 मार्च दार्जिलिंग में। अप्रैल में कलकत्ता में प्लेग। प्लेग दमन के लिए 3 मई को कलकत्ता लौट आए। उनके निर्देश से निवेदिता और सदानंद की परिचालना में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्लेग सेवा कार्य।
1: 11 मई भगनी निवेदिता, स्वामी तुरियानंद, स्वामी सदानंद, स्वामी स्वरूपानंद, मिस मैक्लाउड, ओली बुल, स्वामी निरंजनानंद इत्यादि के साथ अल्मोड़ा, नैनीताल, काश्मीर और अमरनाथ यात्रा। 2 अगस्त अमरनाथ दर्शन। 18 अक्टूबर कलकत्ता वापसी। 1899 20 जून दूसरी बार पाश्चात्य यात्रा। 19 जून को बेलूड़ मठ के सन्यासी ब्रह्मचारियों के उद्देश्य से सन्यास का आदर्श विषय पर उद्बोधक वक्तृत्वता। उन्होंने कहा सन्यास का अर्थ है मृत्यु से प्रेम करना। मृत्यु से प्रेम का अर्थ है मृत्यु को निश्चित जानकर संपूर्ण जीवन आनंद पूर्वक दूसरों के लिए जीना। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी को एक ही साथ गंभीर, आदर्श परायण और व्यवहारिक बुद्धि संपन्न होना होगा। वे एक साथ ही ध्यान और कर्म दोनों में कुशल होंगे।
0: 31 जुलाई लंदन में। अगस्त के प्रथम सप्ताह में विंबलडन में। 17 अगस्त अमेरिका जाने के लिए रवाना। 28 अगस्त न्यूयॉर्क में। लगभग 1 वर्ष अमेरिका निवास। तत्पश्चात पेरिस, वियना, एथेंस होकर भारत की यात्रा 26 नवंबर 1900 में। 1900 9 दिसंबर बेलूड़ मठ आगमन। कैप्टन सेवियर की मृत्यु समाचार प्राप्त।
1: 27 दिसंबर मायावती के रास्ते काठगोदाम। 1901 3 जनवरी मायावती। 5 जनवरी स्वामी स्वरूपानंद से मायावती आश्रम के भविष्य की परिकल्पना का वर्णन। 2 सप्ताह मायावती में रहकर 18 जनवरी को मायावती से रवाना।
0: 24 फरवरी बेलूर मठ में, 18 मार्च सन्यासी शिष्यों के साथ पूर्वी बंगाल और असम की यात्रा। ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में वक्तृता, पगोट स्कूल से लगे मैदान में वक्तृता, देवभोग में नाग महाशय के घर पर। 14 अप्रैल चंद्रनाथ मंदिर के लिए ढाका से रवाना। कामाख्या दर्शन, गौहाटी में 3 वक्तृता, शारीरिक अवस्था की अवनति, शिलोंग में सर हेनरी कॉटन के साथ भेंट और वक्तृता।
1: 12 मई बेलूर मठ में आगमन, स्वास्थ्य की क्रमशः अवनति। 7 अगस्त दार्जिलिंग यात्रा, अंतिम सप्ताह में कलकत्ता वापस, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जापान जाने का आमंत्रण ठुकराया। 18 अक्टूबर मठ में दुर्गा पूजा, श्री श्री मां की उपस्थिति। सप्तमी के दिन स्वामी जी को बुखार, अष्टमी के दिन स्वस्थ होकर मां को अंजलि प्रदान, नवमी के दिन रात में भजन गान, उसी समय से शरीर की द्रुत अवनति। मां भुवनेश्वरी देवी की इच्छा की पूर्ति के लिए कालीघाट जाना।
0: 23 दिसंबर कलकत्ते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसी समय बाल गंगाधर तिलक मठ में आए, स्वामी जी ने उन्हें सादर ग्रहण किया। महात्मा गांधी भी आए थे, अनुपस्थित रहने के कारण उनसे भेंट नहीं हुई। 1902 27 जनवरी मैकलाउड और ओकाकुरा के साथ बोधगया जाना, वहाँ 1 सप्ताह रहने के बाद फरवरी में वाराणसी गए, वहाँ शरीर की क्रमावनति। 8 मार्च बेलूर मठ वापसी। 11 मार्च श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव।
1: 16 मार्च श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि के उपलक्ष में जन्मोत्सव समारोह। अस्वस्थ होने के कारण स्वामी जी सारे दिन कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। 19 जून भुवनेश्वरी देवी को देखने कलकत्ता आए। 29 जून भगनी निवेदिता का मठ में आगमन, सारे दिन विभिन्न विषयों पर चर्चा। 2 जुलाई एकादशी तिथि भगनी निवेदिता का मठ में आगमन, उन्हें अपने हाथों से खिलाना तथा स्वयं ईसा के समान भोजनोपरांत हाथ धोने के लिए पानी देना।
0: 1902 4 जुलाई सुबह गुरु भाइयों के साथ चाय के समय विभिन्न विषयों पर बातचीत और अगले दिन काली पूजा का निर्देश। 8 बजे से 11 बजे तक ध्यान, ध्यान के बाद श्यामा संगीत, माँ क्या मेरी काली रे, उसके बाद चहलकदमी करते करते स्वागत कथन। यदि और एक विवेकानंद होता तो समझ पाता कि विवेकानंद क्या कर गया, लेकिन समय आने पर ऐसे सैकड़ों विवेकानंद जन्म लेंगे। सभी के साथ मध्याह्न भोजन, दोपहर में 3 घंटा ब्रह्मचारियों को पढ़ाना, सायंकाल स्वामी प्रेमानंद के साथ घूमना और वेद विद्यालय की परिकल्पना, संध्या आरती के बाद 1 घंटा ध्यान, रात 9:10 पर महासमाधि। जो कुछ आंखों के सामने प्रकट हो उठता है और देखते ही देखते डूब जाता है, वो केवल वर्तमान में ही सीमित नहीं है, परंतु इसका भूत और भविष्य हम संपूर्ण रूप से जान नहीं सकते। कौन कहेगा कि विवेकानंद कहां से आए थे, कौन उन्हें लाया था, और ये भी कौन कह सकता है कि इस अभ्युदय की परिसमाप्ति कब, कितनी दूर, कहां होगी। केवल गूंजता रहेगा उनका दिया हुआ अमृत मंत्र।
2: हे अमृत के अधिकारी गण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। उठो आओ, ऐसे हो इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आगे दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, 6 जुलाई की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज 6 जुलाई है, एक अच्छा दिन है, और इसमें आज दलाई लामा, लक्ष्मीबाई केलकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, अनिल माधव दबे, अनवर जलालापुरी, दौलत सिंह कोटारी, रामचंद्र प्रसाद सिंह देवगौड़ा, सुखबीर सिंह संधू, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही प्रताप नारायण मिश्र, जगत जीवन राम, वे चेतन आनंद, मनी कौल, धीरूभाई अंबानी, नौतम भट्ट, कार्निया सोरभ जी, मान सिंह ठाकुर, रामलाल, अमृतलाल बेगड़, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को बताना चाहूँगा, हम लोग दलाई लामा की कुछ कहानी आपसे बताएंगे। और दलाई लामा की कहानी बड़ी दिलचस्प है, और ये जो है विशेष रूप से इनकी जो है नियुक्ति पूर्व जन्म के आधार पर होती है, और उस बच्चे को जैसे ही उनका मृत्यु हो जाता है तो 5 साल के बाद उस बच्चे को ढूंढना शुरू किया, मतलब तुरंत उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मृत्यु के बाद कौन कौन से नए बच्चे जन्मे हैं, और फिर उनके पास जाकर दलाई लामा की कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, और जो लड़का उस चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दे देता है उसे ही दलाई लामा घोषित किया जाता है। तो ये दिलचस्प कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ थोड़ी देर में, और अभी आपको ले चलता हूँ मैं एक बहुत ही प्यारा सा विचार सुनाने वाला हूँ। विचार के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुंदर विचारों से सुंदर जीवन बनता है, आप सभी जानते हैं। तो मैं एक विचार आपको देना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमेशा अपने हौसलों को बुलंद रखिए ताकि जीवन में आप आगे बढ़ सकें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बहुत ही प्यारा संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए मैं आप सभी को ले चलता हूं विशेष दलाई लामा की जीवन कहानी से। शुरुआत में जोड़ना चाहूँगा, दलाई लामा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवन कहानी रोचक भी है, प्रासंगिक भी है और धार्मिक भी है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप सभी को आज इनकी कहानी सुनकर बेहद खुशी होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और आप सभी भी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कुछ बातों को जरूर उस पर गौर कीजिएगा।
3: दलाई लामा का मतलब होता है समुद्र की तरह गहरा, यानी बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु। और दलाई लामा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिस्ट माने जाते हैं। दलाई लामा तिब्बतन के आध्यात्मिक गुरु हैं और पूरी दुनिया के सबसे बड़े गुरुओं में से एक माने जाते हैं। तिब्बतन मानते हैं कि दलाई लामा बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा का पूर्ण जन्म है। यही कारण है कि उन्हें भगवान और राजा दोनों माना जाता है। तिब्बत में बुद्धिज्म की चार शाखाएं हैं, न्यांगमा, कग्यू, सक्या और गेलगू। दलाई लामा इनमें से गेलगू शाखा के मुखिया हैं, लेकिन गेलगू समुदाय हमेशा से ही महत्वपूर्ण समुदाय नहीं था। पांचवें दलाई लामा लोबसेंग गेस्टो ने मंगोल सम्राट घुसरी के मदद से पूरे तिब्बत पे अपना राज्य जमाया था और इसी समय गेलगू समुदाय की महत्वपूर्णता बढ़ी थी। इसी समय दलाई लामा के टाइटल से इन लामा को नमाजा गया था और इनके पहले दो गुरुओं को उनके मृत्यु के बाद दलाई लामा का खिताब दिया गया था।

इस तरह से अगर पहले गुरु से गिनना शुरू करें तो दलाई लामा का वंश 1391 से तिब्बत में शुरू हुआ था। दलाई लामा ने तिब्बत पर 1950 तक राज किया। उसके बाद चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इस वजह से दलाई लामा को भारत में आके शरण लेनी पड़ी। लेकिन आज भी तिब्बतियंस दलाई लामा को ही अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। दलाई लामा की जो चुनने की प्रक्रिया थी वो बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय है। कहते हैं कि हर दलाई लामा अपने से पहले रहे दलाई लामा का पुनर्जन्म माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सारे दलाई लामाज में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा की आत्मा है। किसी के पुराने जन्म से उसको पहचानने का चलन बुद्धिज्म में गौतम के समय से ही चला आ रहा है। बुद्धिज्म में ये समझाया गया है कि कैसे उनके पिछले जन्म का कर्म उनके इस जीवन को प्रभावित करता है। भारत में बुद्ध के बाद आए कई गुरुओं ने पुनर्जन्म के बारे में बताया है, लेकिन किसी को उसके पुनर्जन्म से जोड़कर उसको ढूंढने का ये काम पहली बार तिब्बत में हुआ था। हर दलाई लामा अपने जिंदा रहते ये अंदाजा लगाते हैं कि वो कहाँ किस जगह पर दोबारा पैदा होंगे। ये सुराग देने के लिए वो एक लंबी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं जिसे उनके मृत्यु के बाद खोला जाता है। फिर नेचुंग नाम के भविष्य पढ़ने वाले से पूछकर ये तलाश शुरू की जाती है। इस तलाश में सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि नए दलाई लामा को ढूंढना कहाँ पे है। अगर पुराने दलाई लामा का दाह संस्कार किया गया होता है तो उस चिता से निकले धुआं के दिशा से भी इसका एक संकेत माना जाता है। समुदाय के बड़े लोग उस जगह या उस दिशा में जाके दलाई लामा के मृत्यु के बाद पैदा हुए बच्चों से मिलते हैं। इन बच्चों को पिछले दलाई लामा से जुड़ी हुई कुछ चीजें दिखाई जाती है और जो बच्चा उस चीज को अच्छी तरह से पहचान जाता है उसको अगला दलाई लामा मान लिया जाता है। उस बच्चे को फिर मॉनेस्ट्री लेके आया जाता है। वहाँ उसकी देखरेख की जाती है, उन्हें ज्ञान शिक्षा दी जाती है। इस तलाश की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। शुरुआती दौर में ये तलाश सिर्फ तिब्बत तक ही सीमित रहती थी। हालांकि तीसरे दलाई लामा तुलुकु के मंगोलिया में ढूंढे गए थे। 6वें दलाई लामा के पहचान के समय विवाद खड़ा हो गया था। इसी कारण से उस समय के क्वेंग डायनेस्टी ने सोने के कलश में शॉर्टलिस्टेड हुए बच्चों के नाम डाल के लॉटरी से दलाई लामा का चयन शुरू किया। लेकिन ये विधि ज्यादा दिनों तक नहीं चली। तेंजिंग गायस्टो जो कि 14वें दलाई लामा है, उन्हें ढूंढने में 4 साल लगे थे। उनका जन्म 1935 में हुआ था और उनको दलाई लामा की गद्दी 1940 में मिली। तेंजिंग गायस्टो ने 1959 के चाइना आक्रमण के बाद भारत में आके शरण ली थी। उस समय डर ये था कि उन्हें तिब्बत में रहने पर मार दिया जाएगा। तब से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नाम के जगह पर दलाई लामा रहते हैं, जिनको 1979 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये प्राइज उन्हें अहिंसा से अपने मातृभूमि के आजादी के लिए लड़ते रहने पर मिला था। दलाई लामा के ये पुनर्जन्म का जो प्रक्रिया है वो दलाई लामा के मर्जी से ही होता है। इसमें कोई सरकार का जोर नहीं होता। दलाई लामा आज भी तिब्बत के लिए भगवान की तरह है। वो तिब्बतन के दुख दर्द को पूरे दुनिया से बांटते हैं। दलाई लामा तिब्बतन कल्चर और हेरिटेज को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। दलाई लामा अपने हर उपदेश में हमेशा करुणा, अहिंसा और जिम्मेदारी की पाठ पढ़ाए हैं। बुद्धिस्ट के अलावा उन्हें और भी सारे धर्मों के लोग उन्हें प्यार और इज्जत देते हैं। तो ये थी सच्चाई दलाई लामा की।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्वागत है और आशा करूंगा कि आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद परम पावन दलाई लामा से कहा गया कि वो पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ले और उन्हें दलाई लामा का पद दे दिया गया। चीन यात्रा पर शांति समझौता व तिब्बत से सैनिकों की वापसी की बात को लेकर 1954 में वो माओ जेडिंग डेंग जेपिंग जैसे कई चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए थे। परम पावन दलाई लामा के शांति संदेश अहिंसा अंतर धार्मिक मेल मिलाप सार्वभौमिक उत्तरदायित्व और करुणा के विचारों को मान्यता के रूप में 1959 से अब तक उनको 60 मानद डॉक्टरेट पुरस्कार सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। तो आइए इनके बारे में अधिक जानकारी आपको सुनाया हमने। आशा करूँगा उनकी कहानी जो है बड़ी अच्छी लगी होगी। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारा सा जो गीत है उसके बाद आपने सुना। अब आइए मैं लक्ष्मीबाई केलकर से आपकी बात कराना चाहूँगा। ये एक भारत की प्रख्यात समाज सुधारक महिला थी। उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति नामक एक संगठन की स्थापना की थी। उनका मूल नाम कमल था किंतु लोग उन्हें सम्मान से मौसी जी कहा करते थे। लक्ष्मीबाई केलकर जो है महाराष्ट्र नागपुर में इनका जन्म हुआ और 1905 में 6 जुलाई के दिन मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह वर्धा के एक विदुर आदिवक्ता पुरुषोत्तम राव केलकर से करा दिया गया था। लक्ष्मीबाई केलकर 6 पुत्रों की माता थी और लक्ष्मीबाई केलकर ने रूढ़िग्रस्त समाज से जमकर टक्कर ली थी। उन्होंने अपने घर में हरिजन नौकर रखे। महात्मा गांधी की प्रेरणा से उन्होंने घर में चरखा मंगाया। एक बार जब महात्मा गांधी ने एक सभा में दान करने की अपील की तो लक्ष्मीबाई ने अपनी सोने की जंजीर ही दान कर दी। इस तरह से राष्ट्रीय सेवा समिति की स्थापना उन्होंने की। 1932 में लक्ष्मीबाई केलकर के पति का देहांत हो गया और अपने बच्चों के साथ बाल विधवा नंदन का दायित्व भी उन पर आ गया। लक्ष्मीबाई ने घर के 2 कमरे किराए पर उठा दिए। इससे उनका समस्या कुछ हल हुई। इन्हीं दिनों उनके बेटों ने संघ की शाखा पर जाना शुरू किया। उनके विचार और व्यवहार में आए परिवर्तन से लक्ष्मीबाई केलकर के मन में संघ के प्रति आकर्षण जागा और उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगांवकर से भेंट की। उन्होंने 1936 में स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया। आगामी 10 साल के निरंतर प्रवास से समिति के कार्य का अनेक प्रांतों में विस्तार हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें लक्ष्मीबाई केलकर के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

एक महान शिक्षाविद और चिंतक होने के साथ साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे और आज भी एक बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी और कट्टर देशभक्त के रूप में याद किया जाता है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। सच्चे अर्थ में मानवता के उपासक और सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। संसद में उन्होंने सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को ही अपना प्रथम लक्ष्य रखा था। संसद में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने पुरजोर शब्दों से कहा था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। भारतीय इतिहास में उनकी छवि एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व वाले ऐसे इंसान की है जो अपनी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी अनेक भारतवासियों के आदर्श और पथ प्रदर्शक है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रखर राष्ट्रवाद होने के साथ साथ समाज कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत रहे हैं, तो ऐसे श्याम प्रसाद मुखर्जी की बातें। इनका जन्म आज ही के दिन 1907 को एक बहुत ही पॉपुलर बंगाल परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम जोगमाया देवी मुखर्जी था और पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल के जाने माने व्यक्ति और कुशल वकील भी थे। और डॉक्टर मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की प्रथम श्रेणी में 1921 में, और उसके बाद 1923 में एमए और फिर 1924 में बीएल किया उन्होंने, और 1923 में ही सीनेट के सदस्य बन गए थे। और अपने पिता की मृत्यु के बाद कोलकाता उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में अपना नाम दर्ज कराया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाद में सन 1926 में लिंक्स इन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर बन गए। तो ये थी कुछ खास बातें, और कुलपति का पद भी इन्होंने बाद में संभाला और राजनीति में आखिरी में वापस आए और हिंदू महासभा के नेतृत्व करते हुए अपनी राजनीति का सफर जो है सफल बनाया। और अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति ने मुस्लिम लीग को स्थापित किया था। डॉक्टर मुखर्जी ने हिंदू महासभा का नेतृत्व ग्रहण कर इस नीति को ललकारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके हिंदू महासभा में शामिल होने का स्वागत किया क्योंकि उनका मत था कि हिंदू महासभा में मदन मोहन मालवीय जी के बाद किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन की जरूरत थी, तो यदि वो कोई है तो ये श्याम प्रसाद मुखर्जी ही लग रहे थे। तो इस तरह से भारत विभाजन की मनोकामना पूर्ण नहीं होती और बहुत सारी हिंदू महासभा ताकत बनती तथा मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती थी और मार्गदर्शन की जरूरत थी। और कांग्रेस यदि उनकी सलाह को मानती तो हिंदू महासभा एक ताकत बन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीच में ही कुछ और चीज़ें आ गई जिसकी वजह से कहानी रुक गई। महात्मा गांधी की हत्या के बाद डॉक्टर श्याम मुखर्जी चाहते कि हिंदू महासभा को केवल हिंदुओं तक ही सीमित न रखा जाए अथवा यह जनता की सेवा के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय के रूप में ही कार्य ना करें। तो 23 नवंबर 1948 को इस मुद्दे पर इससे अलग हो गए और फिर उन्होंने सब चीज़ें जो है अस्त व्यस्त था देखा। और डॉक्टर मुखर्जी ने लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के मुद्दे पर 6 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक गुरु गोवलकर जी से मदद मांगी और उनसे बातचीत की और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की नींव रखी और इसके पहले अध्यक्ष बने। और इस तरह से 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने संसद की 3 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिनमें से एक सीट डॉक्टर मुखर्जी जी कराए और दूसरा संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनाई जिसमें 32 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा में से थे। हालांकि अध्यक्ष द्वारा एक विपक्षी पार्टी के रूप में भी इसे मान्यता नहीं मिली। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। और फिर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर डॉक्टर मुखर्जी को 11 मई 1953 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने हिरासत में ले लिया क्योंकि उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को एक प्रकार के पासपोर्ट के समान एक परमिट लेना पड़ता था और डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर चले गए थे जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर लिया गया। वहां गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 23 जून 1953 को रहस्यमय स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु का खुलासा आज तक नहीं हो सका।

भारत की अखंडता के लिए आजाद भारत में ये पहला बलिदान था। इसका परिणाम ये हुआ कि शेख अब्दुल हटा दिए गए और अगले अलग संविधान, अलग प्रधान और अलग झंडे का प्रावधान निरस्त हो गया और धारा 370 के बावजूद कश्मीर आज भारत का विभिन्न अंग बना हुआ है। इसका सर्वाधिक श्रेय डॉक्टर मुखर्जी को ही दिया जाता है। तो ये थी उनकी कुछ खास बातें श्याम मुखर्जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। भारत के बहुत ही पॉपुलर इतिहासविद, समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री थे। ऑल इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस की सक्रिय सदस्य रहे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपने समय के सामाजिक आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हुए अपने शोध आधारित निष्कर्षों के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने जाति प्रथा और बाल विवाह का खंडन करते हुए प्राचीन संस्कृति साहित्य के विद्वान की हैसियत से उन्होंने संस्कृत की प्रथम पुस्तक और सांस्कृतिक की दूसरी पुस्तक की रचना भी की, जो अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने की सबसे आरंभिक पुस्तकों में से एक है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के बारे में आज ही के दिन 1837 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मालवन नामक स्थान पर एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और पिता मालवन के मामलेदार के अधीनस्थ मुंशी के क्लर्क का काम किया करते थे। शुरुआती शिक्षा आई मुश्किल के बाद कठिनाई के बाद में इनके पिता का संस्थानांतरण रत्नागिरी जिले के राजस्व विभाग में हुआ, तो उन्हें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। फिर कहानी आगे बढ़ी और 1853 में मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला हुआ, जहां उन्होंने जिन जानी मानी हस्तियों से शिक्षा प्राप्त की उनमें पहले थे राष्ट्रवादी चिंतक और रेन थियोरी के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी मुख्य थे। दादा भाई नौरोजी के प्रोत्साहन के कारण ही अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान और गणित के प्रति इनकी रुचि बढ़ी और संस्कृत और पाली के ज्ञान के सहारे गौरवशाली अतीत के पुनर्निर्माण हेतु लेखन अपनाया और 1862 में एल्फिस्टन कॉलेज के पहले बैच से ग्रेजुएट होने का एक जो है सौभाग्य इनको मिला था। वहाँ पर बीए और एमए की परीक्षाओं से सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया और 1863 में इन्होंने विशेष उपाधि प्राप्त की थी। शिक्षा शास्त्री के रूप में फिर ये काम करने लगे हैदराबाद रत्नागिरी में। अलग अलग कॉलेज में विशेष रूप से प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया और रामकृष्ण भंडारकर की सबसे बड़ी देन लुप्त प्राय इतिहास के तत्वों में प्रकाश डालना और इसके विषय को लेकर वो काम करते रहे और फिर इसी काम के सहारे वो राजनीति का सफर भी इनका शुरू हो गया। ये प्रार्थना समाज के सक्रिय सदस्य थे और फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत बनाए रखने के पक्षधार में थे। ऑल इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस के सक्रिय सदस्य रहे। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपने समय के सामाजिक आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हुए शोध आधारित निष्कर्षों के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया और विधवा का पुनरुत्थान के लिए काम किया। समृद्ध समाज का निर्माण के लिए इस विवाह को उन्होंने न्याय दिलाया। तो ये थी कुछ खास बातें रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का। ऐसे महान व्यक्ति का 24 अगस्त 1925 को निधन हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। सुखबीर सिंह संधू के बारे में, ये भी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने जीवन में खास समाज के लिए समय दिया। भारत के नव युवक चुनाव आयुक्त है और उत्तराखंड के विभिन्न पदों में इन्होंने मुख्य सचिव पद पर महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले डॉक्टर SS संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया और उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड कर्ण प्रयाग रेल परियोजना को धरातल पर उतारने का महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। इसके साथ ही विशेष मंत्रिमंडल में ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ की प्रगति रिपोर्ट भी PMO सीधा सुखबीर सिंह संधू से ही लेता था, तो ये खास इसीलिए माने गए। और इनके जीवन काल में इन्होंने अलग अलग जो है चुनाव आयुक्त बनकर, सचिव बनकर अपना मुख्य भूमिका इलेक्शन के समय उन्होंने निभाई और इसीलिए भी उन्हें याद किया जाता है। और सिंधु जी को जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी की सरकार से उत्तराखंड का मुख्य सचिव बनाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पदाधिकरण के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो इसी के साथ चलिए मैं आपसे चाहूँगा अब इजाज़त, वक्त हो गया आपसे इजाज़त चाहने का, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। और जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत विचार अभी आपके नाम। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने में नहीं डरते। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे थे आप, और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्कार श्रोताओं, युवा मंच में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 2000 तो युवा मंच पे जैसे हम हर बार आपकी मुलाकात किसी ऐसे युवा से कराते हैं जो आपको प्रेरित भी करते हैं, तो आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे ओम से। अच्छा, ओम मिश्रा जी जो हैं वो बाय प्रोफेशन एक डेटा साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने MIT लीडरशिप इनोवेशन की बूट कैंप की हुई है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गोल्डन डेलीगेट हैं, कंट्रीब्यूटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज के फिनिशर हैं। यानी आज हम ऐसे एक व्यक्तित्व से आपकी बात करा रहे हैं जो फिजिकली फिट एंड मेंटली फाइन है। आज क्या आप तैयार हैं फिजिकली फिट और मेंटली फाइन होने के लिए? आइए मिलते हैं ओम जी से। नमस्कार ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा मंच पर।
1: किस सोमवार ये हमको यहाँ पे एक अनुमति से शेयर करने के लिए हमारे सारे ऑडियंस के साथ, आप सब इसे कुछ सीखें एंड कुछ नया आपके जीवन में हो। चलो हम इस बात पे शुरू करें।
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, ये बताइए कि और फिटनेस ये तो समझ में आती है, बट आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें स्पोर्ट्स के साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी दिल और दिमाग तो हम सुनते ही थे, फिजिकली फिट एंड मेंटली फाइन। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस की तरफ, इसमें आपकी रुचि कैसे जाएगी?
1: मेरे बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रही है मेरी
0: जी।
1: मैंने काफ़ी टाइम से अपने स्कूल और मैराथन्स में काफ़ी जाता रहता। पिछले साल मैंने हाफ मैराथन इंडिया लेवल पे कंप्लीट किया था एंड उसके साथ साथ मैंने इवन अपने कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए गोल्ड मेडल पाने के लिए मैंने ट्राई किया था इसमें लाइक। और मैंने रिसेंटली 75 हार्ड चैलेंज का भी लेके उसको भी ख़त्म किया है। मैंने टारगेट किया कि मतलब 15th ऑफ अक्टूबर स्टार्ट करो एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर 31st ऑफ दिसंबर ये चैलेंज ख़त्म की जाए, ताकि पूरा साल का जो सार है मैं 2023 में अच्छे से निकाल सकूं।
0: वाह, एक्सप्लेनेशन के दौरान आपने कोई चीज़ बताई 75 हार्ड चैलेंज। ये 75 हार्ड चैलेंज क्या चीज़ है?
1: सो 75 हार्ड चैलेंज एक चैलेंज है जो लोगों का मेंटली टफनेस टेस्ट करता है। अच्छा। कि वो कितना अपने लेवल को पुश कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें चीज़ें करनी होती है जो रोज़ के रोज़ होती है
0: जी।
1: सो फर्स्ट है कि आपको रोज़ 1.5 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज करनी होती है।
0: 1.5 आवर्स पर डे?
1: पर डे।
0: ये क्या एक ही टाइम पे करना होता है स्ट्रेच, या पूरे दिन में आधा आधा घंटे के सपोज 3 स्लॉट्स में भी कर सकते
1: हैं? नहीं, इसमें 2 स्लॉट्स होते हैं, मतलब 45 मिनट्स का एक आउटडोर स्लॉट्स होता है और 45 मिनट्स का एक इनडोर स्लॉट होता है।
0: अच्छा।
1: और उसके साथ हमको 3-4 लीटर का पानी पीनी होती है, कोई भी नॉन फिक्शनल किताब पढ़नी होती है 10 पेज,
0: और नॉन फिक्शनल
1: के साथ एक सेल्फी रोज लेनी होती है ताकि हम अपने को ट्रैक कर सकें कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है ओवर द पीरियड ऑफ 75 डेज। एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको क्लीन डाइट खानी होती है।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: तो ये मुझे अगले सवाल पे ले आता है कि क्लीन डाइट से फिर आप क्या समझते हैं?
1: सो क्लीन डाइट का मतलब ये है कि ज़्यादा ना मसालेदार या ऑयल में ज़्यादा ये हो कि चीज़ वगैरह हो, वो सब ना होना चाहिए। ज़्यादा रियलिस्टिक बाय ज़्यादा जिसमें प्रोटीन वगैरह हो, जिसमें मतलब हम क्या खा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, सुबह उठ के स्प्राउट्स, देन डेट्स हो गया खाने, दलिया नहीं तो ओट्स मील, ये ब्रेकफास्ट में आ गया। फिर लंच के लिए हमने ले लिया रोटी दाल और उसके साथ थोड़ा पनीर की सब्जी। फिर रात से पहले शाम में हमने छेना खा लिया, फ्रूट्स की बाउल खा ली।
0: माय गुडनेस, आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर सकता हूँ, कहीं बात ही नहीं की।
1: रात को सोने से पहले दूध पी के सो जाता था ताकि सुबह उठ के फ्रेश पेट खाली पेट स्टार्ट कर सकूं।
0: नो वंडर आप इसको 75 हार्ड चैलेंज बोलते हैं, मेरे से तो 5 दिन भी ना हो। तो 70 ये बताइए इसमें आपको रैंक कौन करता है, या ये सेल्फ असेस्ड है, या जैसे आपने कहा कि हर दिन आप अपनी सेल्फी भी लेते हैं प्रोग्रेस चेक करने के लिए, खाना आपको जैसे एक फिक्स्ड या बड़ा रेजिमेंटेड सा डाइट खाना होता है, इतनी एक्सरसाइज करनी होती है, किसी दिन सपोज आपने चीट कर दिया, कौन जज करता है?
1: सो ये एक सेल्फ कॉन्शियस रूल है, मतलब गेम वो 75 हार्ड चैलेंज का, कि अगर आपने कभी चीट भी किया या आपका कोई भी एक इनमें से पांचों चीज में से कोई छूट भी गया
0: जी,
1: तो आपको डे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा।
0: और कोई वर्ल्ड वाइड संस्था है, मतलब कैसे जुड़ते हैं और कैसे प्रमोट करते हैं?
1: यूएस में एक जन ने स्टार्ट किया और उसके बाद काफी लोग इसमें फेल होने लगे, तो ये काफी ये जो चैलेंज है वायरल चला गया। इसका मोटिव था कि लोग काफी मोबाइलों पे आते हैं, स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं और अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं देते
0: जी, जी।
1: तो उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब अपने को फिट रखना प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे इंडिया में आने लगी। इंडिया में आने के बाद काफ़ी लोगों ने इसको सीरियसली लेकर ट्राई किया, फिर इंडिया में भी लोग फेल होने लगे। उसके बाद एक यूट्यूबर थे, इन्फ्लुएंसर अंकित वन्नापुरिया करके, अच्छा। राम राम भाई सारिया ने बोलते हैं, उन्होंने ये कंप्लीट किया। फिर काफ़ी लोग उसके बाद कंप्लीट करने लगे।
0: वो क्या भारत के पहले थे जो कंप्लीट करने वाले?
1: एक उनमें से एक थे जो भारत के, अच्छा। जो कंप्लीट किया एंड या तो उसके बाद ही मैंने भी सीखा कि ये लोग हम लोग भी कर सकते हैं, तो मैंने भी ये चैलेंज उठाया एंड रोज के रोज करते हुए फाइनली ऑन 28th of December 2023 मैंने कंप्लीट कर दी।
0: अरे 75 डेज का चैलेंज, वाह, मान गए आपको। तो एक तो ये आपने 75 डेज की फिटनेस वाली बात कही, अब हम आपसे AI के बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आएंगे AI पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, वेलकम बैक टू 107.8 एफएम रेडियो मधुबन। आप सुन रहे हैं युवा मंच, जिसमें आपके साथ हैं आपके सबसे युवा आरजे रवि, और साथ में हमारे हैं आज के युवा गेस्ट श्री ओम, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आप सुन रहे होंगे, हमने जाने से पहले कुछ बातें करी थी एआई के बारे में। इसी ब्रेक के दौरान मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा था, एआई आओ आए आ। आपके मन में भी क्या यही गाना आया? लेकिन एआई का मतलब ये नहीं है, एआई का मतलब है, चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं।
1: सो एआई को लेके अभी हम देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है, एंड हम जब भी YouTube वगैरह खोलते हैं ये काफ़ी बार आता रहता है, AI क्या है, ChatGPT क्या है, ये प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, ये लोग पूछते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग YouTube में कुछ भी सर्च करते हो, सपोज़ फॉर एग्जांपल अब जूता खरीदना है, जूता के लिए आप सर्च करते हो कौन सा है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आते हो आपको दूसरे जूतों के ब्रांड के बारे में बताता रहता है। तो ये कैसे होता है? ये सब है AI को लेके।
0: ओम जी, आपने तो मेरे मन की सवाल पूछ ली, बल्कि मैं जो है बहुत ही क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो एक बार जब मैंने क्रिकेट देखा तो उसके बाद से मुझे ये आश्चर्य हुआ कि हर बारी वो क्रिकेट की वीडियोज ही कैसे दिखाता है। अब जाकर मुझे आपकी ये चीज समझ में आई। तो AI के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे काम करता है?
1: सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करता है कि जैसे हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल कि कोई भी एक चीज़ को हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं उसका पीछे का जो चीज़, मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। तो मशीन क्या करता है कि जब भी हम कोई एग्जांपल सर्च करते हैं वो डेटाबेस में जाता है, उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होता है, जितना भी डेटा होता है वो लाके आपको जो रोमांचक लगे वो इन्फॉर्मेशन शो करता है। ये कैसे करते हैं? सो इसके पीछे एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। आपका डेटा लेता है, समझता है आपको क्या चाहिए और उसके रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है, रिकमेंड करता है। सो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जैसे कि आप अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हो या आप इंस्टाग्राम कर रहे हो, आप सपोज़ कोई एक भूत का फिल्म देखे या कोई एक कार्टून का फिल्म देखे ऐसा कुछ, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप उसको, आप फिर से वो आपको वही चीज़ें रिकमेंड करता है। तो वो क्या करता है कि आपके सारा डेटा लेता है, चेक करता है कि आपको क्या क्या पसंद है और उसको रिलेटेड क्या क्या बैकएंड में और है वो आपको थोपता है, ताकि आप क्या करो उससे उस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टिको, उस पर ये अमेजन पे टिको ज़्यादा टाइम या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे
0: जी।
1: तो उस टाइप सो इस उसको ये जो पूरा प्रोसेस है इस पर लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: जी जी, अच्छा, पर एक बात बताइए, अगर चलो ये तो हमारे फेवरेट चीज़ों के लिए तो समझ में आ गई, बट आपको अगर उससे हटके या कुछ अलग चीज़ें देखनी हो तो क्या ये भी संभव है उसमें?
1: यस, उसमें ये भी संभव है। हमने देखा है कि सब बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, रिसर्च किए हैं इसको लेके, कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है स्पोर्ट्स, फिर अचानक से वो सर्च करने लगे अबाउट कार्स, तो वो क्या करता है कि स्पोर्ट्स और कार्स को मिलकर स्पोर्ट्स कार्स दिखाता है जिसमें आपको दोनों में रुचि है।
0: अच्छा,
1: एंड कल जाके अगर आपने सपोज सर्च किया Formula 1 जो गाड़ियों का स्पोर्ट्स रेस है, तो उसके रिलेटेड जो क्लॉथिंग ड्रेसिंग सेंस है या उसके रिलेटेड जो फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उसमें, वो सब शो होना स्टार्ट होता है, नॉट ओनली इन यूट्यूब बट इवन इन गूगल और इवन इन अदर लाइक स्पॉटिफाई में म्यूजिक सेट, वहाँ से आने स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, और ये ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म में हुकअप करके रख सके, तो ये उनका बिजनेस मॉडल है।
0: अरे वाह, तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मेंटली फाइन रहने के लिए आप खुद क्या करते हैं?
1: सो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो युवा लोग हैं वो ये मोबाइल्स पर बहुत टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं
0: जी,
1: जाने और अनजाने में, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट पल होते हैं जो गवा देते हैं लोग जस्ट बिकॉज ये मोबाइल में हुक्ड अप रहते हैं ऑल द टाइम।
0: बल्कि अगर आपको इंटरप्ट करके मैं अपनी बात कहूँ तो कई बार रात को सोते हुए भी ये लगता है कि चलो यार एक यूट्यूब का शॉर्ट्स तो देख के सोएं, और वो करते करते क्या होता है फिर वो रात को काफ़ी टाइम खींच जाता है।
1: हाँ,
0: सेल्फ डिसिप्लिन मेरे ख्याल बहुत जरूरी होती
1: है, बहुत ज्यादा होती है। एंड मैं जब 75 हार्ड चैलेंज कर रहा था तब भी ये एक बहुत बड़ी पाबंदी थी मेरे पे कि ये कैसे मैं ओवरकम करूं। तो मैंने उस टाइम क्या किया था कि हर हर डिवाइस, हर मोबाइल में, एंड्रॉयड हो कि एप्पल की हो, उनकी एक है डिजिटल वेलबींग करके एक है, मतलब सेटिंग्स पे अगर उस पर क्लिक करें तो वो आपको वार्निंग देती रहती है कि देखो आपने इतना टाइम स्पेंड कर दिया अपने मोबाइल पे। तो इससे क्या होता है ना, एक सेंस ऑफ गिल्टीनेस आप में जनरेट करने की कोशिश किया जाता है।
0: जी, एक एक रुचि की बात बताऊं, अगर आप देखें तो ये स्क्रीन के साइज जो है ये प्रोग्रेसिवली कम होते जा रहे हैं। मतलब मुझे याद है जब बचपन में हम जाते थे 3 घंटे की फिल्म देखने, तो सारे 300-350 लोग इकट्ठे बैठ करके और फिल्म देखते थे बड़े से पर्दे पर।
1: जी,
0: वो फिर छोटा होते होते टीवी बना, टीवी छोटा होते होते लैपटॉप बना, लैपटॉप छोटे छोटे होते होते अब तो एंड्रॉयड फोन बन गया, जिसके अंदर आप वही सारी चीजें इतने से स्क्रीन पे देखते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी आंखों में एफर्ट उतना ही ज्यादा या स्ट्रेस ज्यादा होगा।
1: राइट। और सिंस आपने इसकी बात की है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी इसके पीछे रहते हैं, ये जो लोगों को स्क्रीन टाइम में पकड़ के रखने के लिए। तो हम जो जीमेल का देखते हैं या कोई खाने का ऐप जैसे स्विगी वगैरह देखते हैं, उसमें जो आइकॉन्स होते हैं डिफरेंट बटन्स, उनके पीछे भी काफ़ी कैलकुलेशंस किए गए, मेंटल कैलकुलेशंस किए गए थे कि साइकोलॉजिस्ट को यूज़ करके कि कहाँ पे कौन सा बटन प्लेस करें, कहाँ पे कौन सा कैसे कलर करें।
0: अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कौन स्क्रीन पे कौन सी बटन किस फॉन्ट की और किस कलर की होगी और कहाँ प्लेस होगी।
1: हाँ, ये भी पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंड करके किया गया, ताकि लोग बार बार आते रहे और उस पोजीशन उसको सीमलेसली टच करते रहे।
0: वाह, क्या बात है। इससे जुड़ा एक और इश्यू कल देखा था, जैसे कि अभी तो काफी लोग यूट्यूबर्स भी हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, और कंपनीज क्या है, एडवर्टाइजिंग से ही, लिहाजा यही बात है कि उसी से कमाते हैं।
1: हाँ,
0: कंपनीज से वो कमाते हैं ऐड डालने के लिए, और आपसे कमाते हैं ऐड फ्री देखने के लिए।
1: राइट
0: है ना।
1: यस।
0: अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अब आप देखते होंगे कि जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, तो नेचुरल इंटेलिजेंस कितनी कम हो गई है इन दिनों में, कितना बदल गया है इंसान, है ना। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक बार आपका स्वागत है युवा मंच में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी येट युवा ओम मिश्रा जी हैं साथ में, और हम उनसे बात कर रहे हैं। ही इज एन AI एक्सपर्ट एज वेल एज
1: अ फिटनेस एंथुजियास्ट।
0: हमने बात की थी कि किस तरह से आजकल हमारी जिंदगी में कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और हर वक्त आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में किस तरह से एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कितने की बात है ना, वेरी आयरोनिकल कि मनुष्य ने कंप्यूटर को बनाया और आज कंप्यूटर आपको किसी भी काम करने से पहले पूछता है कि या तो कैप्चा एंटर करो या प्रूव दैट यू आई एम नॉट अ रोबोट, यानी आप अपने आप को एक मनुष्य प्रूव करो। तो कल को ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि कंप्यूटर्स माइट रूल आवर वर्ल्ड, बट इसके लिए हमें अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में आइए हम ओम जी से पूछते हैं कि हाउ डज ही मेंटेन हिज मेंटल बैलेंस। आप क्या करते हैं अपने मेंटल फैकल्टीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए?
1: जी रवि जी, तो ये जो मेंटल हैबिट्स आ गए अपने पास, सो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब अराउंड 2010 के आर पास मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, उसके बाद ही मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आत्मा क्या होती है
0: जी।
1: एंड उसके बाद मैंने खोजते खोजते मैं शिवानी बहन तक पहुंचा, बीके शिवानी बहन। तो उनके एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि आत्मा जो है, हम सब आत्मा। तब मेरा मन में लगा कि हम जीवित हैं, हम आत्मा भी हैं, ये कैसे हो सकता है
0: जी।
1: तब मैंने और मैं उनके थ्रू मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, और फिर मुझे पता चला कि हमारे घर के पास भी एक सेंटर है ब्रह्म कुमारीज का,
0: बहुत अच्छा।
1: और फिर मैं वहाँ गया एंड मैंने 7 डेज के कोर्सेज किए, एंड उसके बाद ही मैं बाबा का ज्ञान में आ पाया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने मुरली सुनना स्टार्ट किया,
0: बहुत सुंदर।
1: स्टार्टिंग में मुझे उतना समझ में नहीं आया क्योंकि सिंधी में था मोस्ट ऑफ दैट, एंड मुझे हिंदी आती थी, सिंधी का कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आते थे।
0: अच्छा।
1: पर धीरे धीरे जितना मतलब कंठस्थ होते गए हम एंड उसके अंदर जाते गए, मुझे गहरा समझ में आई मतलब मुरली की। एंड रोज़ मुरली सुनने के बाद मैं लाइफ में काफ़ी मिरेकल्स होने लगे।
0: अरे वाह। एंड कुछ इसके बारे में कोई कुछ एक एग्जांपल जो शेयर करना चाहिए?
1: का बहुत शौक था, जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने, लेकिन मैं कुछ उस टाइम पे IIT JEE के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं काफ़ी मोटा हो गया था, एंड आई वाज 120 kgs दैट टाइम। एंड लाइक मेरे क्लास में सब टाइप के लड़के थे, लंबे पतले छोटे मोटे सब थे, एंड सब मैं भागने गया, एंड ताज्जुब की ये बात है कि मैं सिलेक्ट हो गया।
0: अरे
1: फाइनल के लिए
0: बड़ी खुशी की बात है। तो ये आप एट्रीब्यूट करते हैं अपने उस मेंटल फैकल्टीज की वजह से?
1: यस, मैं खुद शॉक था कि इतना वेट होने के बाद भी, इतने क्लास में इतने टाइप के लोग होने के बाद भी मैं सिलेक्ट हो गया।
0: अरे
1: एंड फिर मैं गया फाइनल डे में, एंड फाइनल डे हम भागे, एंड आई गॉट 100 meters में गोल्ड मेडल मिला मुझे।
0: क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह वाह वाह वाह। और
1: एंड इसके बाद से ही स्पोर्ट्स में तो इच्छा थी ही, एंड मैं और एक रोमांचक चीज़ थी कि मैं उसके बाद JEE का एग्ज़ाम दिया, मेंस दे के आया। मेंस देने के बाद आई वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो न्यूज़पेपर के थ्रू टैली करते थे आंसर शीट के ठीक हुआ है कि नहीं।
0: अच्छा।
1: और उनको लगा कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो मैं दूसरे एग्जाम्स के लिए बैठाने लगे, दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए,
0: मतलब वो एक प्लान बी तैयार करने लगे कि
1: प्लान बी एग्जैक्टली
0: इसमें सक्सेस ना हो तो।
1: यस। तो फिर लेकिन मुझे अपने पे भरोसा था, मुझे बाबा पे भरोसा था।
0: वाह।
1: मैं मेडिटेशन करता गया
0: जी,
1: और फिर जब रिजल्ट आई वो भी शॉक हो गए कि मैं सिलेक्शन हो गई।
0: तो ये पहली बार आपके साथ हुआ कि फिजिकल और मेंटल फैकल्टीज दोनों साथ में ही, 100 meters का गोल्ड मेडल और IIT के एंट्रेंस एग्जाम में।
1: यस।
0: क्या बात है।
1: तो मेंस वैसे मेरा क्लियर हो गया और मैं एडवांस के लिए प्रोसीड किया। तो ये थी मेरी वहाँ। और आज के आज टाइम पे जहाँ पे हम मोबाइल में इतने डूबे हुए हैं
0: जी,
1: तो मैं अपना ये मेंटल हेल्थ संभालने के लिए मैं रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद मुरली सुनता हूँ बाय नॉट फेलिंग इट बाय एनी चांस।
0: वाह।
1: तो इससे क्या होता है कि मैं दिन एक पॉजिटिव नोट में शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे शरीर के चारों तरफ एक गोल्डन कवच आ गई है
0: एक औरा, एक कवरिंग है आपके, पॉजिटिव कवरिंग आपके बॉडी के ऊपर।
1: फिर दिन में कुछ भी हो,
0: यानी आपने अपने ख्यालों को इतने सुंदर खूबसूरत तरीके से बनाया है कि वो सारा दिन वो कवच आपके ऊपर ही अवेलेबल रहे। आइए इसी बात पे हम सुनते हैं एक बड़ा सुंदर सा गाना, ख्यालों को यूं खूबसूरत बनाऊं।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: वेलकम बैक टू युवा मंच, और आपका युवा आरजे रवि के साथ हैं युवा ओम। अभी जैसे आपने सुना, ख्यालों को खूबसूरत बनाए, जैसे हम देख रहे थे कि आजकल कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा बोलबाला है हमारी ज़िंदगी में, और एक ऐसा स्टेज आ रहा है जब कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। बट कंप्यूटर को बनाया किसने? मनुष्य ने। अगर मनुष्य को कंट्रोल कंप्यूटर्स को करना है, तो लिहाजा उसको अपने थॉट को भी कंट्रोल करना है, और थॉट को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है मेडिटेशन, जो हमें ओम जी ने बताया। आइए अभी उनसे पूछते हैं कि वो अपना बैलेंस किस तरह मेंटेन करते हैं, और आगे अगर इस फील्ड में किसी को जाना है तो वो क्या और कैसे जा सकते हैं।
3: सर कौन से फील्ड के बारे में आप बोल रहे हैं? फिटनेस?
2: अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आप तो हरफन मौला हैं। आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी एक्सपर्ट हैं और फिजिकल फिटनेस। आपको श्रोताएं बता दें कि हम दोनों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट की रखी हुई है, उनके आर्म्स लेंथ के बाहर बैठा हूं ताकि कहीं गलती से नज़दीक ना बैठ जाऊं। वैसे मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछना चाहता था पहले, कि अगर आज का कोई युवा इस फील्ड में जाना चाहे तो उसको क्या, व्हाट शुड ही फॉलो, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे इसको परस्यू करना चाहिए?
3: जी रवि जी, सो किसी को अगर इस फील्ड में आना है डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों में, तो वो सबसे पहले अपना पाइथन पढ़ना स्टार्ट करें। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है।
2: पाइथन? आज तक तो पाइथन में सिर्फ सांप को समझता।
3: एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पाइथन है, तो उसको लोग पढ़ना स्टार्ट करें। उसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी फ्री रिसोर्सेज हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, लोगों को पैसे देके खर्च करके पढ़ने की जरूरत नहीं।
2: आपका कहना है कि यूट्यूब सिर्फ मेरे जैसे क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए नहीं है, इंस्ट्रक्शनल भी है।
3: जी जी,
2: सबसे पहले पाइथन पढ़ना शुरू करें, उसमें से इंस्ट्रक्शनल वीडियोस देखना शुरू करें। आगे
3: उसके बाद एक कैगल करके एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कम्युनिटी बैठती है।
2: अच्छा।
3: वहाँ पे लोग अपना कोड वगैरह डालते हैं, और लोग वहाँ पे दूसरों का कोड भी पढ़ते हैं, और वहाँ पे लोग कॉम्पिटिशन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं।
2: अरे वाह।
3: और उससे नौकरियाँ भी लगती हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ,
2: तो यानी सिर्फ YouTube से पढ़कर ही आपकी नौकरी

0: लग सकती है
1: यूट्यूब में पढ़ के कैगल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेके
0: जी
1: हाँ जरूर, और उसको छोड़ के भी, और एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन बोल के, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म
0: ओके।
1: तो वहां पे क्या होता है कि काफी जॉब पोस्टिंग आती है ये,
0: तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: अच्छा,
1: तो लोग अपना रेज्यूमे बना सकते हैं एंड प्रोफाइल वहाँ पे पोर्टफोलियो बना के डाल सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए
0: जी।
1: तो उसके थ्रू काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बाकी कंपनी से काफ़ी करियर पेजेस होते हैं,
0: अच्छा
1: उसमें भी डिस्प्ले होता है कि किसको AI इंजीनियर चाहिए या AI कंसल्टेंट चाहिए, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और
0: तो यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, तो ये क्या प्रोजेक्ट बेस्ड होता है या जैसे अगर कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया तो जैसे पुराने ज़माने में होता था, चलो टाटा बिरला ज्वाइन कर लिया तो थ्रू आउट आप उस कंपनी के साथ रहेंगे, वैसा होता है या आजकल प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है कि एक प्रोजेक्ट दिया आपको वो ख़त्म, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट सा?
1: या तो दो टाइप के जॉब होते हैं, एक तो फुल टाइमर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं
0: जी,
1: लेकिन उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन GD जैसे बोलते हैं उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि वो जॉब किस टाइप का है। मोस्टली जो जॉब्स के लिए लेते हैं लोग वो फुल टाइमर्स जॉब्स होते हैं।
0: अच्छा,
1: और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के लिए भी वहाँ पे काफ़ी Naukri.com हो गया कि Monster.com हो गया, उन सारे वेबसाइट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस मिलते हैं, बट जनरली लोग जो जाते हैं वो फुल टाइमर्स के लिए जाते हैं एंड मोस्टली जॉब्स जो होते हैं वो फुल टाइमर्स की होती है।
0: तो एक बात बताइए, मतलब ये अब जैसे मुझे अचानक कोई बोले कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट तो ओवरनाइट तो नहीं आ सकता,
1: नहीं नहीं
0: तो ये बल्कि स्कूल टाइम से ही किसी बच्चे की प्रवृत्ति अगर ऐसे हो तब इट विल बी ईजियर, या ऐसा फील्ड है जो आप से यू कैन ब्लूम लेट, आप बाद में भी आ सकते हो?
1: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फील्ड है ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से ही कंप्यूटर में होना है। आप इवन आपको किसी का करियर अगर एग्रीकल्चर में है
0: जी,
1: या किसी का करियर अगर इसमें क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल का है, सिविल इंजीनियर है, वो लोग भी आ सकते हैं इसमें। जस्ट आपको पाइथन और पाइथन में आपको थोड़ा पॉलिश करना है अपना स्किल को
0: जी,
1: और उसके बाद थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आपको कैगल हो गया या हो गया लिंक्डइन पे अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके थ्रू आप हाईलाइट कर सकते हो कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे कि जॉब के लिए।
0: अच्छा, तो इसमें स्टार्टिंग में कई रिजेक्शंस भी होती होंगी?
1: ज़रूर
0: क्योंकि कहते तो हैं ट्राई ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। अच्छा, अभी हम आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे,
1: फिटनेस,
0: फिजिकल फिटनेस।
1: Yes.
0: अब देखिए हमारे कंट्री भी धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है अभी जैसे आप देख रहे हैं, एक ज़माना वो था जब एक सिंगल मेडल लाने के लिए ओलंपिक्स में हम पूरी मतलब देश एक हो जाता था। मुझे याद है 96 में लियांडर पेस ने टेनिस में, 2000 में शायद करनाम मलेश्वरी जी थी जो वेटलिफ्टिंग
1: राइट
0: है ना, और उसके बाद शायद हर साल मतलब हर चार साल में एक या दो मेडल ही थे, और बलगत पिछले ओलंपिक्स में ही शायद हमने 6 या 7 जीते थे, अभी तक हम डबल फिगर्स तक नहीं पहुंच पाए। बट एक चीज़ ये ज़रूर हो रहा है कि द कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए आप अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहे तो आप क्या सलाह देंगे उसको?
1: ज़रूर, सो फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉलेजेस के लिए स्कूल्स के लिए एक स्पोर्ट्स कोटा करके रखा है।
0: अच्छा,
1: ताकि लोगों को उसके थ्रू जॉब्स मिल सके आगे जाके, और उसको छोड़ के कॉलेजेस एंड
0: पर इसके लिए तो आपको कुछ एक लेवल तक कंप्लीट किया होना चाहिए ना, तभी तो आप उस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे।
1: वो कोटा आप अगर आपके स्कूल लेवल में या इंट्रा स्कूल लेवल पे आपने किया है तो आप उसके लिए लेवल अप हो सकते हो। बाकी उसको छोड़ के भी अगर आप कभी काफ़ी कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे फिटर कम्युनिटी एक है स्पोर्ट्स को लेके फिटनेस को लेके, वो काफ़ी लोगों को इंकरेज करती है कि वो आगे चल के स्पोर्ट्स को प्रमोट करें।
0: अच्छा,
1: नॉट ओनली लाइक मतलब क्या रीजन वाइज स्टेट वाइज इवन अंडर 19 अंडर 20 ऐसे करके वो लेवल अप करते रहते हैं। और बाकी एक है कि मतलब कम्युनिटीज तो एक हो गई स्पोर्ट्स के लिए, बाकी अब स्टेडियम्स काफ़ी हैं जो स्टेडियम्स के थ्रू भी लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, स्टेडियम्स एंड इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी ट्रेनिंग्स होती है। जैसे मुंबई काफ़ी फेमस है क्रिकेट्स के लिए एंड आप हैदराबाद आओगे तो इट्स वेरी फेमस फॉर बैडमिंटन, यहाँ पे गोपीचंद बैडमिंटन है,
0: वेरी नाइस।
1: सो उस टाइप का मतलब हर सिटी में एक एक स्पेशलिटी होती है स्पोर्ट्स को लेके। एंड अब कोलकाता जाओगे तो फुटबॉल को भी वो काफी इंकरेज
0: मैं बोलने ही वाला था अब कोलकाता और फुटबॉल का नाम अभी तक आया नहीं ऐसे कैसे हो सकता है
1: सो वहाँ पे डिफरेंट क्लब्स होती हैं क्लब्स जहाँ पे लोगों को इंकरेज करते हैं एंड और एक है कि एक यूथ क्यूबिनेटर करके एक है कम्युनिटी जो स्पोर्ट्स के लिए हेल्प भी करती है लोग यूथ क्यूबिनेटर्स करके
0: ओके तो ये तो आपने जनरल बात बताई अब मैं बिल्कुल आप पे ही आता हूँ आपने हैदराबाद की बात बताई आपने कलकत्ता की बात बताई तो आप अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाउ यू केम टू बी एसोसिएटेड विद दीज टू सिटीज
1: राइट राइट सो कमिंग टू कोलकाता मैं लाइक इट्स द प्लेस वेयर माई पेरेंट्स वर्क तो वहाँ से मैं तो वहाँ पे मेरा स्कूलिंग वगैरह हुई थी तो उधर मेरी काफ़ी स्पोर्ट्स के लेके लाइक फुटबॉल में मेरी काफ़ी रुचि रही है बचपन से फुटबॉल एंड क्रिकेट तो मैं काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग था अपने कॉलेज में सॉरी स्कूल में क्रिकेट में इंट्रा क्रिकेट एंड क्रिकेट खेलने में बाद में जाके मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट आ गई तो मैं काफ़ी फुटबॉल इंटर हाउस हो गया इंटर स्कूल हो गया फुटबॉल में भी कंट्रीब्यूट करने लगा एंड जैसे जैसे मैं वहाँ से निकल के यहाँ हैदराबाद आया बिकॉज मेरी जॉब लोकेशन हैदराबाद थी
0: जी
1: तो मैं उसके बाद मैराथन्स में काफ़ी इंटरेस्ट होने लगा तो लास्ट ईयर मैं 21 किलोमीटर्स की मैराथन कंप्लीट की
0: यहाँ पे मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा मैराथन भी मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी मतलब अप एंड कमिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है मैंने देखा है स्पेशली मिडिल लेवल एज के लोग भी आजकल रनिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं क्या कारण हो सकता है इसका इज इट बिकॉज इट इज लाइक वेरी चीप You don't need much training, ऐसा कुछ है क्योंकि देखिए कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए आपको जैसे कुछ बैट बॉल रैकेट कुछ तो खरीदना पड़ता है लेकिन रनिंग के लिए क्या है आपको रनिंग शूज खरीद लिए तो और आपके अंदर जिगर होना चाहिए
1: राइट सो मैराथन को लेके ना रिसेंटली वर्ल्ड वाइड एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जैसे कि आपको पता होगा कि आयरन मैन करके एक कॉन्सेप्ट है
0: जी जी
1: yes. जो पहले आती है मतलब पहले होता है उसमें अपना साइकिलिंग फिर स्विमिंग फिर रनिंग
0: जी
1: सो रनिंग जो है ना मतलब अभी काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं बहुत सारे एन जी ओज भी हैं वो लोग कम टुगेदर करके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं रनिंग को फोकस करके जैसे कि एक पिंक मूवमेंट हुई थी पुणे में
0: जी
1: वो ब्रेस्ट कैंसर को बचाने के लिए
0: उसके
1: हाईलाइट करने के लिए हुई थी तो वो भी मैराथन के बेसिस पे हुई थी हर साल
0: बल्कि यहाँ फिर से थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा जैसे आपने क्रिकेट की बात कही तो ग्लेन मैकग्रा वो हर साल अपने वाइफ जो कि ब्रेस्ट कैंसर से शी हैड डाइड उनके बिहाफ पे एक टेस्ट हमेशा वो अच्छा। खेलते हैं जिसमें वो उसको पिंक टेस्ट भी बोलते हैं
1: राइट राइट राइट
0: बिकॉज आई थिंक द कलर पिंक इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर
1: यस यस
0: तो सॉरी हाँ मैंने आपको इंटरप्ट किया था
1: हाँ
0: बताएं
1: और लास्ट ये है कि अभी एक रिसेंटली हैदराबाद में भी एक डेविल सर्किट करके स्टार्ट हुई है जहाँ पे डिफरेंट पीपल ऑफ मैराथन दे कम टूगेदर एंड दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर टू सी लाइक हु इज द फास्टेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आयरन मोस्ट मैराथन पर्सन इन द वर्ल्ड सो हैदराबाद इंडिया में हैदराबाद चेन्नई दिल्ली इसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ये कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और इसको छोड़ के भी अभी इंडिया में एक इंडिया लेवल का मैराथन भी आने वाला है जहाँ पे लोग स्टार्ट करेंगे मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी एक मैराथन होगी लंबा मैराथन तो उसके भी अभी प्लानिंग चालू है मैराथन कम्युनिटी के अंदर
0: पर एक बात बताइए इतनी लंबी मैराथन हो भी सकती है मैराथन मतलब एज इन 42 का ही होता है ना
1: राइट राइट राइट 42 का होता है लेकिन ये क्या है कि एक ग्लोबल लेवल पे नया इंडिया के अंदर एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग ताकि कुछ वंदे भारत मैराथन उसका नाम होगा ऐसा जहाँ पे वो लोग मतलब नॉट ए सिंगल डे ब्रेक्स होंगे चेक पॉइंट्स होंगे चेक पॉइंट्स कवर करते हुए मैराथन के लोग आएंगे लास्ट तक तो जैसे कि अल्ट्रामैन है अल्ट्रामैन में क्या होता है कि पहले वो जाते हैं साइकिलिंग करके साइकिलिंग करने के बाद वो स्विमिंग करते हैं स्विमिंग करने के बाद लास्ट का पड़ाव जो होता है वो भागने का होता है 17 घंटे के अंदर करना होता है सिमिलरली अल्ट्रामैन एक आया है जो 3-4 दिन तक स्ट्रेच करता है मैराथन
0: तो एक इवेंट एक दिन में ऐसे
1: ऐसे इस टाइप का तो सिमिलरली इंडिया में एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उसको जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का एक रनिंग होगा उसमें स्विमिंग होगा उसमें इवन ये होगा क्या बोलते हैं बाइकिंग होगा तो ये सब मिला के कॉम्पिटिशन आने वाला है
0: वेरी नाइस तो हमने सुना आपसे कि आप अपना फिजिकल फिटनेस और मेंटल बैलेंस दोनों कैसे मेंटेन करके रखते हैं तो श्रोताओं आइए एक गाना सुन लिया जाए कर्म करो ऐसे अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह मेंटल और फिजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है ताकि आप ऐसे कर्म करें ताकि लोग आपको याद रखें आप सुन रहे हैं युवा मंच 107.8 FM

0: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर युवा मंच, और आज हमारे साथ जुड़े थे ओम मिश्रा जी, जो कि न केवल एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं बल्कि फिजिकल फिटनेस के एक्सपर्ट भी थे, और उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से हमें बताया कि किस तरह अपनी बॉडी को फिट, माइंड को ट्यून्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अगर किसी ने बिना पैसे खर्च किए आराम से कैसे उस फील्ड में जा सकता है, यानी उन्होंने आम के आम गुठलियों के दाम दोनों कवर करते हुए बड़े प्यार से बताया। पर मुझे लगता है एक सेशन इनके लिए कम था, मुझे खुद भी आज इसको होस्ट करते हुए मैंने खुद कई ऐसी नई चीज़ें सीखी जो मुझे कभी वैसे ही पता न थी। तो ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना इन ओम मिश्रा जी को हो सकता है हम बाद में भी बुलाएं। दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा अगली बार ज़रूर बताइएगा, और हमें रहेगा आपके फ़ोन का इंतज़ार 9414151415 पे, अगली बार ज़रूर कॉल करिएगा। तो आज हम लेते हैं अलविदा आपसे युवा मंच पर, और हम करते हैं धन्यवाद ओम मिश्रा जी का। ओम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच वंडरफुल इनसाइट्स विद अस, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अवेलेबल रहेंगे, कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े। अच्छा, बिफोर एंडिंग मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू लीव विद अस?
1: जरूर रवि जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि हम जो इतना इस आधुनिक दुनिया में इतना खो जा रहे हैं, कभी कभार हम अगर अपना थोड़ा सा भी टाइम अपने फिटनेस को दें, इवन इफ लाइक थोड़ा सा, मतलब 15 मिनट भी हो, 10 पुशअप कर लो या या थोड़ा सा जॉगिंग के चले जाओ, तो इससे क्या होता है कि पूरा बॉडी ना वार्म अप रहती है नेक्स्ट डे के लिए। तो बस यही थोड़ी सी गुजारिश है लोगों से कि वो
0: आपके इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, आजकल फोन स्मार्ट हो गया है और आदमी डंब हो गया है, ये बात ना हो। तो यहाँ हम क्लोज करते हैं आज का युवा मंच प्रोग्राम, और ओम जी को थैंक्स देते हुए आप सभी सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: साथ तुम्हारा प्रभु। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप ये विशेष गीत सुन रहे थे और उदित नारायण जी की मीठी आवाज सिर्फ आपके लिए थी। तो चलिए दोस्तों, आप उड़ान के साथ जुड़े हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है अभी
1: रूहानी।
0: चलिए दोस्तों, साथ में बात करते हैं सवाल की, साथ ही साथ कहानियों की और अमेजिंग जानकारी के साथ आपके लिए कविता भी लेकर आएंगे। आप से पूछा जाएगा सवाल जिसका जवाब आप देंगे
1: 9414151515 पर,
0: और होमवर्क भी आपके लिए जरूर होगा। हमारे साथ जुड़े रहना, सुनते रहना,
1: मुस्कुराते रहना।

फाइल CEIR पर क्लिक करें। क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: दूर खेवैया पुरवैया लेकर चली मेरी नैया। गुड इवनिंग, वेलकम बैक दोस्तों। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ, और मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। तो चलिए कुछ अमेजिंग जानकारी आपके लिए लेकर आते। वैसे बात करते भारत के एक ऐसे छोटे से और खूबसूरत राज्य की, जो भारत के पर्यटक स्थलों में से एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल बना है, और साथ ही साथ मेरी भी जो एजुकेशन की भूमि रही, मेरे पिता की कर्म भूमि जरूर रही, मेरे एजुकेशन की भूमि जरूर रही। भारतीय जनजातियों का अंतिम गढ़ यही है। यह जो यहाँ पर जो जीवन है वो बहुत सरल है, भरपूर आनंद से है। चित्रकूट, गंगरेल, सिरपुर, तीरथगढ़, कांगेर घाटी जैसे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ के विरासत और प्राकृतिक सांस्कृतिक उत्सव और कला खजानों से तुल्य है। जो यात्री यहाँ पर जाते हैं वो इन सभी पहलुओं को ज़रूर महसूस करते हैं। यहाँ के कुछ ऐसे ही खूबसूरत जगह अपने आप में मनमोहक है, सचमुच बहुत मनमोहक है। यदि आप इस राज्य में जाएंगे तो आपको प्रकृति से दोस्ती करने का भरपूर मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल करीब से आपको मौका मिलेगा। और इस खूबसूरत राज्य की राजधानी है, क्या आपको पता है, रायपुर है। जी हाँ, इस खूबसूरत राज्य की राजधानी है रायपुर। चलिए, 1 नवंबर 2000 को ये एक अलग राज्य बना, और पहले ये हिस्सा था मध्य प्रदेश का। इसमें 16 जिले हैं और साथ ही साथ रायपुर इसकी राजधानी। पहले मुख्यमंत्री यहाँ के अजीत जोगी थे, और फिर साथ ही साथ यहाँ का कहते हैं यहाँ की जो राजधानी है वो पांडुवंशी राजवंश के साथ जुड़ी हुई राजधानी है। 36 किले राज्य में मौजूद हैं, तभी इसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। पर दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है। सवाल है, गुरु घासीदास तोमर पिंगला बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास तोमर पिंगला बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? ए कर्नाटका, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान। झटपट जवाब देना 9414151415 पर देना। इस राज्य की जीवन रेखा महानदी है। सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाएं इसी राज्य में मौजूद है, और लैटराइट और काली मिट्टी इस राज्य की प्रमुखता है। साथ ही साथ धान का कटोरा भी इसी राज्य को कहते हैं। इतनी सारी जानकारियां इस खूबसूरत राज्य के विषय पर तो दे दी, तो आपको सही जवाब देना है। नंबर है हमारा
1: 9414151415
0: इंग्लिश में
1: 9414151415।
0: और दो पंछी इस खूबसूरत गीत को पेश करते हैं।

0: हम बनाएंगे एक आशियां। नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी, कैसे हो?
0: बहुत अच्छे, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छा गीत पहले सुना दिया, पुरवाई चले हमारी नैया, किसी और रामा हो रामा, बहुत ही प्यारा गीत सुनाया
0: जी जी।
1: अमेजिंग जानकारी बहुत अच्छी दिया आपने, जिस राज्य की जानकारी दिया और जो आपका कर्म क्षेत्र एजुकेशन कर्म क्षेत्र रहा, जिसके राजधानी रायपुर है
0: जी,
1: वही सवाल का जवाब है।
0: ओके।
1: और दीदी राठौड़ परिवार की कहानी घर ऑन एयर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सुरेश भाई जो जमाई राजा है,
0: हाँ जी,
1: उनकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी।
0: हाँ।
1: और आपका पार्ट, राजकुमारी का पार्ट, सभी का
0: नहीं
1: पार्ट,
0: नहीं मेरा राम, मेरा पार्ट राजकुमारी का नहीं है, मेरा पार्ट है शांति का।
1: ना शांति देवी आपका पार्ट है और राजकुमारी आपकी भाभी है।
0: हाँ, राजकुमारी मेरी भाभी है।
1: आपकी भाभी है और जमाई
0: शांति का, शांति की भाभी है,
1: सुरेश भाई है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, सभी का पार्ट बहुत ही अच्छा बना है आज अमित भाई जी ने
0: जी।
1: संवाद बहुत ही दिल को छू लेने वाला
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी,
1: लेकिन माधुरी जी आई नहीं है। 3 नंबर 4 नंबर में उनकी बातें कुछ सुनने को मिली नहीं।
0: अच्छा।
1: तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, सभी श्रोते भाई बहनों को मैं दिल से कहना चाहता हूँ आप ये प्रोग्राम जरूर सुने, बहुत मजा आएगा
0: जी जी जी।
1: अपनी कहानी है
0: जी,
1: घर घर की कहानी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सभी को नमस्कार दीदी,
0: थैंक यू,
1: और जवाब तो दे दिया है
0: जी, थैंक यू,
1: जानती है।
0: नमस्कार नमस्कार,
1: जानती।
0: चलिए दोस्तों, हमारे पहले श्रोता जिन्होंने कॉल करके सवाल का जवाब भी दिया, और अब यहाँ वनों और नदियों का,
2: यहाँ के वनों नदियों और सांस्कृतिक विरासत पर कई कवियों और लेखों ने सुंदर कविताएं लिखी है। पहाड़ों, जंगलों और नदियों का देश छत्तीसगढ़ है हमारा प्यारा परिवेश।
0: महानदी और शिवनाथ की धारा, सुघर महाटी यह अचल है हमारा।
2: प्रकृति की गोद में हरियाली छाई, बस्तर के खूबसूरत मन को भाई।
0: खनिज और संपदा का यह भंडार, छत्तीसगढ़ करता सबको प्यार।
2: गूंजती है यहाँ की बोली सुरीली, संस्कृति यहाँ की सबसे रंगीली।
0: राम की ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि, इस माटी में महके भक्ति की खुशबू।
2: जय हो छत्तीसगढ़ की यह शान हमारी।
0: यह न्यारी है यह जन्मभूमि, बहुत सारे योद्धा और शक्ति वीरों की है। छत्तीसगढ़ खूबसूरत अपने आप में ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आज का सवाल पुनः एक बार दोहराते। सवाल है,
2: गुरु घासीदास, तमोर, पिंगला बाग अभ्यारण्य, इनमें से किस राज्य में स्थित है?
0: आपके लिए ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान। सही जवाब जरूर देना। नंबर है हमारा
2: 9414151415।
0: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हो।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो

0: में पिएं या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए वेलकम बैक दोस्तों। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आज का होमवर्क, सांवले सपनों की याद।
2: सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है।
1: कोई रोक टोक सके कहां संभव है, इस हुज्म में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर
2: सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है।
1: भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली यह आखिरी पलायन है। अब वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों।

0: कहते हैं हम अपने घर या विद्यालय के नज़दीक। आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका मिलता होगा। उस पक्षी का नाम, भोजन, खाने का तरीका, रहने की जगह और अन्य पक्षियों से संबंध आदि के आधार पर चित्रात्मक विवरण भी देखने को मिलता है।
1: आपके साथ वालों की मातृभाषा में पक्षियों से संबंधित बहुत से लोकगीत होते हैं। उन भाषाओं के लोकगीतों का एक संकलन देखने को मिलता है। आपकी मदद के लिए एक लोकगीत ये है, अरे अरे श्यामा चिरैया झरोखवे मती बोलहू, मोरी चिरई अरी मोरी चिरई सिर की भीतर बनी जरवा, जगाई लई आऊव मनाई लई आऊव कवने बरन उनकी सिर की कवने रंग बरदी, बहिनी कवने बरन बनी जरवा जगाई ले आई मनाई ले आई, जरद बनर उनकी सिर की उजले रंग बरदी, संवर बरन बनी जरवा जराई ले आओ मनाई ले आओ।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन में कौन बोल रहे हैं सर?
1: नमस्कार, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति
0: जी। फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए, आज के सवाल का जवाब देने के लिए। पुनः एक बार जरूर सवाल दोहरा देते हैं। गुरु घासीदास तोमर पिंगला बाग अभयारण्य इनमें से किस राज्य में है? ऑप्शन है ए
2: कर्नाटक, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान।
0: जी बताइए।
1: तो ऑप्शन जो बी है छत्तीसगढ़
0: वो है। चलिए थैंक यू।
1: और दूसरा के सभी बाल कलाकार और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और एक थोड़ा गीत दोहरा देता हूँ
0: जी।
1: मेरे देश में पवन चले पुरवाई, मेरे देश में।
0: जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
3: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अबे मोहन के बच्चे, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है।
1: अरे मालिक, इनमें से आधे बैंगन अंदर से खराब है, इनका क्या करना है?
0: अरे करना क्या, खराब खराब नीचे लगा दे और अच्छे अच्छे ऊपर लगा दे।
1: लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी।
0: अबे मैं ये काम 10 दिन से नहीं 10 साल से कर रहा हूँ, तू यहाँ कल ही आया। जब इतने सालों से लोगों को कुछ नहीं पता चला तो अब क्या चलेगा?
2: मोहन को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है।
0: खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी जल्दी हाथ चला। और सुन, कोई ग्राहक बैंगन मांगे तो ऊपर अच्छे बैंगन देना और उसके नीचे खराब बैंगन लगा देना।
2: अरे भैया, भिंडी क्या भाव दी है?
0: आपके लिए सिर्फ 50 रुपए किलो बहन जी, बाजार में 60 रुपए किलो मिल रही है।
2: अच्छा, ऐसी बात है तो 2 किलो देना।
0: अरे मोहन, जल्दी से बहन जी के लिए 2 किलो भिंडी तोल दे, और हाँ, अलग से 2 मिर्ची भी डाल देना।
1: जी मालिक, अभी तोलता हूँ।
0: और बताइए बहन जी, और कौन सी सब्जी तुलवा दूँ?
2: बस भैया, और कुछ नहीं चाहिए।
1: अरे भैया, बैंगन कैसे दिए हैं?
0: आपके लिए सिर्फ 80 रुपए किलो।
1: क्या इतने महंगे? अरे भैया, लूट रहे हो क्या? और लोग तो 60 रुपए किलो बेच रहे हैं।
0: वैसे भी बैंगन खराब हो गए, फेंकने से अच्छा इसे ही सस्ते में बेच देता हूँ।
1: मैं तो तुमसे और भी सब्जी खरीदने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुमने इतनी लूट मचा रखी है।
0: अरे भैया, गुस्सा काय होते हो? ये दुकान मैंने आप लोगों के लिए तो खोल रखी है।
1: अरे खाक हमारे लिए खोल रखी है, पूरे बाजार में 80 रुपए किलो बैंगन कौन बेच रहा है भाई?
0: अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप 40 रुपए में ही ले जाइए।
1: क्या 40 रुपए में?
0: क्यों, ज्यादा है? चलिए आपके लिए 20 रुपए कर देता हूँ।
1: लगता है ये आदमी सटिया गया है।

0: 80 रुपए से सीधे 20 रुपए पर आ गया। देखो भाई, मैं इससे कम नहीं कर सकता, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे नहीं नहीं भैया, जब तुम इतने पैसे कम कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं लूंगा। फंस गया मुर्गा जाल में। क्या क्या क्या भैया तुमने? अब मैं बोल रहा हूँ कितने किलो बैंगन तुलवा दूँ। अब वैसे तो मैं 1 किलो बैंगन लेने वाला था, पर तुम इतने सही दाम पर दे रहे हो तो 3 किलो कर दो। अरे मोहन भाई साहब, के लिए 3 किलो बैंगन तोल दो, साथ में थोड़ा फ्री धनिया भी डाल देना। अब तो आप खुश हो ना भाई साहब? खुश क्यों नहीं होऊंगा, अब आप इतने अच्छे दाम पर सब्जियां बेच रहे हो।
1: फिर वो व्यक्ति सब्जी लेकर वहां से चला जाता है।
0: क्यों रे मोहन, देखा मैंने कैसे वो सड़े हुए बैंगन उस आदमी को सस्ते में चिपका दिए? पर मालिक जब वो घर जाकर देखेगा तब तो उसे पता चल ही जाएगा। अरे गधे, वो आधा किलो बैंगन लेने आया था और सस्ते के लालच में 3 किलो लेकर चला गया। अब वो 3 किलो बैंगन एक साथ तो खाएगा नहीं, एक दो दिन में वो सिर्फ ऊपर के बैंगन खा पाएगा। एक दो दिन बाद जब वो नीचे वाले बैंगन पर आएगा तो उसे लगेगा कि रखे रखे बैंगन खराब हो गए। हे भगवान, ये सेठ कितना चालाक और लालची है। जब तक दुनिया में ऐसे लालची लोग रहेंगे, हमें माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता।
2: बेटा, आलू किस भाव दिए हैं?
0: अरे अम्मा, आपके लिए सिर्फ 40 रुपए किलो हैं।
2: क्या 40 रुपए किलो? अरे भैया, आलू बेच रहे हो कि सोना?
0: अरे अम्मा जी, सीजन के पहले आलू हैं। आप पहले आलू तो देखिए।
2: नहीं नहीं, रहने दो, मैं इतने महंगे आलू ना लूंगी। 30 रुपए किलो दोगे तो बताओ।
0: चलिए अम्मा, आपके लिए 30 रुपए लगा देता हूँ। बताइए कितने किलो आलू तुलवा दूँ?
2: ऐसा करो, मेरे लिए 1 किलो आलू तोल दो।
0: अरे अम्मा, आप तो आपके लिए दाम भी कम कर दिए, फिर भी आप सिर्फ 1 किलो आलू ले रही हो।
2: वो क्या है ना, घर पर हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, 1 किलो से हमारा काम चल जाएगा।
0: अरे मोहन, जल्दी से अम्मा के लिए 1 किलो आलू तोल दे और दो हरी मिर्ची भी डाल देना।
2: क्या बात है बेटा, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। फिर मोहन उस बुढ़िया को आलू देता है। अरे ये कितने आलू दिए हैं भाई?
0: 1 किलो दिए हैं अम्मा जी।
2: लेकिन इनका वजन तो बहुत कम लग रहा है।
0: अरे अम्मा जी, आपको गलतफहमी हो रही है, ये 1 किलो ही है।
2: अच्छा, तुम बोल रहे हो तो ठीक है भैया। इतना बोलकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है।
0: मालिक, मैंने तो 1 किलो तोले थे, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मा के हाथ में आलू देते समय मुझे भी कम लगे। लगता है तो दिन में टिकाने लगा है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। नहीं मालिक, मैं शराब नहीं पीता, तो अपना ध्यान काम पर लगा, लोगों की बातों पर नहीं।

0: सुन मोहन, मैं घर जा रहा हूँ, तू भी समय से दुकान बंद करके घर निकल जाना।
1: इतना बोलकर धनी राम वहाँ से चला जाता है।
2: सुनो बेटा, जल्दी से 2 किलो आलू दे दो।
0: जी काका, अभी देता हूँ।
2: अच्छे से आलू देना, खराब मत देना।
1: फिर मोहन उस व्यक्ति को आलू देता है।
2: अरे ये आलू इतने हल्के कैसे लग रहे हैं? तुमने सही से तो तोले है ना भाई?
0: हाँ काका, मैंने तो बिल्कुल सही तोले। लाइए, मैं एक बार फिर से तोल देता हूँ आपके सामने।
2: नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। शक्ल से तो तुम ईमानदार लगते हो, जरूर मुझे ही गलत फहमी हो रही है।
1: पैसे देकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है।
0: ये सब क्या हो रहा है? मैं तो बिल्कुल सही तोल रहा हूँ। आज सुबह से काफी ग्राहक बोल रहे हैं और अब ये काका।
1: मोहन उस तराजू को देखने लगता है, तभी उसे तराजू के नीचे एक चुंबक नजर आती है।
0: अरे ये क्या, ये तो चुंबक है। इसका मतलब सेठ जी लोगों को लूट रहे हैं। मैं जल्दी से इस चुंबक को हटा देता हूँ, अगर किसी को पता चला तो सेठ जी की बहुत बदनामी होगी।
3: मोहन का बच्चा बिना पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया।
1: तभी सेठ की नजर तराजू पर जाती है।
3: अरे यहाँ से चुंबक कहाँ गई? जरूर उस मोहन के बच्चे ने हटाई होगी। आज आने दो, ऐसे बताता हूँ।
0: माफ करना सेठ जी, आज आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी।
3: ये सब छोड़ो और ये बता कि तराजू में से चुंबक तूने निकाली है ना?
0: हाँ सेठ जी, मैं इसके बारे में आपसे बात करने ही वाला था, पर मेरा समय ही नहीं लगा।
3: तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के चुंबक निकालने की?
0: दरअसल सेठ जी, ग्राहक सब्जियों के वजन की शिकायत करने लगे थे, इसीलिए मैंने चुंबक हटा दी। अगर किसी को पता चल जाता तो आपकी बहुत बदनामी होती।
3: अरे मैं 10 साल से काम करता आ रहा हूँ, आज तक मेरी बदनामी नहीं हुई तो अब क्या हो जाती? और तुझे पता है तेरा ऐसा करने से मुझे कितना नुकसान हो गया?
0: पर मालिक, ये ग्राहकों के साथ भी तो धोखा हुआ ना।
3: चुप कर, मुझे ज्ञान देता है, सारा पैसा तेरी तनख्वाह से काटूंगा।
0: सेठ जी कृपया मेरे पैसे मत काटिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप चाहे तो मुझसे दिन रात काम करवा सकते हो।
1: तभी सेठ के मन में एक तरकीब आती है।
3: ये तो इसने अच्छा उपाय बता दिया। वैसे भी ये दुकान पर सब्जियां तो बेचता ही है, क्यों ना मैं इससे सब्जियों की खेती भी करवाऊं।
0: सेठ जी कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगा।
3: माफ तो तुझे कर दूंगा, पर बदले में तुझे मेरा एक काम और करना होगा।
0: जी सेठ जी बताइए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ।
3: ठीक है, आज रात मेरे खेत पर आ जाना।
0: ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा।

0: नमस्ते सेठ जी, मैं आ गया। आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। चल तुझे तेरा काम समझाता हूँ।
1: धनी राम एक इंजेक्शन को एक पौधे पर लगा देता है।
0: अब देखना सुबह तक इस पौधे पर कितने सारे टमाटर उग जाएंगे।
1: सेठ की ये बात सुनकर मोहन चौंक जाता है।
0: समझ गया ना तुझे कैसे करना है। कल से तुझे यहाँ जितने भी पौधे लगे सब में एक एक इंजेक्शन लगाना है। और याद रहे, ये काम सिर्फ रात में ही करना, अगर दिन में किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी।
2: ये तो आप गलत कर रहे हो सेठ जी, माफ करना पर मैं ये काम नहीं कर सकता।
0: देख, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तेरी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दूंगा और तुझे काम से भी निकाल दूंगा, समझा।
2: सेठ जी आप मुझे क्या निकालेंगे, मैं कल से खुद ही नहीं आऊंगा। मैं गरीब जरूर हूँ पर ईमानदार हूँ, मैं लालच में आकर लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता।
1: इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है।
0: अबे जा जा, दो कौड़ी के नौकर, तेरे जैसे हजार नौकर रख सकता हूँ।
1: क्या हुआ बेटा, तू बड़ी जल्दी आ गया, और क्या काम दिया सेठ जी ने?
2: अरे माँ, तुम्हें क्या बताऊँ।
1: फिर मोहन अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये तो तूने सही किया, उस बेईमान सेठ के यहाँ से नौकरी छोड़ दी तूने, लेकिन अब क्या करेगा तू?
2: मैंने सोच लिया है माँ, अब मैं घर घर जाकर सब्जियाँ बेचूंगा।

0: अगले दिन मोहन सर पर एक सब्जियों का टोकर लेकर निकल जाता है।
1: सब्जी ले लो सब्जी, ताजी हरी सब्जी।
2: अरे भैया, प्याज मिल जाएगी क्या?
1: हाँ बहन जी, बताइए कितनी तोल दूँ?
2: कितने रुपए किलो दी है प्याज?
1: सिर्फ 30 रुपए किलो दी है।
2: क्या 30 रुपए किलो? अरे भैया, बाजार में तो 20 रुपए किलो मिल रही है।
1: अरे नहीं बहन जी, बाजार में भी 30 रुपए किलो ही मिल रही है।
2: अरे तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, बाजार में धनीराम भाई सिर्फ 20 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं।
1: ये तो सिर्फ मुझे पता है कि वो इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हैं।
2: क्या क्या कहा तुमने?
1: मेरा मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए कर सकता हूँ।
2: नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाजार से ही ले आऊंगी, जा सकते हो तुम। मोहन दिन भर गांव में घूमता है लेकिन कोई उससे सब्जी नहीं लेता।

0: माँ, आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। लोगों को मेरी सब्जी महंगी लग रही है, जो कि मैं एकदम सही कीमत पर बेच रहा हूँ।
1: तो चिंता मत कर बेटा, तूने अभी नया नया काम शुरू किया है ना, वैसे भी किसी भी काम को चलने में थोड़ा समय लगता है।
0: वो बात नहीं है माँ, लोगों को सस्ते दामों पर सब्जियाँ खरीदने की आदत लग चुकी है।
1: तो कुछ दिन तक ऐसे ही करता रहे, देखना धीरे धीरे लोग तेरे पास आएंगे। अभी लोगों को तेरी सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में नहीं पता ना। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, धनीराम अपनी दुकान पर एक नया लड़का रख लेता है।
2: अरे धनीराम भाई, जल्दी से 2 किलो भिंडी तोल दो, वो क्या है ना, आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। बेटा बंटी, जरा 2 किलो भिंडी तोल दे।
0: सेठ जी, भिंडी तो खत्म हो गई।
2: अरे वो भाई साहब, भिंडी तो नहीं है, कुछ और ले लो।
0: अरे भैया चलो, तो ऐसा कर दो कि 2 किलो आलू दे दो। वो सेठ जी, आलू भी खत्म हो गए।
2: ऐसा करो, मुझे आधा किलो टमाटर दे दो, मैं बाकी की सब्जी कहीं और से ले लूंगा।
0: भाई साहब, दरअसल टमाटर भी खत्म है।
2: अरे जब कुछ है ही नहीं, ये दुकान खोल क्यों रही है फिर, बंद करो इसे।
1: इतना कहकर वो व्यक्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
2: क्या रे बंटी, तुझे कितनी बार बोला है ज्यादा सब्जियाँ उगा कर, पता नहीं तेरे कारण मेरे कितने ग्राहक खाली हाथ चले गए।
0: मालिक, मैं तो ज्यादा ही उगाता हूँ, लेकिन लोग सस्ते के लालच में ज्यादा सब्जी खरीद लेते हैं, इसीलिए मैं कितनी भी उगाऊं कम पड़ जाती है।
2: अच्छा, ऐसी बात है, चल तो मेरे पास इसका भी एक इलाज है, रात को खेत पर मिलना।
3: देख बंटी, मैंने नया इंजेक्शन मंगवाया, ये इंजेक्शन पहले वाले से भी ज्यादा असरदार है, इसे लगाते ही पौधों पर 2 गुनी सब्जियां उग जाएंगी।
0: तो देर किस बात की सेठ जी, चलिए लगाना शुरू करते हैं।
1: धनीराम लालच में आकर ऐसे ही इंजेक्शन वाली सब्जियां उगाने लगता है। उसे खाकर धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगते हैं।
0: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है?
2: जी, आपके बेटे ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसके कारण फूड पॉइजन हो गया।
0: क्या, पर मैं तो सिर्फ ताजी और हरी सब्जियां खिलाता हूँ।
2: देखिए, आजकल बाजार में इंजेक्शन से बनी सब्जियां बिकती हैं, जो कीमत में तो सस्ती होती हैं पर जानलेवा होती हैं।
0: ये क्या कह रहे हो भला, इंजेक्शन से भी सब्जियां उगती होंगी?
2: हाँ बिल्कुल उगती हैं। दरअसल कुछ लोग लालच में आकर जल्दी सब्जियां उगाने के लिए केमिकल वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन इंजेक्शन को लगाने से 1-2 दिन में सब्जियां उग जाती हैं। आप में से किसी को किसी सब्जी वाले पर शक है?
4: अरे हाँ भैया, मैंने कई बार, वो धनीराम है ना, उसके खेतों में बहुत सारे इंजेक्शन पड़े हुए देखे।
1: फिर वो लोग समझ जाते हैं कि धनीराम इतने सस्ते में सब्जियां क्यों देता है।
4: चलो हमें जल्दी से सरपंच जी को इसके बारे में बताना चाहिए।
0: पता नहीं क्या होगा मेरा, इतने दिन तो हो गए काम करते करते, फिर भी दिन में सिर्फ 1-2 किलो ही सब्जी बिक पाती है।
2: क्यों रे मोहन, कैसा चल रहा है तेरा काम?
1: सेठ को देखकर मोहन चौंक जाता है।
0: सेठ जी, भगवान की दया से ठीक चल रहा है।
2: अबे रहने दे, मुझे पता है तेरी एक भी सब्जी नहीं बिक रही और तू ऐसे गांव में खाक छानता फिर रहा है।
0: नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे काम चलेगा।
2: अरे मैं तो अभी भी कहता हूँ, आजा मेरे पास काम कर ले, तुझे पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगा, वैसे भी मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया है।
0: नहीं सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो गलत काम नहीं करूंगा।
2: मेरे जैसे गरीबों की यही दिक्कत है, गरीब पैदा हुए और गरीब ही मरोगे।
0: सेठ जी, बेईमानी की कमाई से जीने से अच्छा है गरीबी की मौत।
2: तो मर फिर, मैं तो चला।
3: अरे क्या बात है, आज तो मेरी दुकान पर बड़ी भीड़ लगी है, लगता है आज फिर मेरी सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी।
2: अरे बंटी खड़ा क्यों है, सबको जल्दी जल्दी सब्जियां देना, कितनी भीड़ लग गई है।
0: सेठ जी, ये सब सब्जियां लेने नहीं आए।
2: तो फिर किस लिए आए?
0: सेठ जी आप ही पूछ लीजिए।
2: क्या आप सब मुझे बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आए?
4: अबे धनीराम के बच्चे, हम सब तेरी हड्डी पसली तोड़ने आए हैं।
2: अरे क्या हो गया भाई साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हैं?
0: सेठ जी, दरअसल इन सबको पता चल गया कि आप इंजेक्शन से सब्जियां उगाते हो।
2: धनीराम, अब तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।
1: तभी वहाँ सरपंच पुलिस के साथ आ जाता है।
2: चल बेटा धनीराम, तूने बहुत चूना लगा दिया लोगों को, अब देख मैं तुझे थाने ले जाकर तेरी कैसी अजामत बनाता हूँ।
0: नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ।
2: रावत तो थाने जाकर ही पता चलेगा। चल बेटा जल्दी बैठ गाड़ी में।
1: फिर इंस्पेक्टर बंटी और धनीराम को पकड़ कर ले जाते हैं।
0: लगता है मेरी सब्जियां नहीं बिकने वाली, अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे भैया टमाटर कैसे दिए हैं?
2: भैया सिर्फ 30 रुपए किलो।
0: अच्छा ये बताओ ये टमाटर असली तो है ना?
2: हाँ भाई असली है, पर मैं कुछ समझा नहीं।
0: दरअसल थोड़ी देर पहले धनीराम को पुलिस उठाकर ले गई क्योंकि वो इंजेक्शन से सब्जियां उगाता था।
2: आखिर भगवान ने सेठ के कर्मों का फल उसे दे ही दिया।
3: क्या हुआ भाई?
2: कुछ नहीं भाई, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, तुम कभी भी मेरे खेतों पर आकर देख सकते हो।
0: चलो तो भाई जल्दी से 1 किलो टमाटर दे दो।
1: ऐसे ही धीरे धीरे लोग मोहन के पास आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसका काम अच्छा चलने लगता है।
5: वेल दोस्तों, बेहतरीन कहानी के बाद मैं मोना वापस आ गई हूँ और आज के सवाल का जवाब देने का भी विशेष वक्त हो चुका है। गुरु घासीदास तोमर पिंगला बाघ अभयारण्य यदि देखना चाहते हो तो इस राज्य में पंथी लोक नृत्य आपको देखने को मिलेगा। बैगा जनजातियों का लोक नृत्य कर्मा नृत्य यहाँ पर विशेष मिलेगा। कोकराझार कछोरा शैली की पहने यहाँ पर मिलेगी और गोंड जनजाति यहाँ की विशेष होगी। गोदना कला यहाँ की पारंपरिक कला है। विशेष तौर पे आप यहाँ के लोगों को देखेंगे तो उनके हाथों में बहुत अच्छी गुदाई होती है और पूरे बॉडी में भी वो करते हैं। और बस्तर का दशहरा दुनिया भर में फेमस है। तो चलिए आज के सवाल का जवाब कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन सा है?
6: ऑप्शन बी छत्तीसगढ़।
5: सही जवाब छत्तीसगढ़ है। दोस्तों इस खूबसूरत आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए शुक्रिया और कल मिलने का वादा है ठीक शाम
6: 6 बजे।
5: तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहेंगे
6: गुड बाय।
5: सुनते रहो,
6: मुस्कुराते रहो,
5: जिंदगी को जन्नत बनाए। ये खूबसूरत गीत उदित नारायण की मीठी आवाज में अभी आपको सुनने को मिलेगा। सुनते रहो,
6: मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी हरो गांव हरो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल नाम जब सुनते हैं, जिस गांव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उस गांव को हम कभी नहीं भूल पाते जहाँ भी रहे, लेकिन अपनापन आता है क्योंकि उसमें पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे। वो खेत खलिहान, वो दोस्ती यारी, वो पढ़ाई और वो सभी का जो प्यार, बचपन का दिन याद आता है गांव का नाम सुनते। कहते हैं गांव जिस स्वर्ग जैसे, हेवन जैसे लगता है, अपने बेटे मध्य अपना जन्म स्थान स्वर्ग जैसे लगता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी वर्ग से हम परिचित कराते हैं और उनका गतिविधि को सब तक पहुँचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज देता है रेडियो मधुबन। इस मंच का माध्यम से अपना जो फायदा, जो भी गतिविधि, चाहे समस्या हो चाहे समाधान हो, समाधान स्वरूप बनते, कभी कभी समस्या स्वरूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, हमें बहुत खुशी होता है क्योंकि सभी का बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए, सामुदायिक द्वारा और सामुदाय के हित में प्रस्तुत करते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज रेडियो मधुबन गाँव वासियों के साथ और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, गांववासियों को खासकर किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा, जो लाभ देते हैं, उसका तहत आज आपके पास रूबरू कराएंगे स्पेशलिस्ट जो कि कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय लेंगे और आज हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। बखूब में बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। मैं तो कहूँगा ध्यान से हमारा किसान मित्र सुने और इससे बहुत कुछ फायदा मिलेगा। तो पहले उनका परिचय लेंगे, उनका सक्सेस स्टोरी, यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनका पोस्ट क्या है और क्या करते कितने दिन से और इसका श्रेय किसको देना चाहते, किसका बदौलत यहाँ पर पहुँचे। कृषि विभाग से जो महान अनुभवी एक्सपर्ट हैं, तो उन कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, सभी अधिकारियों की तरफ से आपका परिचय।
1: थैंक यू सर। सर मेरा नाम राकेश कुमार गरासिया है और मैं पिनवाड़ा तहसील के आमली गांव का रहने वाला हूं और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो पिनवाड़ा से ही हुई है, जी सर, 12th तक। और उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर में BSc करने के लिए, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से है जो अपने BSc में अपने एडमिशन होता है। तो वो उस टाइम जब मैं 12th में था, जब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसे कोई 11th में था जब पता नहीं था कि कोई जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट भी कुछ होता है। तो गाँव में ऐसे खेलते खेलते थे तो उन्होंने बताया कि भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लो 10th पास करने के बाद। तो वो ले ली, भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है, खेती में इंटरेस्ट है, घर पे भी खेती करते हैं, तो मैंने ले ली। फिर 11th पढ़ ली और फिर कहा कि भाई आप BSc करोगे तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन आपसे आपका नहीं होगा। तो फिर मैंने 11th में थोड़ा JET के बारे में पता किया और 12th में थोड़ी बहुत तैयारी करी और फिर मैं उदयपुर जो है मेरा सेंटर आया था JET का और वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे ऑल राजस्थान में ST कैटेगरी में 9th रैंक मेरे को हासिल हुई थी उस टाइम और मेरे को राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरे को अलॉट हुई थी और मेरी जो BSc है वो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से हुई है। और उसके उपरांत मेरे फादर टीचर थे जो फिर 2013 में निधन हो गया था उनका 13 में, तो उसके बाद 2014 में उनकी जगह में अनुकंपा नियुक्ति में पंचायत समिति पिंडवाड़ा में LDC के पद पे, मतलब अनुकंपा नियुक्ति में लगा था। और उसके बाद भी मैं निरंतर पढ़ाई चालू ही थी मेरी, BSc तो कंप्लीट हो चुकी थी मेरी, तो रेगुलर स्टडी चालू ही थी। उसके बाद मैंने सहायक कृषि अधिकारी 2015 वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं एग्ज़ाम हाइड भी गया था, इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया था लेकिन उसमें नहीं हुआ है। उसके बाद जस्ट कृषि विभाग की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 आई थी, उसमें मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मेरा चयन हो गया। जो चयन होने के बाद मेरे को जो है आबरोड पंचायत समिति का जो आवल क्षेत्र है वहाँ पे मेरे को जो है कृषि पर्यवेक्षक पद के रूप में मेरे को जो है यहाँ पे पोस्टिंग मिली है।
0: कब तक, कौन सा ईयर में पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग?
1: पहला पोस्टिंग सर 2014 से लेके 2020 तक मैं जो पंचायत समिति में रहा और 2020 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे कृषि विभाग में। और अभी भी सर निरंतर मैं आगे उच्च पद के लिए तैयारी जारी है सर मेरी।
0: तो राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह मेहनत करके, पढ़ाई और लगन एक आदिवासी जो गरासिया जाति से आप उभर कर आए हैं, ये कम बात नहीं है, क्योंकि आपका समाज के लिए आप एक उदाहरण एग्जाम्पल बन रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं और उन लोग का जो आर्थिक स्तंभ बहुत कम होने के नाते पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते, और बच्चों का भले आर्थिक रहेगा तो अभी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि संघ दोष में उनका जो रीति रिवाज संस्कृति को फॉलो करते हैं, कम समय में शादी कर देना और ड्रॉप आउट हो जाना, ये इसका मुख्य कारण होता है जिसका चलते बच्चे आगे नहीं आ पाए। कोई कोई बच्चे आ निकले, इस तरह कुछ बच्चे अभी होशियार होकर निकल रहे हैं, लेकिन ये अंचल के लिए और खासकर आपका जो समाज से समाज के लिए प्रेरणा गई, आप बने एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे, आपका जो ज्वलंत एग्जाम्पल है इससे हमारा जो श्रोता मित्र खासकर यूथ जो पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे इसे सोच रहे हैं, तो आपका जो प्रेरणा दे सक्सेस स्टोरी का जो आप बताए इससे जरूर फायदा ले, ये हमारा भावना है। सर जैसे आप पढ़ाई का समय में कितने घंटा मेहनत करते थे और क्या प्रिपरेशन करते हैं और आपका फोकस क्या रहता है, वो चीज के बारे में बताएं
1: सर,
0: इससे जो बच्चे आना चाहेंगे उनको भी प्रेरणा मिले।
1: बिल्कुल सर, सर ये पढ़ाई के मामले में सर देखा जाए तो अधिकतर जो ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि हमें सर समय नहीं मिलता या हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक्चुअल में ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। सही बात तो है, वो पढ़ते ही नहीं है। अगर अपने पास किताब है, भले एक किताब भी हो, तो उसको ढंग से अगर पढ़ा जाए ना तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए क्या है कि हमारे समाज में क्या लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और वो बस जब कोई एग्ज़ाम होता है उसके 15-20 दिन पहले शुरुआत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपन को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, साल भर 6 महीने का टारगेट, उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो मैं सर क्या करता था कि बिल्कुल एकांत जगह गाय चराने चला जाता था, गाय चराने जाता था, वहाँ बिल्कुल जंगल में एकांत जैसा था, किताब लेके जाता था, जिस दिन छुट्टी होती यूँ तो फिर बढ़िया आराम से पढ़ता था, शांति से छुट्टी होती थी उस दिन। और ऑफिस वर्क में 2014 के बीच ऑफिस वर्क में दिन में तो पढ़ाई सर नहीं हो पाती थी, रात के टाइम में 2-3 घंटे सर निकाल लेता, 2-3 घंटे कभी कभी 4-5 घंटे, कभी कभी पूरी नाइट भी निकाल लेता था। शुक्रवार का दिन होता था, शनिवार को छुट्टी होती थी, तो फिर वो पूरा नाइट उसमें जी जाता था।
0: ये हो गया मेहनत और रिश्ता चलता है जी सर। ठीक सर, तो हाँ जी, तो जैसे आपने बताया अपने समाज को देखेंगे और आप जो अनुभव किए हैं और उस तरह सिचुएशन से, उस तरह जो क्लाइमेट है, उस तरह जो परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति से आप निकल कर अपना स्वास्थ्य नीति को बजाय रखें और कैसे हम पढ़ाई करके और कहाँ पर करेंगे और जिससे हमारा फायदा होगा, वो चीज को देखें। उस संघ में नहीं गए, संघ दोष में जाने से खराब हो जाते हैं, लेकिन आपको संघ भी अच्छा मिला और एकांत प्रिय भी होते थे और पढ़ाई को लगन से करते थे, दृढ़ता ले ली, ये ठान लीजिए मुझे कुछ करना है और सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे, ये तो हमारा गलती है। इतना सुविधा है SC ST के लिए, रिजर्वेशन का कोटा, उनको छात्रवृत्ति, पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलता है, फिर भी हम उसका फायदा तो नहीं ले पाएंगे, तो हमारा ही कमी रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को जिसे आपने सजाया और आपने सक्सेस स्टोरी किस तरह पहुँचा, क्या मेहनत किया, क्या उतार चढ़ाव आया, जैसे आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना आज WO कौन सा पोस्ट में?
1: सर मैं भी कृषि पर्यवेक्षक हूँ, लेकिन अतिरिक्त चार्ज मेरे को WA का दे रखा है मूंगथला का, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक हूँ मैं।
0: जी जी, कृषि पर्यवेक्षक में आप रह रहे हैं और फिर भी इतना मान सम्मान नहीं देखते, अपना कर्म को भगवान को जो मानते हैं और इष्ट को मानते आप चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सर ये जो आज इस मंच का माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का बाद क्या करेंगे सोच रहे, तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा, क्या आपको जैसे आपने बताया मैं ऐसे करता था और ऐसे पाया है, तो जो बच्चे सुन रहे हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा वो स्टूडेंट के लिए?
1: सर मेरा की मैसेज यही होगा कि किसी भी सब्जेक्ट से आप हो भले, लेकिन आपको टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा, किसी भी एग्जाम को फाइट करना है तो 5-6 महीने की तैयारी तो कम से कम चाहिए, भले छोटे से छोटे जॉब हो, 5-6 महीने की तैयारी चाहिए, उससे ज़्यादा अपन कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, तो दिन का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे तो निकालने चाहिए, 4-5 घंटे तो आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आजकल कंपटीशन हर जगह टाइट हो गया है, TSP क्षेत्र में भी कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि 2018 में ये और TSP क्षेत्र में दूसरे गाँव भी जुड़े हैं, तो अब और TSP में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए उनको कम से कम 5-6 घंटे तो डेली स्टडी करनी जरूरी है और 5-6 महीने का टारगेट जरूरी है।
0: सर इसके लिए आर्थिक संबल कुछ बैकग्राउंड में उसको सपोर्टिंग करता है, आर्थिक जिसका परिस्थिति बहुत कम है क्या वो अचीव कर सकता है?
1: बिल्कुल सर, वो भी कर सकता है, अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें किताबें तो हर किसी के पास आजकल मिल जाती है, ज्यादा महंगी कोई आती है नहीं किताबें, और एक दो किताबें खरीद लेता है तो भी दो तीन किताबों से वो फाइट कर सकता है। अब जैसे छोटे लेवल की तैयारी करनी है तो जैसे एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, जैसे छठी से लेके बारहवीं तक की पुस्तकें हैं, ये छोटे एग्जाम में सीधे इसमें से क्वेश्चन आता है, ये इन किताबों को खरीदने जाने की जरूरत ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप लाइब्रेरी है वहाँ से आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ से टीचर से रिक्वेस्ट करके उनकी अच्छी तैयार पूरा एक एक लाइन लाइन मतलब पढ़नी जरूरी है, तब जाके वो उसका बेसिक तैयार होता है। क्योंकि जब पहले अपन पढ़ते थे छठी सातवीं जब उतना नॉलेज नहीं था, बस ऐसे ही पास हो गए और चलो, अब वो चीजें बहुत काम की है, वो चीजें इतनी काम की है, और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, छठी से लेके बारहवीं तक की पुस्तकों में से हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं,
0: मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन आप अच्छा के बता दिए।
1: और मैं सबसे ज्यादा मैं भी खुद एनसीईआरटी की बुक पढ़ता हूँ, छठी से लेकर बारहवीं तक की भी पढ़ता हूँ, बाकी हाँ उससे आता है, बाकी कोचिंग वोचिंग तो ठीक है नॉलेज के लिए कि कैसे क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, बाकी वो पुस्तकें अगर आप पढ़ते हो आप तो उससे मतलब बहुत अच्छा आपका बैकअप तैयार हो जाता है, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए मतलब आपको
0: तकलीफ नहीं होगी,
1: कोई तकलीफ नहीं होगी।
0: तो सभी हमारा जो टैलेंट बच्चे जो सुन रहे हैं और जो क्या करेंगे आगे के लिए, उनका फ्यूचर क्या है, कौन गाइड करेगा, लेकिन रेडियो मधुबन गाइड करने के लिए इस तरह एक्सपर्ट को रखते हैं और अनुभवी को रखते हैं जिसका फायदा लेना चाहिए इस मंच के माध्यम से, जो भी श्रोता सुन रहे और अभिभावक सुन रहे होंगे, माता पिता भी सुन रहे होंगे, बच्चे तो सुन रहे लेकिन अभिभावक सुनने के बाद उनके बच्चों को ऐसे तैयारी करिए, उनको ऐसे सपोर्टिंग करिए, तो उनको समझाइए, क्योंकि माता पिता समझदार होते हैं, अभिभावक समझदार होते हैं, तो उनका बच्चों को उनका जो छोटे छोटे जो उनका डिपेंड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको थोड़ा सलाह देकर छाता मैसेज उन तक पहुँचाएंगे तो जरूर लग जाएगा किसी न किसी रूप में, लेकिन ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे, ट्राई करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर को इस तरह कार्यक्रम में अपना सक्सेस स्टोरी के साथ किस तरह मेहनत करते थे और किस तरह मेहनत करने के लिए माध्यम से ये।
1: सर एक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए जैसे जो स्टूडेंट अगर 11th 12th में है अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं 10th के बाद में, तो उनको क्या है सर 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति वर्ष के, 11th and 12th के लिए 5,000 रुपये, अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको 12,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे।
0: अच्छा बात बात सर, इसके ऊपर डिटेल्स बताए, क्योंकि हम तो जितने स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चों को ये तो अच्छा पॉइंट मिलेगा उनको लेने के लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और बच्चे कृषि में घर में किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई एडमिन बड़ा कोई ऑफिसर भी होगा तो उनका जो बागवानी करते गार्डनिंग करते वो कृषि से रिलेटेड है, और बच्चों को एक अच्छा मौका मिलेगा, एक रास्ता आगे के लिए फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो 11th में
1: सर जैसे अपन एडमिशन ले लेते हैं एग्रीकल्चर में, एडमिशन ले लिया उसके बाद या संबंधित क्षेत्र में अपने जो भी कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है उससे आप जाके मिल लो, वो फॉर्म भर देगा, और वो फॉर्म भर के जैसे ही जिला स्तर पे सबमिट के बाद उसके जो है स्कॉलरशिप जो है शुरू हो जाएगी, स्कॉलरशिप ये है कृषि विभाग में, उसको एक बार एडमिशन लेने में कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। सर
0: सर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट जमा?
1: डॉक्यूमेंट तो सर कुछ नहीं है, जैसे स्टडी कर रहा है तो उसने इलेवंथ पास कर लिया, 11th जैसे पास कर लिया तो उसके बाद 11th किस मिलेगी?
0: 10th पास कर ले।
1: हाँ 10th तो पास हो गया, 11th में एडमिशन ले लिया, 11th पास हो गया तो 11th की मिलेगी।
0: अच्छा पास होने के बाद 11th?
1: हाँ हाँ हाँ
0: ओके
1: सर। तो उसके लिए सर 11th का
0: 11th पास होने के बाद सबमिट करेगा?
1: हाँ जैसे सबमिट करेगा भाई,
0: इसका पहले एग्रीकल्चर वहाँ पर क्या सब्जेक्ट होता है
1: एग्रीकल्चर में सर,
0: 11th क्या बताना पड़ेगा?
1: जैसे 10th तो सबके कॉमन होता है
0: जी,
1: और 11th में सब्जेक्ट जैसे साइंस मैथमेटिक्स होता है
0: जी जी,
1: साइंस बायोलॉजी होता है
0: जी,
1: और एग्रीकल्चर भी साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पूरे सिरोही जिले में, सिरोही में है, भीलवाड़ा है, अबू रोड में नहीं है सर, इसीलिए यहाँ के क्षेत्र को के लोगों को अभी जानकारी नहीं है सर, अगर यहाँ अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिल जाए तो लोगों को जानकारी भी हो जाए यहाँ।
0: तो आपका ऊपर अधिकारी एसडीएम साहब का पहुँचाइए बात, रेडियो के माध्यम से हमारा एसडीएम साहब जी सुन रहे हैं, तो ये
1: नहीं अभी सर एग्रीकल्चर में हो सकता है नेक्स्ट आबरोड का नंबर आ जाए, वैसे आबरोड बड़ी सिटी के रूप में सिरोही से बड़ा माना जाता है वैसे आबरोड, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ये अभी साल से शायद सरकार ये इसमें कृषि विभाग में चालू कर दे स्कूलिंग,
0: तो 12th में भी ले सकता है?
1: हाँ 11th से
0: सुर कभी
1: 11th 12th, और 12th के बाद में बीएससी के लिए अपन जैसे अदर सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें सर बीएससी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्जाम देना पड़ता है, हाँ उसके माध्यम से, वो स्टेट लेवल का, अगर अपन को ये चाहते हैं कि अपन नहीं, अपन तो भारत में कहीं भी कर सकते हैं, तो इसके लिए ICAR होता है एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एग्जाम देना पड़ता था। अपन ऑल इंडिया में कहीं भी कॉलेज वो मिलती है, वो भी ग्रेजुएशन है, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो अलग ही है।
0: जैसे साइंस और आर्ट्स कॉमर्स होता है,
1: हाँ, तो वैसे साइंस एग्रीकल्चर भी होता है,
0: साइंस एग्रीकल्चर होता है, पहला बार हम सुन रहे हैं आपसे, ये भी बहुत अच्छा
1: सब्जेक्ट। दोनों में कॉमन ही होता है, साइंस में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होता है, बाकी जो बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री दोनों सेम होते हैं।
0: सर क्या साइंस जहाँ पर है, जैसे मावल में है, दबर स्कूल में है, गंगाते आवासीय स्कूल में साइंस है, तो साइंस एग्रीकल्चर होना चाहिए?
1: हाँ, साइंस एग्रीकल्चर,
0: मैथ फिजिक्स सेशन है, हाँ एग्रीकल्चर होना,
1: हाँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं। मैथमेटिक्स में फिजिक्स होता है, बायोलॉजी में फिजिक्स होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर होता है, बाकी दोनों सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों सेम होते ही।
0: तो स्वतंत्र जो भी हमारा अभिभावक शिक्षा विभाग में और जो प्रशासन में जो सुन रहे हैं, जरूर इस हाईलाइट करें, और आप रोड पंचायत में हो जैसे
1: बहुत धन्यवाद
0: देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

तेरे, जितने भी हैं ये सितारे। ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे, जितने भी हैं ये सितारे। जो दे दे तो मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी के नजर पे ये सारे। कहोगे ये रंगीन सपने, सजा के मिटा तो न दोगे अगर।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से एक सक्सेस स्टोरी और एक प्रेरणादायी देते हैं जैसे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे राकेश सर अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं। आज कृषि ऊपर में हम बात कर रहे हैं, कृषि विभाग ग्राम पंचायत बहादुरपुरा से आज हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत ऑफिस में। सारा खासकर हमारा सभी किसान भाइयों के लिए और उनका तरफ से आपको स्वागत करते हैं। पुनः किसान देश का रीढ़ है, जैसे शिक्षक, कृषक और सैनिक, तीन पिलर जैसे लगते हैं। भारत उन्हीं का बदलत में चल रहे हुए और जितना राजस्व भी उसी से ज्यादा आता है और रक्षा करने में तो सैनिक ही है और शिक्षक हमारा अवेयरनेस हमको इतना जागरूक कराते हैं जिसका बदलत हम सर्विस मिलते हैं, हम होशियार बनते हैं। तो इस सभी को तो नमन करना चाहिए और जो अन्नदाता कहते किसान भाइयों, खासकर भाइयों, तो आज उनके लिए आप देवदूत होकर आए हैं। तो आपके पास जितना भी स्टॉक है या जितना भी जानकारी है रेडियो का मंच के माध्यम से सबको लुटाइए और स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोजेक्ट जो कि अति सहज सहूलियत से उनको फायदा मिले। कास्कर भाई का जो गारे से समाज के लोग हित में रखते हुए क्या करने से उनका आर्थिक संबल और बढ़ेगा, दोगुना ने चार गुना बढ़ेगा उनका प्रोडक्शन, तो सरकार क्या मदद करते हैं, क्या सब्सिडी देते हैं, कब देते हैं, किस तरह देते हैं और कहां पर देते हैं, किसको देते हैं?
1: सभी किसान भाइयों का नमस्ते। मैं कृषि विभाग के बारे में योजनाओं की जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले कृषि विभाग की मुख्य जानकारी है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में अलग अलग है, जैसे पाइपलाइन हो गया, फव्वारा हो गया, रेनगन हो गया, खेत तलाई हो गया, जलौज हो गया, सब में अलग अलग सभी की क्राइटेरिया हैं और सब में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन स्कीम है, उसके अंतर्गत किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है। पाइपलाइन 50 पाइप लेने होते हैं और 50 पाइप पे 50% लगभग 15,000 अधिकतम उनको जो है राशि मिलती है। और पाइपलाइन लगाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो ट्राइबल एरिया जहाँ पाकर क्षेत्र में आजकल अपन देखे होंगे तो कुआं बहुत दूर होता है, कुएं से पानी लेके जाते हैं, बोरवेल से पानी लेके जाते हैं, तो क्या है वो नालियां बना रख, तो नालियों से खेत तक पानी पहुंचने में जैसे किसी के 1 किलोमीटर हो, किसी उससे कम हो, 300-400-500 मीटर तक हो, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो आधा पानी तो ज़मीन में वैसे चला जाता है, पहुँच नहीं पाता, पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है पाइपलाइन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगी और है भी। उसके लिए पाइपलाइन जोड़ते सीधा खेत में पानी जो स्रोत है वहाँ से सीधा पानी फसल तक आसानी से पहुँच सकता है,
0: 100% मिलेगा।
1: हाँ 100% जितना पानी है, ज़्यादा पानी है तो वो आराम से सीधा मिलेगा, आपका पानी वेस्ट कहीं नहीं होगा। 20-20 फीट के जो पाइप होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, आराम से उसको जोड़ भी सकते हैं और कोई भी दो किसान भी हो तो भी, एक दो किसान होंगे तो भी उसको जोड़, छोटा बच्चा भी कर सकता है ये, मतलब आराम से आसानी से कर सकता है। यूँ नहीं तो वो बिल बनाते हैं उसमें कहीं फूट जाता है, फिर वापस जोड़ता है, फिर वापस किसान खेत में देखता है कि यार पानी आ नहीं रहा है, फिर देखता है वापस चला जाता है कि यार पानी यहाँ फूट गया है, वापस जोड़ता है, फिर वापस खेत में भागता है, तो उसको समस्या ये समाधान हो जाती है इससे। और दूसरा है फव्वारा यंत्र। फव्वारा में सर क्या होता है कि खेत के अंदर 6 फव्वारे लगाते हैं, मतलब 6-7 फव्वारे अलग अलग अपने उससे लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है सर कि पानी का बचत
0: होता है।
1: हाँ बचत होता है फव्वारे में सर, ये है सब्सिडी इसके अंतर्गत है, अपने लागत का 55% जो है वो सब्सिडी इसमें मिलती है फव्वारा संयंत्र में। और इसका जो आवेदन है वो भी ऑनलाइन ही होता है, किसान राज किसान साथी पोर्टल से है जो इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। और उसके लिए सर जन आधार कार्ड आवश्यक है, जन आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो आवेदन नहीं कर सकता है, और जन आधार कार्ड बना हुआ है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। और ये जितनी भी स्कीम है उसके लिए राज किसान साथी पोर्टल से ही आवेदन होगा, जन आधार कार्ड ही चाहिए, और जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी। और इसके लिए आप ई मित्र पे जाएंगे, जन आधार कार्ड से अपन आवेदन करेंगे, मान लो सिंचाई पाइपलाइन का आपको आवेदन करना है तो आप जन आधार कार्ड लेके गए और आपका जो भी खेत है उसकी जमाबंदी और नक्शा जो होता है खेत का पटवारी जो है निकाल के देता है उनको, आजकल ऑनलाइन भी होता है तो ऑनलाइन निकाल के पटवारी से प्रमाणित करवा के और ई मित्र पे लेके जाओ, ये दो चीज़ मुख्य है, और तीसरा आधार कार्ड। तो जन आधार पे ऑनलाइन करके डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं और जैसे ही वो आवेदन हो जाता है तो वो आवेदन हमारे जिला कार्यालय है एग्रीकल्चर का वहाँ चला जाता है, हाँ सिरू चला जाता है, और वहाँ से वो आवेदन हमारे पास ऑनलाइन ही अपने आईडी पे आता है। तो जैसे आईडी पे आता है तो हम उस
0: जिसको लाभ मिलता है, हाँ
1: किसान को संपर्क करते हैं, भैया आपको कहाँ चाहिए, तो हम वहाँ जाके प्री वेरिफिकेशन करते हैं, प्री वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद वापस ऑनलाइन ही उसकी फोटो वोटो खींचते हैं, जियो टैग करते हैं और वापस भेज देते हैं, सिरोही चला जाता है। और वहाँ से उसकी स्वीकृति जारी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है तो हमारे मोबाइल में आ जाता है और हमारे पास वो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कॉपी आ जाती है। उसके बाद हम किसान से संपर्क करते हैं कि आप जो भी पाइपलाइन है, वारा है, जो भी है आप लेके आ जाओ और आप खुद खरीदो, क्योंकि उसको खुद ही खरीदना होता है, सब्सिडी तो बाद में जमा होती है,
0: अरे
1: सामान पहले लाना पड़ता है इसमें, ये है तो सामान वामान लेके आ जाओ और बिल ला के हमें सुपुर्द बता दो। तो वापस हम दोबारा उसके खेत पे जाते, चेक करते भाई इसने फुवारे लगाए हैं कि नहीं लगाए, पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है, फिर हम जाके और बिल विल चेक करते और फिर वापस उसका जो भौतिक सत्यापन ऑनलाइन ही ऐप के माध्यम से करते हैं राज किसान साथी पोर्टल से। और उसके बाद वो जैसे आवेदन हम कर लेते हैं कम्प्लीट, भौतिक सत्यापन कर लेते हैं, उसके बाद वो वापस जिला कार्यालय में चला जाता है और उसके लगभग महीने भर के अंदर अंदर लगभग वो है उसका भुगतान, लगभग वो पेमेंट जमा हो जाता है खाते में सीधे।
0: बहुत अच्छा बात बताया और ये प्रोसेस बताया, लेकिन जैसे आपने बताया सब पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खरना पड़ेगा, तो इतना पैसा लोग के पास होता नहीं है, जैसे कम से कम तो 5-6 हज़ार मिनिमम तो सब करने के लिए तो चाहिए, तो बाद में तो सरकार देगा 50%, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में इतना जो खरने के लिए जो संबल होना चाहिए उनको मिलेगा, जिसके गरीब लोग को कैसे फायदा मिलेगा
1: सर? ये ST SC अदर जनरल सभी में सर ये अपन को इसमें एग्रीकल्चर में यही है, आपको सामान तो पहले खरीदना ही है, पहले ही आपको लाभ किसी में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा।
0: तो मान लो पैसा पहले मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा सर?
1: पैसे पहले मिलते हैं तो सर क्या है कि जो ट्राइबल एरिया के जो किसान है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं शायद, मेरे हिसाब से पहले शायद गवर्नमेंट पहले पैसा देती थी इसलिए उसका क्या है लोग दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं तो उसको वास्तव में वो जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो नहीं हो पाता है,
0: तो नेग्लेक्ट करेगा,
1: हाँ
0: करेगा दूसरा टाइम में
1: इन्वेस्ट कर लेगा या फिर वो
0: आदमी
1: दारू पी
0: कर सकता है।
1: और इसमें क्या है वास्तविक जिसको चाहिए
0: वो करेगा,
1: वो करेगा और उसको फिर पैसा भी पूरा पूरा मिलेगा, एक भी रुपया कहीं जाता नहीं, सीधे सब्सिडी से उसके खाते में, किसी को मतलब बिचौलियों के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, सीधे उसके खाते में पैसे जमा होंगे और उसको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है।
0: ये खास राज है क्योंकि इससे जो जेन्युइन है, जो लाभार्थी है, जो करने के इच्छुक है उनको ये फायदा मिलेगा, जिसका इच्छा नहीं है इसको जबरदस्त दे देंगे पैसा, वो पैसा को दूसरा जगह में वो इन्वेस्टमेंट करने लगेगा, जिसका चलते नुकसान भी होगा और सरकार का जो मंशा है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सर जो पाइप का जो सिस्टम मुझे बताया, बस हमारे किसान भाई को बताया, वो क्या सेफ्टी रहता है ना चोरी वगैरह, जैसे हम पाइप लगा दिए जैसे अपने पाइप का सिस्टम लगे पानी जो 1 किलोमीटर लेना है वहाँ से मोटर से, लेकिन पाइप को हम जो रखने हो चाहे हमको उसको सेफ्टी का चोरी भी हो जाता है खेत में जो रख देंगे,
1: बिल्कुल
0: तो फिर उनका तो दिक्कत होगा
1: सर। इसमें पाइप एक तो आता है वो बाहर ओपन लगा सकते हैं 20-20 फीट के
0: ग्राउंड में,
1: और एक ग्राउंड वाला भी आता है वो अगर किसान चाहे तो उसको ग्राउंड के अंदर लगा दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी भी नहीं कर सकता उसका, वो लंबा रोल आता है रोल भी लगा सकता है
0: जी जी।
1: और भाई मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो वो सिंगल पाइप 20-20 फीट के है उसको लगा सकता है, जैसे कहीं 300 मीटर पानी लेके 300 मीटर का पाइप लेके आ गया वो और उसके भाई 200 तक ही पहुँचाना है तो उसमें क्या 200 तक ही पहुँचा, नहीं तो फिर वो क्या पूरी 300 मीटर पाइप डाल दी और उसको 200 मीटर तक पानी पिलाना वापस, तो वापस वहाँ से पानी इधर लाना पड़ेगा पाइप से। और इसमें कहा जहाँ तक जितना पाइप लेके जाना है वहाँ तक अपन पाइप जोड़ सकते हैं, ये इसमें एक फायदा है सर।
0: जैसे हम करंट लेते तो अंडरलाइन करना अंडरग्राउंड करना और ऊपर लेना में तो दिक्कत होती है, बाढ़ आता है तूफान आता है तो गिर जाता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अंडरलाइन करते तो सेफ्टी रहता है। लेकिन जो किसान मित्र जो इस तरह परमानेंट का खेती है और उनको करना ही लाभ मिल रहा है तो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्ट कर लीजिएगा, अंडरग्राउंड कर लेंगे तो सेफ्टी का बात,
1: वो फिर चोरी का टेंशन नहीं है, फिर
0: पाइप को इधर उधर करने का जरूरत नहीं, चोरी हो सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा,
1: लेकिन
0: खोदाई करके लेना इतना लोग तो इतना पैसा, आजकल तो चोरी बहुत कम हो गया, पहले होशियार हो गए थे, पहले कुछ पैसा नहीं था, आजकल तो 2 घंटा कमाई करेंगे कहाँ भी 200-300 रुपये मिल जाता है, पैसा के लालच में कोई चोरी नहीं, पहले था ऐसे चोरी कर लेते, लेकिन आज सबका संभाग मैंने सरकार भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, रहने की व्यवस्था सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात बताए। ये था कृषि संबंधित हमारे किसान भाइयों के लॉटरी कहेंगे कि उनका खाद्य खोलेगा जब सब्सिडी सरकार तरफ से जो मिल रहे हैं उसका सही जानकारी होना अति आवश्यकता है, और इसका उसका बात नहीं सुन के गलत अफवाह से नहीं सुनते, सरकार का जो दिशा निर्देश कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उसका एक पोर्टल जैसे सर ने बताया
1: राज किसान साथी पोर्टल,
0: राज किसान साथी पोर्टल में जाकर अपना जानकारी जिस चीज में हमको पूछाई वो चीज रहता है। आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपका बच्चे आज तो पढ़े लिखे ही है, क्योंकि आपका जमाने में इतना पढ़ाई नहीं था लेकिन आज बच्चे तो फोन एंड्रॉइड फोन में सब चीज अवेलेबल है, तो बड़ा फोन में आप कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबनी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर हमारा साथ जुड़े हुए हैं और सभी को अपना अनुभव आधार से जो भी सुविधाएं जो डोर टू डोर जाकर बताते थे, लेकिन आज रेडियो मंच का माध्यम से सभी किसानों दे रहे हैं, जो भी जहां पर भी सुन रहे हैं, कैसे लेना है, कहां पर लेना है, किस तरह लेना है, कौन एंटाइटल, सब चीज़ बता रहे हैं। एक एक प्रोजेक्ट का बारे में, एक एक योजना का बारे में बता रहे हैं। जैसे इसका पहले हम सुन रहे थे पाइपलाइन और फुहारा का बारे में।
3: बिल्कुल पाइपलाइन।
2: तो अभी कौन सा बारे में सुना?
3: अभी में एक कांटेदार तार बनती है, होती है, उसमें भी एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी देती है, उसके लिए मैं आप जानकारी दे रहा हूँ। इसमें सर कृषि विभाग से जो तार बंदी लगाते हैं उसमें तीन हेक्टर मतलब 12 बीघा जो जमीन है कम से कम चाहिए, और तीन किसानों का समूह होना चाहिए, और जिनके खेत पास में है, और जमीन अगर तीन हेक्टर मतलब 12 बीघा, हाँ, तीनों का मिलाकर 12 बीघा होनी चाहिए, और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। न्यूनतम इतनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है कितनी भी, और तीन किसान न्यूनतम चाहिए ग्रुप में, और 7-8 किसान भी हो सकते हैं। कहीं जैसे कि जमीन कम पड़ रही है, तीन किसानों की नहीं हो रही 12 बीघा, तो 10 किसान भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपस में। हाँ, तो इसमें सर अधिकतम 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, 40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है इसमें सर, और अधिकतम 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी। किसी भाई के जैसे मान लो 600 मीटर हो गया, तो उसको 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी, 400 मीटर के ऊपर जो है वो खुद वहन करेगा। और इसमें भी सर ये है कि आवेदन ऑनलाइन करके और फिर तारबंदी का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, और उसके बाद तारबंदी का कार्य भी पूरा अपन को ही करना है, किसान को ही सारा करना है। करने के बाद जो बिल वगैरह है वो सारा ला के हमें देगा, तो हम उसका जो है वहाँ पे आगे करेंगे, तो उसकी सब्सिडी वो पूरी उसके खाता
2: अच्छा, ये भी बहुत अच्छा योजना है, और खेत को सुरक्षा रखना है।
3: सुरक्षा रखने आजकल सर जो सुअर इतने सर हो गए हैं जो मक्का एक दिन में सारी मक्का खराब कर देते पूरा खेत, इसलिए ये तारबंदी होने से सर बहुत फायदा मिलेगा किसानों को।
2: जैसे हम कपड़ा पहनते हैं अपना शरीर को ढकने के लिए, सेफ्टी के लिए, धूली मिट्टी नहीं लगे, हेलमेट लगा देते हैं, तो खेत को भी हेलमेट लगा
3: बिल्कुल जरूरी है।
2: चार तरफ बाउंड्री लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे किसान तरह आराम से नींद से सो पाए, नहीं तो नींद नहीं होगा,
3: नींद नहीं होगा तो
2: मन तो उधर ही है, स्वास्थ्य खराब होगा।

0: स्वास्थ्य रखने के लिए डॉक्टर पैसा क्यों दे, खेत में लगाए, सरकार उसका भी फायदा दे रहे करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर जैसे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे जैसे आपने बताया 3-4 प्रोजेक्ट बना, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, पाइप हो चाहे फुहारा हो चाहे कुछ कांटा जो लेने के लिए, इसके लिए क्या कोई भी सामान को अपने हिसाब से लेंगे ना आप, उसको थोड़ा वो मेटेरियल को थोड़ा स्टडी करते हैं, इस मेटेरियल लगाओ, आप सजेशन देते हैं, कोई भी मेटेरियल जो खुद खर्च लाता है उसमें आप क्या सजेशन देते हैं?
1: सर उसमें ये होता है कि ये प्रमाणित जो राजस्थान से जो ISI मार्क से जो भी है, अच्छा। राजस्थान गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड है
0: उसको
1: वही चीजें आप लाओगे तो ही सब्सिडी मिलेगी।
0: ओके
1: ये है।
0: हाँ।
1: इसमें अगर वो राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं, लोकल उससे नहीं लेना है, लोकल से आप नहीं ले सकते हो। हाँ। और बाकी किसी से भी ले लो, लेकिन उसमें राजस्थान गवर्नमेंट जो चीजें वो अप्रूव्ड होनी चाहिए उसमें, राजस्थान गवर्नमेंट। हाँ उसमें उसमें जो पहले से सारी लिस्टें आ रखी होती है कि पाइप में कौन कौन सी जो कंपनीज हैं जिसमें ISI मार्क और कंपनी जो है राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है,
0: तो किसान को कैसे पता चलेगा सर ये मटेरियल क्या है? मैंने जो आपने बताया तो ठीक है आप जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों को कैसे अवगत होगा?
1: किसान भाइयों को सर इसलिए अवगत हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ जैसे डीलर है यहाँ रोड में मंडार क्षेत्र में वो काम करते हैं फील्ड में, वो सब जो किसान भी लगभग उनको जानते हैं, तो क्या है कि वो वहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं, यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे आबू रोड में फैसिलिटी अवेलेबल है, 3-4 डीलर्स हैं उनके पास से आप जो प्रमाणित सामान है वो आप खरीद सकते हैं।
0: तो सभी किसान भाई ध्यान से सुने, कभी सामान लेते हैं तो लीजिए, लेकिन उसका जो उचित जो मूल्यांकन तो उसको थोड़ा फर्क है, नहीं समझ में आता है तो एक बार उसी अधिकारी भी रहता है अपना ग्राम पंचायत में, कोई ना कोई कृषि विभाग से पता करिए और ISI लिखा होना चाहिए तो पता चला ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो आप उसमें सब्सिडी मिल सकता है, नहीं तो आपने लोकल मेड में कोई आपने खुद बनाए उसमें लगा देंगे तो सब्सिडी मिलेगा नहीं। जैसे कोई भी बिल लेते कोई सामान खाते उसको बिल भी पक्का बिल चाहिए, क्योंकि उसको टीन बोल TIN
1: टीन नंबर वाला बिल वो मिलता है,
0: बिल तब जाकर अप्रूव्ड होगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा, लोकल
1: बिल मान्यता
0: नहीं है। तो लीजिए सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कंजूस मत करिए पैसा का चक्कर में, थोड़ा ऐसे नहीं करने का, जो सिस्टमेटिक है उसको नहीं तो आप अपना सलाह लेकर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या और बताना चाहेंगे?
1: दूसरा सर ये है कि अपने यहाँ क्षेत्र में जैसे अपन बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाओ, तब देख के बताता है कि इसमें क्या क्या ये बीमारी है। अब सॉइल में कोई बीमारी होगी, मृदा में कोई बीमारी होगी, खेत के अंदर, तो अपन को थोड़ी ऐसे पता होगा इसमें क्या बीमारी है, तो उसके लिए भूमि का मृदा सॉइल टेस्ट करवाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: कोई भी सॉइल,
1: हाँ सॉइल खेत में खेती करते हैं उसकी टेस्ट कराना अति आवश्यक है। अपन को क्या पता इसमें किस चीज़ की कमी है, कौन से खाद अपन डाल रहे हैं, हो सकता है उस खाद डाल रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं अपन डाल रहे हो, और जो चीज़ डालनी है उसको अपन डाल ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, इसलिए सॉइल टेस्ट कराना अति आवश्यक है। और सॉइल टेस्ट करवाने के लिए अपने संबंधित जो क्षेत्र का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको बुलाएं और वो आपका जो है सॉइल टेस्ट मृदा से ले लेगा, सैंपल ले लेगा। और आप भी अगर किसान भाई अगर जानकार हैं तो आप भी ले सकते हैं, किसान के खेत के चारों कोनों से
0: दिशा से,
1: हाँ जैसे ये खेत है 5 जगहों से मिट्टी लेनी है, 1 फीट अंदर खोद के और मिट्टी लेनी है अंदर से चारों कोनों में और एक बीच में से मिट्टी लेके और उनको मिक्स करके अच्छी तरह से
0: सभी को मिक्स,
1: हाँ आधे आधे किलो मिट्टी लेके 5 भाग से और फिर उनको मिक्स करके उसमें से है जो पाप भर मिट्टी आधे किलो मिट्टी है वो लेके और फिर उसको जो कृषि विभाग में जमा करा दो, और उसके जो शुल्क है वो सिर्फ मात्र 5 रुपये है।
0: अच्छा अच्छा
1: 5 रुपये उसकी जो शुल्क है, और 5 रुपये में पूरी मिट्टी की पूरी जाँच होके आ जाती है 15-20 दिन में।
0: सुविधा आबू रोड में है?
1: आबू रोड में सर ये सुविधा नहीं है, लेकिन वो हमारे पास जैसे सैंपल आता तो हम जिला में वहाँ लैब बनी हुई है सिरोही, वहाँ जाके हम टेस्ट करवा लेते हैं और उसकी रिपोर्ट हम किसानों को देते हैं। अभी हमारे जो कृषि विभाग के जितने भी कृषि पर्यवेक्षक है उन्होंने 50-50 सॉइल सैंपल लिए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, आज भी हम लेके आए हैं कार्ड और उसमें पूरा दे रखा है कि कितना क्या क्या देना है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने किसान भाई देते हैं, ज़्यादा देते हैं, उनको पता नहीं रहता, ऐसे यूरिया है DAP है वगैरह वो डालते रहते हैं, लेकिन उसमें खेत में ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सारी अपने जिप्सम की कमी है, मोस्टली जिप्सम की कमी है, तो जिप्सम अगर लेते हैं किस तो सोसाइटी से लेते हैं तो उसमें भी 50% आपको अनुदान पे जिप्सम मिल जाएगा, तो वो जिप्सम को आप लेके और मिला के मिट्टी मिला के आप उसका जुताई कर देते हैं तो वो फसल के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहेगा। और जिप्सम है, जिप्सम अगर उसमें जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट है, ये दोनों भी अभी हम अनुदान पे दे रहे हैं, 50% अनुदान पे हम दे रहे हैं। तो उससे क्या है सर, ये जैसे ऑयल क्रॉप्स है, सरसों वगैरह है, तो इस जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट डालने से इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बढ़ती है। और यहाँ इस फील्ड में जैसे है जो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी है, तो ये अगर किसान अगर सॉइल टेस्ट करा लें तो उसका पता चल जाए तो आगे इस संबंध में उन किसानों को लाभ हो सकता है,
0: बहुत कुछ बचत भी हो सकता है, इनका खेत भी बचत कर सकते हैं और इनका जो प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन को भी बचा सकते हैं और हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा।
1: नहीं नहीं सर, वेस्टेज नहीं जाएगा
0: और हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम कोई भी टेस्ट साल में बताए, कोई भी ऑपरेशन करने का पहले आपका ब्लड टेस्ट पूरा सब यूरिनल टेस्ट सब टेस्ट करते हैं, इसके बाद मेडिसिन देते तो काम में आता है क्या आवश्यकता है, तो खेत को भी किस क्या आवश्यकता है वो चीज़ हम जब जांच करेंगे, भले पहले शुरू में जब करेंगे तो उनको लगेगा भाई ये प्रोसेस है, फिर उसको पकड़ो तो टाइम जाता है, लेकिन एक बार आपका खेत का पूरा पता चल जाएगा तो आपको उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा।
1: सही है।
0: जैसे हमको सिर दर्द होता है, बीपी होता है, तो हम शुगर होता है, तो हम चीनी का थोड़ा कंट्रोल करेंगे ना, हम टेस्ट ही नहीं करेंगे,
1: नहीं करेंगे
0: कैसे चलेगा। और तो उसी तरह खेत को भी अपना पहले टेस्ट कराइए, भले समय लगे लेकिन जैसे आप टेस्ट कराने के लिए खेत को जाना पड़ेगा, 5 जगह से मिट्टी लेना पड़ेगा, फिर उसी परिवार खेत को उनको बताना पड़ेगा, ये चीज़ें जो प्रोसेस सर इसमें थोड़ा पैसा वगैरह कुछ हेर फेर होता है का जो जिसको हम बुलाएंगे वो क्या फीस लेते हैं ना, फ्री में जाते हैं?
1: नहीं सर फ्री में है, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, अगर बुला ले या खुद मिट्टी लेके आ जाए तो और भी बेस्ट है
0: जी।
1: यूँ और जैसे हम क्षेत्र में खुद मिट्टी लेके आ जाते हैं किसान, एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं कि भाई ऐसे आप मिट्टी ले लेना और वो खुद की मिट्टी लेके आ जाता है, उससे सिर्फ 5 रुपए की रसीद लेंगे हम बस।
0: लेकिन किसान भाई लोग बता रहे हैं हमको बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, 2 बार गए तो सारे नहीं थे।
1: हाँ सर ये पहले था लेकिन अभी क्या हम जैसे सब जगह पोस्टिंग हो चुकी है, पहले यहाँ पूरे आबू रोड क्षेत्र में 2 सुपरवाइजर थे, 15 पोस्टें हैं और सुपरवाइजर 2 थे और पूरा 15 पोस्टों का काम संभालते थे, तो वो हो नहीं पाता था। अब हर जगह मतलब 10 पोस्ट तो ऑलरेडी भर चुकी है और 5 पोस्ट ही खाली है, तो अब हर जगह
0: आपको
1: दिक्कत नहीं होगी, आप किसान भाइयों को जो है कृषि परिवहन समय पर हर जगह मिल जाएगा और आपका काम भी आसानी से।
0: इतना सुविधा है सरकार दे रही है और इतना पैसा तनखा आपका पीछे इतना लोग जो अपॉइंटमेंट किया है कितना तनखा जा रहा है और उसका फायदा लेना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप जब नहीं लेंगे उसको काम नहीं दे रहे हैं तो मुझे तनखा सरकार का जो राजकीय पैसा जो जा रहा है वो वेस्टेज जा रहा है।
1: सही है सर,
0: तो उनको काम दीजिए और उनको भी खुशी होगा।
1: सही है,
0: और वो पैसा भी अदम भी होगा।
1: सही है,
0: और बढ़ बढ़ करेंगे तो मन भी इधर उधर होगा, भ्रष्टाचार में जाएगा।
1: सही है,
0: तो इसलिए हमारा किसान भाई तो नम्र निवेदन है सर से जितना फायदा लेना हो पहले जाइए, बार बार जाइए, एक बार भाई कुछ उनका भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा, मैंने कहा ऑफिशियल ड्यूटी होगी जैसे सर आज यहाँ पर तो मान जा अपना ऑफिस में कोई ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं ना
1: सर। हमारे ऑफिस के बाहर हमारे सबके नंबर लगा रखे हैं हमने, अगर कोई भी हम अगर फील्ड में भी जाते हैं, हमारा वैसे फील्ड का ही काम होता है पूरे दिन, अगर ऑफिस में नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ जाके ऑफिस के बाहर नंबर से एक बार कांटेक्ट कर लें, हो सकता है आपके आसपास ही कहीं हो फील्ड में हो तो नंबर भी लिखे हुए हैं।
0: हर सेक्टर में जैसे आपका सेक्टर कितने ग्राम पंचायत को लेकर आप सर?
1: सर मेरे जैसे मुंथला डब्ल्यू में तो जैसे 9 पंचायतें आती है,
0: 9 ग्राम पंचायत
1: सिर्फ मैं सुपरवाइजर का काम करता हूँ, पूरे सभी मेरे अंदर 4 सुपरवाइजर है, 4 और खुद ही मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मेरे खुद के आवल और चनार 2 ग्राम पंचायतों का काम मैं खुद देखता हूँ। इसके अलावा ओरिया है, बहादुरपुरा है, चंडेला है, मुंथला है, क्यारिया है, दामसरा है, ये इनका सुपरविजन मैं करता हूँ।
0: ये एरिया को पूरा हरा भरा करने का दायित्व आप लिए हैं, कप्तान गिरिद करते हैं, इतने किसान को खुश रखते हैं, क्योंकि किसान जब खुश रहेगा देश खुश रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, किसान
0: और आप उसका कमान आपका हाथ में, और जो आप एक आदिवासी समाज में बिलोंग करते हैं, आदिवासी लोगों को समझाने अपना भाषा में सहज भी होता होगा, इस तरह बहुत कम मिलता है सर कैंडिडेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ सर इस फील्ड में समस्या भी होती है, जैसे अधिकतर जो हमारे साथी लोग हैं वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते
0: जी,
1: जो किसानों को मोटिवेट करने में थोड़ी समस्या आती है, और किसान भी क्या है कि जल्दी बाहर के किसी लोग एकदम भरोसा नहीं करते, और मेरे यहाँ होने से क्या होता है कि जैसे मैं लोकल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ तो उनको मेरी खुद की भाषा में बात करता हूँ आदिवासी भाषा में तो उनको जल्दी समझ में भी आ जाता है और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये है सर,
0: तो सही बात, अपना दायित्व लेकर फिर भी आप खुश रहते हैं और सबको देने के लिए आपको खुशी मिलता है।
2: कहीं सेवा में
1: कृषि सर कृषि विभाग में देने देने गई है इसमें सब दे, लेकिन किसान को मोटिवेट होके हमारे संपर्क करना बहुत अति आवश्यक है। हम भी हर जगह हमारी किसान गोष्ठी होती है, अभी हाल फिलहाल में नूनथला में किसान गोष्ठी हुई थी, 100 किसानों की हुई थी। हम हर जगह जहाँ भी गोष्ठी करते हैं किसानों को जानकारी देते रहते हैं। महिलाओं की अलग गोष्ठी होती है, पुरुषों की अलग गोष्ठी होती है, पूरी स्कीम की है लगभग, हम वहाँ जानकारी देते रहते हैं। और इस क्षेत्र से अब धीरे धीरे थोड़े किसान जागरूक हो रहे हैं और स्कीम में आवेदन भी कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं।
0: और एक तो यूथ जैसे यंग आपको अभी पोस्टिंग बहुत कम दिन हुआ है, यूथ खून में देने के लिए भावना बूढ़ा तो है हुआ नहीं।
1: जी जी जी।
0: लेकिन कोई जिससे सीनियर हो जाते हैं तो उनका देखा उसको इतना आता नहीं करने के, लेकिन आपका जो खून उमंग उसका फायदा में देखने को मिलता है तो इसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय ले, खासकर अपना जो सेक्टर बताए इतने सेक्टर का जो आप कार्यकर्ता है कप्तान चलाते हैं तो इतना गांव पंचायत आपका पास है तो खासकर यहाँ का समस्या क्या आती है और उसको आप कैसे निवारण करते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन पहले स्कीम के बारे में कितने स्कीम है और बाकी रहा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर इस कार्यक्रम को सुंदर में बखूबी से सजा रहे हैं और किसान भाइयों के लिए जितना देना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा देने के लिए तत्पर है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं। सर और कौन सा स्कीम है?
1: और सर एक सबसे बड़ा स्कीम है खेती में काम आने वाले कृषि यंत्र हो गए, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सारे जो है कृषि यंत्र है उन पे भी है जो सब्सिडी मिलती है। इसके अंतर्गत कृषि यंत्र में सर है जो एक तो ट्रैक्टर, पानी का टैंकर और एक साथ ट्रॉली है, ये इनमें सर सब्सिडी नहीं मिलती है।
0: अच्छा,
1: इनमें सब्सिडी तो नहीं मिलती है, बाकी जितने भी उपकरण हैं उनमें सब में सब्सिडी मिलती है आपको। और जिसमें STSC को है और लघु सीमांत किसान है उनको 50% और जनरल को है 40% है, जो उसका टोटल कॉस्ट का है वो इतना है जो सब्सिडी मिलती है।
0: सर इसमें ग्रामवासियों की तरफ से और खासकर किसान भाइयों की तरफ से जैसे आपने सब्सिडी बताई इंस्ट्रूमेंट लेने में, जो कृषि उपकरण ट्रैक्टर वगैरह छोड़ के और बाकी जो चीज़ और क्या रह गया जो इसमें आप सब्सिडी देते हैं?
1: इसमें सर देखो इसमें है डिस्क प्लाव है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, ट्रैक्टर ऑपरेटर रीपर है, रिज फेरो प्लांटर है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, चीजल प्लाव है, इतने सारे सर ये उपकरण हैं जिसमें ये जो सब्सिडी अवेलेबल है।
0: कितना परसेंट उसमें सब्सिडी मिलता है?
1: वो ST और SC के लिए 50 और अदर के लिए 40% टोटल कॉस्ट का है। और उसमें थोड़ा SP का डिफरेंस पड़ता है तो ज़्यादा फर्क नहीं आता, HP का पड़ता है तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40-50 तो है ही है, ये इतनी सब्सिडी तो मिलती है।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी इसका फायदा भी ले, खासकर किसान भाइयों के लिए ये जो उपकरण जो कृषि यंत्रपाती जो आवश्यकता है उसमें भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ से मिलता है 50 और 40, जनरल के लिए 40 और ST के लिए SC के लिए 50 मिलता है। सर जैसे कृषि के लिए आजकल ट्रैक्टर वगैरह आपने बता दिए, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी हम देख रहे हैं बलद बा जो पशु से खेत करते हैं तो उनका भी बीमारी कभी कभी होता है और डेथ भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या सब्सिडी वगैरह सरकार तरफ से बात उसकी प्रॉब्लम
1: पशुओं के लिए? वैसे सर ये तो पूरा पशुपालन विभाग से है, लेकिन इसमें सर ये मेरे ध्यान में जहाँ तक इन पशुओं के भी बीमा होता है तो बीमा होता है तो बीमा तो हर इंसान भी करवाता है तो पशुओं का भी करवाना चाहिए। तो पशुओं का बीमा करवा अगर ऐसी दुर्घटना बाय चांस हो जाती है तो उससे सबसे पहले पशुपालन विभाग से संपर्क करके और उसके बारे में उनको बताना आवश्यक है।
0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कौन सा स्कीम सर? जो
1: सर ये स्कीम तो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ऐसे इंटेंसिव स्कीम है जैसे छोटी छोटी स्कीम है, वैसे मिनी किट वितरण से
0: जी।
1: जो इसमें क्या है गवर्नमेंट मिनी किट वितरण करती है किसानों को 10% टोकन राशि रुपये लेके, और अभी सरसों के जैसे मिनी किट आए हैं हुए हैं तो उसमें हम 2 किलो सरसों है वो 13 रुपये में हम 13 रुपये टोकन राशि लेके हैं, केवल महिला कृषकों के नाम से हम उनको देते हैं
0: जी।
1: ये है मिनी किट। और दूसरा सर ये है अपने प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट स्प्रे वगैरह होते हैं सर, तो दवाई छाटने के होते हैं ना सर स्प्रे, उनमें भी सर सब्सिडी मिलती है। तो बैटरी ऑपरेटर जो है प्लांट इक्विपमेंट प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उसमें 1500 रुपये तक सब्सिडी है, आज हम खुद लेके भी आए हैं किसान के लिए बोला है, इसमें अपन को पहले 3000 रुपये भरने पड़ेंगे और 1500 रुपये वापस सब्सिडी के रूप में खाते में जमा होंगे। और एक दूसरा होता है जो केवल हाथ से चलाते हैं दवाई छाटने वाला, उसमें 750 रुपये तक सब्सिडी मिलती है।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएं और किसानों का हित के लिए हम सब तत्पर हैं, और रेडियो मधुबन एक मंच देता है जिस मंच का माध्यम से किसान का समस्या सुनते भी है, और आज समस्या को समाधान करने के लिए रेडियो मधुबन का मंच का माध्यम से राकेश सर ने पूरा डिटेल जितना उनका पास है सरकार का जो गाइडलाइन है दिशा निर्देश को लेकर जो सब्सिडी से लेकर सब चीज़ रखें, बहुत अच्छा लगा इस तरह कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजाने के लिए। राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और समय मिलेगा तो कभी पुनः उनसे मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे, और किसान भाइयों के लिए जितना जानकारी समय प्रति समय आपके पास पहुंचता रहेगा ये हमारा सुभावना है। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
1: किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि आप कृषि विभाग में जितनी मैंने स्कीम्स बताई है और आगे भी कैंप हैं उनमें आप अगर ये सुनते हो तो हर जगह आपको आवेदन तो एक बार करना ही है, हर स्कीम में भले लो या मत लो लेकिन आवेदन करोगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और उसके बारे में उससे जो फ़ायदे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए पहला अवसर है कि मेरी जो बात है, जो मतलब मैं सोच रहा था पहले कि कहीं मेरी बात भी ऐसे मैंने YouTube पे ऐसे डालूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेडियो मधुबन को, कि जो मेरी बात है किसानों तक पहुँचाएंगे आप। धन्यवाद सर।
0: आज तो ट्रायल सर था, हमेशा आपका साथ हम रहेंगे, और जितना आप डोर टू डोर देते थे, लेकिन कभी भी मौका मिलेगा तो आपसे संपर्क करके उनका हित में, किसानों का हित में जरूर संपर्क रखेंगे, जिसका चलते हमारा किसानों को जल्दी फायदा मिले, और जो भी समस्या है कभी कभी लाइव में अभी आप आ सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जिसका चलते डायरेक्ट आप किसान से बात कर सकते हैं, जिसका चलते आपको भी लगेगा चलो आज मेरा जो मंशा जो सपना था आज हमारा कास्कर भाइयों के लिए कुछ कर रहे, तो बहुत खुशी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह कार्यक्रम में सजाने के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद सर।
0: तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। हमारा श्रोता मित्र, खासकर कास्कर भाई लोग इसका जरूर फायदा लें। कोई भी समझ में दिक्कत होता है तो नज़दीक आपका लोकल जो कृषि अधिकारी है या कृषि पर्यवेक्षक है तो उनसे संपर्क करके इसका जानकारियाँ लीजिए। जरूर प्रशासन आपका साथ है, कृषि विभाग आपका साथ है, और रेडियो मधुबन आपका साथ है। सभी को नाम का साथ, सुनने वाले सुनाने वाले को धन्यवाद, आभार।
2: अभी बजे हैं शाम के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो की कैन हो। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातें, आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ दोस्तों, हफ्ता नया शुरू हो चुका है, बारिश भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, कई इलाकों में बारिश हो चुकी है। पता नहीं गुजरात में और महसाणा में और जहाँ पे भी हमारे लोग सुन रहे वहाँ पे कुछ बारिश गिरी है कि नहीं, आप ज़रूर से हमें बताइए। लेकिन यहाँ आबू रोड में हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आज भी काफ़ी बारिश हुई है, कल भी कुछ बारिश हुई थी, दो तीन दिन से यहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है। सिरोही में भी आज सुना है ऑलमोस्ट 45 मिनट तक बारिश जोर से बरसी है। तो कहने का मतलब यह है कि जी हाँ दोस्तों, सावन आ गया है। आज हम भी इसी मूड में है, बारिश के मूड में है, पकौड़े खा रहे हैं गर्मा गर्म और सुनेंगे आज अपने प्यारे प्यारे गाने बारिशों पे, रिमझिम बारिशों पे। और हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़े। चलिए सबसे पहले बातें करते हैं हमारे कॉलर से, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। हेलो,
1: हाँ जी सर नमस्ते, गुड इवनिंग। सुरेश जी बोलता हूँ जटानाथ से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया सुरेश जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग।
1: बहुत अच्छे, रिमझिम बारिश तो नहीं है, तो जोरों से बारिश हो रही है।
0: क्या बात है, अरे वाह, चलो अच्छा।
1: अभी थोड़ी दिन पहले इतनी जोरों से बारिश आई थी कि पानी भी इतना बाजार में जा रहा था कि
0: अच्छा,
1: बहुत जोरों से जा रहा था।
0: क्या बात है, अरे वाह।
1: तो अभी थोड़ी दिन पहले, थोड़े टाइम पहले एक घंटा बारिश आई, जोरों से आई, बहुत बारिश आई।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: अभी थोड़ी थम गई है लेकिन बहुत बारिश आई है। हमारे क्या तो रात रात को ही बारिश आती है, दिन को नहीं आती है। पता नहीं, दिन को लोगों को थोड़ा सा परेशानी ना हो इसलिए रात को बारिश होती है, क्योंकि सभी लोग काम पे जाए, सभी को काम का मौका मिले। लेकिन दिन का जो बारिश आएगी तो लोग काम भी कैसे कर पाए। सही है, रात का आपको बारिश आती है, हमारे मेसनों में बहुत बारिश थी सर,
0: शायद आपको दिखा होगा। बहुत अच्छा, आज भी हमारे यहाँ आबू रोड में भी शाम को दो बजे के बाद, दोपहर को दो बजे के बाद से बिल्कुल बारिश इतनी तेज होने वाली थी। खैर आबू रोड में इतनी तो नहीं गिरी, थोड़ा बहुत गिरा है बारिश, लेकिन सुना सिरोही में काफी बारिश हुई आज और माउंट में भी काफी बारिश हुई।
1: हमारे अहमदाबाद में भी ज्यादा है, सूरत में ज्यादा है, वो सौराष्ट्र में भी ज्यादा बारिश है, बहुत सारी जोर से बारिश हो रही है।
0: चलिए बहुत अच्छा, इस बार पूरे भारत में।
1: चलो हमारे भी यहाँ बारिश अभी थोड़ी दिन पहले भी थी, आज भी थी, परसों भी थी, तो अच्छी बारिश हो रही है।
0: चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है।
1: अच्छा है, जो जहाँ गिरे वहाँ सही है, क्योंकि किसान भाई के लिए तो बारिश बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाई के साथ, जो किसान भाई का कुछ अनाज रखेगा तो ही तो हमारे पास आएगा, वरना तो देखो सभी उस पर खेती पर है, कोई नौकरी का, कोई हमारे किराना है, जब पैसा आएगा तो सब कुछ हम ले पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो बस हम किसान भाइयों के अच्छा खेती का लायक जो बरसात हो जाए तो कितने ज्यादा पके और सबको
0: जी
1: अच्छा एक मजदूरी मिले, पैसा मिले, तो ये जीवन जरूरत की सभी घर पर चल सकता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो चलो बारिश का ही गाना दे दूं मैं, क्योंकि बारिश का
0: बिल्कुल
1: शुरुआत की है अपने, तो बस
0: बिल्कुल
1: तो मैं एक गाना भी दे दूँ
0: जी।

0: वही गाना है सर।
1: बिल्कुल, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। बिल्कुल
0: हाँ, बिल्कुल वही गाना है। तो चलो, हमारे बुरेला जी शायद सोच रहे होंगे, चलो भाई मैं भी आज आ गया सबसे पहले।
1: नहीं, बहुत अच्छी।
0: हमारे बुरेला जी है, हमारे गुरा राम जी है, हमारे मदन लाल जी है, हमारे सुभाष भाई है, दया राम जी, तो सभी को हमारे तरफ से सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सावन चल रहा है, बारिश चल रही है, तो चलो सबको बारिश का मौका मिले एक बिकने का।
1: चलिए, आपको भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी सुन रहे हैं आपको हमारे सुरेश जी, या जो भी हमें सुन रहा है हमारे लेसन, उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सावन की। नमस्कार जी। हाँ, तो जो भी सुन रहे हैं हमारे, जो भी लिसनर्स हैं, उन सभी को इस बारिश के मौसम की ढेरों शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे इस बारिश के मौसम में। जी हाँ दोस्तों, जब हम बारिश की बात कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि हम बॉम्बे की बारिश की बात ना करें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मुंबई पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यस, यानी कि बहुत ही तेज़ बारिश के कारण बॉम्बे में अभी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हाल फिलहाल कुछ समय पहले ही मेरी, हमारे कुछ फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है बॉम्बे में, उनसे बात हुई, सुना कि काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी सारे इलाके, काफ़ी सारी जगह बिल्कुल पानी के अंदर डूब रही है, काफ़ी कमर तक पानी चल रहा है, ट्रेनें रुकी हुई है। सुना है बॉम्बे पुणे हाईवे भी ब्लॉक्ड है। चलिए बारिश के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और फिर करते हैं बारिश के बारे में ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: वेलकम बैक दोस्तों. अभी जो हमने गाना सुना, सावन के महीना और दिल पुराने तरानों को ना गुनगाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं. आज की इस शाम को और भी रूहानी बनाने के लिए आपको सीधे ले चलता हूँ साल 1960 के उस सुनहरे दौर में, जहाँ सावन की पहली बूंदें एक बेहद ही खूबसूरत गाने में पिरोया गया था. लेकिन गाने के बारे में बातें करें उससे पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़े, चलते सुनने बात करते उनसे. हेलो,
2: नमस्कार भाई.
1: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है.
1: क्या बात है, बहुत ही बात अच्छी बात है.
2: तो मजे है आजकल तो खेती बाड़ी में, टाइम नहीं मिलता दिन में कहीं काम करने का, बहुत काम करना पड़ता
1: है. लेकिन अच्छा है ना, अभी आपको बारिश हो रही है, खेती बाड़ी में बुआई होगी, बारिश पानी अच्छा
2: हो जाता है और खेतियों में हरियाली छा जाएगी बाद थोड़े दिन के बाद में. तो
1: जी बिल्कुल,
2: आजकल तो पानी से बचाव करके रहना पड़ता है. क्या करे. एक प्यारा सा नगमा है
1: जी, बिल्कुल सुना दीजिए.
2: नीले गगन के तले प्यार फले,
1: नीले गगन के तले
2: गगन में प्यार फले, ये गाना चाहिए हो जाएगा तो आपने ला जाएगा सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और सूरज भाई आए भी है.
1: सूरज भाई आ गए, उन्होंने आपको बधाई भी दी सावन की, मुझे लगा आपने सुन.
2: उनको मेरी तरफ से बधाई है. बुराराम जी आज नहीं आए.
1: बुराराम जी अब आएंगे, बुराराम जी अभी आएंगे, मदन लाल जी अब आएंगे, सुभाष जी सब आएंगे.
2: तो मेरा प्यार भरा नमस्कार.
1: चलो, सभी की तरफ से आपको फिर से प्यार भरा नमस्कार और सावन की खूब खूब बधाई.
2: धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच. तो ये थे हमारे बुरीलाल जी, और शायद उन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है सूरज जी, तो उन्होंने आपको नमस्कार किया है और हमने भी आपका नमस्कार उन तक पहुंचा दिया है. और जी हाँ दोस्तों, तो बात कर रहे थे उस सुनहरे दौर की 1960 की, जहाँ की पहली बूंद को एक बेहद ही खूबसूरत गाने में पिरोया गया था. जब हम बारिश के गानों की बात करते हैं तो अक्सर ऐसे कोई गाने याद आते हैं जहाँ पे शोर शराबा या तेज़ संगीत याद आता हो. लेकिन एक गाना ऐसा भी है जिसमें बारिश की बूंदों की तरह ही एक ठहराव है, एक सादगी है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म उसने कहा था कि उस आइकॉनिक गीत की, जिसके बोल अभी हमने सुने, सीधे दिल पे उतरे. ओह रिम जिम के ये प्यारे प्यारे गीत. जी हाँ, शैलेंद्र साहब की कलम से निकले ये शब्द, सलील चौधरी की जादुई संगीत और पर्दे पर सुनील दत्त और नंदा की वो मासूम सी केमिस्ट्री, इस गाने की सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हैं क्या है? ललित महमूद साहब की वो रेशमी मखमली आवाज़ और साथ में सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी की गायकी. जब ये दोनों सुर मिलते हैं तो लगता है जैसे रूह को सुकून मिल गया हो. बहुत कम लोग जानते हैं कि यह फिल्म हिंदी साहित्य के महान लेखक चंद्रधुर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी है. चलिए दोस्तों बात करते, लेकिन हमारे कॉलर हमसे कोई जुड़ रहा है, चलिए सुनते हैं उनसे पहले. हेलो
3: हेलो
1: हेलो.
3: हाँ, ओम शांति, गुड इवनिंग भाई जी, सभी हमारे प्यारे दोस्त सुरेश भाई जी, जोटाना, बुरीलाल जी, कंचन भाई जी, भूपत जी, सभी दोस्तों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार. और भाई जी आपकी बातें स्टार्ट से सुन रहा हूँ. बारिश की बातें हो रही है, राजस्थान की हुई, महाराष्ट्र की हुई, गुजरात की हुई, बहुत अच्छी जानकारी मिली. इधर भी आधा महाराष्ट्र में बारिश है, आधे में नहीं है.
1: अच्छा.
3: हमारे जलगांव में तो बहुत ही कम है.
1: अच्छा.
3: गर्म हो रहा है. और सावन की भी बातें हो रही है, आपके सुंदर संवाद, दोस्तों की बातचीत बहुत खुशी है. तो सावन का स्वागत, आया सावन झूम के. या सावन जून के सभी को नमस्कार, ओम शांति भाई, ओम
1: शांति सुभाष जी। और आशा करते हैं आपकी तबीयत ठीक है, आप सही सलामत है और बारिश में अपना खास ध्यान रखिएगा सुभाष जी। तो ये थे हमारे सुभाष जी। और यहाँ दोस्तों इन्होंने भी सारी बातें सुनी हैं हमारी। और हाँ, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई है इस वक्त। शायद फिर से हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ा है। जी नहीं, जी हाँ, कह रहे थे कि महाराष्ट्र के जैसे कुछ इलाकों में अभी भी बारिश नहीं हुई, लेकिन जी मुंबई साइड यानी कि मुंबई पुणे इस एरिया में, खंडाला लोनावला करजत इस एरिया में काफ़ी बारिश हुई है। चलिए दोस्तों, फिर से जब हम बात कर रहे थे कि कई कम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के महान लेखक चंद्रधुर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी, उसमें कहा था, उसी कथा पर आधारित थी ये जो अभी हमने गाना सुना। ये कहानी हिंदी साहित्य की पहली मील का पत्थर मानी जाती थी, जिसे विमल रॉय प्रोडक्शन के बड़े पर्दे पर उतारा गया था। आमतौर पर तलत महमूद साहब को गंभीर या दर्द भरे गानों के लिए जाना जाता था, लेकिन सलीलदा ने उनके इस मखमली अंदाज को एक रोमांटिक बारिश के गीत में ऐसा पिरोया कि यह गाना हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जी हाँ दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। हमारा अगला जो नगमा है हमारे सुरेश जी की तरफ से हमें फरमाइश में मिला है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते ढेर सारी बातें।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

खूबसूरत रातों का अपना ही एक अलग मिजाज होता है। जब आसमान में बिखरे हुए नन्हे नन्हे सितारे हमें निहारते हैं तो दिल अक्सर एक हसीन ख्वाब बुनने लगता है ना दोस्तों। एक ऐसा ख्वाब जो महलों का मोहताज नहीं होता, बल्कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत होती है। सोचिए, एक छोटा सा आशियाना हो शहर के शोर शराबे से दूर, जहाँ सुबह की शुरुआत चिड़िया की चहचहाट से हो और रात को चांद हमारी चौखट पर आकर बैठा हो, और कुछ ऐसे ही ख्वाब बुनते हैं 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु से। अभी जो हमने गाना सुना, आनंद बख्शी साहब ने, जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुरीली धुन पर सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज़ मिली, तो एक ऐसा नगमा तैयार हुआ जो आज भी हर धड़कते हुए दिल की आवाज़ है। कहते हैं कि घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनों के प्यार से बनता है। इस गाने की खूबसूरत जो लाइन अभी हमने सुनी, बढ़के दुख से सुख का जमाना, आज की रात दुखों का फसाना, रोना ना होगा हंसना ही होगा, कितनी सादगी से जिंदगी के सबसे बड़े फलसफा को कह दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म से, इस गाने से जुड़ी कुछ बातें हैं। ये फिल्म अभिनेत्री राखी के कैरियर की पहली हिंदी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने बंगाली सिनेमा में काम किया था। इस फिल्म में उनकी सादगी, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और बेहतरीन अदाकारी के रातों रात उन्हें हिंदी सिनेमा का एक बड़ा सितारा बना दिया। जी हाँ, और आप सभी जानते हैं राखी जी को, कितनी ही रोल्स उन्हें अलग अलग तरीके से, हीरोइंस के रोल किए, माँ के रोल्स में उन्होंने भी किया है, दादी माँ के रोल में भी उन्होंने काफ़ी लंबा कैरियर रहा उनका फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की, और हमारा जो अगला नगमा है हमारे भूरी राम जी की तरफ से हमें फरमाइश में मिला है, नीले नीले गगन के तले। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं इस गाने के बारे में बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। बहुत ही प्यारा नगमा अभी हमने सुना। दोस्तों, कभी फुर्सत के दो पल निकालकर उस अनंत नीले आसमान को निहार कर देखिएगा। ऐसा लगता है ना, जैसे वो दूर कहीं क्षितिज पर झुककर इस हरी भरी धरती को गले लगा रहे हो। सदियों से आसमान और धरती का ये रिश्ता बिना कुछ कहे मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल बना हुआ है। कुदरत के इसी खूबसूरत मिलन को जब शब्दों के जादूगर साहिल लुधियानी साहब ने अपनी कलम से छुआ, तो साल 1961 में एक ऐसा नगमा पैदा हुआ जिसने वक्त की बंदिशों को तोड़ दिया। फिल्म थी हमराज। सोचिए, ऊटी का वो ठंडी हवाएं, चारों तरफ फैली हरियाली और एक खुली गाड़ी, और उसमें गुनगुनाते हुए बेहद हैंडसम सुनील दत्त साहब। जब इस दृश्य में महेंद्र कपूर जी की बुलंद और बेहद संजीदा आवाज़ घुली और संगीतकार रवि साहब की सुरीले धुन मिली, तो समझो जैसे थम्स आ गया। अभी भी आज के समय में भी सबसे प्यारा मेरा फेवरेट है ये नीले कलर। कभी भी जब हम ऐसा जब चांद की रात होती है या फिर बारिश का मौसम होता है या कभी मन ऐसे ही कहीं बार कहीं प्यार से होता है, तो ये गाना बड़ा प्यारा लगता है। नीले गगन की तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह ऐसे ही शाम ढले। बहुत ही प्यारा ये नगमा है, मेरे दिल के बहुत ही करीब है। बहुत ही प्यारा नगमा भूरीराम जी ने आज हम सबको सजेस्ट किया है। थैंक यू सो मच भूरीराम जी। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। ये भी एक हमारी फरमाइश है। आज हमारे सुभाष जी ने बहुत ही प्यारी फरमाइश हमें पेशकश की है। आया सावन झूम के फिल्म का ही गाना आया सावन झूम के। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और करते हैं फिर से इस गाने के बारे में बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वेलकम बैक दोस्तों। अभी अभी हमने जो गाना सुना, आया सावन झूम के, मूवी से इसका टाइटल ट्रैक कि आया सावन झूम के। जी हाँ, प्यारे हमारे लता मंगेशकर जी की आवाज़, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा, कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और बहुत ही प्यारा गाना है। यस जी हाँ, जब भी सावन

0: Hagyi Nassar. Hagyi Nassar.
1: Hello.
0: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं बोल रहा हूँ
1: जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हूँ। एक गाड़ी भी आपको थैंक्स कह रही है।
1: हाँ, यस।
0: ऊपर एरोप्लेन चल रहा था, इस तरफ गाड़ी आ गई
1: जी,
0: और इस तरफ हमारी दोनों की आवाज
1: जी
0: रेडियो मधुबन को नमस्कार करते हैं।
1: जाइए।
0: और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार कर रहे हैं
1: जी।
0: भाई भी है घर पे है या चल रहे हैं?
1: बिल्कुल।
0: बारिश को भी संभाल के चलना है
1: जी,
0: और ट्रैफिक में संभाल के चलना है
1: जी,
0: और बारिश कहीं कहीं जोरदार हो रही है
1: जी। बिल्कुल। आपके वहाँ पे बारिश कैसी है, जोर से है, कम है?
0: अभी हमारे वहाँ तो कल शाम को हुई थी बारिश जोरदार, अभी तक चालू थी कल
1: जी,
0: और आज शायद नहीं आई है।
1: ओके।
0: आज बिल्कुल नहीं आई।
1: ओके।
0: आज अभी शायद रात को आएगी।
1: Okay.
0: अब बोलेंगे कि भाई अभी काम धंधा करके आ जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं पढ़ूंगी
1: जी,
0: बराबर। तो अभी रात को शायद आएगी। और बम्बई है इस तरफ, है सभी तरफ, तो बम्बई बहुत बारिश पड़ रही है और आजीवन हो रहा है
1: जी।
0: और सब अभी दूर दूर तक नजर देखो तो देखो, इस तरफ सड़क की तरफ भी देखो, कहीं नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं, कहीं गाँव में रह रहे हैं, सभी तरफ कहीं बाढ़ चल रही है तो कहीं क्या बारिश ज्यादा हो रही है। तो सभी अपना अपना ख्याल रखे हैं, कि सब समय कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं
1: जी।
0: और एक दूसरे का ख्याल रखें, ऐसा ही हम कह रहे हैं। और बस
1: बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आज आपसे निवेदन है कि समय हो चला है और अभी दो और फरमाइश है, तो आप अपने गाने के सिर्फ दो लाइन, दो शब्द हमें सुना दें,
0: ताकि हम आपको बिल्कुल बिल्कुल
1: आपका पूरा गाना हम आपको सुना देंगे
0: जी। शोर पिक्चर का गाना है
1: जी,
0: जैसे कह रहे हैं मनोज कुमार साहब और सब बोलते हैं भाई बारिश आई, चल चलो अपने अपने घर।
1: अच्छा।
0: तो मनोज कुमार साहब वहाँ बैठे रहते हैं और कहते हैं भाई चल अपने अपने घर चलेगी, और जिनको घर नहीं होगा वो कहाँ जाएगा
1: जी।
0: फिर वो गाना गाते, एक प्यार का नजमा है मोजो की रानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नजमा है। तो ये गाना इस समय में छोड़ता है, इसलिए ये गाने को याद किया।
1: जरूर से, जरूर से आपके लिए गाना हम प्ले करेंगे।
0: संतोष आनंद लिखा है और नाम भी बड़ा अच्छा है, संतोष आनंद यादव, सुन के संतोष रहना और आनंद भी रहना।
1: चलिए बिल्कुल से कोशिश करते हैं हम आपका ये गाना सुनाएं। थैंक यू सो मच मदन लाल जी, आपका कॉल करने के लिए हमें। जी हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, उस वक्त जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था और वो बातें पूरी नहीं हो पाई, शायद आपको आवाज़ नहीं आई होगी गाने के बाद तुरंत ही। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपके बता रहा था कि अभी हमने जो गाना सुना, आया सावन झूम के मूवी का ही गाना, टाइटल सॉन्ग आया सावन झूम के। और दोस्तों, जैसे ही शो की शुरुआत में हमने कहा था कि आजकल लोग फास्ट ट्रैक, तेज़ गाने, जैसे अभी बारिश शुरू होती तो ऐसे कुछ गाने पसंद करते, जैसे इसका म्यूज़िक था थोड़ा फास्ट ट्रैक, थोड़ा तेज़ वाला, और यही गाने पसंद करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा गाना है सावन के गाने में, सावन के मौसम में ये गाना सुनने के लिए। और आप सभी को बता दो, जो भी हमें सुन रहे, मदन लाल जी ने भी हमें कॉल किया था अभी जस्ट, आप लोगों ने सुना, और हमारे ओर से बुरा राम जी ने भी हमें कॉल किया। लेकिन बुरा राम जी ने जब कॉल किया तब शायद गाना चल रहा था, तो उनका कॉल हमने ऑफलाइन में उठाया था, और उन्होंने भी हमें एक बहुत ही प्यारा सा एक गाना सजेस्ट किया है। गाने के बोल है झूमता मौसम, तो चलिए सुनते हैं उनका ये प्यारा सा नगमा और फिर करते हैं इस गाने के बारे में भी बातें। सुनते ही रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना अभी हमने सुना और क्या लिखाई है इसमें हसरत जयपुरी साहब ने जी, क्या लिखा है। सावन के महीने में जब कोई अपना खास अपने साथ और उसकी तारीफ करनी हो तो ये गाना बिल्कुल सूट होता है। या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारे बोल है इसमें। अगर आपने इस गाने को पूरे ठीक से सुना हो तो काफ़ी ऐसे बोल है जहाँ पर किसी की तारीफ, जी हाँ दिल से अगर कोई तारीफ करता है तो ये बोल सीधे यहीं पे लगते, तुम यहाँ हम भी यहाँ, ऐसा मिलन होगा कहाँ, तेरी कसम जाने जा, दिल है वहीं तू है जहाँ, दिल का मालिक एक मत वाला, इस जहाँ में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिल का उजाला, या अल्लाह दिल ले गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे इस नगमे की ओर। आपको गाने के बोल के बारे में बता दूँ, ये मूवी थी उजाला 1959 से, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन जी, जी हाँ, और इसे गाया था हमारे खास लता मंगेशकर जी ने और मन्ना डे जी ने। जी हाँ, मन्ना डे साहब की आवाज़ सुनिए, कितनी ही प्यारी लग रही थी ये बोल, और मूवी थी उजाला। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। ये हमारा जो प्यारा सा नगमा हमें फरमाइश के रूप में मिला है, हमारे मदनलाल जी की तरफ से मिला है। और जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे बारिश की, कई सारी ट्रेनें, जी हाँ बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हुई है मुंबई के रूट्स पे, पुणे के रूट्स पे जाने वाली, बिकॉज पहले जैसे हमने बताया कि पुणे के रूट पे कई जगह पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, पटरियों पर भी मिट्टी और पानी आ चुका है और काफ़ी सारी ट्रेनों को कैंसिल किया, ऑलमोस्ट 16 ट्रेन्स को कैंसिल किया है। उसकी सारी लिस्ट आपको IRCTC की वेबसाइट पर से मिल जाएगी। और अगर आप भी कोई ट्रैवल कर रहा है मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, पुणे मुंबई की तरफ, तो खास करके अपने जाने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति को जान ले और फिर ही ट्रैवल करें और आपकी ट्रैवलिंग सेफ हो, यही हम आशा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, जो मदन लाल जी की तरफ से हमारे पास फरमाइश थी। सुनते हैं ये बैक टू बैक दो नगमे, क्योंकि समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, और हम फिर मिलेंगे आपसे कल ठीक इसी समय, ठीक 8 बजे। तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। हमें दीजिए विदा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य को सहज करने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज हमारे आसपास की चीजें हैं। कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें जो हम अपने शरीर में हर दिन डालते हैं। अगर हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें तो शायद स्वास्थ्य के आधी चीजें बिल्कुल सही हो सकती हैं। और लोगों ने यही चीज प्राचीन समय से कहा है और कहते भी आए हैं कि आप वही बनते हो जो आप खाते हो। भारत में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का शरीर पर प्रभाव है और साथ साथ मन पर भी प्रभाव है, ये भी चीज समझ में आता है। प्रायः जब व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है, किन चीजों से परहेज करना है। यानी ये बताता है हमें कि हमारे भोजन का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर एक गहरा असर है। और जब हम भोजन की बात कर रहे हैं तो हमने पिछले कई एपिसोड्स में इस विषय पर बातचीत की है कि एक संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड डाइट क्यों आवश्यक है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसे समझकर जिम्मेदाराना तरीके से इसका इस्तेमाल करना और अपने भोजन में इन चीजों को ले आना आवश्यक है। आज भी हम भोजन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर इनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ और शिफा दिया है। डॉक्टर साहब, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझी जाए कि जब लोग ये कहते हैं कि भाई हम बीमार पड़े हैं या कोई चीज गड़बड़ चल रही है, तो मैं हमेशा हमारे दादाजी से ये चीज सुनता था। जब वो हमारे फैमिली डॉक्टर के पास ले जाते तो वो सामने से पूछते थे कि अच्छा भोजन में क्या देना चाहिए, तो डॉक्टर प्राय बताते थे कि भाई इन चीजों से परहेज करो, ये चीजें खिलाओ, इस चीज का ध्यान रखो। तो उससे समझ में आता था कि भाई डॉक्टर तो ऑलरेडी इंजेक्शन दे चुके हैं, दवाई दे चुके हैं, ये फिर भोजन के बारे में क्यों इतना पूछ रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, ये प्रश्न उठता है।
1: हम लोग ने पिछले एपिसोडों में बात की और आप भी जानते हैं, मेक दाय फूड दाय मेडिसिन, अपने भोजन को ही दवा बनाओ। बीमारी के समय भोजन के बारे में इसलिए बात किया जाता है कि उस समय हमारा शरीर एक ऐसे स्टेट में होता है कि वो थका हुआ है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो कमजोर है। बीमारी हमें कमजोर बनाती है, थका हुआ बनाती है, हमको चाहती है कि हम आराम करें, तो उस समय भोजन का महत्व और बढ़ जाता है। और अगर सरल शब्दों में बोलें तो हमें सिर्फ सुपाच्य भोजन उस समय करना चाहिए, हल्का भोजन हमें उस समय करना चाहिए, अगर हो सके तो हमें भोजन एकदम नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ फल या उसके रस पे रहकर भी अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ रहता है, वो काम नहीं करना चाहता है, और अगर हम उस समय उसको एकदम तला भुना हुआ एकदम मसालेदार भोजन देंगे तो वो वैसे ही बेचारा थका हुआ है, वो कहां से ये बोझ ढो पाएगा। तो बीमारी के समय अगर हम हल्का भोजन करें तो हम जो औषधियां ले रहे हैं उनका असर और जल्दी होने लगेगा और हम जल्दी ठीक हो पाएंगे। इससे सबसे कॉमन एग्जांपल आपको लेता हूं कि जब सर्दी जुखाम खांसी होती है या वायरल फ्लू होता है, सीवियर वायरल फ्लू, गला आपका जाम होता है, तो डॉक्टर पहली लाइन क्या बोलता है, और ये खासकर छोटे बच्चों को होता है, पहली लाइन बोलता है ठंडा पानी मत पीना, हल्का गुनगुना पानी पी लो, भाप सेक लो। तो उसने क्या किया, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो हो सकता है गले का इन्फेक्शन बढ़ जाए, गले में जो चुभन है वो बढ़ जाए। गर्म पानी पीते ही वो क्या करेगा, गले को साफ करेगा, जो गले में बैक्टीरिया है या वायरस है उसकी मात्रा वो कम करेगा, और भाप अगर हम लेने को कहते हैं तो क्या करता है वो भाप, जो बैक्टीरिया हमको मार देता है, तो बैक्टीरियल लोड सडनली कम हो जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है।
0: ये बात समझ में आती है कि भोजन का आरोग्य के साथ कितना नजदीक का संबंध है, और भोजन को सुपाच्य रखना, कम भोजन करना या बीच बीच उपवास करना हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कैसे मददगार होता है, ये बात समझ में आ रही है।
1: भैया मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्यों एकादशी बनी, क्यों लोगों ने महीने में एक दिन पकड़ा कि हम इस दिन उपवास करेंगे, क्यों लोगों ने अष्टमी, अभी कल मेरे पास एक जैन पेशेंट आई थी, उन्होंने कहा मैं 8वां और 13वां करती हूँ, तो उन्होंने एक दो दिन उनके गुरुजी ने बताया, तो उन्होंने अपने जीवन में उसको उतार लिया है। तो हमारा जो रहन सहन है वो भी समझाता है कि हम जो भी व्रत बने हमारे हिंदू समाज में, क्यों नवरात्रि में 9 दिन के व्रत की बात की गई और साल में 2 बार ये किया गया, क्योंकि हम फास्ट करें, पानी पे रहें, नींबू पानी या शहद पानी पे रहें और हम अपने शरीर को साफ कर पाए।
0: ये कितनी इसके पीछे की समझदारी है ये समझ में आता है। आज हम इन्हें धार्मिक आयोजन समझ के करते मात्र हैं, मगर इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो हमारे को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, शरीर को स्वच्छ करने के लिए ये प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और सदियों से लोग इसे करते आ रहे हैं। ये बात डॉक्टर साहब, जब हम भोजन के बारे में बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि भोजन एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन इत्यादि की बात हम कर रहे थे। अब जब हम विटामिन की बात कर रहे हैं तो हम ये बात सुनते हैं कि अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं। आज एक नए प्रकार के विटामिन के बारे में जाने कि ये नया विटामिन कौन सा है, ये विटामिन के अलग अलग जो नाम है इसमें से कौन से विटामिन पर आज चर्चा करें।
1: अगर हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे तो हमने शुरुआत से विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन ई और के बारे में बात करें, ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो जो भी माताएं बहनें हमारी सुन रही हैं कि फैट हमारे लिए जरूरी नहीं है, कृपया थोड़ा फैट अपने भोजन में जरूर डालें, क्योंकि उसी से ये चारों विटामिन आपके शरीर में जाएंगे। विटामिन के थोड़ा सा ऐसा विटामिन है जिसके बारे में बहुत बातचीत नहीं होती है, ये थोड़ा सा इग्नोर्ड विटामिन है हमारा। हमने जैसे बात की रात में दिखाने तो विटामिन ए गड़बड़ हो गया, हड्डियों की वजह से विटामिन डी बहुत ज्यादा उसके बारे में बात होती है, अरे हड्डी दर्द हो रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रही है। और ई तो सबसे सुपरहिट विटामिन हो गया क्योंकि वो बार बार उसको त्वचा की सुंदरता के साथ जोड़ दिया गया। विटामिन के ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। विटामिन के दो तरह से पाया जाता है, विटामिन के वन, विटामिन के टू। एक फाइलोक्विनोन है और एक मिनाक्विनोन है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। ये हमारे शरीर में 3 काम मेजर करता है। ये हमारे शरीर में हमेशा खून बह रहा है,
0: बिल्कुल,
1: और हमको जहां चोट लगती है या हम कट जाता है तो वहां रक्त का रिसाव होना शुरू हो जाता है, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो खून के रिसाव हमारे शरीर में होता चला जाएगा। इंग्लिश में से कहा जाता है यू विल ब्लीड टू डेथ, मतलब आपके शरीर से खून निकलता चला जाएगा। हमारा शरीर कितना सुंदर है, हमारा मतलब क्या भगवान ने इसको बनाया है कि जैसे ही हमें कहीं कट लगता है, खून निकलना शुरू करता है, तुरंत थोड़ी देर में वहां पर बहुत सारी कोशिकाएं आती हैं जिनको हम प्लेटलेट कहते हैं, और वो हमारे यहाँ एक उसको कोगुलेटिव प्रोफाइल शुरू करती हैं, मतलब वो कोगुलेशन जो खून का जो बहना है उसे रोकना शुरू करती। वो तुरंत एक पहले जाल की तरह झिल्ली बनाती हैं हाँ, जिसको आप जैसे मच्छरदानी का जाल समझ लीजिए, उस तरह से
0: जी
1: जाल बनता है, और उस फिर जाल के छोटे छोटे भागों में भी प्लेटलेट जाके चिपक जाते हैं और तुरंत वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। आप ये चीज देखेंगे कि ये काम पूरा का पूरा मतलब विद इन 5 मिनट्स हो जाता है, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा ये काम हो जाता है। विटामिन के क्या करता है कि जो नॉर्मली कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9 और 10, 2, 7, 9 एंड 10, इन फैक्टर्स को वो एक्टिवेट करता है और कोगुलेशन को बेटर करता है। जिनमें ये विटामिन थोड़ा कम होने लगता है उनको जल्दी ब्रूजेस आने लगते हैं, जैसे उनको जहां भी चोट लगी नीचे त्वचा के नीचे वो काला पड़ने लगेगा, या आप कहते हैं ना अरे ये तो धुंस गया है यहाँ, ये ब्लड का हल्का सा त्वचा के नीचे क्लॉट दिख रहा है। तो विटामिन के का सबसे पहला रोल इज ब्लड कॉगुलेशन। विटामिन के का दूसरा रोल जो है वो है बोन स्ट्रेंथ, हड्डियों में इसका बहुत बड़ा रोल है। और आज आप बहुत सारी कैल्शियम सप्लीमेंट्स को देखेंगे या इवन आप डॉक्टर से बात करने जाएंगे, वो आपको विटामिन डी के साथ विटामिन के का भी सप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। और नॉर्मली जो K2 है हमारा, उसका ज्यादा बड़ा रोल बोन स्ट्रेंथ में आता है। अगर आप इस समय बहुत अच्छी ब्रांड के अगर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दवा की दुकानों में देखेंगे तो आपको उसमें कैल्शियम के बाद K2 लिखा भी दिखेगा। ये करता क्या है, ये खून में से कैल्शियम को लेकर हड्डी पर चिपका देता है। तो विटामिन K2 को एक मजदूर की तरह समझिए जो रक्त में बह रहे कैल्शियम को लेता है और उसको उठाकर आपकी हड्डी पे चिपका देता है। आपको एक बात जान के बड़ा अचंभा होगा कि विश्व में जितने भी महिला पुरुष हैं सबकी हड्डी एक जैसी दिखती है। मतलब अगर मैं आपके हाथ की हड्डी निकालूं और अपने हाथ की हड्डी या किसी की भी हड्डी निकालूं तो नॉर्मल व्यक्ति में वो हड्डी एक जैसी दिखेगी। उसकी हाइट थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, उसकी मोटाई थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, मगर उसका शेप एक जैसा दिखेगा।
0: बिल्कुल
1: मतलब अगर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में कहें कि आप किसी भी व्यक्ति की हड्डी अगर किसी को निकाल के दिखाइए तो वो देखते ही उसका नाम लेके बोलेगा, अच्छा ये हड्डी है। तो एक छोटे बच्चे की हड्डी और एक बड़े बच्चे की हड्डी कैसे, या बड़े वयस्क व्यक्ति की हड्डी एक जैसी क्यों दिखती है? ये क्योंकि हमेशा हमारे शरीर में क्या होता है, हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है, वो रक्त में जाता है और फिर रक्त से वापस हड्डी में चिपकाया जाता है। तो इसी तरह से हड्डी की लंबाई चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो विटामिन K2 का सबसे बड़ा रोल है ये काम करने में, कि वो हमारे शरीर की जितनी हड्डियां हैं उसमें जो कैल्शियम है उसको चिपकाता है। इसको बोन मिनरलाइजेशन कहते हैं, हड्डी में हमारा जो कैल्शियम उसको लगाता है। तीसरा, अब जब ये हमारे शरीर में कैल्शियम निकाल रहा है और हड्डी में चिपका रहा है तो ये हमारे हृदय पे भी इसका बहुत पॉजिटिव रोल होता है। ये कोशिकाओं में कैल्शियम डिपॉजिट होने नहीं देता है। तो जो हृदय की धमनियां हैं या हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसमें कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता है और ये हमारे ओवरऑल हार्ट हेल्थ को, हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ये विटामिन के की जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो विटामिन के हमारे शरीर में करता है।
0: ये बात समझ के बड़ी हैरानी होती है कि कुछ चीजों को हम जानते ही नहीं हैं कि भाई ये चीजें हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं और शरीर में ये क्या-क्या काम करती हैं। आपने पहले ये बताया है कि विटामिन्स बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में ली जाती हैं भोजन के जरिए, मगर ये कम होते हुए भी बहुत ज्यादा काम करती हैं। अगर इन चीजों की कमी होती है तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब हम ये चीज समझें कि विटामिन के से फायदे हमारे इतने सारे हैं शरीर में, ये काम करता है, ये बात समझ में आती है। अब ये भी समझा जाए कि ये विटामिन के को कहाँ से लिया जाए, ये इसका सोर्स क्या है, क्या खाएं जिससे विटामिन के मिले।
1: ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, इसका एक पार्ट हमारे शरीर के अंदर बनता है।
0: हाँ,
1: और ये आपके अंदर भी बन रहा है और मेरे अंदर भी बन रहा है। सबसे ज्यादा भैया नेचर ने सबसे ज्यादा विटामिन पैक करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में दिए हैं। पालक, धनिया, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें बहुत अच्छा विटामिन है। गाय के दूध में विटामिन बहुत अच्छा है, और जो हमारे गट के बैक्टीरिया है, जो गुड गट बैक्टीरिया बोला जाता है, जैसे मेरी आपकी हम जितने लोग हैं हम सबकी आंतों में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी रहते हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, जिनको गुड गट बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये भी विटामिन के को बनाने में हमारा सहयोग करते हैं, और हम इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, स्पेशली दही लेकर, छाछ लेकर, क्योंकि उससे ये गुड जो गट के बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, दूध में मिलता है और हमारे शरीर में बनता भी।
0: यानी जब इसके स्रोत को हम हरी पत्तियों वाली सब्जियों में देखते हैं तो इनका सेवन करना भी आवश्यक है। गौर करने वाली बात ये है कि प्रायः हम देखते हैं, खासकर राजस्थान में, जहाँ पर हमें हर मौसम में हरे पत्ते नहीं मिलते, हरी पत्तियों की सब्जियों की कमी देखी जाती है, तब भी, और खासकर शहरी क्षेत्रों में जब हम बच्चों को देखते हैं या आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे हरी पत्ती की सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, तो फिर उनमें तो ये कमी स्वाभाविक रूप से नजर आती होगी।
1: आती है भैया, पर जैसा हम लोग ने बात किया, दूध और दही से वो बैक्टीरिया इसको बना ले रहे हैं। क्यों बच्चों को हरी सब्जी के लिए और ताजे फल खाने के लिए बोला जाता है? इसीलिए कि उन्हें पूरा पौष्टिक भोजन मिल पाए। आपने जैसे बोला भैया, जो हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाते हैं उनमें इनकी कमी होगी, जिनको डायरिया रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या पाचन तंत्र की कोई समस्या है उसमें इनकी कमी रहती है। बहुत दिन तक अगर कोई एंटीबायोटिक खा रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाता है कि अच्छे बैक्टीरिया को मार रहा है कि बुरे बैक्टीरिया को मार रहा है, तो जहां हमारे गट के बैक्टीरिया मरने शुरू होंगे या कम होने शुरू होंगे वहां हमें विटामिन के की डिफिशेंसी शुरू हो जाएगी। इसीलिए सबको मैं एक हिदायत देता हूं कि बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। आप बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज को मारते हैं, और दूसरा अपने बॉडी में रेजिस्टेंस टूवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। श्री भाई आप भी बहुत विदेश गए हैं, मैं भी गया हूं, आप जानते हैं ना विदेश में दवा खरीदना कितना मुश्किल काम है, और विदेश में डॉक्टर को दिखाना कितना मुश्किल काम है, कितना हैवी इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है यदि आप अमेरिका में रहते हैं मेडिकल सर्विसेज के लिए। सो मैं प्लीज सबको बोलता हूं कि प्लीज दवा खाने से पहले 10 बार सोचिए कि आप क्यों खा रहे हैं, अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, और बिना किसी डॉक्टर के राय के कोई दवा नहीं खानी चाहिए।
0: ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ी बात आपने कही कि हम बिना सोचे समझे दवाइयां खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि दवाइयों से ही हमारा स्वास्थ्य आ रहा है। एक कितनी बड़ी भ्रांति है ये समझ में आता है। जैसे आपने विटामिन के बारे में बताया कि ये हरी पत्तियों में मिलता है, दूध और दूध से बनी हुई दही और प्रोबायोटिक चीजों में ये चीज मिलती है जो हमारे ही आंतों में बनता है। अब ये बात समझा जाए कि अगर कोई व्यक्ति विटामिन के की कमी से जूझ रहा है तो उसके शरीर में क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या चीजें नजर आएंगी?
1: सबसे पहले उसका जो रक्त है उसके क्लॉटिंग सिस्टम डिस्टर्ब होगा, उसको जगह जगह ब्रूजेस होंगे, या उसके त्वचा के नीचे देखिएगा थोड़ा सा ब्लड का जो है वो दिखेगा, हिमरेजेस होंगे उसके में, कभी दांत से खून निकलेगा, ब्रश करते समय उसको लगेगा कि खून निकल रहा है, और जहां भी कट है या कहीं कटा हुआ है उससे लंबे समय तक खून रिसता रहेगा, ये पहली चीज। दूसरा, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, और तीसरा हो सकता है कि उसके हार्ट जो में आर्टरीज हैं उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो। ये तीन चीज हमें मिलेंगी।
0: खासकर आजकल जब हम देखते हैं, जब हृदय रोग की संख्या भारत में बहुत बढ़ चुकी है, पहले तो लोग कहते थे कि ये उम्र दराज लोगों में हृदय से संबंधित बीमारी है, हार्ट डिसीज को लोग कहते थे कि ये अमीरों की बीमारी है, आजकल तो हम देखते हैं कि कम उम्र में भी, युवा काल में भी बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों से सुना है जहां पर उनको हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं या हार्ट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, ये सुनने को मिलता है। तो क्या ये देखते ही हम ये समझ जाएं कि अगर उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं और ये चीज है तो इसका मतलब ये है कि विटामिन के की भी कमी इनके शरीर में जरूर?
1: भैया इसके लिए थोड़ी जांचें करनी पड़ेंगी। पहले ये मानते थे कि एक जांच किया और तुरंत डायग्नोसिस बना लिया, अब बहुत कुछ किया जाता है और उसमें पता किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि विटामिन के की कमी है तो सबसे पहले उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक किया जाता है, एक ब्लड टेस्ट है, उससे मालूम चल जाता है कि कितनी देर में आपका जो रक्त है वो जम रहा है तो, या वो जो क्लॉट बन रहा है, अगर इसका टाइम ठीक है तो फिर हम मानते हैं कि विटामिन के उसका ठीक है।
0: यानी ये बात समझ में आ रही है कि विटामिन के एक ऐसी आवश्यक विटामिन है जो आपके शरीर में होने वाले घावों को जल्दी भरने में मदद कर रहा है। इसकी कमी अगर हो रही है तो फिर आप अपने शरीर में जो घाव हो रहे हैं, छोटे मोटे कट्स लग रहे हैं, उसको हील होने में स्लो करने के लिए आपकी ये विटामिन की कमी ही कारण हो रही है, और आप अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपने ही शरीर का नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आज की ये बातचीत में समझ में आया है कि विटामिन के, जिसके बारे में जैसे आप शुरुआत में कह रहे थे कोई ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है, ये मेरे लिए भी एक नया ही विषय रहा है, और ये कितना आवश्यक है ये बात समझ में आती है। और खासकर बच्चों में तो मैं समझता हूँ कि बच्चे खेल कूद करते हैं, उठते बैठते यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं उनको कट्स लग ही जाते हैं, गिरते हैं उठते हैं तो थोड़े बहुत घाव होते हैं, उनको जल्दी ठीक करना है तो शरीर के अंदर इस विटामिन को पहले से डाल के रखें। बच्चों को हरी पत्तियों की सब्जियां खिलाएं, दूध दही और प्रोबायोटिक जो चीजें हैं वो खिलाएं, जिससे इनका गट बैक्टीरिया है, उनके पेट के अंदर के अच्छे बैक्टीरिया अच्छे बने रहें। दोस्तों वक्त कहता है कि यहाँ रुकना होगा, मगर आज की बातचीत में जो बात डॉक्टर राहुल मोदी जी ने कही है वो सब हमारे फायदे के लिए है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, हमारे शरीर में कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाले, भोजन में बहुत ही कम मात्रा में लेने वाले ये आवश्यक तत्व विटामिन कितने महत्वपूर्ण हैं और ये क्या काम करते हैं, ये बात समझ में आया है। विटामिन के बारे में आज जानकारी हासिल की है। आशा करता हूँ कि आप सभी विटामिन के प्रति जागरूक भी रहेंगे और अपने भोजन में इसका नियमित सेवन भी करेंगे। आज की चर्चा में यही रुकना होगा। आज हमारे प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: दोस्तों आज की सहज स्वास्थ्य की बातचीत में ये बात समझी है कि विटामिन के प्रति जागरूक रहें, विटामिन के की कमी होने से क्या चीज होती है वो भी समझ में आई है, और विटामिन के की कमी हो ही ना इसका ध्यान रखने के लिए हरे पत्तों की सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना शुरू करें, दूध और दही और प्रोबायोटिक की चीजों पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, अपने गट बैक्टीरिया को बेहतर रख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स की जो गोलियां हैं जो आप खाते हैं वो बिना डॉक्टरी सलाह के आप स्वयं न लिया करें, अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते भी हैं तो भी आप ध्यान रखें कि इसकी वजह से आपके पेट के अंदर के अच्छे बैक्टीरिया कम हो सकते हैं और ऐसे में हमें विटामिन के की भी कमी हो सकती है। आज की इन अच्छी जानकारियों को हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे और अपने स्वास्थ्य को सहजता से बेहतर बनाएंगे, ऐसी आशाएं हैं। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107।
2: दिल न मुझसे छिपा सच बता।

0: सो हुआ।
1: नमस्कार, मैं हूँ माया कालसी और आप सुन रही हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, चलो चलो बैठो रेडियो के पास। 9:30 हो गए हैं और पता है ना, आपका फेवरेट शो का टाइम हो गया है।
3: हाँ, और अपना फेवरेट शो तो पता ही है आपको, क्या है उसका नाम? सपनों की सैर।
2: तो बच्चों चलो, हम बातें कर रहे हैं आपके प्रश्नों की, आपके प्रॉब्लम्स की, और उसका साथ साथ सॉल्यूशन भी तो मिल रहा है। और कई बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि जो नुस्खे हमने दिए उनको उन्होंने फॉलो किया है।
3: हाँ, और उनको सफलता भी मिली है। और परी, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है हमारे छोटी सी प्यारी सी सलोनी का।
2: और प्रश्न क्या है मनी दीदी?
3: सलोनी ने पूछा है कि मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझते, मेरी बात नहीं मानते, मैं क्या करूं?
2: इतनी सी बात है, ये तो बहुत सहज है सलोनी। हमें शांत मन से अपनी बात को बताना चाहिए पहले, तो ये ट्राई करना।
3: हाँ, आप जरूर जिद करने लगते होगे, इसीलिए मम्मी पापा आपकी बात नहीं सुनते होंगे। उनको प्यार से राजी करके मीठे मीठे बातों से बोलोगे तो क्यों नहीं आपकी बात समझेंगे और मानेंगे।
2: हाँ बच्चों, इसीलिए आप जरूर कुछ जिद करते होंगे, या फिर उसी में कुछ कल्याण छिपा होगा, तब तो मम्मी पापा आपकी बात नहीं मानते।
3: हाँ बच्चों, और आपको टाइम देखकर भी बात करना चाहिए। हो सकता है मम्मी पापा कुछ बिजी हो, कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम कर रहे हो, पापा मम्मी कुछ खाना वाना बनाने में बिजी हो, कुछ और बातों में इन्वॉल्व हो, आप उस समय बात करेंगे तो वो कैसे आपकी बात समझेंगे ना। तो सही समय पर उनसे बातचीत करो।
2: और दूसरी बात कि अक्सर खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर हो जाती है।
3: हाँ, तो अच्छे से मम्मी पापा से फ्रेंड के जैसे बात करो।
2: तो सलोनी, अच्छी लगी ना हमारी बात? कोशिश करके देखना और फिर बताना।
3: हाँ जरूर, हमें फीडबैक तो दीजिएगा ही बच्चों। तो चलो भाई, अब ऐसे ही जैसे सलोनी ने अपना प्रश्न पूछा है, आपके भी कुछ न कुछ प्रश्न तो होंगे। ऐसी कोई बातें जो आपको लगती हो कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, भले ही चाहे वो कितनी छोटी सी छोटी बात हो, फिर भी आप हमको शेयर कर सकते हैं। तो नंबर तो आपको याद है ना,
2: 9414151415 पर। और अभी बारिश शुरू होने वाली है कहानियों की, तो लेते हैं पहले छोटा सा ब्रेक।
3: चलो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर,
3: सपनों की सैर को।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: बच्चों चलो, परी आ गई कहानी सुनाने के लिए, बैठो रेडियो के पास। और आज डब्बू और नाई की कहानी सुनेंगे। डब्बू कौन है, चलो कहानी में जानते हैं। डब्बू नाम का एक छोटा सा लड़का था, वो हमेशा होशियारी दिखाता था। एक दिन पता है उसे नाई से मजाक करने की सूझी। वो सुबह नाई की दुकान में पहुंचा, शीशे के सामने कुर्सी पर बैठ गया और नाई ने पूछा, क्या बात है डब्बू? डब्बू ने शान से कहा, जरा मेरी दाढ़ी बना दो। नाई को डब्बू की शैतानी समझ में आ गई। उसने कहा, हाँ जरूर बनाऊंगा सरकार। इसके बाद नाई ने डब्बू के कंधों पर तौलिया लपेट दिया। उसने ब्रश से उसके चेहरे पर झागदार साबुन लगाया और फिर वो अपने अन्य काम में लग गया। डब्बू ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, चेहरे पर साबुन पोते ज्यादा देर तक वो बैठा रहा, उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने नाई पर नाराज होते हुए कहा, आखिर तुमने मुझे इस तरह क्यों बिठा दिया है? बच्चों ये सुनकर तो नाई हंस पड़ा। उसने शांति से जवाब दिया, इसलिए कि अभी मैं तुम्हारी दाढ़ी उगने का इंतजार कर रहा हूँ। तो देखा बच्चों, छोटा सा लड़का था डब्बू, उसको कहाँ दाढ़ी होती है। तो इसीलिए नाई ने भी उसके मजाक को उसी अनुसार जवाब दिया। इसलिए तो इस कहानी से हमें समझ में आता है ना कि दूसरे का मजाक उड़ाने वाला खुद एक दिन मजाक का पात्र हो जाता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, ऐसे कोई मजाक नहीं करना जिससे किसी को नुकसान हो। चलो बच्चों अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर।

नमस्कार, मैं हूँ कौटिल्य पंडित। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।

चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की किताब। तो चलो अब हम इसमें जो कहानी पढ़ रहे हैं वह है मित्र की पहचान, जिसमें महाराज के बाल सखा प्रसन्न जीत के द्वारा सभासदों को आदेशात्मक स्वर में कहा गया था कि कुछ कार्य तुम लोग स्वयं कर लिया करो, आयोजन की व्यवस्था करना या उसका निरीक्षण करना राजाओं का कार्य नहीं होता। और ये व्यवहार किसी भी सभासद को पसंद नहीं आया और वे मन ही मन प्रसन्नजीत को कोसते हुए कक्ष से बाहर हो गए। अब बच्चों आगे क्या होता है चलो चलो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। नौ वर्ष का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका था। एक के बाद एक मंच पर कलाकार आते, अपनी कला का प्रदर्शन करते और लौट जाते। पहले बाल कलाकारों को कला प्रदर्शन का अवसर दिया गया, फिर पुरुष कलाकारों को और अंत में महिला कलाकारों को। महिला कलाकारों में एक से बढ़कर एक नृत्यांगनाएं मंच पर आती रहीं, नृत्य प्रस्तुत कर जाती रहीं। तेनाली राम ने देखा कि दर्शकों की अगली पंक्ति में महाराज के साथ बैठा प्रसन्नचित को देखकर तेनाली राम क्षुब्ध हो उठा और उसने मन में सोचा कि महाराज ऐसे व्यक्ति को अपना बाल सखा कहते नहीं थकते, मगर तेनालीराम अपने स्थान पर बने रहने के लिए बाध्य था। इस अशिष्ट व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार तो उसे कतई नहीं था, मगर प्रसन्नजीत के प्रति उसके मन में वितृष्णा का भाव अवश्य गहरा हो गया। मध्य रात्रि तक समारोह चलता रहा। समारोह के समापन के बाद महाराज अपने मित्रों के साथ भवन में चले गए। सभासदों को घोर विस्मय हुआ कि महाराज ने अन्य अतिथियों से यह भी नहीं पूछा कि उन्हें समारोह में आनंद आया या नहीं। शुभ रात्रि कहने की औपचारिकता भी उन्होंने नहीं निभाई। तेनाली राम को महाराज के व्यवहार में आया यह परिवर्तन पसंद नहीं आया। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में उसकी हैसियत मात्र एक विदूषक की ही थी। वह संशय में था कि महाराज को उनके आचरण में उत्पन्न हो रहे दोष के प्रति कैसे सचेत करे। तो बच्चों अब तेनालीराम क्या युक्ति निकालेगा, तो वो तो पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। तो चलो फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से, कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर तो हम पहुंच ही गए हैं। आज हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी की, परी की कहानियां भी सुनी और किताब भी पढ़ ली है ना। तो चलो भाई, अब परी ने पिछली कड़ी में कुछ जनरल नॉलेज का सवाल पूछा था, तो क्या सवाल था परी?
1: बच्चों याद है ना, हमने पूछा था लाल रंग से जाना जाता, धरती से दूर आसमान में रहता सूरज की चौथी संतान, बताओ उसका नाम?
0: उसका नाम है मंगल ग्रह, है ना। जब भी आप आसमान में देखो तो लाल रंग का दिखाई देगा और धरती के पास ही है और सूरज की चौथी संतान यानी कि चौथे नंबर में आता है वो नवग्रहों में।
1: बिल्कुल बच्चों, तो चलो फिर से जनरल नॉलेज की पहेली नोट कर लो। सूरज सबसे पहले यहाँ दिखे, सुबह की किरण सबसे पहले खिले, समुद्र किनारे का ये देश प्यारा, बताओ उसका नाम विशेष?
0: अच्छा, तो ये भी जनरल नॉलेज का पूछा है परी आपने, तो ये तो हाँ बच्चों मैं एक ही दे सकती हूँ। इस देश के नाम पे एक गाना भी है, मेरा जूता है डैश डैश डैश। तो चलो जल्दी से हमें सही जवाब 9414151415 पर मैसेज या वॉइस नोट भेज दो।
1: बिल्कुल बच्चों, इस डैश को भर दोगे तो आपका जवाब हाजिर है। और तो चलो अब हमको क्या करना है, याद है ना, भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना है।
0: हाँ, और इनकी गोदी में सो जाना है। तो चलो करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट, गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को आपकी अपनी उषा का प्यार भरा नमस्कार। आप सुनने जा रहे हो ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कार्यक्रम का नाम तो आप सभी सुन चुके हैं, तो आज के कार्यक्रम आशियाना में कुछ इस प्रकार चलेंगे। देखिए, दिन की शुरुआत तो करेंगे ही एक सुंदर और श्रेष्ठ विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे और आज आपको एक विशेष गेस्ट से मिलवाएंगे, ठीक है ना? तो खुशनुमा जीवन में उनके साथ बने रहेंगे। नाम अभी नहीं बता रही हूँ, आप सुनोगे ना तब आपको नाम बताएंगे। और नई नई व्यंजन तो आपको हमेशा की बातें सिखाएंगे ही, सामान्य जानकारी भी देंगे। इसलिए बने रहोगे आप आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। चलिए दिन की शुरुआत कर लेते हैं एक पावरफुल विचार के साथ, और आज का शक्तिशाली विचार इस प्रकार है, कर्म ही सफलता की कुंजी है। कर्म ही सफलता की कुंजी है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं। कर्म ही जीवन में सफलता की सच्ची कुंजी है। कर्मवीर को जहाँ लक्ष्मी वरण करती है वही संसार उसके अभिनंदन के लिए उत्सुक बना रहता है। उसके स्वर में संसार का स्वर मुखरित होता है। संसार में उसका न कोई मित्र होता है और न शत्रु। उसका तो एक ही उद्देश्य होता है, कर्म करना। फल का अभिलाषी नहीं होता। इसी से सफलता पग पग पर उसके चरण चूमती है। वह अपने देश का सपूत इंसान बन करके विश्व की विभूति बन जाता है। कर्म मानव जीवन के उत्थान का प्रथम और अंतिम सोपान है। ईश्वर कर्म वीरों की सहायता करता है और उनका विश्वास भी कर्म के साथ ईश्वर में दृढ़ होता है। उनके लिए कर्म ही ईश्वर होता है। तभी तो कर्म की उपासना ईश्वर की सच्ची उपासना है। जो लोग कर्म के प्रति आश्वस्त नहीं वे ईश्वर को नहीं पा सकते। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही उपासना है और कर्म ही मानव जीवन का आधार है। बिना कर्म के जीवन निसार और कलंक है। तो ये हुआ आज का शक्तिशाली विचार, जिसको हम जरूर फॉलो करेंगे। और चलिए अब सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए आपको घरेलू नुस्खे देते हैं। तेली त्वचा में किस तरह हम उपचार करेंगे इस बारे में आपको सुना रही हूँ। आप क्या करेंगे अगर तेली त्वचा है तो अतिरिक्त तेल निकालने के लिए हमें गर्म पानी से त्वचा को साफ करनी चाहिए। तेली त्वचा वालों के लिए मैं उपचार बता रही हूँ कि अतिरिक्त तेल अगर निकल जाए ना तो समस्या खत्म हो जाती है, तो इसके लिए गर्म पानी से त्वचा को साफ करना चाहिए। अगला नुस्खा आप ध्यान से सुनेंगे। चंदन का पाउडर गुलाब जल में गोंद करके चेहरे पर लेप करिए, चेहरे के धब्बे मिट जाएंगे और कील मुहासे भी दूर हो जाएंगे। तेली त्वचा वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है चेहरों पर कील मुहासे निकलना, तो इसके लिए चंदन का पाउडर गुलाब जल में गोंद करके चेहरे पर लेप करना है, चेहरे के धब्बे मिट जाते हैं, कील मुहासे दूर हो जाते हैं। अगला उपाय भी आप ध्यान से सुनेंगे। गाजर के रस से चेहरा धोइए, इससे रंग साफ होगा। तेली त्वचा में बहुत ही लाभदायक है। गाजर के रस से चेहरा धोना है, इससे रंग साफ होता है। तो जिसके भी तेली त्वचा है वो इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। तेली त्वचा पर दाग धब्बे व मुहासे निकलते हैं, तेली त्वचा वालों को रोज दो बार साबुन लगा करके चेहरा धोना चाहिए। चेहरे पर नींबू रगड़ने से तेली त्वचा में लाभ होता है, तो रोज चेहरे को दो बार साबुन लगाकर धोइए और चेहरे पर नींबू रगड़िए, इससे तेली त्वचा वालों को लाभ होगा, चेहरा चमक उठेगा। तो चलिए ये तो सुनाए आपको नुस्खे। जिसके भी तेली त्वचा है तो इन नुस्खों को आजमा सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब सुना देते हैं फिर से आपको एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। राधिका जी चौधरी जो मुंबई के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ आशियाना में बने हुए हैं। राधिका जी आपका स्वागत है आशियाना में।
1: नमस्ते।
0: अच्छा राधिका जी, हम सभी खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान के जीवन में तनाव आ ही जाता है। जैसे कि मैं आज आपको उस तरफ लेके जा रही हूँ कि जैसे किसी के हस्बैंड नहीं होते हैं, सारी जिम्मेवारी एक गृहिणी पर आ जाती है, माँ पर आ जाती है। हम देखते हैं कि जिन बच्चों के माँ नहीं होती है उनका पिता सिर्फ कमा करके ला करके दे सकता है, फिर भी मतलब उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है समाज में। उसके बदले जब एक हस्बैंड नहीं होता है और एक गृहिणी घर परिवार को भी चलाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार भी देती है और बाहरी क्षेत्र में कार्य भी करती है, कहने का भाव है कि कमा करके भी लाती है, फिर भी उस नारी के ऊपर लोगों की नज़र होती है कि देखो ये विधवा है, फिर भी घर के बाहर देखो वहाँ जा रही वहाँ जा रही। दूर की तो छोड़ो, घर परिवार वाले ही शुरू हो जाते हैं इस बारे में। क्या कहेंगे आप?
1: जी, आपने जो कहा बहुत सही कहा। इस बारे में आपको कहूँगी कि औरत जो होती है, चाहे वो कुंवारी हो, शादीशुदा हो या विधवा हो, बाहरी व्यक्तियों की, घर वालों की जितनी उस पर नज़र नहीं होती उससे ज़्यादा बाहरी वालों की होती है। क्योंकि वो अपने, कहा जाता है कि लोग अपने घर को जलता हुआ नहीं देखते, बाहर भी अगर थोड़ा सा भी धुआं उठता है तो वो उस धुएं को भी ऐसा बना के बोलते हैं कि जैसे पता नहीं पूरा शहर जल गया हो।
0: जी,
1: तो उसी तरह से लड़की भी होती है। लड़की अगर उसकी खुद की लड़की है, बाहर जा रही कमा रही है, तो वो अपनी लड़की को नहीं दोष देगा, लेकिन अगर दूसरे की लड़की कमा रही है तो वो उसको बहुत गलत तरीके से लेगा और दूसरों को ये कहेगा कि अरे भाई वो कमा रही है, अरे वो उसके माँ बाप बेटी की कमाई खा रहे हैं। ये नहीं देखते कि लड़की है, पढ़ी है, सक्षम है, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।
0: जी।
1: आजकल लोग दूसरों को देख के सबसे ज़्यादा जलते हैं, अपने लिए नहीं, अपने लिए उनके लिए हर चीज़ जो करो सब सही, पर दूसरों के लिए नहीं वो सोचते हैं। लड़कियां हैं, जैसे अभी किसी के पति चले जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब इसको हम किस तरह से यूज़ कर सके। यूज़ करना कई तरीके की होती है, जैसे शारीरिक भी होता है, मानसिक तौर पे भी होता है, शोषण कई तरीके से होते हैं, उनको घड़ी सताना, परेशान करना, गलत गलत बातों से इंजाम लगाना, उनके बच्चों को अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देना, हर तरीके कई तरीके की उसको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है अकेली औरत को।
0: जी, तो एक तरफ हम खुशियाँ की बात करते हैं कि नहीं, परिवार में खुशियाँ रहनी चाहिए, जीवन में खुशियाँ बनी रहनी चाहिए, समाज में खुशियाँ बनी रहनी चाहिए, और एक तरफ हम ऐसा व्यवहार करते हैं किसी के साथ। तो देखिए, कहते हैं कि आज 20 तो कल 30, कोई अमर तो रहेंगे नहीं, या तो आदमी पहले जाएगा या औरत पहले जाएगी। और आजकल तो हम देखते हैं कि कम उम्र में ही लोग जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट तो कहीं बीमारियों की वजह से, तो कहीं नशे की वजह से। तो इस तरह हम छींटा कसी करते हैं और उंगली करते हैं, तो कहाँ पर खुशियाँ हैं?
1: खुशियाँ देखिए हमें बाहर से ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब तक हम अपने अंदर वो खुशी को महसूस नहीं करेंगे ना, तब तक हमें वो खुशी नजर ही नहीं आएगी। अगर सामने वाले बच्चा है, अगर उसको, अगर वो रो रहा है, अगर मैं उसको चुप कराने के बदले उसको गलत तरीके से या कैसे भी अच्छी तरीके से भी उसको हंसाऊं या कुछ भी करूं, लेकिन वो जब तक खुद से खुश नहीं होगा तब तक मैं उसको कितना भी खुश करूं वो नहीं खुश हो सकता है। उसको खुश होने के लिए पहले खुद को अंदर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा है कि लोगों के नज़रिए ऐसे होते हैं कि स्वयं को नहीं देखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: कहते हैं कि खुद के घर में आग लगी होती है तो भी कुछ नहीं, और दूसरों का, जैसा आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि दूसरों के घर का धुआं भी ऐसा लगेगा कि शहर जल गया है।
1: जी,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: लोगों के नज़रिए को हम कैसे बदल सकते हैं?
1: हम लोगों के नज़रिए को बदलना जाए ना तो कुछ नहीं बदल सकते। पहले अपने नज़रिए को बदलिए, अपने घर के माहौल को नज़रिए बदलिए, परिवार को बदलिए। दुनिया बदले या ना बदले, हम बदल गए दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: जी, और जैसे आपने कहा है कि लोग इस तरह की उंगली उठाते हैं, तो इस सिचुएशन में हमको कैसे संभल के चलना है?
1: पहले तो खुद के मन को ना मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे ना, कहते हैं कि बाहरी कवच कितना भी मजबूत हो, अगर वो अंदर से पेड़ खोखला हो तो बाहर अगर बारिश हो रही है तो थोड़ी सी भी बारिश में वो पेड़ गिर जाएगी। लेकिन अगर उस पेड़ के जड़ जमीन के अंदर तक गहराई तक गए हैं और मजबूत से पकड़े हुए, तो बारिश की कितने भी तूफान आए, कितने भी थपेड़े आए, कितने भी जलजले आए, फिर भी वो पेड़ खड़ा का खड़ा ही रहेगा।
0: जी बिल्कुल राधिका जी, आपने सही कहा है कि अंदर से स्थिति मजबूत चाहिए,
1: जी बिल्कुल,
0: फिर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपने पेड़ का उदाहरण दिया, तो बाहर तो लोगों के पास क्या है, यही है ना, कचरा, छीटा कसी करना, दूसरों को नीचे गिराना, कैसे भी करके उनका दिल दुखाना। तो इसके लिए हम अपनी स्थिति तो बनाएंगे ही, लेकिन कभी कभी जब अपने ही अपने को इस तरह के बोल मार देते हैं, जैसे कि घर परिवार में सभी रहते हैं, सास है, जेठानी है या ननद है, कोई भी इस तरह के बोल सुना देता है, तो उस समय हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बाहरी बातों में उतने प्रभावित नहीं होते जितने घर के बातों में प्रभावित हो जाते हैं। बाहरी वाले कितने भी कुछ कह दें हम दुखी नहीं होते, लेकिन घर वाला अगर थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो हम फट से रोने लगते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, कई कई दिनों तक घर वालों से बात नहीं करते। ये चीज हम सबसे पहले तो बहुत गलत करते हैं
0: जी,
1: क्योंकि घर वाले हैं, पहले उनको ना अपने विश्वास में लेना है, उनको विश्वास दिलाना है कि मैं जो हूँ जैसी हूँ करके दिखा, क्योंकि जब तक उनको आप पे विश्वास नहीं होगा तो वो बाहर वाले, क्योंकि घर वाले के मन में भी बात कैसे आती है, खुद से तो वो नहीं सोचते, वो भी बाहर जाते हैं, समाज के बीच में बैठते हैं, तो समाज वाले उनके कान भरते हैं, कोई भी एक बार भरेगा, दो बार भरेगा, वो सुन सुन के इतने उब जाते हैं कि उनको फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है, तो कहाँ निकालेंगे, जो उनकी बात सुनता है या जो उनके सामने कमजोर व्यक्ति पड़ेगा उसी के सामने लाके कहेंगे
0: जी।
1: तो उस समय हमें ये सोचना है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसकी पहले तो मन की स्थिति को समझे कि वो किस भाव से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा बुरा नहीं चाहेगा, वो हमारा अच्छा ही चाहेगा, क्योंकि वो अगर हमारे बारे में बुरी बातें सोच रहा है तो वो हमसे अपेक्षा कर रहा है कि ये उसको बाहर से सुनना ना पड़े, उसको गलत नजर से लोग ना देखे। तो अगर हम सही हैं तो कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता।
0: जी बिल्कुल राधिका जी, हम सही हैं तो चाहे घर वाले बोले या बाहर वाले बोले, हमें मन के अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि अपनी नज़र में और ईश्वर की नज़र में हम सही हैं तो आज नहीं तो कल सही सामने आना ही है। कहते हैं कि सत्य को कभी छिपा नहीं सकते, सूर्य के उजाले को कभी कोई छिपा नहीं सकता, इसी तरह सत्य एक दिन सामने आता ही है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो राधिका जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे खुशनुमा जीवन में, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए
0: रेडियो मधुबन

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। राधिका जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो आप मुंबई से पधारे हैं और परिचय तो आपका दे ही चुकी हूँ। आप एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हो अभी वर्तमान में, और खुशनुमा जीवन की बातें हो रही थी आप सभी के साथ कि किस तरह जब इंसान, उसमें भी विशेष महिलाओं के बारे में आपको बता रही थी कि एक महिला जिसका पति का साया नहीं होता है, बच्चों के परिवार के पालन पोषण भी कर लेती है और बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार के साथ बाहरी क्षेत्र में भी कार्य करती है और इस तरह परिवार में अभाव नहीं आने देते, और अभाव रहता है फिर भी वो परिवार को प्यार से लेके चलती है, जबकि ऐसा कार्य पुरुष बहुत कम कर सकता है। तो राधिका जी, इस बारे में बात चल रही थी है ना, तो कहीं कहीं हम देखते हैं राधिका जी कि बड़े बड़े शहरों में बहनों को, जैसे तलाकशुदा बहन हो, या मैंने आपको बताया ना कि जिसके पति का साया नहीं है, ऐसी बहनों को परिवार भी साथ छोड़ देता है, पियर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, ससुराल वाले और पियर वाले, तो थोड़ा अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। और इतने बड़े शहर में, कहते हैं भीड़ भड़ाके के शहर में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह वो कैसे अपना समय मतलब बिता या अकेले कैसे रह सकती है? आपको तो अच्छा अनुभव है क्योंकि आप बड़े शहर से आप बिलोंग करते हैं।
2: जी बिल्कुल, आपने जो भी कहा सब कुछ सही कहा। जैसे देखा जाए तो शहरों में, आजकल कहते हैं शहर या गांव, दोनों में औरतों की स्थिति एक जैसी नहीं है जी। कहते हैं कि घर में भी लड़कियों को दबाया जाता है, चाहे वो गाँव की हो या शहर की लड़की हो, अगर वो कमाना चाहे तो उसे और भी लोग दबाते हैं। लेकिन मैं उन बहनों से यही कहूंगी कि

0: आप अपने जीवन में ना थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, जैसे कि भगवान के साथ रहे और हमेशा अपने आप आध्यात्मिक लाइन में रहे, आध्यात्मिक जीवन जिए। आध्यात्मिक में जैसे मेडिटेशन होता है, थोड़ा धार्मिक बातें होती हैं, क्योंकि जब तक आपके साथ में भगवान का या आध्यात्मिक साथ नहीं होगा, तब तक आप अपने सोचने की शक्ति नहीं बदल सकते। जब तक आप अपनी सोचने की शक्ति नहीं बदलेंगे, आप में विश्वास नहीं जागेगा। सबसे पहले औरतों में विश्वास होना चाहिए, और खुद में विश्वास होगा तभी आप हर चीज़ कर सकते हैं। लोगों के बीच में भी आप आत्मिक विश्वास के से चल सकते हैं, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस की आज की डेट में देखा जाए तो कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके कारण वो क्या होता है, लोगों के प्रताड़ना के कारण, झगड़ा के कारण, लोगों की लड़ाई, लोगों की उलहना के कारण क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और डीमोटिवेट होने के कारण ये होते हैं कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो लोग आत्महत्या करने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से निराश हो बैठते हैं। निराशा क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक की कमी होती है। अगर थोड़ा सा हम अपने बिजी शेड्यूल को चेंज करके जीवन में 5 मिनट या 10 मिनट भी अगर दिन में टाइम देते हैं आध्यात्मिक में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का ध्यान करें, थोड़ा अपने मन को शांत करें, जिसके कारण आपको सोचने की शक्ति मिलेगी और सही निर्णय लेने की भी ताकत मिलेगी कि आपके सामने कोई भी समस्या आ रही है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। और जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आपके अंदर सोचने की शक्ति नहीं आएगी।
1: बिल्कुल सही कहा है राधिका जी कि ऐसी महिलाएं जो अकेली रहती है बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि तलाकशुदा है या फिर कम उम्र में ही उनके हस्बैंड चले गए हो, तो ऐसी बहनों के लिए जीना दुर्भर हो जाता है, क्योंकि परिवार साथ छोड़ देता है और बच्चों की जिम्मेवारियां भी होती है। तो आपने बहुत अच्छा कहा है कि थोड़ा अध्यात्म का सहारा लेंगे तो सचमुच हमारे में बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। कहते हैं कि हम देखिए ईश्वर को तो सभी मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, सभी ईश्वर को तो मानते ही हैं। और जब सारी बातें या फिर ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे दुख आते हैं, तो हम अंत में क्या करते हैं, जब अपनी कोशिशें बेकार हो जाती है ना, तो लास्ट में हम कहते हैं कि अब तो भगवान को जो करना हो करे, है ना
0: जी। बिल्कुल,
1: जब हम लास्ट में अंतिम में हम भगवान के ऊपर छोड़ते, इससे तो अच्छा है कि फर्स्ट में ही छोड़ दीजिए।
0: जी बिल्कुल, हम स्टार्टिंग से ही अगर भगवान को अपने साथ में लेके चले ना हर कार्य में, तो भगवान कहीं ना कहीं हमें हर तरीके से रास्ता दिखाता है। हम फेल किस जगह पे होते हैं, जब हम अपने आप को अकेला और कमजोर समझ करके चलते हैं, तो इसलिए हम हमेशा रास्ता भगवान तो हमारे साथ उस समय भी होता है, लेकिन हमारे पास सही नजरिया ना होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते
1: जी,
0: उसकी बताए हुए रास्ते को समझ नहीं पाते हैं। अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक अपने साथ में लेके चले, आध्यात्मिक जीवन जिए, तो आपको भगवान क्या कहना चाहता है, क्या रास्ता देना चाहता है, वो अपने आप आपको समझ में आएगा
1: जी,
0: और उस तरह से अपने जीवन को आप परिवर्तन कर सकती हैं।
1: जी बिल्कुल, बाकी कहते हैं कि देखिए पेड़ फल देता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम पत्थर मारते हैं
0: जी,
1: है ना?
0: बिल्कुल,
1: जबकि वो देता रहता है
0: जी
1: ऐसे। तो फिर एक महिला तो हम समझ सकते हैं, जब इस तरह हो जाती है तो लोग भाग तो पत्थर ही मारेंगे, मतलब जहर उगलना पत्थर के समान ही हो गया
0: जी,
1: ना
0: बिल्कुल। उसके उदाहरण पे आप धरती को कह सकते हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: धरती को हम कितना चोट पहुंचाते हैं, बम से फोड़ते हैं, फिर कहीं पे अचानक वो हर जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सब बम्स के कारण धरती पे इतनी सारी चोट होती है, उस पे पापी भी चलते हैं, पुण्यात्मा भी चलती है, साधु भी चलती है, लेकिन कभी किसी धरती ने ये नहीं कहा कि नहीं मेरे पे पापी आत्मा नहीं चल सकती आप, वो हर किसी को साथ में लेके चलती है, अपनी जमीन देती है, रहने के लिए घर देती है, खाने के लिए अनाज देती है, पीने के लिए पानी देती है।
1: तो जब प्रकृति को हम नुकसान पहुँचाते हैं भी, फिर भी प्रकृति हमारा अच्छा ही करती है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर एक महिला सोच ले कि इन लोगों के पास क्या है, कीचड़ी है, लेकिन मुझे जब अध्यात्म से जुड़ेंगे तो ऐसी भावना आएगी कि नहीं, मुझे तो ईश्वर की नज़र में सही रहना है और अपनी नज़र में सही रहना है
0: जी,
1: तो हम यही उदाहरण देते ना बार बार बच्चों को समझाते, तो भी क्या कहते हैं, बच्चे पाप नहीं करना, भगवान देख रहा है
0: जी,
1: है ना, झूठ नहीं बोलना बेटे, भगवान देखता है। तो ये बात को ध्यान में रखें बस, तो लोग भी कल जब हम जिस मार्ग पर चल पड़ेंगे और उसमें अगर हमारा लक्ष्य सही है और हम डटकर मेहनत कर रहे हैं, तो जो लोग आज आपको बुरी नजर से देख रहे हैं तो उनका नजरिया भी बदल जाएगा। और राधिका जी, अध्यात्म में तो इतना बल होता है कि दूर से भले आप बुरी दृष्टि से देख सकते हैं लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं रहेगी।
0: जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा होता है कि हमारे में एक तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होती है
1: जी।
0: और एक तरीके से हम अगर आध्यात्मिक जीवन जीते है ना तो हमारे चेहरे पे एक अलग प्रकार का नूर आ जाता है
1: जी।
0: वो नूर ऐसा होता है कि वो हमारे अंदर एक पवित्रता, प्योरिटी की पावर भर देती है
1: जी।
0: इससे ये होता है कि हम अगर किसी विकारी आत्मा के सामने भी जा रहे हैं, लोग है भले उसकी नजर कितनी भी सोच खराब हो, लेकिन अगर वो हमारे पास से, हमारे वाइब्रेशंस के पास से गुजरता है तो उसकी अचानक सोच चेंज हो जाती है
1: जी, बिल्कुल।
0: और कई बार ऐसा होता है कि वो विकारी व्यक्ति आकर के खुद सामने से कहता है, बहन जी हम तो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे थे लेकिन पता नहीं आप हमारे पास से गुजरे, इतनी शांति फील हुई, इतनी खुशी आनंद हुई, हमें ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कोई फरिश्ता गुजर गया।
1: जी बिल्कुल राधिका जी, अध्यात्म में इतना बल है कि लोगों की फीलिंग्स चेंज हो ही जाती है। और इस तरह देखिए, अगर कोई अकेली बहने रहती हो तो उनका जीवन खुशनुमा बन जाएगा ना
0: जी,
1: क्योंकि वो सारी कीचड़ पट्टी जो समाज या हमारे घर परिवार के लोग जो हमें दे रहे हैं वो हमने लिया ही नहीं। कहते हैं ना कि काम की चीजें हो ले लो और जो अपने काम की नहीं है उसको आप नेग्लेक्ट कर लो। तो इस तरह हम जीवन में खुश रह सकते हैं, बाकी सारी कीचड़ पट्टी, सारा जो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहे हैं, ये सब लेकर के बैठ जाएंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे
0: जी, बिल्कुल।
1: तो राधिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आशियाना में आपने बहुत ही अच्छा किस तरह हम जीवन में खुश रह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह आपने बताया है इसके लिए। और चलिए अब समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत, सुनते रहिए
0: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी का वेलकम है। चलिए आज बनाएंगे आशियाना के किचन में अरवी की टिक्की। ठीक है, अरवी की टिक्की के लिए पेन और डायरी आप अपने हाथों में ले लीजिए। और सामग्री में लिखवा रही हूँ, 3-4 लोगों के लिए मैं सामग्री लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो आप लीजिए 250 ग्राम अरवी। ठीक है, नारियल लीजिए 25 ग्राम। अब आपको सूखी मिर्च लेनी है, सूखी मिर्च जो लाल मिर्च होती है ना सुखाई हुई, तो लाल मिर्च सूखी हुई लीजिए 5 ग्राम। नमक आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं आप टेस्ट के हिसाब से। और खाने का मीठा सोडा लीजिए 1 चपटी। बेसन लेना है आपको 55 ग्राम और 5 ग्राम के अंदाज से ले लीजिए अदरक। तलने के लिए तेल लेना है आवश्यकता के अनुसार। तो बस ये सामग्री है जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ अरवी के टिक्की की, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। आप लीजिए 250 ग्राम अरवी। नारियल लेना है आपको 25 ग्राम। 5 ग्राम ले लीजिए सूखी मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, ले लीजिए 1 चपटी। ठीक है, चपटी भर ले लीजिए। 55 ग्राम ले लीजिए बेसन और अदरक ले लीजिए 5 ग्राम के अंदाज से, आप छोटा सा पीस ले लीजिए। और तलने के लिए तेल लीजिए आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए। तब तक के लिए आपको गीत सुना रहे हैं। गीत सुनाने के बाद कैसे अरवी की टिक्की बनाई जाती है वो आपको जरूर सिखाएंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।

0: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे हैं अरवी की टिक्की, जो विशेष करके महाराष्ट्र में ज्यादा बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र की चीज क्यों ना हम राजस्थान में और गुजरात में भी बनाएं। तो चलिए, अरवी की टिक्की की सामग्री में आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा। अरवी, नारियल जिसको हम खोपरा भी कह सकते हैं, सूखे मिर्च, नमक, सोडा, बेसन, अदरक और तेल। तो ये तो हो गई सामग्री। चलिए कैसे बनाते हैं अब मैं आपको सिखा रही हूँ। अरवी की अच्छी तरह धुलाई कर दीजिए, क्योंकि अरवी पर मिट्टी बहुत जमी हुई आती है, तो थोड़े से गर्म पानी से धुलाई कर दीजिए और फिर इसको आप बॉईल करने रखिए, ठीक है। जब बॉईल हो जाए ना अरवी, तो इसके आप छिलके निकाल दीजिए। छिलके निकाल करके इसको अच्छी तरह से आप मैश कर दीजिए, ठीक है। मैश हो गया। अब आप इधर जो हमने मसाला लिए है ना, तो आप एक कढ़ाई रखिए गैस पर, और गैस पर आप थोड़ा सा तेल डालिए। तेल डाल करके जो हमने अदरक ली है, लाल मिर्च ली है और नमक, खाने का सोडा, अदरक, सूखी मिर्च, नमक, इन सभी को आप क्या करेंगे, नारियल, इन सभी को मिक्स कर दीजिए। मिक्सर में एक बार फेर दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छी पेस्ट हो जाएगी। नारियल अगर कद्दूकस किया हुआ है, नारियल का बुरादा है तो ठीक है, और नहीं है तो कच्चा नारियल लेना है आपको, और उसके छोटे छोटे पीस करके आप इस तरह मिक्सर में चला दीजिए सभी को। और सभी को चला करके जो आप तेल डाल करके तेल में सारे ही मसाले को एक बार फ्राई कर दीजिए, ठीक है। पहले अदरक डाल दीजिए, फिर सूखा मिर्च भी, हमारे देखिए वो लाल मिर्च पाउडर ही हो गया है, हाँ ताज़ा अगर सूखा साबुत मिर्च है तो उसको आप पीस दीजिए इस तरह साथ में, और नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर ही डाल दीजिए। तो इस तरह आप कढ़ाई में तेल रख के इन सारे ही मसालों को अच्छी तरह फ्राई कर दीजिए। फ्राई करने के बाद अरवी को जो हमने मैश किया है ना, इस फ्राई किए हुए मसाले में डाल दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, ठीक है। इसके अंदर नमक वगैरह सारे मसाले गिर गए हैं, और अच्छी तरह मिक्स करके फिर आप गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। और इधर हम क्या करेंगे, बेसन का घोल तैयार करिए, जैसे हम आलू बड़े का करते हैं ना, इसी तरह करना है। और इस घोल में आप जो हमने नमक लिया है, नमक थोड़ा तो मसाला में डालना है और थोड़ा इसमें डालना है घोल में, और हमने खाने का सोडा लिया है ना, वो इस घोल में डाल दीजिए, जो हमने खीरा तैयार किया है इसमें आप डाल दीजिए और बेसन को अच्छी तरह हिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। और इधर ये मसाला ठंडा हो गया, इसके आप गोल गोल टिक्की बना दीजिए। टिक्की बना करके आप डुबाइए इसके अंदर बेसन के घोल में, और बस रखिएगा कढ़ाई गैस पर, तेल डालिएगा और इसमें आप तल लीजिए। हल्के ब्राउन कलर की हो जाए तो बस निकाल दीजिए, थाल तो फेरनी ही है, दोनों तरफ से हल्का ब्राउन कलर का करना है और उसके बाद निकाल दीजिए तेल से बाहर। तो इस तरह अरवी की टिक्की बनाई जाती है, बहुत ही इजी है और आपको पसंद भी आई होगी। तो चलिए फिर से मैं विधि बता रही हूँ। सबसे पहले अरवी की धुलाई कर दीजिए और इसको पानी में बॉईल कर दीजिए, ठीक है, कुकर में सीटी ले लीजिए, और जब ये अरवी पक जाए तो इसको आप छिलके निकाल दीजिए और हाथों से मैश कर दीजिए। अब जो सारे मसाले लिए हैं ना, तो इसको एक बार आप मिक्सर में चला लीजिए, क्योंकि अगर बुरादा है तब तो कोई बात नहीं, लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए, और अदरक को तो हमको कूटना ही है, पेस्ट बनानी ही है, और नारियल का बुरादा है तो आपको मिक्सर में चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर नहीं है तो आप नारियल के चटक बना करके, इसकी घरी बना करके आप पीस दीजिए मिक्सर में। अदरक, नारियल और सूखा मिर्च, ये सभी पीस करके सारा मसाला आप तैयार हो गए ना, तो अब आप रखिए कढ़ाई के अंदर तेल रखिए थोड़ा सा, और ये सारे मसाले अच्छी तरह फ्राई कर दीजिए। और जब मसाले फ्राई हो जाए तो जो हमने अरवी का मैश करके रख रखा है उसको आप डाल दीजिए कढ़ाई में, और अच्छी तरह हिला करके मिक्स करके गैस बंद कर दीजिए। और जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो तो आप रख दीजिए एक तरफ और बेसन का घोल तैयार करिए। आलू बड़े का घोल बनाते इसी तरह घोल तैयार करना है और इसमें नमक और खाने का सोडा डाल देना है। अच्छी तरह हिलाकर रखिए और इधर हमारा मसाला ठंडा हो गया है, उसको आप लीजिए और टिक्की बनाइए। ठीक है, टिक्की बना करके बेसन में डुबा करके आप तेल में तल दीजिए। सुनहरी हो जाए, हल्के सुनहरी, तो आप दोनों तरफ से सुनहरी हो जाए तो बस इस तरह निकाल दीजिए गैस से बाहर। तो अब इस टिक्की को आप भले इमली की चटनी, भले टमाटर सॉस या तिक्की चटनी के साथ आप पिरस सकते हैं। तो इस तरह अरवी की टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट, प्लेट के अंदर अरवी की टिक्की रखिए और जो भी चटनी बनाई है वो भी रखिएगा। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से ढकिएगा स्वच्छ थालपोश और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा अरवी की टिक्की का। और साथ ही साथ सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत, तो उसका भी आनंद लीजिएगा। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। फोक डांस से बने रह सकते हैं फुली और फिट। फोक डांस के द्वारा हम स्वयं को फुली और फिट रख सकते हैं। आइए कैसे रख सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप सभी जानते हो कि किसान, चक्की पीसने वाली महिलाएं, मछुआरे, ये सभी मेहनत वाले लोग अपने काम व पारंपरिक डांस के जरिए कैसे फिट रहते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए ये वर्कआउट डिजाइन किया गया है जिसमें माइंड, बॉडी और सोल पर वर्क कराया जाता है। जानते हैं एक घंटे के इस वर्कआउट सेशन के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। मेडिटेशन। फोक फिटनेस की शुरुआत में लोगों से कहा जाता है कि वे फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप, लंच में क्या बनाऊं जैसे तमाम सवालों को भूल करके एक घंटा सिर्फ वर्कआउट पर ध्यान दीजिए, फिर माइंड व सोल अर्थात दिमाग व आत्मा की शांति के लिए मेडिटेशन भी कराया जाता है। तो ये सब हम सभी भी कर सकते हैं प्यारे श्रोता बंधु, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि कैसे हम फोक डांस से फुली एंड फिट रह सकते हैं। वैसे तो हमारे आबू के आसपास सभी किसान भाई और किसान बहनें ज्यादा है, मेहनत करती है, फिर भी सर्विस वाले भी बहुत है। तो सर्विस में क्या होता है, हमारा दिमाग तो खर्च होता है लेकिन शारीरिक मेहनत इतनी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। वार्म अप के लिए क्या करना होगा, वर्कआउट की शुरुआत से पहले वार्म अप कराया जाता है ताकि शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए। ये भाग हर किसी के लिए जरूरी होता है। अपर बॉडी वर्कआउट, इसमें शोल्डर, चेस्ट, बैक, बाइसेप्स व ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए बिहू, कोली, गरबा व राजस्थानी डांस कराया जाता है। बिहू नृत्य में हाथों और कंधों का काफी प्रयोग होता है। एंटी क्लॉक और क्लॉक मूवमेंट से शोल्डर की एक्सरसाइज होती है। इसी तरह मछुआरों का लोक नृत्य कोली करने से चेस्ट और बैक का वर्कआउट होता है। राजस्थान में रेत ज्यादा होने से यहाँ के लोग पैरों को दबाकर चलते हैं, इसलिए यहाँ के लोक नृत्यों में पैरों की तुलना में अपर बॉडी पार्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। गरबा में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के कई स्टेप्स होने से शोल्डर व बाइसेप्स का अच्छा वर्कआउट होता है। अब कार्डियो वर्कआउट। इस वर्कआउट में कार्डियो को चौथे सेशन में रखा गया है। ये सेशन वजन घटाने के लिए सबसे बेस्ट है जिसमें हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट होता है। इस दौरान भी फोक सॉन्ग्स या फोक बीट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काउंटिंग के हिसाब से आपके मूवमेंट दाएं और बाएं किए जाते हैं। इस दौरान आत्मचिंतन करते हुए माइंड, बॉडी और सोल को रिलैक्स किया जाता है। वाटर ब्रेक और खासियत। वाटर ब्रेक के लिए हर सेशन के अंत में 2 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें सिर्फ 1 घूंट पानी पिया जाता है, क्योंकि ज्यादा पानी से क्रैम्प आने की आशंका रहती है। इससे स्वेटिंग के बाद बॉडी को हाइड्रेट होने में मदद मिलती है। खासियत। इस वर्कआउट में हर माह लोक नृत्यों को बदल दिया जाता है जिसके लिए देश में 130 रजिस्टर और 1000 से भी ज्यादा अनरजिस्टर फोक डांसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुई सामान्य जानकारी कि किस तरह सर्विस वालों को जो शारीरिक मेहनत नहीं करते उनके लिए फोक डांस जरूरी है, किस तरह बॉडी को फुली फिट रखता है, ये आपको जानकारी दी है। चलिए अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: ओए रुका,
1: रुक।
2: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आइए जानने योग्य बात आपको बता रही हूँ कि अच्छे जीवन के लिए जरूरी है घूमना और घुमाना। एक अध्ययन के निष्कर्षों में ये साबित हो गया कि छुट्टियां मनाना और घूमना फिरना सेहत संबंधी लाइफ के लिए बेहतरीन जरिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आबो हवा बदलने से शरीर की कार्य प्रणाली अपने आप ही बदलती है और बिगड़ी बॉडी क्लॉक ठीक हो जाती है। चलिए आज के अनमोल वचन आप सभी को सुनाना चाहूंगी। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, जिस हाथ से अच्छा कार्य हो वह हाथ तीर्थ है। अब मैं आपको राधे रानी के ऊपर एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा करनी सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की काली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की काली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। ये मन

भजन में जितना इसे समझाऊं उतना ही बदल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही बदल

मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। नजरों से गिराना नहीं चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना नहीं चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए,

है, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए।

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं RJ उषा। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम सबकी जिंदगी में गहरे असर छोड़ सकता है, जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा। ये एक विशेष महिला और पुरुषों के बीच हो रही आपसी असमानता, जिसमें विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में है, जिसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। आज ये विषय क्यों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए सुनते हैं एक रेडियो नाटक, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर आधारित है।

0: खड़ी खड़ी चार पड़ोसन खड़ी खड़ी बाता बनावे घड़ी घड़ी।
1: अरे देख देख कांता, लक्ष्मी का मिजाज, चार चार बेटियां पर घमंड तो एड़ो करे, जाने बेटिया कोनी बेटाएं।
2: सही कह रही तू, मोट की छोरी ने तो अतरी बिगाड़ रखी कि आखा गांव में फटफटो लेन दौड़ती परे, वो छोरे की नैन पेंट छूट पेरे हैं।
3: छोरा की न्यान बॉयकट रखे, आदमी का सारा काम छोरी में करावे, पंचायत में जानो वे कि राशन पानी लाड़ो वे, दवा खाने जानो वे कि भले छोटी बेनिया के स्कूल को काम वे तो भी।
4: अरे एकदम देखने नाम कड़ाई माँ बापरो जदी था पड़ी।
5: अरे चुप चुप, वह देख लक्ष्मी आ रही है।
6: अरे कई बात है, आज तुम्हारी सारी सहेलियां एक साथ में।
3: लक्ष्मी आओ मारी सातन आओ, आज तो तू घनी खुश लाग रही है, अनी खुशी को राज।
6: खुशी की तो बात है।

0: जी में नजरिया परी उतारू ली, लूण मरच में वारू ली। अरे मारा कुलदीप, मारा राजकुमार, कई छोरिया की न्यान रोवे रे, बोल तारे कई हुओ।
1: मारी माती दा चरणो, मैं मारी नहीं।

0: आज तो
1: दीपक आपकी सैलरी रहेगी 35,000 और कविता आपकी सैलरी रहेगी 25,000। इज इट ओके?
2: सर ये अंतर क्यों है जब हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाई भी एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहा, फिर सैलरी में अंतर क्यों?
1: क्योंकि दीपक लड़का है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर पुरुष लोग छुट्टियां कम रखते हैं, महिलाएं ज्यादा छुट्टियां रखती हैं। जैसे कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, कभी क्या कभी क्या, लेकिन पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए।
2: पर सर मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ, लॉजिकल टेस्ट में तो मुझे उनसे अधिक मार्क्स मिले हैं। रही बात शादी की, सर क्या गारंटी है कि मेरी शादी इसी साल होगी? अगर होगी भी तो हो सकता है मैं इसी शहर में शादी कर लूं। सर जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से आपका ये भेदभाव सही नहीं है सर।
1: कविता तुम सही कह रही हो, मुझे जेंडर के आधार पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार ही सैलरी देनी चाहिए। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता हूँ।
2: थैंक यू सर।
3: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा और आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नौ में, जहां पर हम लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। दोस्तों लक्ष्मी जैसे लोग हमारे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं। अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो हो सकता है हमारा घर, परिवार और दफ्तर के आसपास ही होंगे। इन लोगों को हमारी तरफ से एक हौसला की आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस विषय को बेहतर समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का और समझेंगे इनके द्वारा लिंग आधारित और घरेलू हिंसा में अंतर क्या है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हिंसा के नो इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, तो आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा। दोस्तों हमें मदद करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुलेखा जी। आप 1998 से फेमिनिस्ट लीडर के तौर पे महिला समाख्या, इंसाफ एंड एक्शन इंडिया ऐसी संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वर्तमान में आप कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं बेटी जिंदाबाद कैंपेन का एक्शन इंडिया के संस्था में। तो स्वागत करते हैं सुलेखा जी को। नमस्ते मैम।
5: नमस्ते। लिंग आधारित हिंसा गर्भ में से ही महिलाओं के साथ शुरू हो जाता है,

0: जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले परिवार और समाज की उम्मीद उसके बेटा होने की चाहत को रखने लगता है और वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो गर्भ से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़का की चाहत, लड़के की चाहत। उसके बाद जन्म के समय खुशी, फिर परवरिश में देखा जाता है, उसके दूध पिलाने से लेकर के और उसके देखभाल तक की गैप्स को हम देखते हैं। हर पल लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, चाहे उसके खान पान को लेकर हो, चाहे उसकी परवरिश को लेकर के हो, चाहे उसके खिलौने को लेकर हो। फिर आगे जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक बढ़ती है तो उसके पढ़ाई लिखाई पर भी, वो कौन सा साइड में पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगी और साइंस पढ़ेगी या कॉमर्स पढ़ेगी, ये परिवार तय करता है। जबकि लड़का लड़की को खुद से तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। वही जब वो किशोरावस्था से ऊपर जाती है, 16-17 साल से, वहां लड़की के प्रति शादी की चिंता परिवार वालों को सताने लगती है, और जबकि लड़के के प्रति उसके रोजगार को लेकर के। तो इस तरीके से हर जगह जन्म से लेकर के और मरते दम तक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता रहता है। एक महिला की जिंदगी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तीन पाप पे टिकी है, पिता, पति, पुत्र। एक इंसान होने के नाते, इससे एक महिला होने के नाते उसे हर जगह एक मर्द के अनुसार चलना पड़ता है, और कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो एक औरत के हाथ में नहीं होता है, उसके शरीर पर खुद का हक नहीं होता है। इस तरीके से एक औरत की जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन पापे गुजरती है, और ये बहुत बड़ा वायलेंस है। कहीं ना कहीं एक औरत वहीं पर खत्म हो जाती है एक दूसरे के हाथ में, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, श्रम विभाजन में भी होता है। कृषि में महिलाएं 80% काम करती, महिलाएं किसान कौन है आपके नजर में भी? अगर हम किसान सब कहेंगे तो एक किसान पुरुष ही नजर आएगा। तो काम हर जगह महिलाओं से लिया जाता है और उसका दाम नहीं तय होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह महिला पुरुष को डिवाइड किया गया है, और ऊंचा पद, पैसा, सम्मान वाली जगह पर पुरुष हावी हैं, और जहां पर उनका काम की वैल्यू का दाम कम से कम और कहीं तो मान्यता ही नहीं, जैसे महिला किसान मानते ही नहीं महिला किसान। तो ये बहुत बड़ा, खुद के काम की वैल्यू एक महिला ही नहीं समझ पाती क्योंकि समाज ने उसे स्थापित नहीं किया, पर बदलेगा। हम महिलाओं ने उस पे बोलना और समझना, अपने काम को गिनना, अपने काम को महत्व समझना शुरू किया है, परिवर्तन आएगा, एक भी धीरे धीरे आएगा। उसी तरीके से घरेलू हिंसा देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है।
1: जी
0: जेंडर भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा गर्भ में शुरू होता है कि लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, और घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है कि तुमने बेटा जन्म नहीं दिया, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल देखने से सुबह खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या नाम है, शादी का, दूसरी शादी का वो देना कि तू तो बेटा दे ही नहीं सकती, घर से निकाल देना, खर्चा ना देना, बच्ची होने पर उसको छोड़ देना, इस तरीके की चीजें। और साथ साथ घरेलू हिंसा कई तरीके का होता है। घरेलू हिंसा घर एक छत के नीचे रहने वाले, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, लिव इन में भी लोग रहते हैं। अगर एक प्रेमी भी घरेलू हिंसा करता है, एक तो मानसिक हिंसा, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां औरत ने लगातार बच्चे हुए, उसकी हालत बहुत खराब हुई, हम लोगों ने उसे कहा कि आप कोई फैमिली प्लानिंग टेक्निक अपनाओ, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद हो रही। आशा वर्कर ने उसे दिया और उसने अपनाया, उसके पति को कहीं पता चल गया, इतनी बुरी तरीके से पीटा, मतलब 6 महीने हॉस्पिटल में थी। फैमिली प्लानिंग में सारी विधियां सरकार ने औरतों के लिए बनाई है, एक विधि केवल पुरुष के लिए बनाई, और उसको भी अपनाने के लिए सरकार पुरुषों को तैयार नहीं करा पा रही है। बात करने की हिम्मत नहीं है हेल्थ वर्करों का, एक पुरुष से जाएगा और बोले कि आप अपनी क्या नाम है फैमिली प्लानिंग के लिए ये सुविधा को अपना सकते हैं। इतना जबरदस्त कंट्रोल है पृथ्वी सत्ता की।
1: तो सुना दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट को लिंग आधारित और घरेलू हिंसा पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारा ये मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर सके और इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि आप या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का शिकार हो रहा है, तो कृपया उनकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम महत्वपूर्ण हो सकता है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारा लक्ष्य है समाज में जेंडर समानता की दिशा में कदम बढ़ाना और हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर। आप सुनिए ये गीत और मैं आरजे उषा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सपनों पूरों

आगे बढ़ूली।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी हरो गांव हरो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल नाम जब सुनते हैं, जिस गांव और अंचल में पले बड़े और अंतर पहुंचे, उस गांव को हम कभी नहीं भूल पाते जहां भी रहे, लेकिन अपनापन आता है क्योंकि उसमें पले बड़े और अंतर पहुंचे। वो खेत खलियान, वो दोस्ती यारी, वो पढ़ाई और वो सभी का जो प्यार, बचपन का दिन याद आता है गांव का नाम सुनते। कहते हैं गांव जिस स्वर्ग जैसे, हेवन जैसे लगता है, अपना बेटे अपना जन्म स्थान स्वर्ग जैसे लगता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी वर्गों से हम परिचित कराते हैं और उनका गतिविधि को सब तक पहुँचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज देता है रेडियो मधुबन। इस मंच का माध्यम से अपना जो फायदा, जो भी गतिविधि, चाहे समस्या हो चाहे समाधान हो, समाधान स्वरूप बनते, कभी कभी समस्या स्वरूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, हमें बहुत खुशी होता है क्योंकि सभी का बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा और समुदाय के हित में प्रस्तुत करते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज रेडियो मधुबन गाँव वासियों के साथ और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए गाँव वासियों को, खासकर किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है, जो लाभ देते हैं, उसका तहत आज आपके पास रूबरू कराएंगे स्पेशलिस्ट जो कि कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय लेंगे और आज हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। बखूब में बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। मैं तो कहूँगा ध्यान से हमारा किसान मित्र सुने और उससे बहुत कुछ फायदा मिलेगा। तो पहले उनका परिचय लेंगे, उनका सक्सेस स्टोरी, यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनका पोस्ट क्या है और क्या करते हैं कितने दिन से, और इसका श्रेय किसको देना चाहते, किसका बदलो यहाँ पर पहुँचे। कृषि विभाग से जो महान अनुभवी एक्सपर्ट हैं, तो उन कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, सभी अधिकारियों की तरफ से आपका परिचय।
1: थैंक यू सर। सर मेरा नाम राकेश कुमार गरासिया है और मैं पिनवाड़ा तहसील के आमली गांव का रहने वाला हूं और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो पिनवाड़ा से ही हुई है 12th तक, और उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर में BSc करने के लिए, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से है जो अपने BSc में अपने एडमिशन होता है। तो वो उस टाइम जब मैं 12th में था जब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसे कोई, 11th में था जब पता नहीं था कि कोई जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट भी कुछ होता है। तो गांवों में ऐसे खेलते खेलते थे, तो उन्होंने बताया कि भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लो 10th पास करने के बाद। तो वो ले ली, भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है, खेती में इंटरेस्ट है, घर पर भी खेती करते हैं, तो मैंने ले ली। फिर 11th पढ़ ली और फिर कहा कि भाई आप BSc करोगे तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन आपसे आपका नहीं होगा। तो फिर मैंने 11th में थोड़ा JET के बारे में पता किया और 12th में थोड़ी बहुत तैयारी करी, और फिर मैं उदयपुर जो है मेरा सेंटर आया था JET का और वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे ऑल राजस्थान में ST कैटेगरी में 9th रैंक मेरे को हासिल हुई थी उस टाइम, और मेरे को राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरे को अलॉट हुई थी, और मेरी जो BSc है वो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से हुई है। और उसके उपरांत मेरे फादर टीचर थे, जो फिर 2013 में निधन हो गया था उनका 13 में, तो उसके बाद 2014 में उनकी जगह में अनुकंपा नियुक्ति में पंचायत समिति पिंडवाड़ा में LDC के पद पे, मतलब अनुकंपा नियुक्ति में लगा था। और उसके बाद भी मैं निरंतर पढ़ाई चालू ही थी मेरी, BSc तो कंप्लीट हो चुकी थी मेरी, तो रेगुलर स्टडी चालू ही थी। उसके बाद मैंने सहायक कृषि अधिकारी 2015 वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं एग्ज़ाम फाइट भी गया था, इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया था लेकिन उसमें नहीं हुआ है। उसके बाद जस्ट कृषि विभाग की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 आई थी, उसमें मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मेरा चयन हो गया। जो चयन होने के बाद मेरे को जो है आबरोड पंचायत समिति का जो आवल क्षेत्र है वहाँ पे मेरे को जो है कृषि पर्यवेक्षक पद के रूप में मेरे को जो है यहाँ पे पोस्टिंग मिली है।
0: कब तक, कौन सा ईयर में पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग?
1: पहला पोस्टिंग सर 2014 से लेके 2020 तक मैं जो पंचायत समिति में रहा, और 2020 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे कृषि विभाग में, और अभी भी सर निरंतर मैं आगे उच्च पद के लिए तैयारी जारी है सर मेरी।
0: तो राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह मेहनत करके, पढ़ाई और लगन एक आदिवासी जो गरासिया जाति से आप उभर कर आए हैं, ये कम बात नहीं है, क्योंकि आपका समाज के लिए आप एक उदाहरण एग्जाम्पल बने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं और उन लोग का जो आर्थिक स्तंभ बहुत कम होने के नाते पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते, और बच्चों का भले आर्थिक रहेगा तब भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि संघ दोष में उनका जो रीति रिवाज संस्कृति को फॉलो करते हैं, कम समय में शादी कर देना और ड्रॉप आउट हो जाना, ये इसका मुख्य कारण होता है जिसका चलते बच्चे आगे नहीं आ पाए। कोई कोई बच्चे जैसे आ निकले, इस तरह कुछ बच्चे अभी होशियार होकर निकल रहे हैं, लेकिन ये अंचल के लिए और खासकर आपका जो समाज गरज से समाज के लिए प्रेरणा गई, आप बने एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे, आपका जो ज्वलंत एग्जाम्पल है, इससे हमारा जो श्रोता मित्र खासकर यूथ जो पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे ऐसे सोच रहे, तो आपका जो प्रेरणा गई सक्सेस स्टोरी का जो आप बताए इससे जरूर फायदा ले, ये हमारा भावना है। सर जैसे आप पढ़ाई का समय में कितने घंटा मेहनत करते थे और क्या प्रिपरेशन करते हैं और आपका फोकस क्या रहता है, वो चीज के बारे में थोड़ा बताएं सर, इससे जो बच्चे आना चाहेंगे उनको भी प्रेरणा मिले।
1: बिल्कुल सर, सर ये पढ़ाई के मामले में सर देखा जाए तो अधिकतर जो ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि हमें सर समय नहीं मिलता या हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक्चुअल में ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। सही बात तो है, वो पढ़ते ही नहीं है। अगर अपने पास किताब है, भले एक किताब भी हो, तो उसको ढंग से अगर पढ़ा जाए ना तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए क्या है कि हमारे समाज में क्या लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और वो बस यूँ जब कोई एग्ज़ाम होता है उसके 15-20 दिन पहले शुरुआत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपन को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, साल भर 6 महीने का टारगेट, उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो मैं सर क्या करता था कि बिल्कुल एकांत जगह गाय चराने चला जाता था, गाय चराने जाता था, वहाँ बिल्कुल जंगल में एकांत जैसा था, किताब लेके जाता था, जिस दिन छुट्टी होती यूँ तो फिर बढ़िया आराम से पढ़ता था, शांति से छुट्टी होती थी उस दिन। और ऑफिस वर्क में 2014 के बीच ऑफिस वर्क में दिन में तो पढ़ाई सर नहीं हो पाती थी, रात के टाइम में 2-3 घंटे सर निकाल लेता था, 2-3 घंटे कभी कभी 4-5 घंटे, कभी कभी पूरी नाइट भी निकाल लेता था। शुक्रवार का दिन होता था, शनिवार को छुट्टी होती थी, तो फिर वो पूरा नाइट उसमें जी गुजरता था सर।
0: ये हो गया मेहनत और जिसका चलता है जी सर। ठीक सर, तो हाँ जी, तो जैसे आपने बताया अपने समाज को देखे होंगे और आप जो अनुभव किए हैं, और उस तरह सिचुएशन से, उस तरह जो क्लाइमेट है, उस तरह जो परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति से आप निकल कर अपना स्वास्थ्य स्थिति को बजाय रखें, और कैसे हम पढ़ाई करें और कहाँ पर करेंगे और जिससे हमारा फायदा होगा, वो चीज़ को देखें। उस संघ में नहीं गए, संघ दोष में जाने से खराब हो जाते हैं, लेकिन आपको संघ भी अच्छा मिला और एकांत प्रिय भी होते थे और पढ़ाई को लगन से करते थे, दृढ़ता ले ली, ये ठान लीजिए मुझे कुछ करना है और सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे, ये तो हमारा गलती है। इतना सुविधा है SC ST के लिए, रिजर्वेशन का कोटा, उनका छात्रवृत्ति, पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलता है, फिर भी हम उसका फायदा तो नहीं ले पाएंगे, तो हमारा ही कमी कहेंगे। तो इस कार्यक्रम को जिसे आपने सजाया और आपने सक्सेस स्टोरी किस तरह पहुँचा, क्या मेहनत किया, क्या उतार चढ़ाव आया, जैसे आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना आज AA कौन सा पोस्ट में है
1: सर? मैं भी कृषि पर्यवेक्षक हूँ, लेकिन अतिरिक्त चार्ज मेरे को AA का दे रखा है मूंगथला का, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक हूँ मैं।
0: जी जी, और कृषि पर्यवेक्षक में आप रह रहे हैं और फिर भी इतना मान सम्मान नहीं देखते, अपना कर्म को भगवान को जो मानते हैं और इष्ट को मानकर आप चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सर ये जो आज इस मंच का माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का बात क्या करेंगे सोच रहे, तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा, क्या आपको जैसे आपने बताया मैं ऐसे करता था और ऐसे पाया है, तो जो बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा वो स्टूडेंट के लिए?
1: सर मेरा की मैसेज यही होगा कि किसी भी सब्जेक्ट से आप हो भले, लेकिन आपको टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा, किसी भी एग्जाम को फाइट करना है तो 5-6 महीने की तैयारी तो कम से कम चाहिए, भले छोटे से छोटे जॉब हो, 5-6 महीने की तैयारी चाहिए, उससे ज़्यादा अपन कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, दिन का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे तो निकालने चाहिए, 4-5 घंटे तो आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आजकल कंपटीशन हर जगह टाइट हो गया है, TSP क्षेत्र में भी कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि 2018 में ये और TSP क्षेत्र में दूसरे गाँव भी जुड़े हैं, तो अब और TSP में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए उनको कम से कम 5-6 घंटे तो डेली स्टडी करनी जरूरी है और 5-6 महीने का टारगेट जरूरी है।
0: सर इसके लिए आर्थिक संबल कुछ बैकग्राउंड में उसको सपोर्टिंग करता है, आर्थिक परिस्थिति बहुत कम है, क्या वो अचीव कर सकता है?
1: बिल्कुल सर, वो भी कर सकता है अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें किताबें तो हर किसी के पास आजकल मिल जाती है, ज़्यादा महंगी कोई आती है नहीं किताबें, और एक दो किताबें खरीद लेता है तो भी दो तीन किताबों से वो फाइट कर सकता है। अब जैसे छोटे लेवल की तैयारी करनी है तो जैसे अब NCERT की पुस्तकें हैं, जैसे छठी से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें हैं, ये छोटे एग्जाम में सीधे इसमें से क्वेश्चन आता है। ये इन किताबों खरीदने जाने की जरूरत ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप लाइब्रेरी है वहाँ से आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ से टीचर से रिक्वेस्ट करके उनकी अच्छी तरह पूरा एक एक लाइन लाइन मतलब पढ़नी जरूरी है, तब जाके वो उसका बेसिक तैयार होता है। क्योंकि जब पहले अपन पढ़ते थे छठी सातवीं जब इतना नॉलेज नहीं था, बस ऐसे ही पास हो गए और चलो, अब वो चीज़ें बहुत काम की है, वो चीज़ें इतनी काम की है और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, छठी से लेके 12वीं तक की पुस्तकों में से हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं।
0: मुझे तो मालूम नहीं था लेकिन आप अच्छा की बता दिए।
1: और मैं सबसे ज्यादा मैं भी खुद NCERT की बुक पढ़ता हूँ, छठी से लेकर 12वीं तक की भी पढ़ता हूँ, बाकी हाँ उससे आता है, बाकी कोचिंग वोचिंग तो ठीक है नॉलेज के लिए कि भाई कैसे क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, बाकी वो पुस्तकें अगर आप पढ़ते हो आप तो उससे मतलब बहुत अच्छा आपका बैकअप तैयार हो जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए मतलब आपको
0: तकलीफ नहीं होगी,
1: कोई तकलीफ नहीं होगी।
0: तो सभी हमारा जो टैलेंट बच्चे जो सुन रहे हैं और जो क्या करेंगे आगे के लिए, उनका फ्यूचर क्या है, कौन गाइड करेगा, लेकिन रेडियो मधुबन गाइड करने के लिए इस तरह एक्सपर्ट को रखते हैं और अनुभवी को रखते हैं जिसका फायदा लेना चाहिए इस मंच का माध्यम से। जो भी श्रोता सुन रहे और अभिभावक सुन रहे होंगे, माता पिता भी सुन रहे होंगे, बच्चे तो सुन रहे, लेकिन अभिभावक सुनने के बाद उनके बच्चों को ऐसे तैयारी करिए, उनको ऐसे सपोर्टिंग करिए, तो उनको समझाइए, क्योंकि माता पिता समझदार होते हैं, अभिभावक समझदार होते हैं, तो उनका बच्चों को उनका जो छोटे छोटे जो उनका डिपेंड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको थोड़ा सलाह देकर सारा मैसेज उन तक पहुँचाएंगे तो जरूर लग जाएगा किसी न किसी रूप में। लेकिन ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे, ट्राई करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर को इस तरह कार्यक्रम में अपने सक्सेस स्टोरी का सब किस तरह मेहनत करते थे और किस तरह मेहनत करने के साथ मैसेज के माध्यम से। ये
1: सर एक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए जैसे जो स्टूडेंट अगर 11th 12th में है, अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं 10th के बाद में, तो उनको क्या है सर 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति वर्ष के, 11th and 12th के लिए 5,000 रुपये। अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको 12,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे।
0: अच्छा बात बताए सर, इसके ऊपर डिटेल्स बताए, क्योंकि हम तो जितने स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चों को ये एक अच्छा पॉइंट मिलेगा उनको लेने के लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और बच्चे कृषि में घर में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई एडमिन बड़ा भी ऑफिसर भी होगा तो उनका जो बागवानी करते गार्डनिंग करते वो कृषि से रिलेटेड है, और बच्चों को एक अच्छा मौका मिलेगा, एक रास्ता आगे के लिए फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो 11th में
1: सर जैसे अपन एडमिशन ले लेते हैं एग्रीकल्चर में, एडमिशन ले लिया उसके बाद या संबंधित क्षेत्र में अपने जो भी कृषि पर वेबसाइट है या सहायक कृषि अधिकारी है उससे आप जाके मिल लो, वो फॉर्म भर देगा और वो फॉर्म भर के जैसे ही जिला स्तर पे सबमिट के बाद उसके जो है स्कॉलरशिप जो है शुरू हो जाएगी। स्कॉलरशिप ये है कृषि विभाग में, उसको एक बार एडमिशन लेने में कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा सर।
0: सर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देना?
1: डॉक्यूमेंट तो सर कुछ नहीं है, जैसे स्टडी कर रहा है तो उसने जैसे 11th पास कर लिया, 11th जैसे पास कर लिया तो उसके बाद 11th किस मिलेगी?
0: 10th पास कर लिया।
1: हाँ 10th तो पास हो गया, 11th में एडमिशन ले लिया, 11th पास हो गया तो 11th की मिलेगी।
0: अच्छा पास होने के बाद 11th?
1: हाँ हाँ हाँ
0: ओके
1: सर। तो उसके लिए सर 11th का
0: 11th पास होने के बाद सबमिट करेगा?
1: हाँ जैसे सबमिट करेगा भाई।
0: इसका पहले एग्रीकल्चर वहाँ पर क्या सब्जेक्ट होता है
1: एग्रीकल्चर में सर?
0: 11th क्या बताना पड़ेगा?
1: जैसे 10th तो सबके कॉमन होता है
0: जी जी,
1: और 11th में सब्जेक्ट जैसे साइंस मैथमेटिक्स होता है
0: जी जी,
1: साइंस बायोलॉजी होता है
0: जी,
1: और एग्रीकल्चर भी साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पूरे सिरोही जिले में, सिरोही में है, भीलवाड़ा है, अबू रोड में नहीं है सर, इसलिए यहाँ के क्षेत्र को के लोगों को अभी जानकारी नहीं है। अगर यहाँ अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिल जाए तो लोगों को जानकारी भी हो जाए यहाँ।
0: तो आपका पूरा अधिकारी एसडीएम साहब तक पहुँचाइए बात, क्योंकि रेडियो के माध्यम से हमारा एसडीएम साहब भी सुन रहे हैं। तो ये
1: नहीं अभी सर एग्रीकल्चर में हो सकता है नेक्स्ट आबू का नंबर आ जाए, वैसे आबू रोड बड़ी सिटी के रूप में सिरे से बड़ा माना जाता है वैसे आबू रोड, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ये अभी साल से शायद सरकार ये इसमें कृषि विभाग में चालू कर दे स्कूलिंग,
0: तो 12th में भी ले सकता है।
1: हाँ 11th से
0: शुरू कभी भी
1: 11th से शुरू 11th 12th, और 12th के बाद में BSc के लिए अपन जैसे अदर सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें सर BSc में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्जाम देना पड़ता है। हाँ उसके माध्यम से वो स्टेट लेवल का। अगर अपन को ये चाहते हैं कि अपन नहीं, अपन तो भारत में कहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ICAR होता है एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एग्जाम देना पड़ता था। ऑल इंडिया में कहीं भी कॉलेज वो मिलती है, वो भी ग्रेजुएशन है, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो अलग भी है उनके।
0: जैसे साइंस और आर्ट्स कॉमर्स होता है,
1: हाँ, तो वैसे साइंस एग्रीकल्चर भी होता है,
0: साइंस एग्रीकल्चर होता है, पहला बार हम सुन रहे हैं आपसे। ये भी बहुत
1: सब्जेक्ट दो कॉमन कॉमन ही होता है, साइंस में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होता है, बाकी जो बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री दोनों सेम होते हैं।
0: सर क्या साइंस जहाँ पर है, जैसे मावल में है, दबर स्कूल में है, गंगा आवासीय स्कूल में साइंस है, तो साइंस एग्रीकल्चर होना चाहिए।
1: हाँ, साइंस एग्रीकल्चर,
0: मैथ फिजिक्स ऐसे नहीं,
1: हाँ
0: एग्रीकल्चर होना।
1: हाँ, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, मैथमेटिक्स में फिजिक्स होता है, बायोलॉजी में फिजिक्स होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर होता है, बाकी दोनों सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों सेम होते ही।
0: तो स्वतंत्र जो भी हमारा अभिभावक जो शिक्षा विभाग में जो प्रशासन में जो सुन रहे हैं, जरूर इस हाईलाइट करें, और आप रोज पंचायत में होते हैं,
1: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबनी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से एक सक्सेस स्टोरी और एक प्रेरणादायी देखते हैं जैसे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे राकेश सर अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं। आज कृषि ऊपर में हम बात कर रहे हैं, कृषि विभाग ग्राम पंचायत बहादुरपुरा से आज हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत ऑफिस में। सारा खासकर हमारा सभी किसान भाइयों के लिए और उनका तरफ से आपको स्वागत करते हैं। पुनः किसान देश का रीढ़ है, जैसे शिक्षक, कृषक और सैनिक, तीन पिलर जैसे लगता है भारत का बदलत में चला हुए है। और जितना राजस्व भी कृषि से ज्यादा आता है और रक्षा करने में तो सैनिक ही है और शिक्षक हमारा अवेयरनेस हमको इतना जागरूक कराते हैं जिसका बदलत हम सर्विस मिलते हैं, होशियार बनते हैं। तो इस सभी को तो नमन करना चाहिए और जो अन्नदाता कहते किसान भाइयों, खासकर भाइयों, तो आज उनके लिए आप देवदूत होकर आए हैं। तो आपके पास जितना भी स्टॉक है या जितना भी जानकारी है रेडियो का मंच के माध्यम से सबको लुटाइए और स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोजेक्ट जो कि अति सहज सहूलियत से उनको फायदा मिले। कास्कर भाई का जो गारे से समाज के लोग हित में रखते हुए क्या करने से उनका आर्थिक संबल और बढ़ेगा, दोगुना ने चार गुना बढ़ेगा उनका प्रोडक्शन, तो सरकार क्या मदद करते हैं, क्या सब्सिडी देती है, कब देती है, किस तरह देती है और कहां पर देते हैं, किसको देते हैं।
1: सभी किसान भाइयों का नमस्ते। मैं कृषि विभाग के बारे में योजनाओं की जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले कृषि विभाग की मुख्य जानकारी है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में अलग अलग है, जैसे पाइपलाइन हो गया, फव्वारा हो गया, रेन गन हो गया, खेत तलाई हो गया, जलौज हो गया, सब में अलग अलग सभी की क्राइटेरिया हैं और सब में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन स्कीम है, उसके अंतर्गत किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है। पाइपलाइन 50 पाइप लेने होते हैं और 50 पाइप पे 50% लगभग 15,000 अधिकतम उनको जो है राशि मिलती है। और पाइपलाइन लगाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो ट्राइबल एरिया या पाकर क्षेत्र में आजकल अपन देखे होंगे तो कुआं बहुत दूर होता है, कुएं से पानी लेके जाते हैं, बोरवेल से पानी लेके जाते हैं, तो क्या है वो नालियां बना रखते हैं, तो नालियों से खेत तक पानी पहुंचने में जैसे किसी का 1 किलोमीटर हो, किसी उससे कम हो, 300-400-500 मीटर तक हो, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो आधा पानी तो जमीन में वैसे चला जाता है, पहुँच नहीं पाता, पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है पाइपलाइन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगी और है भी। उसके लिए पाइपलाइन जोड़ते सीधा खेत में पानी जो स्रोत है वहां से सीधा पानी फसल तक आसानी से पहुंच सकता है,
0: 100% मिलेगा।
1: हाँ 100% जितना पानी है, ज़्यादा पानी है तो वो आराम से सीधा मिलेगा, आपका पानी वेस्ट कहीं नहीं होगा। 20-20 फीट के जो पाइप होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, आराम से उसको जोड़ भी सकते हैं और कोई भी दो किसान भी हो तो भी, एक दो किसान होंगे तो भी उसको जोड़, छोटा बच्चा भी कर सकता है ये, मतलब आराम से आसानी से कर सकता है यूँ। नहीं तो वो बिल बनाते हैं उसमें कहीं फूट जाता है, फिर वापस जोड़ता है, फिर वापस किसान खेत में देखता है कि यार पानी आ नहीं रहा है, फिर देखता है वापस चला जाता है कि यार पानी यहाँ फूट गया है, वापस जोड़ता है, फिर वापस खेत में भागता है, तो उसको समस्या ये समाधान हो जाती है इससे। और दूसरा है फव्वारा यंत्र। फव्वारा में सर क्या होता है कि खेत के अंदर 6 फव्वारे लगाते हैं, मतलब 6-7 फव्वारे अलग अलग अपने उससे लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है सर कि पानी का बचत
0: होता
1: है। हाँ बचत होता है फव्वारे में सर, ये है सब्सिडी इसके अंतर्गत है, अपने लागत का 55% जो है वो सब्सिडी इसमें मिलती है फव्वारा संयंत्र में। और इसका जो आवेदन है वो भी ऑनलाइन ही होता है, किसान राज किसान साथी पोर्टल से है जो इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। और उसके लिए सर जन आधार कार्ड आवश्यक है, जन आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो आवेदन नहीं कर सकता है, और जन आधार कार्ड बना हुआ है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। और ये जितनी भी स्कीम है उसके लिए राज किसान साथी पोर्टल से ही आवेदन होगा और जन आधार कार्ड ही चाहिए, और जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगी। और इसके लिए आप ई मित्र पे जाएंगे, जन आधार कार्ड से आवेदन करेंगे, मान लो सिंचाई पाइपलाइन का आपको आवेदन करना है तो आप जन आधार कार्ड लेके गए और आपका जो भी खेत है उसकी जमाबंदी और नक्शा जो होता है खेत का पटवारी जो है निकाल के देता है, और आजकल ऑनलाइन भी होता है तो ऑनलाइन निकाल के पटवारी से प्रमाणित करवा के और ई मित्र पे लेके जाओ, ये दो चीज़ मुख्य है। और तीसरा आधार कार्ड, तो जन आधार पे ऑनलाइन करके डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं और जैसे ही वो आवेदन हो जाता है तो वो आवेदन हमारे जिला कार्यालय है एग्रीकल्चर का वहाँ चला जाता है,
0: सिरू,
1: हाँ सिरू चला जाता है, और वहाँ से वो आवेदन हमारे पास ऑनलाइन ही अपने आईडी पे आता है। तो जैसे आईडी पे आता है तो हम उस
0: जिसको लाभ,
1: हाँ किसान को संपर्क करते हैं, भैया आपको कहाँ चाहिए, तो हम वहाँ जाके प्री वेरिफिकेशन करते हैं, प्री वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद वापस ऑनलाइन ही उसकी फोटो वोटो खींचते हैं, जियो टैग करते हैं और वापस भेज देते हैं, सिरोही चला जाता है। और वहाँ से उसकी स्वीकृति जारी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है तो हमारे मोबाइल में आ जाता है, हमारे पास वो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कॉपी आ जाती है। उसके बाद हम किसान से संपर्क करते हैं कि आप जो भी पाइपलाइन है, वारा है, जो भी है आप लेके आ जाओ और आप खुद खरीदो, क्योंकि उसको खुद ही खरीदना होता है, सब्सिडी तो बाद में जमा होती है,
0: अरे
1: सामान पहले लाना पड़ता है इसमें, ये है तो सामान वामान लेके आ जाओ और बिल ला के हमें सुपुर्द बता दो। तो वापस हम दोबारा उसके खेत पे जाते, चेक करते भाई इसने फुव्वारे लगाए हैं कि नहीं लगाए, पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है, फिर हम जाके और बिल विल चेक करते और फिर वापस उसका जो भौतिक सत्यापन ऑनलाइन ही ऐप के माध्यम से करते हैं, राज किसान साथी पोर्टल से। और उसके बाद वो जैसे आवेदन हम कर लेते हैं कम्प्लीट और सत्यापन कर लेते हैं, उसके बाद वो वापस जिला कार्यालय में चला जाता है और उसके लगभग महीने भर के अंदर अंदर लगभग वो है उसका भुगतान, लगभग वो पेमेंट जमा हो जाता है खाते में सीधे ही।
0: बहुत अच्छा बात बताया और ये प्रोसेस बताया, लेकिन जैसे आपने बताया सब पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो इतना पैसा लोग के पास रहता नहीं है, जैसे कम से कम तो 5-6 हज़ार मिनिमम तो सब करने के लिए तो चाहिए, तो बाद में तो सरकार देगा 50%, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में इतना जो खरीदने के लिए जो संभव होना चाहिए उनको मिलेगा, जिसके गरीब लोग को कैसे फायदा मिलेगा कहाँ
1: सर? ये ST SC अदर जनरल सभी में सर ये अपन को इसमें एग्रीकल्चर में यही है, आपको सामान तो पहले खरीदना ही है, पहले ही आपको लाभ किसी में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा।
0: तो मान लो पैसा पहले मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा सर?
1: पैसे मिल पहले मिलते हैं तो सर क्या है कि जो ट्राइबल एरिया के जो किसान है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं शायद, मेरे हिसाब से पहले शायद गवर्नमेंट पहले पैसा देती थी इसलिए उसका क्या है लोग दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं तो उसको वास्तव में वो जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो नहीं हो पाता है,
0: तो नेग्लेक्ट करेगा,
1: हाँ
0: करेगा दूसरा टाइम में
1: इन्वेस्ट कर लेगा या फिर वो दारू पी
0: कर सकता है।
1: और इसमें क्या है जो वास्तविक जिसको चाहिए
0: वो करेगा,
1: वो करेगा और उसको फिर पैसा भी पूरा पूरा मिलेगा, एक भी रुपया कहीं जाता नहीं, सीधे सब्सिडी से उसके खाते में, किसी को मतलब बिचौलियों के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, सीधे उसके खाते में पैसे जमा होंगे और उसको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है।
0: ये खास राज है क्योंकि इससे जो जेन्युइन है, जो लाभार्थी है, जो करने के इच्छुक है उनको ये फायदा मिलेगा, जिसका इच्छा नहीं है इसको जबरदस्त दे देंगे पैसा, वो पैसा को दूसरा जगह में वो इन्वेस्टमेंट करने लगेगा, जिसका चलते नुकसान भी होगा और सरकार का जो मंशा है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सर जो पाइप का जो सिस्टम मुझे बताया, बस हमारे किसान भाई को बताया, वो क्या सेफ्टी रहता है ना चोरी वगैरह, जैसे हम पाइप लगा दिए जैसे अपने पाइप का सिस्टम जैसे पानी जो 1 किलोमीटर लेना है वहाँ से मोटर से, लेकिन पाइप को हम जो रखने हो चाहे हमको उसको सेफ्टी का चोरी भी हो जाता है खेत में जो रख देंगे,
1: बिल्कुल
0: तो फिर उनका तो दिक्कत होगा
1: सर। इसमें पाइप एक तो आता है वो बाहर ओपन लगा सकते हैं 20-20 फीट के, और एक ग्राउंड वाला भी आता है, वो अगर किसान चाहे तो उसको ग्राउंड के अंदर लगा दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी भी नहीं कर सकता उसका, वो लंबा रोल आता है, रोल भी लगा सकता है। और भाई मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो वो सिंगल पाइप 20-20 फीट के है उसको लगा सकता है, जैसे कहीं 300 मीटर पानी ले 300 मीटर पाइप लेके आ गया वो और उसके भाई 200 तक ही पहुँचाना है तो उसमें क्या 200 तक ही पहुँचा, नहीं तो फिर वो क्या पूरी 300 मीटर पाइप डाल दी और उसको 200 मीटर तक पानी पिलाना वापस, तो वापस वहाँ से पानी इधर लाना पड़ेगा पाइप से। और इसमें कहा जहाँ तक जितना पाइप लेके जाना है वहाँ तक अपन पाइप जोड़ सकते हैं, ये इसमें एक फायदा है सर।
0: जैसे हम करंट लेते तो अंडरलाइन करना अंडरग्राउंड करना ऊपर लेना में तो दिक्कत होती है, बाढ़ आता है तूफान आता है तो गिर जाता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अंडरलाइन करते तो सेफ्टी रहता है। लेकिन जो किसान मित्र जो इस तरह परमानेंट का खेती है और उनको करना ही लाभ मिल रहा है तो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्ट कर लीजिएगा, अंडरग्राउंड कर लेंगे तो सेफ्टी का बात,
1: वो फिर चोरी का टेंशन नहीं है, फिर
0: आपको इधर उधर करने का जरूरत नहीं, चोरी हो सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा,
1: लेकिन
0: खोदाई करके लेना इतना लोग को इतना पैसा, आजकल तो चोरी बहुत कम हो गया, पहले होशियार हो गए थे, पहले कुछ पैसा नहीं था, आजकल तो 2 घंटा कमाई करेंगे कहाँ भी 200-300 रुपये मिल जाता है, पैसा के लालच में कोई चोरी नहीं, पहले था ऐसे चोरी करने के, लेकिन आज सबका समाधान मैंने सरकार भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, रहने के लिए व्यवस्था सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात बताए। ये था उससे संबंधित हमारे किसान भाइयों के लटरी कहेंगे कि उनका खाद्य खोलेगा जब सब्सिडी सरकार तरफ से जो मिल रहे हैं उसका सही जानकारी होना अति आवश्यकता है, और इसका उसका बात नहीं सुन के
2: गलत अफवाह से नहीं सुनते, सरकार का जो दिशा निर्देश कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उसका एक पोर्टल जैसे सर ने बताया
1: राज किसान साथी पोर्टल,
2: राज किसान साथी पोर्टल में जाकर अपना जानकारी जिस चीज में हमको पूछाई वो चीज रहता है। आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपका बच्चे आज तो पढ़े लिखे ही है, क्योंकि आपके जमाने में इतना पढ़ाई नहीं था लेकिन आज बच्चे तो फोन एंड्रॉइड फोन में सब चीज अवेलेबल है, तो बड़ा फोन में आप कर सकते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबनी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर हमारा साथ जुड़े हुए हैं और सभी को अपना अनुभव आधार से जो भी सुविधाएं जो डोर टू डोर जाकर बताते थे, लेकिन आज रेडियो मन

0: तीन हेक्टेयर मतलब 12 बीघा, 12 बीघा जो जमीन है कम से कम चाहिए, और तीन किसान चाहिए, तीन किसानों का समूह होना चाहिए और जिनके खेत पास पास में है, और जमीन अगर 3 बीघा सॉरी 3 हेक्टेयर मतलब 12 बीघा, हाँ तीनों का मिलाकर 12 बीघा होनी चाहिए और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। न्यूनतम इतनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती कितनी भी, और 3 किसान न्यूनतम चाहिए ग्रुप में, और 7-8 किसान भी हो सकते हैं कहीं, जिसे कि जमीन कम पड़ रही है, 3 किसानों की नहीं हो रही 12 बीघा, तो 10 किसान भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपस में। हाँ तो इसमें सर अधिकतम 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, 40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है इसमें सर, और अधिकतम 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी किसी भाई के, जैसे मान लो 600 मीटर हो गया तो उसको 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी, 400 मीटर के ऊपर जो है वो खुद वहन करेगा। और इसमें भी सर ये है कि आवेदन ऑनलाइन करके और फिर तारबंदी का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, और इसके बाद तारबंदी का कार्य भी पूरा अपन को ही करना है, किसान को ही सारा करना है, करने के बाद जो बिल वगैरह है वो सारा ला के हमें देगा, तो हम उसका जो है वहाँ पे आगे करेंगे तो उसकी सब्सिडी वो पूरी उसके खाता
1: अच्छा, ये भी बहुत अच्छा योजना है, और खेत को सुरक्षा रखने के लिए
0: सुरक्षा रखने आजकल सर जो सुअर इतने सर हो गए हैं जो मक्का एक दिन में सारी मक्का खराब कर देते पूरा खेत, इसलिए ये तारबंदी होने से सर बहुत फायदा मिलेगा किसानों को। ये
1: जैसे हम कपड़ा पहनते हैं अपना शरीर को ढकने के लिए, सेफ्टी के लिए, धूली मिट्टी नहीं लगे, हेलमेट लगा देते हैं, तो खेत को भी हेलमेट
0: लगाना
1: चार तरफ बाउंड्री लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे किसान तरह आराम से नींद से सो
0: पाएगा,
1: तो नींद नहीं होगा,
0: नींद नहीं होगा
1: तो मन तो उधर ही है, स्वास्थ्य खराब होगा, तो स्वास्थ्य रखने के लिए डॉक्टर को पैसा क्यों दे, खेत में लगा सरकार उसका भी फायदा दे रहे, करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं सर। जैसे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे जैसे आपने बताया 3-4 प्रोजेक्ट बनाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, पाइप हो चाहे फुहारा हो चाहे कांटा जो लेने के लिए, इसके लिए क्या कोई भी सामान को अपने हिसाब से लेंगे ना आप, उसको थोड़ा वो मटेरियल को थोड़ा स्टडी करते हैं, इस मटेरियल लगाओ, आप सजेशन देते हैं, कोई भी मटेरियल जो खुद खरीद लाता है उसमें आप क्या सजेशन देते हैं
0: सर? उसमें ये होता है कि ये प्रमाणित जो राजस्थान से जो ISI मार्क से जो भी है, अच्छा। राजस्थान गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड है
1: उसको
0: वही चीजें आप लाओगे तो ही सब्सिडी मिलेगी।
1: ओके
0: ये है।
1: हाँ।
0: इसमें अगर वो राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं, लोकल उससे नहीं लेना है, लोकल से आप नहीं ले सकते हो, और बाकी किसी से भी ले लो, लेकिन उसमें राजस्थान गवर्नमेंट जो चीजें वो अप्रूव्ड होनी चाहिए उसमें, राजस्थान गवर्नमेंट हाँ उसमें उसमें जो पहले से सारी लिस्टें आ रखी होती है कि पाइप में कौन कौन सी जो कंपनीज हैं जिसमें ISI मार्क और कंपनी जो है राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है,
1: तो किसान को कैसे पता चलेगा सर ये मटेरियल क्या है? मैंने जो आपने बताया तो ठीक है आप जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों को कैसे अवगत होगा?
0: किसान भाइयों को सर इसलिए अवगत हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ जैसे डीलर है यहाँ रोड में मंडार क्षेत्र में वो काम करते हैं फील्ड में, वो सब जो किसान भी लगभग उनको जानते हैं, तो क्या है कि वो वहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं, यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे आबू रोड में फैसिलिटी अवेलेबल है, 3-4 डीलर्स हैं उनके पास से आप जो प्रमाणित सामान है वो आप खरीद सकते हैं।
1: तो सभी किसान भाई ध्यान से सुने, कभी सामान लेते हैं तो लीजिए, लेकिन उसका जो उचित जो मूल्यांकन तो उसको थोड़ा परख है, नहीं समझ में आता है तो एक बार कृषि अधिकारी भी रहता है अपना ग्राम पंचायत में, कोई ना कृषि विभाग से पता करिए, और ISI लिखा होना चाहिए तो पता चला ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो आप उसमें सब्सिडी मिल सकता है, नहीं तो आपने लोकल मेड में कोई आपने खुद बनाया उसमें लगा देंगे तो सब्सिडी मिलेगा नहीं। जैसे कोई भी बिल लेते कोई सामान खाते वो बिल भी पक्का बिल
0: पक्का,
1: क्योंकि उसको TIN
0: टीन नंबर वाला बिल वो मिल
1: तब जाकर अप्रूव्ड होगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा, लोकल
0: बिल मान्यता
1: नहीं। तो लीजिए सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कंजूस मत करिए पैसा का चक्कर में, थोड़ा ऐसे नहीं करने का, जो सिस्टमेटिक है उसको नहीं तो अपना सलाह लेकर कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या आप बताना चाहेंगे?
0: दूसरा सर ये है कि अपने यहाँ क्षेत्र में जैसे अपन बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाओ, तब देख के बताता है कि इसमें क्या क्या ये बीमारी है, तब सॉइल में कोई बीमारी होगी, मृदा में कोई बीमारी होगी खेत के अंदर, तो अपन को थोड़ी ऐसे पता होगा इसमें क्या बीमारी है, तो उसके लिए भूमि का मृदा सॉइल टेस्ट करवाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक बहुत जरूरी है, क्योंकि
1: कोई भी सॉइल
0: हाँ सॉइल खेत में खेती करते हैं उसकी टेस्ट कराना अति आवश्यक है, अपन को क्या पता इसमें किस चीज़ की कमी है, कौन से खाद अपन डाल रहे हैं, हो सकता है उस खाद डाल रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं अपन डाल रहे हो, और जो चीज डालनी

0: उसको अपन डाल ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। इसलिए सोइल टेस्ट कराना अति आवश्यक है, और सोइल टेस्ट करवाने के लिए अपने संबंधित जो क्षेत्र का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको बुलाएं, और वो आपका जो है सोइल टेस्ट मृदा से ले लेगा, सैंपल ले लेगा। और आप भी अगर किसान भाई अगर जानकार हैं तो आप भी ले सकते हैं, किसान के खेत के चारों कोनों से,
1: दिशा से,
0: हाँ जैसे ये खेत है 5 जगहों से मिट्टी लेनी है, 1 फीट अंदर खोद के और मिट्टी लेनी अंदर से चारों कोणों में और एक बीच में से मिट्टी लेके, और उनको मिक्स करके अच्छी तरह से
1: सभी को मिक्स,
0: हाँ आधे आधे किलो मिट्टी लेके 5 भाग से, और फिर उनको मिक्स करके उसमें से है जो पाप भर मिट्टी आधा किलो मिट्टी है वो लेके, और फिर उसको जो कृषि विभाग में जमा करा दो। और उसके जो शुल्क है वो सिर्फ मात्र 5 रुपये है।
1: अच्छा अच्छा,
0: 5 रुपये उसकी जो शुल्क है, और 5 रुपये में पूरी मिट्टी की पूरी जाँच होके आ जाती है 15-20 दिन में।
1: सुविधा आबू रोड में है?
0: आबू रोड में सर ये सुविधा नहीं है, लेकिन वो हमारे पास जैसे सैंपल आता तो हम जिला में वहाँ लैब बनी हुई है सिरोही, वहाँ जाके हम टेस्ट करवा लेते हैं और उसकी रिपोर्ट हम किसानों को देते हैं। अभी हमारे जो कृषि विभाग के जितने भी कृषि पर्यवेक्षक है उन्होंने 50-50 सॉइल सैंपल लिए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, आज भी हम लेके आए हैं कार्ड, और उसमें पूरा दे रखा है कि कितना क्या क्या देना है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने किसान भाई देते हैं, ज़्यादा देते हैं, उनको पता नहीं रहता, ऐसे यूरिया है, DAP है वगैरह वो डालते रहते हैं, लेकिन उसमें खेत में ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सारी अपने जिप्सम की कमी है, मोस्टली जिप्सम की कमी है, तो जिप्सम अगर लेते हैं किस तो सोसाइटी से लेते हैं तो उसमें भी 50% आपको अनुदान पे जिप्सम मिल जाएगा, तो वो जिप्सम को आप लेके और मिला के मिट्टी मिला के आप उसका जुताई कर देते हैं तो वो फसल के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहेगा। और जिप्सम है, जिप्सम अगर उसमें जिंक सल्फेट है और फेरस सल्फेट है, ये दोनों भी अभी हम अनुदान पे दे रहे हैं, 50% अनुदान पे हम दे रहे हैं। तो उससे क्या है सर, ये जैसे ऑयल क्रॉप से सरसों वगैरह है, तो इस जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट डालने से इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बढ़ती है। और यहाँ इस फील्ड में जैसे है जो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी है, तो ये अगर किसान अगर सॉइल टेस्ट करा लें तो उसका पता चल जाए तो आगे इस संबंध में उन किसानों को लाभ हो सकता है,
1: बहुत कुछ बचत भी हो सकता है, इनका खेत भी बचत कर सकते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन को भी बचा सकते हैं, और हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा।
0: नहीं नहीं सर, वेस्टेज नहीं,
1: और हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम कोई भी टेस्ट सामने बताए, कोई भी ऑपरेशन करने का पहले आपका ब्लड टेस्ट पूरा सब यूरिन टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, इसके बाद मेडिसिन देते तो काम में आता है, क्या आवश्यकता है तो खेत को भी क्या आवश्यकता है वो चीज़ हम जब जाँच करेंगे, भले पहले शुरू में जब करेंगे तो उनको लगेगा भाई ये प्रोसेस है, फिर उसको पकड़ो तो टाइम जाता है, लेकिन एक बार आपका खेत का पूरा पता चल जाएगा तो आपको उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा।
0: सही है,
1: जैसे हमको सिर दर्द होता है, BP होता है, तो हम शुगर होता है, तो हम चीनी का थोड़ा कंट्रोल करेंगे ना, अगर टेस्ट नहीं करेंगे कैसे चलेगा। और उसी तरह खेत को भी अपना पहले टेस्ट कराइए, भले समय लगे, लेकिन जैसे आप टेस्ट कराने के लिए खेत को जाना पड़ेगा, 5 जगह से मिट्टी लेना पड़ेगा, फिर उसे करीबे खेत को उनको बताना पड़ेगा, ये चीज़ें जो प्रोसेस सर, इसमें थोड़ा पैसा वगैरह कुछ हेर फेर होता है क्या, जो जिसको हम बुलाएंगे वो क्या फीस लेते हैं ना, फ्री में जाते हैं?
0: नहीं सर, फ्री में निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, अगर बुला ले या खुद मिट्टी लेके आ जाए तो और भी बेस्ट है
1: जी।
0: और जैसे हम क्षेत्र में खुद मिट्टी लेके आ जाते हैं किसान, एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं कि ऐसे आप मिट्टी ले लेना, और वो खुद की मिट्टी लेके आ जाता है, उससे सिर्फ 5 रुपए की रसीद लेंगे हम बस।
1: लेकिन किसान भाई लोग बता रहे हैं हमको बहुत चक्कर लगाना पड़ता, 2 बार गए किसान नहीं थे।
0: हाँ सर, ये पहले था, लेकिन अभी क्या हम जैसे सब जगह पोस्टिंग हो चुकी है, पहले यहाँ पूरे आबू रोड क्षेत्र में 2 सुपरवाइजर थे, 15 पोस्टें हैं और सुपरवाइजर 2 थे, और वो पूरा 15 पोस्टों का काम संभालते थे, तो वो हो नहीं पाता था। अब हर जगह मतलब 10 पोस्ट तो ऑलरेडी भर चुकी है और 5 पोस्टें ही खाली है, तो अब हर जगह दिक्कत नहीं होगी आप किसान भाइयों को, जो है कृषि पर्यवेक्षक समय पे हर जगह मिल जाएगा और आपका काम भी आसानी से।
1: इतना सुविधा है सरकार दे रही है, और इतना पैसा तनखा आपका पीछे, इतना लोग अपॉइंटमेंट किया है, कितना तनखा जा रहा है
0: जी,
1: और उसका फायदा लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप जब नहीं लेंगे उसको काम नहीं दे रहे हैं, तो मुझे तनखा सरकार का जो राज्य के पैसा जो जा रहा है वो वेस्टेज जा रहा है।
0: सही है सर,
1: तो उनको काम दीजिए और उनको भी खुशी होगा।
0: सही है,
1: और वो पैसा भी अदम भी होगा।
0: सही है,
1: और नहीं तो बढ़ बढ़ करेंगे तो मन भी इधर इधर होगा, भ्रष्टाचार में जाएगा।
0: सही है,
1: तो इसलिए हमारा किसान भाई को नम्र निवेदन है, सार से जितना फायदा लेना हो पहले जाइए, बार बार जाइए, एक बार कुछ उनका भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा, मैंने कहा ऑफिसियल ड्यूटी होगी जैसे सर आज यहाँ पर है, तो मान जा अपना ऑफिस में कोई ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं ना
0: सर। हमारे ऑफिस के बाहर हमारे सबके नंबर लगा रखे हैं हमने, अगर कोई भी हम अगर फील्ड में भी जाते हैं, हमारा वैसे फील्ड का ही काम होता है पूरे दिन, अगर ऑफिस में नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ जाके ऑफिस के बाहर नंबर से एक बार कांटेक्ट कर लें, हो सकता है आपके आसपास ही कहीं हो फील्ड में हो तो नंबर भी लिखे हुए
1: हर सेक्टर में, जैसे आपका सेक्टर कितने ग्राम पंचायत को लेकर आप सब
0: सर? मेरे जैसे मूलथला डब्ल्यू में तो जैसे 9 पंचायत आती है,
1: 9 ग्राम पंचायत
0: सिर्फ मैं सुपरवाइजर का काम करता हूँ, पूरे सभी मेरे अंदर 4 सुपरवाइजर है, 4 और खुद ही मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मेरे खुद के आवल और चनार 2 ग्राम पंचायतों का काम मैं खुद देखता हूँ। इसके अलावा ओरिया है, बहादुरपुरा है, चंडेला है, मूंगथला है, क्यारिया है, दामसरा है, ये इनका सुपरविजन मैं करता हूँ। ये
1: एरिया को पूरा हरा भरा करने का दायित्व अपने कप्तान गिरद करते हैं, इतने किसान को खुश रखते हैं, क्योंकि किसान जब खुश रहेगा देश खुश रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल किसान को,
1: और आप उसका कमान आपका हाथ में, और जो आप एक आदिवासी समाज में बिलोंग करते हैं, आदिवासी को समझाने अपना भाषा में आता सहज भी होता होगा, इस तरह बहुत कम मिलता है सारे कैंडिडेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ सर इस फील्ड में समस्या भी होती है, जैसे अधिकतर जो हमारे साथी लोग हैं वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते
1: जी,
0: जो किसानों को मोटिवेट करने में थोड़ी समस्या आती है, और किसान भी क्या है कि जल्दी बाहर के किसी लोग भी एकदम भरोसा नहीं करते, और मेरे यहाँ होने से क्या होता है कि जैसे मैं लोकल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ तो उनको मेरी खुद की भाषा में बात करता हूँ आदिवासी भाषा में, तो उनको जल्दी समझ में भी आ जाता है और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये है सर,
1: सही बात, इतना दायित्व लेकर फिर भी आप खुश रहते हैं और सबको देने के लिए आपको खुशी मिलता है कहीं सेवा में।
0: कृषि सर, कृषि विभाग में देने का ही है इसमें सब दे, लेकिन किसान को मोटिवेट होके हमारे संपर्क करना बहुत अधिक आवश्यक है। हम भी हर जगह हमारी किसान गोष्ठी होती है, अभी हाल फिलहाल में मूंगथला में किसान गोष्ठी हुई थी, 100 किसानों की हुई थी, हम हर जगह जहाँ भी गोष्ठी करते हैं किसानों को जानकारी देते रहते हैं, महिलाओं की अलग गोष्ठी होती है, पुरुषों की अलग गोष्ठी होती है, पूरी स्कीम की है लगभग, हम वहाँ जानकारी देते रहते हैं, और इस क्षेत्र से अब धीरे धीरे थोड़े किसान जागरूक हो रहे हैं और स्कीम में आवेदन भी कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं।
1: और ये तो यूथ जैसे यंग आपको अभी पोस्टिंग बहुत कम दिन हुआ रहा, यह तो कमी खून में देने के लिए भावना, बूढ़ा तो है हुआ नहीं
0: जी जी जी,
1: लेकिन कोई जिससे सीनियर हो जाते हैं तो उनका देखा उसको इतना आता नहीं करने के, लेकिन आपका जो खून उमंग उसका फायदा में देखने को मिलता है, तो इसका फायदा अंतर्वासी ले, खासकर अपना जो सेक्टर बताए इतने सेक्टर का जो आप कार्यकर्ता है कप्तान चलाते हैं, तो इतना गाँव पंचायत आपका पास है, तो खासकर यहाँ का समस्या क्या आती है और उसको आप कैसे निवारण करते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन पहले स्कीम के बारे में कितने स्कीम है और बाकी रहा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर इस कार्यक्रम को सुंदर में बखूबी से सजा रहे हैं और किसान भाइयों के लिए जितना देना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा देने के लिए तत्पर है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं सर। और कौन सा स्कीम है?
1: और सर एक सबसे बड़ा स्कीम है खेती में काम आने वाले कृषि यंत्र हो गए, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सारे जो है कृषि यंत्र है उन पे भी है जो सब्सिडी मिलती है। इसके अंतर्गत कृषि यंत्र में सर है जो एक तो ट्रैक्टर, पानी का टैंकर और एक साथ ट्रॉली है, ये इनमें सर सब्सिडी नहीं मिलती है।
0: अच्छा,
1: इनमें सब्सिडी तो नहीं मिलती है, बाकी जितने भी उपकरण हैं उनमें सब में सब्सिडी मिलती है आपको। और जिसमें STSC को है और लघु सीमांत किसान है उनको 50% और जनरल को है 40% है, जो उसका टोटल कॉस्ट का है वो इतना है जो सब्सिडी मिलती है।
0: सर इसमें ग्रामवासियों की तरफ से और खासकर किसान भाइयों की तरफ से जैसे आपने सब्सिडी बताई इंस्ट्रूमेंट लेने में, जो कृषि उपकरण ट्रैक्टर वगैरह छोड़ के और बाकी जो चीज़, और क्या रह गया जो इसमें आप सब्सिडी देते हैं?
1: इसमें सर देखो, इसमें है डिस्क प्लाव है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, ट्रैक्टर ऑपरेटर रीपर है, रिज फेरो प्लांटर है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, चीजल प्लाव है, इतने सारे सर ये उपकरण हैं जिसमें ये जो सब्सिडी अवेलेबल है।
0: कितना परसेंट उसमें सब्सिडी मिलता है?
1: वो ST और SC के लिए 50 और अदर के लिए 40% टोटल कॉस्ट का है। और उसमें थोड़ा SP का डिफरेंस पड़ता है तो ज़्यादा फर्क नहीं आता, HP का पड़ता है तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40-50 तो है ही है, ये इतनी सब्सिडी तो मिलती है।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी इसका फायदा भी ले, खासकर किसान धान के लिए ये जो उपकरण, जो कृषि यंत्रपाती जो आवश्यकता है उसमें भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ से मिलता है 50 और 40, जनरल के लिए 40 और ST के लिए, SC के लिए 50 मिलता है। सर जैसे कृषि के लिए आजकल ट्रैक्टर वगैरह आपने बता दिए, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी हम देख रहे हैं बलद बा जो पशु से खेत करते हैं तो उनका भी बीमारी कभी कभी होता है और डेथ भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या सब्सिडी वगैरह सरकार तरफ से
1: पशुओं के लिए? वैसे सर ये तो पूरा पशुपालन विभाग से है, लेकिन इसमें सर ये मेरे ध्यान में जहाँ तक इन पशुओं के भी बीमा होता है तो बीमा तो हर इंसान भी करवाता है तो पशुओं का भी करवाना चाहिए। तो पशुओं का बीमा करवा अगर ऐसी दुर्घटना बाय चांस हो जाती है तो उससे सबसे पहले पशुपालन विभाग से संपर्क करके और उसके बारे में उनको बताना आवश्यक है।
0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कौन सा स्कीम सर? जो
1: सर ये स्कीम तो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ऐसे इंटेंसिव स्कीम है, जैसे छोटी छोटी स्कीम है, वैसे मिनी किट वितरण से
0: जी।
1: जो इसमें क्या है, गवर्नमेंट मिनी किट वितरण करती है किसानों को 10% टोकन राशि रुपये लेके, और अभी सरसों के जैसे मिनी किट आए हुए हैं तो उसमें हम 2 किलो सरसों है वो 13 रुपये में हम 13 रुपये टोकन राशि लेके केवल महिला कृषकों के नाम से हम उनको देते हैं
0: जी।
1: ये है मिनी किट। और दूसरा सर ये है अपने प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, स्प्रे वगैरह होते हैं सर, जो दवाई छाटने के होते हैं ना सर स्प्रे, उनमें भी सर सब्सिडी मिलती है। तो बैटरी ऑपरेटर जो है प्लांट इक्विपमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसमें 1500 रुपये तक सब्सिडी है। आज हम खुद लेके भी आए हैं, किसान के लिए बोला है, इसमें हम अपन को पहले 3000 रुपये भरने पड़ेंगे और 1500 रुपये वापस सब्सिडी के रूप में खाते में जमा होंगे। और एक दूसरा होता है जो केवल हाथ से चलाते हैं दवाई छाटने वाला, उसमें 750 रुपये तक सब्सिडी मिलती है।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएं और किसानों का हित के लिए हम सब तत्पर हैं। और रेडियो मधुबन एक मंच देता है जिस मंच का माध्यम से किसान का समस्या सुनते भी है, और आज समस्या को समाधान करने के लिए रेडियो मधुबन का मंच का माध्यम से राकेश सर ने पूरा डिटेल जितना उनका पास है, सरकार का जो गाइडलाइन है दिशा निर्देश को लेकर जो सब्सिडी से लेकर सब चीज़ रखें, बहुत अच्छा लगा इस तरह कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजाने के लिए। राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और समय मिलेगा तो कभी पुनः उनसे मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे, और किसान भाइयों के लिए जितना जानकारी समय प्रति समय आपके पास पहुंचता रहेगा ये हमारा सुभावना है। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
1: किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि आप कृषि विभाग में जितनी मैंने स्कीम्स बताई है और आगे भी कैंप हैं उनमें आप अगर ये सुनते हो तो हर जगह आपको आवेदन तो एक बार करना ही है, हर स्कीम में भले लो या मत लो, लेकिन आवेदन करोगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और उसके बारे में उससे जो फ़ायदे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए पहला अवसर है कि मेरी जो बात है, जो मतलब मैं सोच रहा था पहले कि कहीं मेरी बात भी ऐसे मैंने YouTube पे ऐसे डालूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ रेडियो मधुबन को कि जो मेरी बात है किसानों तक पहुँचाएंगे आप। धन्यवाद सर।
0: हाँ तो ट्रायल सर था ना, हमेशा आपका साथ हम रहेंगे और जितना आप डोर टू डोर देते थे, लेकिन कभी भी मौका मिलेगा तो आपसे संपर्क करके उनका हित में, किसानों का हित में जरूर संपर्क रखेंगे
1: जी।
0: जिसका चलते हमारा किसानों को जल्दी फायदा मिले और जो भी समस्या है कभी कभी लाइव में अभी आप आ सकते हैं
1: बिल्कुल,
0: जिसका चलते डायरेक्ट आप किसान से बात कर सकते हैं
1: सही,
0: जिसका चलते आपको भी लगेगा चलो आज मेरा जो मंशा जो सपना था आज हमारे कास्कर भाइयों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बहुत खुशी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह कार्यक्रम में सजाने के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद सर।
0: तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। हमारा श्रोता मित्र खासकर कास्कर भाई लोग इसका जरूर फायदा लें। कोई भी समझ में दिक्कत होता है तो नज़दीक आपका लोकल जो कृषि अधिकारी है या कृषि पर्यवेक्षक है तो उनसे संपर्क करके इसका जानकारियाँ लीजिए। जरूर प्रशासन आपका साथ है, कृषि विभाग आपका साथ है और रेडियो मधुबन आपका साथ है। सभी को नाम का साथ, सुनने वाले सुनाने वाले को धन्यवाद, आभार।
2: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड. और वैसे तो दोस्तों गीत संगीत हमारे जीवन से कुछ इस तरह जुड़ा है कि जीवन की पहली सांस से लेकर जीवन के सफर में जो भी आयाम आते हैं समझ लीजिए संगीतमय होते हैं. अगर संगीत हमारे जीवन में ना हो तो कुछ अधूरा सा लगेगा. और सच में ये संगीत दिल को कभी कभी उदासी से भी छुड़ा देता है और कभी कभी अकेलेपन की तलाश में इंसान निकल जाए तो भी संगीत उसका साथ देता है. समझ लीजिए क्या जादू है संगीत.

0: यार, और बहुत ही मतलब उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत प्यार से वो सुनते हैं और आज मुझे फिर एक बार मौका मिला है अपने सॉन्ग उनके सामने रखने का।
1: जी बिल्कुल। और अनुराधा जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, क्या संगीत आपके लिए क्या मायने रखता है, या क्या आप हमेशा से गाते थे, गुनगुनाते थे, क्या क्या रिश्ता है आपका संगीत से?
0: संगीत मेरे प्राणों में बसता है, अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा दीदी, क्योंकि बचपन से ही सिंगिंग मैं करती रही हूँ और मेरे पापा ने मुझे संगीत की शिक्षा दी है, और संगीत के बिना मैं रह भी नहीं सकती हूँ। हर पल, हर जब भी मुझे टाइम मिलता है या फ्री होती हूँ या फिर मैं कभी भी कुछ भी किचन में वर्क कर रही हूँ तो भी मेरे को सिंगिंग करने का मतलब अच्छा लगता है मुझे सिंगिंग करना, और मैं करती रहती हूँ रेगुलर। मेरा ये हैबिट है, मेरी सिंगिंग हमेशा करती हूँ मैं।
1: तो पहला गीत हमारे श्रोताओं के लिए आज आप कौन सा लेकर आए अनुराधा जी?
0: सबसे पहले हम परमात्मा को याद करेंगे दीदी,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उसके बिना तो हमारा कहीं भी उनसे परमात्मा से जब तक हम मिलन नहीं करते हैं तो कोई भी दिन या कोई भी शुभ काम हमारा स्टार्ट नहीं होता है। तो आज हम सबसे पहले परमात्मा को याद करेंगे। नाम है तेरा तारनहारा।
1: क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, जितने सुंदर ये शब्द हैं उससे मधुर ये संगीत और गीत होगा। तो बिना देरी करिए, आइए अनुराधा जी की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या बात है, बहुत तालियां बनती हैं इस पर तो हम सबकी ओर से, बहुत ही सुंदर।
1: थैंक यू जी।
0: और सच में गीत भी बहुत सुंदर है।
1: परमात्मा की याद में खो जाते हैं इसमें हम।
0: खो जाते हैं। नाम है तेरा तारनहारा, और सच में उसको हमने इतने नाम दिए हैं, वो सच में प्रेम से दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि वो महसूस करते हैं नाम का वो अर्थ है, वो सत्य है। आप जब ये गा रहे थे तो क्या फील कर रहे थे राधा जी?
1: मेरे को फीलिंग में ये आ रहा था कि जैसे भगवान मेरे सामने हैं, उनसे मैं उनको मैं देख पा रही हूँ, उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है कि मेरा उनको मतलब चेहरा मैं देख ही रही हूँ उनका, और मेरा मन कर रहा है कि मैं उनको निहारती ही रहूँ उनके प्यार में, जैसे खो जाते हैं ना भगवान के प्यार में। सेम वो मेरा सिचुएशन थी, मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पे हूँ, गाने में ही खो गई थी मैं।
0: गाने में खो गए थे
1: ये जी।
0: मतलब कितना अच्छा है ना, जैसे कई बार हमें डर लगता है जिंदगी में, उदास होते हैं या फिर कई बार ना नर्वस भी होता है, तो ऐसे में ऐसे गीत साथ हो तो सब भूल जाए आसपास, जैसे
1: खुद को भी भूल जाते हैं, इतनी याद में हम परमात्मा ही खो जाते हैं कि खुद का भी हमें एहसास नहीं होता कि हम यहाँ पे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सच में। और अगर बात करें, आपने परमात्मा के गीत से ही शुरुआत करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कैसा रिश्ता है आपका परमात्मा के साथ, मतलब क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में कुछ बताएं।
1: परमात्मा को मैं अपना पिता भी मानती हूँ और फ्रेंड भी मानती हूँ, है ना, सभी रिश्ते मैं परमात्मा के साथ में मानती हूँ। गुरु भी हैं वो मेरे, है ना, फ्रेंड भी हैं, हमेशा साथ देते हैं। जब भी मुझे कुछ परेशानी होती है तो मैं उनको ध्यान करती हूँ, तो तुरंत वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि क्या आपको करना है, कैसे आप रास्ता दिखाते हैं, मेरे को मार्गदर्शन जैसे कहते हैं करते हैं,
0: वैसे करते
1: तो मुझे वो हमेशा साथ देते हैं
0: जी।

0: तो दोस्तों बहुत सुंदर गीत भी आप सुन रहे हैं, संगीत भी आप सुन रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ बीच में कि अगर आपको भी संगीत का शौक है, अगर आप गाते गुनगुनाते हैं और आपका कोई भी दिन बिना गीत के नहीं कटता, तो समझ लीजिए आप भी इस कार्यक्रम पर आ सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना है, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम, आपके गाँव का नाम। रेडियो मधुबन का नंबर है 94-1415-1415, यानी कि 9414151415। और अनुराधा जी हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे थे ईश्वर की और ईश्वर से जुड़े रिश्तों की। सच में उसके साथ वो रिश्ते वही महसूस कर सकता है जिसने वो निभाए हैं, जिसके एग्जांपल्स भी हम देखते आए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं ईश्वर के प्रेम की और कैसे ईश्वर मदद करता है, तभी इतने गीत भी शायद रचे गए हैं, लिखे गए हैं, वो भावनाएं सत्य हैं
1: जी।
0: अनुराधा जी आप बताएं, जैसे आपको गाने का शौक, मतलब जैसे कोई आपकी स्मृति हो, कोई मेमोरी हो, आपने गाना गाया था बचपन में, या कोई ऐसी चीज, कोई इंसिडेंट आपको याद हो जो संगीत से जुड़ा हो।
1: हाँ जी, बचपन में देशभक्ति गीत हमने गाया था, तो मेरे पापा ने वो सॉन्ग लिखा था और उन्होंने हमें सिखाया भी उन्होंने ही था, और उन्होंने हारमोनियम प्ले किया था, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था वो, तिरंगे के ऊपर सॉन्ग था वो।
0: अच्छा, आपके पिताजी ने लिखा था?
1: बिल्कुल, वो लिखते थे।
0: क्या बात है, वो क्या बात,
1: उन्हीं से उन्हीं की क्वालिटी मेरे अंदर आई है कि मैं भी बाबा के, मतलब परमात्मा गीत भी लिखती हूँ मैं, और जो भी कुछ अच्छा लगता है, राइटिंग का मुझे भी शौक है और सिंगिंग भी करने का शौक है फिर उसके बाद में, मतलब
0: ये क्वालिटी आपके पिताजी से आपके अंदर रही है।
1: फादर की
0: दी हुई है। वो कैसे, मतलब उनके बारे में कुछ बताएं, क्या करते थे वो, कैसे लिखते थे, क्या उनके आपको स्मृतियाँ हैं?
1: मेरे पापा श्यामली शुगर मिल में जॉब करते थे, श्याम सिंह काम्बोजन का नाम है, एंड वो बहुत ही अच्छे इंसान कह सकते हैं, कहते हैं ना बेटी को तो फादर अच्छे ही लगते हैं, पर सच में उन्होंने मुझे हमेशा ही आगे बढ़ाया है, और आज मतलब हमेशा आज भी कहते हैं बेटा जो करना है करो आप, तो वो उनको राइटिंग का भी शौक था, और ना रामलीला होती थी पहले टाइम में ना, वो लोग रामलीला में जाते थे तो प्ले करते थे, हम लोग भी स्टेज पे रहते थे, तो कभी रावण की सेना में तो कभी राम की सेना में हमारा ये रहता था,
0: रोल रहता था।
1: तो हमने बहुत रोल प्ले किया बचपन से ही, हम एक्टिव थे हर फील्ड में, चाहे वो सिंगिंग का था, डांस का था, या फिर एक्टिंग का था, तो पापा हमेशा साथ रखते थे ना, तो जैसे हम गए हैं फ्रॉक पहनी हुई है, छोटे थे बच्चे, तो बस कहते थे कि आपकी बेटी आपके साथ में, इसको डांस करने के लिए खड़ा कीजिए, तो अच्छा। डांस भी करते थे, पैरों में घुंघरू बांधा और डांस शुरू कर दिया, तो ऐसी हमारी लाइफ बचपन की बीती है कि पापा ने हमें हर कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाते हुए हमें आगे रखा हर चीज में कि आपको सब कुछ करना है, तो सिंगिंग भी उनसे उन्हीं की देन है।
0: बहुत सुंदर, सच में माँ बाप से बहुत कुछ मिलता है बच्चों को, और ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं, जैसे संगीत का आपका रिश्ता है वो जीवन भर अब साथ है आपके।
1: बिल्कुल दीदी, गजल लिखते थे पापा, बहुत अच्छे गाते भी थे, और जैसे हमें प्रैक्टिस भी कराते थे ना, तो जब तक हम बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ जाते थे ना सिंगिंग में, तो वो तब तक हमें खड़ा रखते थे, कहते भाई पहले प्रैक्टिस अच्छे से करो, मतलब बहुत मेहनत कराई है पापा ने हमारी, तो शायद आज हम सफल भी हो पाए उस चीज को हम देखते हैं
0: जी, वो बहुत बड़ा कारण है
1: जी।
0: उन्होंने मेहनत करना सिखाया, और ये सब पेरेंट्स जो सिखाते हैं वो सीख हमारे साथ रह ही जाती है। उस वक्त कभी कभी लगता है कि अरे इतनी डांट पड़ रही है, अरे इतने स्ट्रिक्ट
1: है, लेकिन आज समझ में आता है कि हमारे फायदे के लिए थी, बड़े होकर समझ में आता है, बचपन में थोड़ा डरते भी थे पापा से ना, लेकिन अब लगता है कि हाँ हमारे फायदे के लिए किया जो भी उन्होंने किया, आज हम सफल हो पाए,
0: बाद में उनकी कीमत समझ में आती है।
1: लेकिन आज वो लोग खुश भी होते हैं हमारे लिए, पेरेंट्स हमारे खुश भी होते हैं, अब देखते हैं ना कि हम प्रोग्राम देते हैं सिंगिंग करें तो उन्हें कितनी खुशी मिलती,
0: कितनी खुशी मिलती है, क्या बात
1: है।
0: तो चलिए एक और गीत की ओर आगे बढ़ते हैं अनुराधा जी, कोई ऐसा गीत जो आपके अपने पिता को भी चाहे तो आप डेडिकेट करना चाहें, हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें आज?
1: ये अपने प्यारे श्रोताओं के लिए मैं सॉन्ग सुना रही हूँ, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत ही सुंदर गीत है, और क्या लिखा है, क्या अल्फाज हैं इसके, तो चलिए इसको संगीतबद्ध करते हैं और सुनते हैं आज अनुराधा जी की आवाज में ये प्यारा सा नगमा, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये गीत जब हम सुन रहे थे, आपको कोई ना कोई याद तो आ रहा होगा। हो सकता है वो आपके परिवार का कोई हो, हो सकता है वो ईश्वर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूर कोई याद आया ही होगा ये गीत सुना। जब
1: बोलूं तो मैं परमात्मा ही मुझे याद आते हैं। जब मैं कोई भी गीत गाती हूँ तो वो मेरे सामने नजर आते हैं मेरे को, और लगता है कि हाँ, उन्होंने जीवन में सच में हमारे रंग भरे हैं। जो हम हमेशा ही खुश भी रहते हैं तो सब उन्हीं की देन है। जब हमें खुशी भी मिली है या जो भी कुछ हमें मिलता है लाइफ में अपनी, वो सब परमात्मा की ही देन है।
0: परमात्मा की देन है, बिल्कुल सच में। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, कितना ये सत्य है विचार करें तो। और इतना कुछ हमें मिला है परमात्मा से, प्रकृति से, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ये गीत लिखा भी बड़ा खूबसूरत हुआ है,
1: वर्डिंग
0: बहुत बहुत ही सुंदर है। अनुराधा जी, गाना भी आपने बड़ा ही अच्छा गाया। आपके फेवरेट सिंगर कौन है, मैं ये भी जरूर जानना चाहूँगी।
1: वैसे अलका याग्निक जी को मैं बहुत सुनती हूँ, और मतलब उन्हीं की थोड़ा सा कोशिश भी करती हूँ उनके जैसा गाने की। मैं गा तो नहीं पाती उनके जैसा, लेकिन वो मेरी फेवरेट सिंगर हैं। बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं बहुत।
0: हाँ, बहुत बहुत सुंदर आवाज़ है उनकी, और मुझे लगता है हर तरह के गानों में जैसे वो फिट हो जाती है उनकी है, ना आवाज़ इतनी स्वीट है। जी जी जी,
1: मतलब सिंगर तो सभी अच्छे हैं। लता दीदी बहुत अच्छे सिंगर थे।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, लेजेंड्स हैं वो,
1: ही नहीं है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन फिर भी हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा भी हम उनको फॉलो कर पाए अपनी लाइफ में।
0: बिल्कुल सही बात है। और सच में ये लोग बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आज भी उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने शुरू में नहीं मेहनत की, आज भी करते हैं। रियाज करते हैं बकायदा। आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ उस बारे में भी बताइए।
1: दीदी, मेरी प्रैक्टिस का ये रहता है कि जब भी मैं किचन में वर्क कर रही हूँ, या फिर मैं फ्री हूँ, या फिर मैं मतलब वॉकिंग के लिए जा रही हूँ कहीं भी, तो भी मेरे को सिंगिंग करने की हैबिट है।
0: अच्छा।
1: डेली सिंगिंग करने की मेरे को रहता है कि मैं करनी है, सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है। और सुबह का रियाज तो जरूरी होता है इसमें।
0: अच्छा, कैसे कैसे रियाज करते हैं आप?
1: जैसे सा का रियाज करना होता है इसमें।
0: अच्छा।
1: एक ओम का।
0: Okay.
1: अगर आप ओम का डेली रियाज करेंगे तो फिर वो अच्छा रहता है सिंगिंग के लिए, बहुत बेस्ट रहता है आपके। मतलब थोड़ा सा ना, जैसे आप सिंगिंग करते हैं तो वो सांस किसी किसी का टूटता है, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है इससे, मतलब एंड हो जाता है उसका। आप ओम का डेली रियाज करेंगे तो बहुत परफेक्शन आता है सिंगिंग में।
0: अच्छा।
1: और सा का रियाज मेन है।
0: अच्छा।
1: डेली।
0: तो जैसा आपने कहा कि वो मतलब सांस जो है उस पे पकड़ आ जाती है,
1: बिल्कुल,
0: फिर उस अभ्यास से, रियाज से।
1: लंबा हमें कोई भी आलाप लेना तो वो ले सकते हैं जिसे, अगर हम ओम का डेली करते हैं जाप तो।
0: पर निरंतरता जरूरी,
1: निरंतरता जरूरी है हर चीज में। जैसा हम कहते हैं दीदी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये जो भी कहावते हैं सब कुछ किसी बेस पे ही आधारित होती है। तो प्रैक्टिस हम जब करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, हमें सक्सेस जरूर होंगे हम, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें डेली रूटीन में उसको फॉलो भी करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: और कुछ जैसे खाने की चीजों पे बहुत परहेज करना पड़ता है।
0: अच्छा, क्या परहेज करते हैं?
1: जैसे कि ठंडा पानी नहीं आपको पीना है, और आपको आइसक्रीम भी अवॉइड करनी पड़ेगी, अचार आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सिंगिंग करनी है तो, वरना सब कुछ खाएंगे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे आप सिंगिंग।
0: हाँ, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
1: सोचना पड़ता है। लस्सी नहीं पीनी है, मतलब हमें पता होता है जब प्रोग्राम देना है तो कुछ भी ऐसा नहीं लेना जो हमें नुकसान देगा, मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तभी हम कर पाते हैं। अगर कुछ भी ऐसा कुछ ले लिया फिर वो सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है,
0: डिस्टर्ब हो जाता है। आप गला साथ नहीं देगा तो फिर गाना कितना भी अच्छा आता हो उसको गा नहीं पाएंगे उस वक्त।
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का मेन, इसमें सिंगिंग में अगर आपको कैरियर बनाना है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें ये।
0: जी अनुराधा जी, गाने जो बनते हैं बहुत अलग अलग विषयों पर भी बनते हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो रेडियो मधुबन पर भी, जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है जिसको हम नशा मुक्ति कह सकते हैं। कि नशे की चपेट में एक बार इंसान आ गया तो उसका जीवन, उसके ना सपने रहते हैं, ना रिश्ते रहते हैं, ना उसका स्वास्थ्य रहता है, कुछ भी नहीं बचता जैसे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं?
1: देखिए, जिन लोगों के घर पे इस तरह की स्थिति होती है, जो लोग नशा करते हैं, उनकी फैमिली का कुछ भी फ्यूचर नहीं होता है, बच्चों की कोई लाइफ नहीं होती है, सब लोग परेशान होते हैं, वाइफ भी परेशान होती है, खुद जिसको नशे की लत लग जाती है ना वो भी परेशान रहता है। वो चाहता भी है छोड़ना कि नहीं, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो इतना घिर जाता है उसके चारों साइड से कि वो छोड़ना भी चाहे तो अभी छोड़ नहीं पाता है। एक तरह से बच्चे भी परेशान हैं, परिवार पूरा परेशान ही रहता है, हर कोई ये चाहता है कि किस तरह छोड़े, पुरानी तरह से भाई ठीक होके आए वापस। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, सभी का लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है
0: जी। यहाँ भी मुझे लगता है रेडियो मधुबन पर भी हमने जो डॉक्टर से बात की, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये भी एक बीमारी है, आप उनसे नफरत ना करें जो नशा करते हैं, उनको बार बार कर्स ना करें, गलत शब्द ना बोलें उन पे, उनको मदद करने की अगर हमें कोशिश करनी है तो हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि जैसे बीमार व्यक्ति से बात करते हैं वैसे ये भी बीमारी है तो वो उसको ठीक करना होगा, ये उन्होंने समझाया था। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, ये अच्छी बात लगी।
1: ये उनको जितना हम प्यार से ट्रीट करेंगे ना, उनको बिल्कुल उनको फील नहीं होने देंगे कि भाई वो गलत है या वो गलत कर रहे हैं, तो शायद वो चेंज हो जाए और छोड़ भी पाए। अगर हम उनको प्यार से उनकी हेल्प करेंगे, उनको समझाएंगे, तो मे बी वो छोड़ दें। मतलब टाइम लगेगा पर समझेंगे,
0: पर समझेंगे,
1: क्योंकि प्यार से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप डांट के वो काम कराएंगे तो शायद वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये है,
0: और हमारा पर्पस तो ये है कि वो छोड़ दें, इस लत से बाहर आ जाएं, निकल जाएं, तो उसके लिए कुछ अलग तरह से प्रयास करना होगा। गीत संगीत भी बड़ा सुंदर एक साधन है इस प्रयास का। क्या कोई गीत है आपके खजाने में?
1: हाँ, इससे दीदी मैंने एक सॉन्ग लिखा है नशा मुक्ति पे, तो वो मैं सभी अपने प्रिय श्रोताओं को सुनाती हूँ, आप भी सुनिए।
0: जरूर,
1: प्यारा सॉन्ग है वो,
0: बिल्कुल।

आज कसम ये खानी है। देखूंगी मैं जब जब भी नशा करते हुए लोगों को, रोकूंगी

0: आज कसम ये खानी है।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर। मतलब आपने एक एक शब्द जो कहा और जैसे उसको गाया, वो सच में ये महसूस होता है कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है, अगर वो ये फील कर रहा है तो सच में आज वो कसम खा ही ले, आज वो ये डिसाइड कर ही ले कि नहीं करना है,
0: थैंक यू दीदी,
1: क्योंकि
0: ये वास्तव में बहुत
1: कल
0: प्यारा
1: कभी
0: सुना।
1: नहीं आता है।
0: हाँ जी दीदी, मैं चाहती हूँ कि जो भी इस गीत को सुने ना, वो कभी नशे की ओर जाए ही नहीं। इसी भावना, शुभ भावना के साथ ही मैंने ये सॉन्ग लिखा है
1: जी
0: कि जो भी सुने ना, वो तो नशा कभी करे ही नहीं और नशे की ओर जाए भी नहीं, और सभी सुने इस सॉन्ग को ना, और जो जिनको जानते भी ना, कोई नशा करता भी है, उसको भी सुनाए तो शायद वो बच जाए उस चीज से ना।
1: अनुराधा जी, कि क्यों लिखा था आपने, मतलब क्या प्रेरणा थी इसके पीछे?
0: हाँ जी दीदी, मतलब मैं देखती थी ना छोटे छोटे बच्चों को भी नशा करते हुए, तो मैं सोचती थी कि इसलिए मैं गीत लिखूंगी बच्चों के लिए भी, या समाज को एक मतलब मैसेज देने के हिसाब से मैंने ये सॉन्ग लिखा था। ये एक अच्छा मैसेज समाज के लिए जाएगा, शायद कोई जो नशा करता भी होगा उसने सुन भी लिया, शायद वो बच जाए इससे, मतलब छोड़ दे नशा, और शायद उसको याद आ जाए कि हाँ मैं परमात्मा मतलब मैं भारत का बच्चा हूँ, मुझे देश के लिए कुछ करना है, नशे की ओर जाके अपना जीवन क्यों मुझे खराब नहीं करना है, मेरा परिवार भी बर्बाद होता है उससे, मतलब फैमिली मेरी सारी परेशान होती है, तो जो मैं किसी को दुख देता हूँ उससे मैं भी दुखी हूँ, दूसरा भी सामने वाला भी दुखी है, तो इस सबसे ये सब कुछ देख के ना मैं देखती थी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मतलब एक साइड में कोने में खड़े होकर नशा करते हैं, तो दुख होता था देख के ना, तो सोचा था कि एक मैसेज समाज को देना है, एक सॉन्ग के जरिए ही मैं दे सकती थी, तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग लिखा था।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा अनुराधा जी। और हम यहाँ भी देखते हैं, और ये भी पता चलता है, बच्चे नशा करना सीखते कहाँ से? वो जब अपने माँ बाप को देखते हैं करते हुए, या उनके माँ बाप
0: जी
1: कभी कभी उनसे ना, उनको लगता है छोटे हैं, ऐसे कुछ मंगा लो सामान कि तंबाकू ले
0: बिल्कुल
1: आ, ये ले आ, तो वो वहाँ से उनकी क्यूरियोसिटी जग जाती है। और जब उन्हें लगता है कि भले उनके माता पिता कहते हैं नहीं करो, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ठीक ही होगा।
0: घर में अगर बड़े कर रहे हैं तो बच्चे तो नेचुरल करेंगे।
1: बिल्कुल, तो अगर बच्चों को आपको नहीं सिखाना है तो आपको अपना नशा बंद करना होगा।
0: हाँ जी दीदी, अब नशा तो हर तरह का होता है, देखिए फोन का भी एडिक्शन ही है एक तरीके से
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: और अगर हम पेरेंट्स ही फोन यूज कर रहे हैं तो हम मतलब बच्चे फिर कैसे नहीं करेंगे, आप बताइए ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फोन को यूज नहीं करें तो हमें सबसे पहले बंद करना पड़ेगा फोन को यूज करना। एडिक्शन तो हर मतलब बहुत कुछ है, नशा तो बहुत तरह का
1: ये
0: है।
1: मेरी सही बात है। मुझे तो एक बात याद आ गई, एक बच्चे ने अपनी टीचर को पूछा, मैम आपने सिखाया था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो बोलते हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, सच बोलना चाहिए। तो उनको याद, तो बोला कि नहीं मैम, कल तो आप ना छुट्टी में मुझे आपने ली छुट्टी ली थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल तो मैंने आपको मॉल के पास देखा था, तो आपने तो झूठ बोला, और फिर आप बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए।
0: जी
1: तो वो टीचर भी रुक गई सोच के कि अरे ये अब इसको कैसे समझाऊं।
0: बिल्कुल
1: और इसीलिए जो कर्म में नहीं आता वो बात फिर
0: बिल्कुल,
1: है ना, विश्वास भी नहीं
0: बच्चे
1: करता
0: ऑब्जर्व
1: कोई
0: करते
1: उस
0: हैं
1: पे।
0: सब कुछ, बोलते कम है बच्चे लेकिन ऑब्जर्व सब कुछ करते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे हमें देख रहे हैं, तो
1: देख
0: हम
1: रहे
0: जो
1: हैं,
0: करेंगे वही बच्चे करेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो करवाना चाहते हैं वो पहले
0: वो
1: खुद
0: हमें
1: करना
0: करना
1: होगा।
0: पड़ेगा बिल्कुल दी।
1: सच में। अच्छा अनुराधा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं संगीत में, आपने बताया आपको पसंद कौन है, आपने इंस्पिरेशंस के बारे में भी बात किया, और आपके थोड़ा सा और बात कहते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या है, मतलब आगे अपने जीवन के लिए आपने क्या सोचा है, क्या आपने संकल्प किया है, कुछ इस बारे में बताएं।
0: मेरा तो एम यही है कि मैं वैसे तो मेरे को सॉन्ग लिखने का शौक बहुत ज़्यादा है, तो यही है कि हर किसी भी विषय पे मुझे सॉन्ग लिखना ही है, देश के लिए जहाँ भी ज़रूरी है, वो कोई भी मतलब किसी भी तरह का सॉन्ग है, चाहे आप नशा मुक्ति के लिए कहिए या फिर कोई देश प्रेम का सॉन्ग कहिए या फिर परमात्मा की याद का सॉन्ग कहिए, सॉन्ग लिखना मुझे बहुत पसंद है, तो परमात्मा की याद में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कुछ भी सॉन्ग परमात्मा के लिए लिखना या उनको फीलिंग में ला के लिखना, और लोगों का यही है कि सबका सबकी सेवा करना, किसी भी तरह से सेवा करना मेरा भाव, सेवा भाव मेरा रहता है हमेशा ही, सबका साथ देना, जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ जाके उनकी सेवा भी करना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि सेवा को दूँ लोगों को अपनी, मतलब अभी मैं ठीक हूँ, कर सकती हूँ, फ्री भी हूँ, बच्चे मेरे बड़े हैं, 3 बेटे हैं मेरे, तो मेरे पास टाइम भी है, अभी पहले टाइम नहीं होता था, लेकिन अभी मैं सेवा करना चाहती हूँ समाज की, सोशल वर्कर की तरह,
1: क्या बात है,
0: तो कर भी रही हूँ जितना मुझसे हो पाता है, तो आगे भी करूँगी।
1: ये बहुत सुंदर लक्ष्य है आपने। देखिए कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा का लक्ष्य रखा है, आप कर
0: बिल्कुल
1: भी रहे हैं
0: बिल्कुल
1: और भी करना चाहते हैं आप, तो बहुत वंडरफुल लक्ष्य है
0: थैंक यू
1: आपका,
0: दी,
1: एंड हम जरूर ये विश
0: परमात्मा
1: करेंगे
0: मेरा
1: कि आप
0: साथ दे
1: सफल
0: इसमें
1: हों
0: तो मैं
1: इसमें।
0: जरूर अच्छे से करूंगी। जो भी मुझसे हो पाएगा समाज के लिए मैं जरूर करूंगी।
1: बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है अनुराधा जी, कहाँ ज़रूरत है समाज में बदलाव की? क्या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आप भी करना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं को भी करना चाहिए?
0: सबसे पहले आज के टाइम में जो मैं देखती हूँ ना समाज में जो है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो आजकल जो शादियाँ आप देख रहे हैं ना होती हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं वो उनको ये मतलब लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है जो आजकल फैमिली बन रही है ना, आते हैं भाई, तो उनको सोचना चाहिए कि नहीं, जैसे हमारे खुद के कोई भी मतलब लड़की शादी होकर आती है उसको सोचना चाहिए जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, ऐसे ये भी मेरे मम्मी पापा हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। आजकल यही ज़्यादा देखने में आ रहा है कि मतलब पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है, उनको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है, तो वो बहुत गलत सीन होता है वो, मैं मतलब मुझे दुख होता है बहुत देख के ना। तो मैं उन लोगों का साथ जरूर देना चाहूँगी कि जो ऐसे मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि अपने पेरेंट्स का प्यार कीजिए, उनका साथ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप नहीं समझ सकते अगर वो हमारे साथ हैं तो हम घर से बाहर कहीं भी जा सकते हैं, आप फ्री माइंड होकर जा सकते हैं कि वो घर में हैं सब कुछ संभाल लेंगे। अगर वो नहीं होंगे ना तो आप उनकी वैल्यू तब समझेंगे, अभी आप उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं लेकिन बाद में आप उनकी वैल्यू समझेंगे। तो ऐसा देर करने से फ़ायदा नहीं है, आप अभी आपके साथ में वो है, उनकी केयर कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनका साथ रहिए, उन्हें टाइम दीजिए अपना, क्योंकि वो उनके हकदार हैं और बदले में आपको उनसे कितना कुछ आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। तो मुझे वो सब देख के बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूँ समाज में कि पेरेंट्स की कोई वैल्यू आजकल डाउन होती जा रही है बहुत, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ऊपर होने चाहिए।
1: बिल्कुल आप सच कह रहे हैं अनुराधा जी, और एक बार हम याद भी कर देना कि बचपन में उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, वो आप याद तो करिए, वो पता नहीं कौन सा हम जीवन की दौड़ में आगे निकल गए हैं कि आसपास के नज़ारे भी नहीं दिखते, होता है ना कभी कभी हम बहुत स्पीड में होते हैं तो दिखता नहीं है कि आसपास क्या है, पीछे क्या गुजर गया, मगर उनके बिना तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते जहाँ है।
0: दीदी ये भी है जैसे आज वो लोग ऐसा कर रहे हैं, कल को उनके साथ भी तो होना है, कल को वो भी बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे,
1: बिल्कुल,
0: तो वो कैसे सोचेंगे कि हम जो आज वो बच्चे देख रहे हैं वही उनके साथ में होने वाला है, तो उस चीज़ को अगर आज समझते हैं तो आज समझ जाएंगे, वरना पछताएंगे बाद में, फिर कहते हैं ना आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत,
1: बिल्कुल
0: तो वो वाली फिर कहावत आ जाती है उसमें, तो संभलना अभी का टाइम है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स की सब लोग केयर कीजिए, बहुत परमात्मा का पता सर पे हाथ समझिए कि वो आपके साथ हैं, उनको साथ रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनकी केयर कीजिए, तो आपसे ज़्यादा मतलब भाग्यवान कोई है ही नहीं जिनके पास पेरेंट्स हैं।
1: सही कह रहे हैं,
0: तो आप ध्यान रखिए उनका, मैं यही श्रोता मित्रों को अपने कहना चाहूंगी कि आप उनका ध्यान दीजिए,
1: बिल्कुल उनके पास बैठिए, उनसे थोड़ा बातें कीजिए,
0: टाइम निकालिए उनके लिए भी,
1: सबसे ज्यादा तो यही होता है, हाँ टाइम नहीं है आज लोगों के पास बैठ के बात करने का समय नहीं है।
0: तरसते हैं वो लोग बुजुर्ग जो होते हैं ना घर में कि हमारे पास थोड़ी देर बच्चा बैठे बात करे हमसे, वो सिर्फ इसी में खुश है कि पापा आप कैसे हो, मम्मी आप कैसे हो, इतना सुन के वो खुश हो जाते हैं, उन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए,
1: लेकिन थोड़ा वक्त जरूर दीजिए उनके पास जाके बैठिए, नहीं समझ में आ रहा आपको कुछ भी नहीं तब भी बस बैठिए उनके पास जाके, है ना, उनसे उनका हालचाल पूछिए, कुछ पुरानी बातें करिए, कुछ नया आप क्या करने वाले हैं वो शेयर कीजिए, उनको कितनी खुशी होगी कि आप उनसे अपना बांट रहे हैं अपने थॉट्स को, कितनी ज़रूरी चीज़ है और हम रियलाइज ही नहीं करते।
0: हाँ जी, बाद में पछतावा होता है कि शायद हम समय पहले रहते हुए हम जाग जाते तो सही रहता, लेकिन तब देर हो जाती है, तब कोई फायदा नहीं है उसका, आज समझ जाए तो अच्छा है, वो भी पेरेंट्स भी अपनी लाइफ जी लेंगे और आप लोगों को भी उनके मतलब साथ हमेशा रहेगा, प्यार भी बना रहेगा,
1: बिल्कुल, और माता पिता की दुआओं से ना बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।
0: वो लोग तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब वो बच्चे भले ही उनको कुछ भी बोल दे लेकिन वो तो आशीर्वाद ही देते रहते हैं कि भाई तुम खुश रहो, तुम सुखी रहो, तो ये है कि उनका साथ बहुत जरूरी है,
1: बहुत बहुत जरूरी है, सच में माता पिता जितना प्यार कौन कर सकता है, तो ज़रूर आज से ही मैं तो कहूँगी दोस्तों कल का भी इंतज़ार मत कीजिए, उनके साथ वक्त ज़रूर गुजारिए, उनको थोड़ा बाहर भी लेके जाइए, उनके साथ वॉक करिए, कुछ करिए उनके लिए ज़रूर,
0: आप ले जाइए आउटिंग कराइए
1: उनको, आपका जीवन और बेटर हो जाएगा इसकी तो गारंटी है। तो सच में माता पिता का ये खूबसूरत रिश्ता जो जैसा आपने शुरू में कहा था परमात्मा के साथ भी आप निभाते हैं, है ना, वो भी पिता है,
0: बिल्कुल प्यार ऐसे ही करता है मतलब बच्चों को ना, वो हम परमात्मा को हम गुस्सा भी कर देते हैं आपने ऐसा किया, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा ही रहता है, वो तो हमें बराबर सेम उसी नजर से देखते रहते हैं, हम ही चेंज होते रहते हैं कभी अच्छा किया तो ठीक है आपने अच्छा किया, कुछ खराब किया तो आपकी वजह से बाबा खराब हो गया या परमात्मा आपने तो ऐसा हमारे साथ में ऐसा कर दिया, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कर तो हम ही रहे हैं ना, हम तो दोष भगवान को देते हैं लेकिन कर तो हम सब हमारे कर्मों का फल है जो भी हम कर रहे हैं जो हम पा रहे हैं, हम परमात्मा को दोष तो फालतू में देते हैं मतलब उनका कोई वो नहीं है उसमें,
1: सही बात है, परमात्मा परमात्मा के पास हमारे हमें देने के लिए प्यार ही
0: प्यार है, असीम प्यार है कहते हैं परमात्मा, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, वो तो हमें देता ही रहता है, हमें लेना आना चाहिए उनसे बस ये।
1: तो कहीं अगर दोस्तों आपको लग रहा है ना प्यार की कमी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है मन उदास है या कुछ खाली खाली सा है, कोई भी आपके ज़िंदगी में समस्या आपको लग रही है, तो समझ लीजिए प्यार अवेलेबल है आपके लिए, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ना है। और अनुराधा जी, जाते जाते बहुत सुंदर ये सफ़र रहा आज आपके साथ, बड़ा मज़ा आया बातें करके, ये संगीत सुन के। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत आज सुनाएंगे?
0: परमात्मा के लिए बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, तो यही मैं आपको सुनाऊंगी और श्रोता मित्र बहुत प्यार से सुनेंगे मेरे को और हमेशा मिलेंगे मेरे से, हम आगे भी आपसे मिलने के लिए मैं आऊंगी, तो बड़े ध्यान से आप इसको बिल्कुल प्रभु में ना मगन होके इस सॉन्ग को आप सुनिए, तो आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो मैं शुरू करती हूँ अपना सॉन्ग ये।
1: जरूर।

0: ऐसे गीत जब सुनते हैं तो उसके बाद लगता है कुछ कहा ना जाए, बस उनकी जो यादें हैं, वो जो शब्द हैं, वो जो संगीत है, वो स्वीटनेस है, वो घुली रहे हवाओं में, वो घुली रहे हमारे मन में और हम उसी में खो जाएं। तो थैंक यू सो मच अनुराधा जी का, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत मधुर यात्रा पर हमें आप लेकर गए और हम यही विश करते हैं आपका जो समाज सेवा का लक्ष्य है वो भी पूर्ण हो, साथ साथ ये संगीत का सिलसिला भी हमेशा जारी रहे।
1: थैंक यू दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और श्रोता मित्रों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमेशा प्यार से मुझे सुनते भी हैं श्रोता मित्र, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर मिलेंगे हम आपसे, जल्दी ही मिलेंगे शायद,
0: बिल्कुल
1: है ना। और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप इतने प्यार से मुझे बुलाते हो और बहुत ही अच्छा लगा आज
0: का। भी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, लेकिन वक्त इशारा कर रहा है कि भाई समय हो चुका है तो इजाज़त लेनी होगी अपने दोस्तों से, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मधुबन अनप्लग्ड पर फिर से हाजिर होंगे कुछ नए गीतों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों देरी मत करिए, हमें मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार
1: नमस्कार।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

imagine our world. I see it in front of me now. A beautiful glow.

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: सक्सेस एल्यूड्स अस बिकॉज़ वी ऑफन लैक द विजन टू पेंट फुली द पिक्चर ऑफ सक्सेस इन आवर माइंड्स। सक्सेस हैपेंस फर्स्टली ऑन द थॉट लेवल। I need to begin with powerful positive thoughts. Let's spend a few minutes in giving our minds some useful working materials so a more complete image of my final achievements can be drawn.

शांति। आज 7 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को नशा भी चढ़ाते हैं और बाबा कहते, बच्चे तुम्हें ये नशा होना चाहिए कि हमारा शिव बाबा हमारे लिए 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसलिए आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने और इस समय हम उनके सन्मुख बैठे हैं। तो बाबा कहते, ये बातें सोच करके भी बहुत अंदर में नशा होना चाहिए। साथ ही साथ बाबा हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति भी समझाते हैं और कहते, बच्चे अपने अंदर योग बल को एकत्रित करना है। क्यों? ताकि हम सजाओं से सहज रीति से मुक्त हो सके और पुराने हिसाब किताब को सहजता से चुक्त कर सके। बाबा कहते, घरबार को छोड़ना भी नहीं है, ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है, लेकिन अंदर में किसी भी बात की चिंता न हो, बस आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं को आत्म समझ करके बाप को याद करना है, क्योंकि यही कमाई का समय है और इस समय में भी घर घाट धंधा दूरी आदि याद करते रहेंगे तो बाबा कहे, फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कब करेंगे। बाबा कहते, तुम बच्चों को फरिश्ता बनने के लिए सदा एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा आज नशे के साथ साथ कर्म की गुह्य गति समझाते हुए बच्चों को शिक्षाएं भी दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, कर्म की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है,

रात में रहने का कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? तो बाबा कहते याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि याद में रहने से ही पुराने हिसाब किताब चुकते होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतु नहीं करेंगे तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो सजाएं भी खानी पड़ेगी और दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। इस दुनिया में पुनः पुनर्जन्म लेंगे तो ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है। कैसे? बाबा कहते हैं बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है कब? जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं। और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने आए हैं बाबा? क्या करने आए हैं? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। बाबा क्यों आया है, क्या करने आए हैं? बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हुए हैं। हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। कैसे याद करना ये भी सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। कितना बाबा नशा चढ़ाते, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। ये आत्माएं अब तुम मेरी संतान हो। कितना नशा चढ़ता है, भगवान हमें कहे ये आत्माएं अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भूलो मत। बाबा कहते ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुखकर्ता, याद करती है आत्मा परमात्मा को। हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुखकर्ता, क्योंकि रावण राज्य है ना। बल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम है, इतने मिल्स है, कारखाने हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए है। बाबा कहते इसीलिए इस स्थूल चीजों का नशा नहीं रखो कि हमको इतने मिल्स है, इतने पदम है, इतने कारखाने हैं, ये सब तो अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। कई बार देखते हैं करोड़पति कैसे रोड़पति बन जाते हैं, एकदम ऐसी दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां लगेगी,
नेचुरल कैलामिटीज होगी। सफाई तो चाहिए ना, तुम्हारी आत्मा भी अपवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं, बाबा बिल्कुल थोड़ी मेहनत देते हैं। क्या मेहनत देते हैं? बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार, हम आत्मा ही उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खा करके चले आना चाहिए। अगर इतना सहज है कि पानी की नदी से पतित पावन हो जाए तो बाबा कहे झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है, और किसकी मत पर नहीं चलो, पर मत के प्रभाव में नहीं आओ। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। दुनिया में मनुष्य समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों की रक्षा करने भगवान आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? पूछना चाहिए कि भक्तों पर क्या ऐसी आपदा पड़ी है जो भगवान रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। तो बाबा कहते रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। रहम भी आता है बाबा को कि तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरो नरक, सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है, कोई 60 जन्म कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे, 84 जन्म बाबा कहे देवता धर्म वाले लेते हैं, तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। जो देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर के बाद जो आए वो भी 84 जन्म लेंगे, नहीं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो ये पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। बाबा कहते तुम पुकार रहे थे बुलाते थे तो अभी बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। सारी मूर्तियां तो पत्थरों की बनी हुई हैं।
पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम बल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे, यानी फिर वापस उल्टे कर्म करना तो शुरू कर देते हैं। उस जन्म के पाप दग्ध होंगे, लेकिन फिर वापस जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, काशी कलवट खाओ, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, ये भी भारत में प्रथा थी। बाप कहते तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, इतने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, बाबा स्मृति दिलाते थे। तुमको कितना स्वर्ग की बादशाही दी थी, सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था। वह क्या किया, वो सारा धन क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चलाता है। तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो। किसको पता ही नहीं, बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, चक्र तो फिरना ही है, तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जरूर आना है। सब धर्म को सतो रजो तमो में आना ही है। प्रकृति के इन तीन गुणों के वश हरेक को होना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पति शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते ये बड़ी समझने की बातें, अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ये यादगार खड़ा है, ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। बाबा कहते ये तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, वह जड़ है और इस समय हम चैतन्य में। सतयुग में ये नहीं था, दिलवाड़ा मंदिर सतयुग में नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है, नाम ही रखा है मधुबन। चैतन्य में मधुबन ही बाबा कहे हूबहू तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर है, नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। बाबा ने हमको इतना धनवान बनाया सतयुग त्रेता में,
तो बाबा कहे फिर द्वापर से हम ही शिव के मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सौ बनाते हैं। यथा योग्य यथा शक्ति। आज शायद सारे भारत भर में एक गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां भोलेनाथ बाबा का मंदिर ना हो। तो हरेक बनाते हैं यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना शाहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा, फिर दुनिया पतित बनती है। तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। फिर द्वापर कलयुग के महाराजाएं क्या करते हैं, वह निर्विकारी महाराजाओं के मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म भी भोगते हैं ना, आधा कल्प तुम पूज्य फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य आप ही पुजारी है, सब कुछ आप ही देते हैं, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। ये भी समझते हैं कि मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान आप ही सब कुछ देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? बाबा के उनको कहो, अच्छा जबकि उसने दिया और लिया फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबर वार, आत्म अभिमानी बनते हो नंबर वार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहां कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? बाबा कहते कल क्या बनेंगे, अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेंगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग भोग कर चुप्पू करना होगा, कर्म भोग भी भोगना होगा और बाबा कहे भोग करके उसको चुप्पू करना होगा, फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। ये कर्म की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यदि बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो ना सके कि राजाएं बैठ गौ को संभाले। यह दिखाते हैं सतयुग में गौवे भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है। और संगम पर कामधेनु कौन है? बाबा कहते जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है। कौन सी गौ पर? कामधेनु नाम कौन सी गौ पर रखते जो बहुत दूध देती है? राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहां भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहां कोई बांस यानी बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है, सतयुग में कोई बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है।
अब बाप बच्चों को कहते हैं, मैं आया हूं तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा, मुझे बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, यह है पतित वह है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतन वासी है फरिश्ता, सतयुग के अंदर जो है वो देवताएं हैं और सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो, बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहां जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। मधुबन में जब आते हैं तो बाबा कहे कोई भी मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो किस लिए, योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए ना, योग की कमाई करने आए तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब कैसे चुकतु करेंगे, योग बल से चुकतु करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। बाबा कहे सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी, फिर कम समय में सफलता हजार गुना होगी, फिर कम समय में सफलता हजार गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो। क्या दृढ़ संकल्प करो, कि हम विजयी रत्न है तो हर कर्म में विजयी समाई हुई है। आज का स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं है, बोझ है। आज का अव्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। बाबा कहते
साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।